0: जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
1: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला।

0: में खड़ा कर दिया।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का ये सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है और इनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
0: बड़ा सवाल ये है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
2: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
3: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले नहीं सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
4: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना एफआईआर फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
0: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
4: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
5: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो एफआईआर क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख ले, हमारी कमेटी है बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
0: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने एसबीआई के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की, ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
6: वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
7: बड़े आरोपियों सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोचाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले। मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले उनको पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
5: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि एसआईटी से पुलिस से जो

0: का हमारे प्रस्ताव है, उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनके उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
1: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, आठों आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
2: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दाव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
3: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
4: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
5: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
4: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
6: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है, बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
7: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
8: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीति और विचार बदलने की जरूरत है।
6: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
9: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है, लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल किया था तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
6: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
10: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
6: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
11: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
6: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
2: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है, और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
12: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
13: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी, वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
14: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई, देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
15: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया बिजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। बिजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
14: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब बिजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे, चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
16: रही बात जेल जाने का, था जेल कल गए, फिर परसों से यही खेल करेंगे।
17: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
16: एमपीपीएससी।
17: हाँ,
16: इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होगा।
17: किसका नाम?
16: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे हम लोग, तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ में, धरा गया, जेल चल गया।
14: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
18: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटलाय टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
19: ये सरकार की नाकामयाबी आहे, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
20: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
14: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का खुलासा वहां की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीईटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया, जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ। जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
21: ये संजीव मुखिया के अभी तो भगा हुआ है ना, ये
16: पकड़ाएगा भी
21: क्यों? ये पहले भी जेल जा चुका है ना,
16: पैसा कमाया बॉस इधर एक साल का। एक साल पहले
21: उसकी दीदी इलेक्शन भी तो लड़ी थी,
16: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ। लोगों से एडवांस उठाया बेटा, वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेक्टर फैक्टर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया। इस बार उसको 200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
14: पिछले 2 दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से 1 साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट ने चार्जशीट भी दायर की है।
22: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
23: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहाड़ जेल में है।
22: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सल्ला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
23: एसआई ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो जेकेएलएफ का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
2: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
0: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए। और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
1: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
0: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से जुड़े सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुँचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
2: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
3: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनोगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का टीटीपी का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक बेरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राम मंदिर चंदा गबन केस में बैंकों तक जांच की आंच, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड तलब किया गया। आज तक की खबर के बाद 17 साल से जमे आ रहे में कोथा बादला। चंदा चोरी को लेकर यूपी में सियासी तनातनी, सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले अजय राय होटल में नजर बंद। सुबह 9:30 रामलला के दर्शन को पहुंचेंगे कांग्रेस नेता। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही की प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण केस में नया मोड़, इस्लाम कबूल करने के बाद आयुष मलिक ने की घर वापसी। घर के मंदिर में पूजा पाठ, चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर ब्रेन वॉश करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6:00 देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसके साथ जुड़ी है लोगों की आस्था, क्योंकि अयोध्या सिर्फ मंदिर नहीं, भगवान राम की जन्मभूमि नहीं, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों हिंदुओं के भक्तों के आस्था का प्रतीक है, उसका केंद्र है। और जब वहां पर आपके द्वारा दिए गए चंदे की लूट खसोट होती है, चोरी होती है, तो उस आस्था को चोट पहुंचती है। और जब आस्था को चोट पहुंचती है तो उठते हैं बहुत सारे सवाल। इसलिए अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनके साथ 70 से 80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर के है, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
2: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है और इनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
2: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद FIR क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
1: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: आपराधिक षड्यंत्र, जब लूट होती है तो पुलिस एक पहलू से जांच करती है, कितने लोग थे, मिलजुल करके तो नहीं कर रहे थे, और अगर कहीं पर अपराध छुपाया जाता है तो भी अपराध है, क्योंकि उसके पीछे की मंशा होती है उस अपराध का हिस्सा बनना, उस अपराध के फायदे का हिस्सा बनना। चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले और ना सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले में उनके साथियों को कठघड़े में खड़ा कर दिया है।
3: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना FIR फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
2: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने SIT बनाई, 25 जून को FIR दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया, इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद FIR दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
3: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
5: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो FIR क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख लें। हमारी कमेटी है, बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
2: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में FIR दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने SBI के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की, ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
6: वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाएगी।
7: बड़े आरोपियों सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोछा वाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता ना चले। मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले, उनको पता ना चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
5: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि SIT से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनके उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
2: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
0: दिलचस्प बात यह है कि चंपत राय ने पद छोड़ा है या नहीं इसके बारे में भी उन्होंने औपचारिक तरीके से कुछ नहीं कहा। मंदिर ट्रस्ट ने कहा फैसला लिया जाएगा। कहानी में बहुत सारे सस्पेंस हैं, क्यों? क्योंकि अब ये सीधे सीधे यूपी की सियासत का भी रुख पलटेगी। लेकिन क्या 2027 यूपी की सियासत और चुनावी लड़ाई विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की। इसी के बाद ये भी चर्चा तेज हो गई कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में लोहिया वाला दांव खेलने वाली है। मुद्दा बड़ा है और इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं। तो क्या बीजेपी अब इस होड़ में है कि वो खुद को लोहिया का सबसे बड़ा पैरोकार कहेगी?
8: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
9: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
8: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
10: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
11: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य है कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
12: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी हैं, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीत और विचार बदलने की जरूरत है।
10: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुन तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
13: अखिलेश जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल किया था तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
10: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
14: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है,
3: विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
10: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
15: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
10: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी की सियासत विचारधारा से है, लेकिन एक विचारधारा की सियासत अब पश्चिम बंगाल से शुरू हो गई है। तो यूपी से हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बड़ी सियासी हलचल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि 2 जुलाई को कैबिनेट में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी, अगस्त में टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर बिल लाया जाएगा।
16: आगामी 2 तारीख कैबिनेट এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ, গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024 একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না।
0: ये कैसा समय आ गया है कि एक देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ताजा महाराष्ट्र महाराष्ट्र के टीटी परीक्षा का है। इस मामले में अब मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आया, वही विजेंद्र गुप्ता जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में विजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है, जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस इसी विजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।

0: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
1: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। 4 सेट मिले हैं, जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी। वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
2: महाराष्ट्र में TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है, जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में TET परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। TET पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं।
3: CBI का उगाड़ नहीं पकड़ रहा, उसके घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। ऐसा कभी स्पोर्ट्स नहीं पकड़ रहा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ रहा।
2: अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र TET पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वो सभी इसी पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
4: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024, जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें पेपर माफिया विजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। विजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
2: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे, चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
3: रही बात जेल जाने का, था जेल कल गए, फिर परसों से यही खेल करेंगे।
5: आप कैसे UPSC वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
3: MPPSC। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
5: किसका नाम?
3: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए साथ में, धरा गए, जेल चल गए।
2: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
6: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला आहे TET चा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
7: ये सरकार की नाकामयाबी आहे, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है, तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
8: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता, तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
2: महाराष्ट्र TET पेपर लीक का खुलासा वहाँ की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर TET के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग, आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया, जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
9: ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये
3: पकड़ाएगा
9: क्यों? लेकिन पहले भी जेल जा चुका है ना,
3: पैसा कमाया, ऑलमोस्ट इधर एक साल का, एक साल पहले
9: उसकी दीदी इलेक्शन भी तो लड़ी थी,
3: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया, बेटा वो सब दिन नीट का ही काम करता है, दस बीस कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया, इस बार उसको 1400-1400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
2: पिछले 2 दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से 1 साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
10: पन्नों को खंगालिए तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि क्या कभी कोई माफिया बिना सत्ता के संरक्षण के पला है, बिना सत्ता के संरक्षण के बढ़ा है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर।
12: समर्स अ गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ डेज दैट लास्ट अ लिटिल लॉन्गर, a brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event, with specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid, all backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
13: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
14: कुंडली मिलान में नाड़ी दोष क्या होता है? कुंडली मिलान में भकूट का क्या महत्व है? और क्या केवल गुण मिल जाने से विवाह कर लेना चाहिए? क्या है कुंडली मिलान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
15: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more, all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
17: continue to face political pressure to reach a peace deal,
16: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
18: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
19: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे

राम मंदिर चंदा गबन केस में बैंकों तक जांच की आज। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड तलब। आज तक की खबर के बाद 17 साल से जमे आरएमओ का तबादला। चंदा चोरी को लेकर यूपी में सियासी तनातनी। सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले अजय राय होटल में नजरबंद। सुबह 9:30 बजे रामलीला के दर्शन को पहुंचेंगे कांग्रेस नेता। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही की प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथनी कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी। 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन। शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़। इस्लाम कबूल करने के बाद आयुष मलिक ने की घर वापसी। घर के मंदिर में पूजा पाठ। चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर ब्रेन वॉश करने का आरोप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। मॉनसून का इंतजार पहले ही काफी लंबा रहा और अब मॉनसून ने दस्तक दी है तो पश्चिम के राज्यों में तो कहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में, लेकिन अभी भी मॉनसून उत्तर तक नहीं पहुंचा है तो उधर हो क्या रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लद्दाख में ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। असम के जोरहट में नदी में बाढ़ के कारण पर्यटक फंस गए। धेमाजी में 4 लोग बह गए। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से सड़कें और जमीन धंस गई। राहत और बचाव अभियान वहां जारी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश से नदी उफान पर है तो महाराष्ट्र के जालना में नाले में आई बाढ़ से कई लोग फंस गए। प्रशासन अब प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य में जुट गया है। देश के 6 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। देखिए, कहीं पर लैंडस्लाइड है, कहीं बाढ़ है और ऐसी प्राकृतिक आपदा देश के अलग अलग इलाकों में। और अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में देखा जा रहा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। लोअर सियांग जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ भूस्खलन हुआ है, सड़कें सड़क मार्ग कट गए हैं। देखिए, ड्रोन की तस्वीरों को देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पहाड़ों पर आई मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुए हैं और रास्तों में कटाव हो गया है। तो कहीं पर ये देखिए 4 लोग बह गए। यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि अचानक नदी में बहाव आ गया तो कई राज्यों में बारिश हाहाकार तो कई इलाकों में सूखे की मार। आगे बढ़ेंगे खबर महाराष्ट्र से। नागपुर में एक दर्दनाक हादसे में इमारत का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। गीतांजलि थिएटर के पास मृतक, जो अपनी दोपहिया गाड़ी से सर्विसिंग कराने पहुंचा था दुकान पर, इसी दौरान इमारत का बाहरी हिस्सा ऊपर से गिर गया। हादसे में एक कार समेत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिली तो पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी पहुंची। मामले की जांच फिलहाल जारी है। तो एक तरफ जहां चारधाम यात्रा चल रही है तो अब बस 2 से 3 दिनों के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में अब तैयारियां अंतिम चरण में है। सुरक्षा व्यवस्था पर रखने के लिए अनंतनाग समेत कई इलाकों में मॉक ड्रिल तेज कर दी गई है। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार मां तवी की भव्य संध्या आरती शुरू हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए। देशभर से यात्री भगवती नगर यात्री निवास पहुंच रहे हैं। पंजीकरण, स्वास्थ्य, ठहरने की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। तो बस 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। तवी नदी, उसके किनारे महाआरती की शुरुआत हो गई है। मॉक ड्रिल किया गया है सुरक्षा से लेकर के कि यात्री किन इलाकों से जाएंगे, एग्जिट कहां से होगा, एंट्री कहां से होगा, जिन सुरक्षा द्वार से वो गुजरेंगे वहां सुरक्षा, उनकी फ्रिस्किंग कैसे होगी और उसी के साथ साथ किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए तैयारियां सुरक्षा बलों की भी हैं। हर जगह देखिए फ्रिस्किंग हो रही है और दूसरी तरफ भक्तों का जमावड़ा वो लगातार पहुंच रहा है। तो पहलगाम और बालटाल 2 कैंप जहां से यात्रा की शुरुआत आगे ऊपर अमरनाथ की पवित्र गुफा तक होगी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और जिन रास्तों से गुजरेंगे हम आपको दिखा रहे हैं। पहला रूट 48 किलोमीटर का है, दूसरा रूट 14 किलोमीटर का है। तो एक रास्ता है जो बालटाल सोनमर के पास से, वहां से 14 किलोमीटर है और एक रास्ता जो कि पहलगाम मार्ग से आगे जाता है वो है 48 किलोमीटर का। और इन रास्तों से होते हुए दोनों रास्तों से जो श्रद्धालु हैं वो आगे पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। और इसीलिए दोनों ही रूट पर लगभग 1 महीने पहले तैयारियां हो जाती थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रिव्यू मीटिंग भी केंद्र सरकार की भी इस पर नजर है और भक्तों का जोश उत्साह है
बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा के लिए। खबर कतर से, राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच आज होने वाली बातचीत अब अधर में लटक गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल दोहा में मुलाकात करेंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने कहा कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। ये देखिए, आज कतर में बैठक होने वाली थी, दरअसल स्विट्जरलैंड में दूसरे दौर की वार्ता हुई नहीं और ऐसे में अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक कर दिए। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर बहरीन में, कतर में हमले कर दिए, बहरीन और कुवैत में हमले किए, जिसके बाद उसे सुलझाने के लिए कतर की मध्यस्थता में यह तय हुआ कि दोहा में मंगलवार को एक बैठक होगी। इस बैठक तक कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, जो कि

0: के जंग के साथ साथ भारत में एक जंग आस्था बनाम सियासत और उसके साथ उस आस्था पर पहुंची हुई चोट की है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 से 80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर है, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है कि आखिर क्यों, जब पहले से पता था कि चंदा चोरी हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो क्यों चीजें छुपाई गई, क्यों जांच के आदेश नहीं दिए गए, क्यों पारदर्शिता नहीं रखी गई? क्योंकि ऐसा तभी होता है जब मन में खोट हो।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
2: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
2: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
1: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, देश में पेपर लीक तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला महाराष्ट्र के टीटी परीक्षा का है, जिसका मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता है। वही विजेंद्र गुप्ता जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया। आज तक के ही कैमरे में विजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कह दिया था पेपर लीक करवाना उसका धंधा है, जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब महाराष्ट्र पुलिस विजेंद्र गुप्ता की तलाश में छापेमारी कर रही है।
5: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
6: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है

0: इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, चार सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी। वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
1: महाराष्ट्र में TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में TET परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। TET पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं।
2: CBI का उगाड़ नहीं पकड़ रहा, उसके घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा, इंटरव्यू स्पॉट से नहीं पकड़ रहा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ रहा।
1: अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र TET पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
3: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया बिजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। बिजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
1: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब बिजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
2: रही बात जेल जाने का, था जेल कर फिर परसों से यही खेल करेंगे।
4: आप कैसे UPSC वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
2: MPPSC। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
4: किसका नाम?
2: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ में, धरा गया जेल चल गया।
1: जब तक बिजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
5: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला आहे TET चा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधाननी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
6: ये सरकार की नाकामयाबी आहे, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
7: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
1: महाराष्ट्र TET पेपर लीक का खुलासा वहाँ की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर TET के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया बिजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
8: ये संजीव मुखिया के अभी तो भगा हुआ है ना, ये
2: पकड़ाएगा भी
4: क्यों?
8: नहीं, पहले भी जेल जा चुका है ना,
2: पैसा कमाया बस, इधर 1 साल का एक साल पहले
8: उसकी बीवी इलेक्शन भी तो लड़ी थी।
2: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया, बेटा वो सब दिन नीत का ही काम करता है, दस बीस कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया। इस बार उसको 200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
1: पिछले 2 दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से 1 साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
9: छात्रों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनका भविष्य दांव पर है, लेकिन बात उन कश्मीरी पंडितों के करेंगे जिन्हें 36 साल बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। श्रीनगर के टाडा कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है।
10: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
11: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। 1 आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहाड़ जेल में है।
10: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
11: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की, उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तब का जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था, वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया, उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
9: बुलेट में इतना ही वक्त, एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: कुंडली मिलान में नाड़ी दोष क्या होता है? कुंडली मिलान में भकूट का क्या महत्व है? और क्या केवल गुण मिल जाने से विवाह कर लेना चाहिए? क्या हैं कुंडली मिलान के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
14: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. France is the favorite to win the World Soccer Championship heading into the knockout round at plus 400, followed by defending champion Argentina at plus 575. The USA odds have dropped 28-1 to win it all. Their odds were 60-1 pre-tournament. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
15: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?

0: राम मंदिर दान घोटाले को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम के निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चंदे की चोरी को अंजाम दिया गया।
1: इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
0: अखिलेश यादव ने राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है। अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद अयोध्या को बेमिसाल धार्मिक नगरी बनाने का दावा कर रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पूछा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या निर्माण कैसे करेंगे।
2: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अयोध्या से संतोष शर्मा, आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. France is the favorite to win the World Soccer Championship heading into the knockout round at plus 400, followed by defending champion Argentina at plus 575. The USA odds have dropped 28-1 to win it all. Their odds were 60-1 pre-tournament. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
5: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: प्रेजेंटेड बाय
1: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर चंदा गबन केस में बैंकों तक जांच की आज मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड तलब आज तक की खबर के बाद 17 साल से जमे आरएमओ का तबादला। चंदा चोरी को लेकर यूपी में सियासी तनातनी, सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले अजय राय होटल में नजरबंद, सुबह 9:30 बजे रामलीला के दर्शन को पहुंचेंगे कांग्रेस नेता। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही की प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथनीकुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन। शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़, इस्लाम कबूल करने के बाद आयुष मलिक ने की घर वापसी, घर के मंदिर में पूजा पाठ, चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर ब्रेन वॉश करने का आरोप।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि जब विवाह के लिए कुंडली मिलाई जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः काल 5:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कुंडली मिलान के बारे में। विवाह के लिए कुंडली मिलान कितना जरूरी है? क्या कुंडली मिलान होने से विवाह सफल हो जाता है? देखिए, जिस बालक और बालिका का विवाह होने जा रहा है उनके बीच प्रेम और तालमेल अच्छा रहे और दोनों एक साथ मिलकर जीवन में आगे बढ़ें, संघर्ष कम से कम करें, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सामान्यतः जो तरीका पॉपुलर है वो नक्षत्र मेलापक है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है, जैसे नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और मंगल दोष। अष्टकूट मिलान इसको कहते हैं। इसमें 8 चीजें और 1 मंगल दोष, 9, इन सबको मिलाकर देखा जाता है। हर चीज का अपना महत्व है और कुंडली मिलान में हर बिंदु का, हर विषय का विचार किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं नाड़ी दोष के बारे में। नाड़ी दोष क्या है और कुंडली मिलान में इसको कैसे समझेंगे? देखिए, हर नक्षत्र के अनुसार बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र के अलग अलग नाड़ियों की स्थिति होती है। नाड़ी मिलाई जाती है वर और कन्या का स्वास्थ्य देखने के लिए और संतान उत्पत्ति देखने के लिए। अगर लड़के और लड़की की नाड़ी एक हो तो ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की समस्या और संतान की समस्या के योग बनते हैं। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब नक्षत्र एक हों और उनके चरण अलग अलग हों, या वर और कन्या दोनों का बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो। यानी नाड़ी दोष के लिए आपको नक्षत्र और उसके चरण देखने होंगे या बृहस्पति को देखना होगा, तभी नाड़ी दोष का अपवाद हो सकता है। कुंडली मिलान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके जाएं कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है
और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं कुंडली मिलाने में वो है मंगल दोष। ये होता क्या है और कितना जरूरी है? देखिए, कुंडली में मंगल अगर विशेष स्थानों पर बैठे तो कुंडली में मंगल दोष पैदा होता है। कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें स्थान में किसी भी स्थान में अगर मंगल है तो मंगल दोष पैदा होगा। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है तो दूसरे की कुंडली में उसका निवारण जरूर होना चाहिए। कभी कभी मंगल दोष इतना खतरनाक होता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल काफी खराब हो जाता है। इसीलिए अगर मंगल

अच्छा तरीका ये है कि हनुमान जी की पूजा करिएगा, मंगलवार का उपवास रखने से और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करने से काफी हद तक मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। तो मंगल दोष के बाद अब जानते हैं भकूट के बारे में। भकूट क्या होता है और इसका प्रभाव क्या है? देखिए, राशियों का आपसी संबंध और लड़के और लड़की के स्वभाव का मिलान करना भकूट कहलाता है। अगर कुंडली मिलान में भकूट दोष आ रहा है तो तालमेल में काफी समस्याएं आती हैं। लड़के की राशि और लड़की की राशि अगर एक दूसरे से द्विद्वादश हो, षडाष्टक हो, नवपंचक हो तो भकूट दोष बन जाता है। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशियों में ग्रह मैत्री हो या दोनों के स्वामी एक हो तो ये दोष भंग हो जाता है। ग्रह मैत्री होने पर भकूट दोष का बहुत अर्थ नहीं रहता। कुंडली मिलान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, सेहत बिगड़ सकती है। परिवार की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नैन्सी ने हमें लिखा है और नैन्सी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 15 जून सन 2004 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 11:51। जन्म स्थान है मुंबई। नैन्सी कह रही हैं कि मैं फिल्मी दुनिया में या मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूं। क्या फिल्मी दुनिया में या मॉडलिंग के क्षेत्र में मैं अपना करियर बना सकती हूं? नैन्सी, आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल आप फिल्मी दुनिया में, मॉडलिंग में, कला के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में करियर बना सकती हैं। लेकिन अभी आपको खूब प्रयास करना होगा। 2028 के अप्रैल के बाद आपके सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। बीच में घबराइएगा नहीं, मेहनत से आगे बढ़िए, आप सफल होंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव की कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। एक चीज का लोग कुंडली मिलान में बड़ा ध्यान रखते हैं वो है गण। क्या होता है गण और ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर 3 गण नक्षत्रों के होते हैं, मानव गण, देव गण और राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल जाता है। राक्षस गण और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संबंध बहुत खराब हो जाते हैं अगर कुंडली में गण दोष है। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशियों में उत्त
उत्तम मित्रता है, ग्रह मैत्री अच्छी है, तो गण दोष भंग हो जाता है। कुंडली मिलान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

राशि करियर में लाभ के योग हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब जानते हैं कि ग्रह मैत्री क्या होती है और कुंडली मिलाने में ग्रह मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, कुंडली मिलाने में वैसे तो 8 पॉइंट होते हैं और सबका अलग अलग अंक होता है, लेकिन कुंडली मिलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रह मैत्री। लड़के और लड़की यानी वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मित्रता नहीं होगी तो वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर ग्रह मैत्री हो, ग्रहों में पर्याप्त मित्रता हो, तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। योनि, गण, भकूट ये दोष अप्लाई नहीं होंगे अगर ग्रह मैत्री अच्छी है। अच्छी ग्रह मैत्री होने पर विवाह उत्तम होता है और तालमेल बहुत बढ़िया होता है। कुंडली मिलाने में 36 में से 5 पॉइंट ग्रह मैत्री के होते हैं। कुंडली में सारे गुण मिल जाएं और ग्रह मैत्री ना हो तो शादी मत करिएगा, और अगर पॉइंट कम मिले लेकिन ग्रह मैत्री बढ़िया हो, 5 में 4 पॉइंट या 5 के 5 पॉइंट मिल रहे हैं, तो शादी पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ग्रह मैत्री से ही पति पत्नी के आपसी सोच और समझ आगे डेवलप होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, करियर में बाधा दिखाई दे रही है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। गुड़ का अगर आप दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के पहले उसका वृक्ष के साथ या भगवान की मूर्ति के साथ विवाह करवाना चाहिए। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है और आप उसको शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए मंत्र जप किए जा सकते हैं, उसके लिए दान किए जा सकते हैं, अपने आचरण में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन मंगल दोष की शांति के लिए पेड़ से शादी कर लें, घड़े से शादी कर लें, भगवान की मूर्ति से शादी कर लें, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इसका कोई भी शुभ प्रभाव आपको आगे जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मंगल दोष की वास्तव में शांति करानी है तो मंत्र जप से, दान से, अपने आचरण और व्यवहार को बदलने से ही लाभ होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन खर्च से परेशानी होगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। शिक्षा और करियर संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान
और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मथुरा से ब्रिजभूषण जी ने हमें लिखा है। ब्रिजभूषण जी की जन्म की तारीख है 25 फरवरी 1968। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है हाथरस। मेल लिखते हैं मथुरा से। ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूं और लगभग 2-2.5 साल में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो आगे आने वाले समय में क्या मुझे कोई व्यापार करना चाहिए? ब्रिजभूषण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी ही करेंगे, अभी व्यापार में जाने के संयोग नहीं हैं। ऐसा लगता है कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आपको कहीं और नौकरी मिले या नौकरी में एक्सटेंशन मिल जाए, ऐसी संभावना बन रही है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2027 तक आपके स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं दिख रहा है। रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तब भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो 1 बार हनुमान चालीसा पढ़कर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो सिंदूर का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज

धनु राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मीन राशि वालों के लिए मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को, बेवजह का तनाव हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिएगा, जीवन की हर बाधा दूर होगी। और आज काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग मत करिएगा, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

ईरान के राष्ट्रपति बोले अमेरिका एमओयू का पालन करे तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति का संदेश, समझौता दो तरफा प्रक्रिया होती है, अमेरिका के कदम पर निर्भर करेगा अब आगे का रास्ता। ईरान ने कहा कि फैसलों में तर्क और गरिमा, कार्रवाई में बेखौफ रक्षा हमारी नीति है, धमकियों का जवाब दृढ़ता से दिया जाएगा। ईरान ने यह भी साफ किया कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ अब कोई बैठक नहीं हो। ट्रंप ने कहा है कि दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम साबित हो सकती है और इसके नतीजों का इंतजार किया जाएगा।

लिए राष्ट्रपति ने सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद नहीं थे। आज अयोध्या जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। अजय राय के नेतृत्व में रामलला के दर्शन करेंगे 9 सांसद। कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया। 6 बैंकों को नोटिस जारी। चढ़ावा चोरी केस में जांच में तेजी आई है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 80 लोगों को नोटिस दिया गया है। चंपत राय का भी बयान दर्ज किया गया। चढ़ावा विवाद का दान पर अब असर नहीं पड़ा है। गर्मियों की छुट्टियों में श्रद्धालु बढ़े हैं, चढ़ावा भी दोगुना हुआ है। महाराष्ट्र विधान परिषद में खाली उपसभापति पद के लिए चुनाव की घोषणा की गई। 1 जुलाई को मतदान किया जाएगा। पुणे केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी हुई। 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी बढ़ी। पुणे पुलिस ने कहा कि सिया और चेतन के फोन से डेली डाटा की रिकवरी कर फॉरेंसिक जांच करनी है। साथ ही केतन के गायब पासपोर्ट पर सिया से सवाल जवाब किया गया। महाराष्ट्र के सातारा में पेपर लीक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने हल्ला बोल किया। कराड़ में मटकी हांडी फोड़कर आंदोलन किया। ईडी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया। उनके पास से पेपर बरामद किया गया। सीएम योगी आज रामपुर और बरेली के दौरे पर हैं, विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। योगी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि 9 साल पहले समाजवादी सरकार में मुरादाबाद उपद्रव के लिए जाना जाता था, अब नो कर्फ्यू नो दंगा और यूपी में सब अच्छा है। बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है। 2 जुलाई को शुभेंदु कैबिनेट में ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि अगस्त में लाएंगे यूसीसी बिल। सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति से 10वीं के छात्रों को बड़ी राहत। मौजूदा बैच पर नहीं लागू होगा ये नियम। पॉलिसी को लेकर सीबीएसई की नई गाइडलाइन जारी। 1 जुलाई से दिल्ली में लागू होगी नई ईवी पॉलिसी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 4 साल में 15,000 करोड़ का निवेश होगा। महाराष्ट्र ईटी पेपर लीक मामले में विपक्ष ने सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पुणे के स्पेशल कोर्ट ने नरसरपुर में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई। दोषी को फांसी की सजा मिलने पर सीएम फडणवीस ने फैसले पर संतोष जताया। बोले, ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस रेप और हत्या केस में कोर्ट के फैसले का सुप्रिया सुले ने भी स्वागत किया। बोली, जल्द से जल्द फांसी दी जाए ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। विश्वास नागरी नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने। आरएसएस कार्यक्रम पर हुए विवाद को लेकर के कहा कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। कर्नाटक में भाषा विवाद को लेकर के अब नया विवाद सामने आया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सीबीएसई से कक्षा 6 के लिए कन्नड़ को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के निर्देश को वापस लेने की मांग की है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि राज्य में कन्नड़ ही पहले से पहली या दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य है, इसलिए तीसरी भाषा के तौर पर इसे लागू करने की जरूरत नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर नाजिया इलाही ने दी आपत्तिजनक टिप्पणी। विरोध में अटल सेवा समाज कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जवाहर यूनिवर्सिटी पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त छापेमारी की गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। 2 दिन चलेगा सांस्कृतिक महोत्सव। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर पिघलने से नाले में अचानक बाढ़ आ गई। सड़क टूटी, साथ ही 50 से अधिक पर्यटक फंस गए। खरगोन में झमाझम बारिश से मोहनी नदी उफान पर आई। कई बस्तियों खेतों में बाढ़ का पानी भरा। खरगोन में पहली बारिश से बड़ी लोगों की मुसीबत, साथ ही जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने से किसानों को राहत मिली। जालना में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के चलते नाले में बाढ़ आई। पानी में जोखिम में जालकर ग्रामीण सफर कर रहे हैं। नोएडा के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। सेक्टर 16 से तस्वीरें सामने आई। असम के जोरहट में बाढ़ का कहर देखने को मिला। डिकारी नदी के उफान से 15 से अधिक लोग टाकपुर फंसे। राहत बचाव कार्य किया गया। असम में भारी बारिश के कारण सड़कें धंस गई। धेमाजी जिले के केमी नदी पर 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया। धेमाजी में सिमे नदी में बाढ़ से 4 लोग बह गए, 1 लापता, 3 को ग्रामीणों ने बचाया। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में रास्ते बंद हुए। प्रदेश गृहमंत्री ने कहा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना तैनात की गई। दिल्ली एनसीआर में भी अचानक कल मौसम बदल गया। मौसम का मिजाज चलते बारिश से चिलचिलाती गर्मी का। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में अचानक पानी छोड़े जाने पर मकोड़ा पत्तन पर पुल बह गया। 7 गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से कट गया। पटना के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल में जल भरा हुआ। पूरे परिसर में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान में जल्द खत्म हो सकता मानसून का इंतजार। 2 जुलाई से राजस्थान के मानसून में एक्टिव होने का अनुमान है। 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। कोटा और उदयपुर में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट।
उधम सिंह नगर में कार में अचानक आग लग गई।

हड़कंप मच गया। चालक ने कूद कर जान बचाई। बेंगलुरु में दो महीने में एक ही जगह पर हुए कई हादसों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सहारनपुर में यमुना नदी में नहाने गया युवक डूबने से जान गई। सीतामढ़ी में सिलेंडर फटने से भीषण अग्निकांड हुआ, 8 घर जलकर राख हो गए। कौशाम्बी में पतंग फंस जाने से हाई टेंशन टावर पर किशोर चढ़ गया, वायरल वीडियो होने से हड़कंप मचा। अजमेर में एक हादसा हुआ, गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई, 12 से ज्यादा लोग घायल। इंदौर में जमीन विवाद के चलते पुलिस पर हमले का मामला, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, इलाके में मातम पसर गया। नागपुर में इमारत का हिस्सा गिरने से 1 की मौत, इमारत का मलबा गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ में महिला ने दरोगा पर शादी का आरोप लगाया, झांसा देकर के 1 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। करौली में तार टूटने से बड़ा हादसा हुआ, करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत, बाइक जलकर खाक हो गई। बिजनौर में ससुर ने बहू के प्रेमी की चाकू मारकर हत्या की, पुलिस ने पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा। श्रीगंगानगर के होटल में 13 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में आक्रोश फूट पड़ा है, एसपी और कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का प्रदर्शन। कर्नाटक के मंगलुरु हाईवे पर बदमाशों ने सराफा कारोबारी से 180 ग्राम सोना लूटा। जयपुर हाईवे पर सीएनजी से भरे ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी बस में पीछे से टक्कर मारी। असम के जोरहट में हार्डवेयर गोदाम में लगी भयंकर आग, 10 करोड़ से अधिक का नुकसान। गुजरात के साबरकांठा में महिला के लापता मामले के बाद हिंसा हुई, गुस्साई भीड़ ने दुकानों में आग लगाई। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, 4 की मौत, 2 घायल। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचल दिया, मौके पर मौत हुई। गुजरात के जामनगर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट हुई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। इंदौर में बिना अनुमति आयोजित हाई प्रोफाइल हाउस पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा, पार्टी शुरू होने से पहले 6 आयोजकों पर केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार कार पर पोहे वाले की दुकान में घुसी, लाखों रुपए का नुकसान। गुजरात के द्वारका में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन, अवैध बॉक्साइट खनन मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अमरेली में तेंदुए ने पालतू कुत्ते का शिकार किया, रिहायशी इलाकों से घटना के चलते लोगों में दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। तेलंगाना के निजामाबाद में एक स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर के विवाद, बीजेपी नेताओं और अभिभावकों ने विरोध किया प्रदर्शन। झारखंड के जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया का कहर, 48 घंटे में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप। एमपी के खंडवा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग की टीम पर हमला हुआ, महिलाओं की आड़ में परसाए गए तीर पत्थर, 6 से ज्यादा लोग घायल। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 में रेलवे विहार में गंगाजल पाइपलाइन के खुले गड्ढे में गिरी कार, बाल बाल बची युवक की जान। गुजरात के पाटन में दलित युवक की शादी में हंगामा, दूल्हे को घोड़े से गिरा करके मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर वज्र झरने में फंसे 6 युवक, 18 घंटे बाद वन विभाग और दमकल की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईटा का टीजर रिलीज हो गया, 28 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी। वेलकम टू जंगल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म अल्फा, फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर नजर आएंगे। अल्फा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची एक्ट्रेस आलिया और शर्वरी। थिएटर में फिल्म देखने पहुंची शर्वरी, वेदांग रैना मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट। मई में देश की औद्योगिक ग्रोथ बढ़कर 5.1% हुई, बिना रोक टोक मिलेगा डीजल पेट्रोल, 1 जुलाई से सारी पाबंदियां हटने वाली हैं। मिडल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ा था, समस्या चुनकर एआई से सॉफ्टवेयर बनाकर अच्छे से हल करने वालों को इनाम दिया जाएगा। मंगोलिया में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना के जवानों ने रण कौशल दिखाया। दिव्य अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटने लगे हैं, बाबा बर्फानी के लिए दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का हुजूम जम्मू में पहुंच रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव देखने को मिला, 5,151 दीपों से सरयू तट पर भव्य महाआरती की गई। पंजाब के फरीदकोट में कैदियों की जिंदगी में बदलाव के लिए शानदार पहल की गई, रेडियो स्टेशन सेंटर खोला गया। यूक्रेन में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ, 2 अलग अलग हमलों में 8 लोगों की मौत हुई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई, पाक सेना के हमले में 36 लोगों की मौत। जर्मनी के उत्तरी शहर स्टाडे में अंधाधुंध गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। अमेरिका के कोलोराडो यूटा इलाके में जंगल की आग से तबाही मची।
वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से नहीं थम रही है मौतें, मृतकों की संख्या 1719 हुई।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
4: देश, पूरी दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है। बीजेपी कहती है कि राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए। राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दांव चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति ये है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है। यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। इतना ही नहीं, आने वाली 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से ही विजय का शरसंधान करना चाहती है। कारण ये है कि 2022 चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट प्रतिशत भी 87-89% तक पहुँचे। अब मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मामला छोड़कर सीएम योगी ने यदुवंश की विरासत और पीटीए की सियासत का दावा करने वाले अखिलेश के सामने दुविधा खड़ी करने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी चाहे भले मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्मे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीडीए की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
1: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
0: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
2: Williams keeps it. First down. Touchdown!
0: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: राम मंदिर दान घोटाले को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम के निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चंदे की चोरी को अंजाम दिया गया।
4: इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
3: अखिलेश यादव ने राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है। अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद अयोध्या को बेमिसाल धार्मिक नगरी बनाने का दावा कर रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पूछा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या निर्माण कैसे करेंगे।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
3: रामलला के चढ़ावे में गबन के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अयोध्या से संतोष शर्मा, आज तक।

0: शेयर बाजार में कमाई का नया मौका कब दस्तक देगा, इस पर निवेशकों की नज़र हमेशा बनी रहती है। पिछले कुछ महीनों में आईपीओ बाजार की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन जुलाई आते आते तस्वीर बदलती दिख रही है। कई बड़ी कंपनियां बाजार में उतरने की तैयारी में हैं और इससे प्राइमरी मार्केट में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में एक दर्जन से ज्यादा आईपीओ आने की तैयारी है। इन कंपनियों का करीब 45,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। 19 जून तक 173 कंपनियों को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, जो 2.7 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है। 64 और कंपनियां मंजूरी का इंतजार कर रही हैं, जिससे भविष्य की आईपीओ पाइपलाइन भी मजबूत बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि बाजार में बढ़ती स्थिरता और निवेशकों के भरोसे ने कंपनियों का उत्साह बढ़ाया है। यही वजह है कि कई बड़े नाम लिस्टिंग की तैयारी में जुटे हैं। इनमें शामिल हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का 12 से 13 हजार करोड़ का आईपीओ, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस का करीब 11,000 करोड़ और जेप्टो का आईपीओ करीब 8,000 करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। ये तीनों कंपनियां मिलकर करीब 32,000 करोड़ रुपए जुटाएंगी। जुलाई की आईपीओ पाइपलाइन में कई दूसरी कंपनियां भी शामिल हैं, जिससे बाजार में गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। निवेश बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जानकारों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता कम होने और भारतीय बाजार में भरोसा बने रहने से लिस्टिंग का सिलसिला तेज हो सकता है। इस साल की शुरुआत आईपीओ बाजार के लिए बहुत तेज नहीं रही। वैश्विक तनाव और वैश्विक निवेशकों की सतर्कता का असर नई लिस्टिंग पर देखने को मिला। अप्रैल तक 18 आईपीओ आए, जबकि मई में एक भी कंपनी बाजार में नहीं उतरी। हालांकि हालात बदलते नजर आ रहे हैं और रिटेल निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जो मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं ग्रोथ की क्षमता रखने वाली कंपनियों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जिससे मार्केट में भरोसा लौटने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि निवेशक उन कंपनियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिनकी बुनियाद मजबूत है और जिनके बिजनेस में लंबे समय तक ग्रोथ की संभावना दिखाई देती है। ये ट्रेंड आने वाले आईपीओ की सफलता तय कर सकता है। जुलाई में आने वाले आईपीओ की ये लहर इस बात का संकेत है कि प्राइमरी मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। बड़े इश्यूज, बढ़ता निवेशक भरोसा और मजबूत पाइपलाइन आने वाले महीनों में शेयर बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ।

0: राम मंदिर चंदा गबन केस में बैंक तक जांच की आज। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड तलब। आज तक की खबर के बाद 17 साल से जमे आरएमओ का तबादला। चढ़ावा चोरी पर यूपी में सियासी तनातनी। सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले कांग्रेस का दावा। अजय राय को होटल में नजरबंद किया। थोड़ी देर में दर्शन को पहुंचेंगे सभी नेता। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। 32 साल बाद राजस्थान को हथनी कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी। 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन। शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़। इस्लाम कबूल करने के बाद आयुष मलिक ने की घर वापसी। घर के मंदिर में पूजा पाठ। चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर ब्रेन वॉश का आरोप।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं, अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको हम बताएंगे। इस बुलेटिन में सबसे पहले सबसे अहम खबर होगी चढ़ावा चोरी में अहम खुलासे से जुड़ी। साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्या सचमुच में अयोध्या में नजरबंद हुए हैं कांग्रेस नेता अजय राय। साथ ही खबर भरत तिवारी एनकाउंटर की भी होगी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा की तैयारी कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बात पवित्र यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा की भी करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी है। खबरें अमेरिका ईरान में बातचीत पर सस्पेंस की भी आपको दिखाएंगे। साथ दिखाएंगे कि हिमाचल में सैलाब संकट और असम में बाढ़ से कितना हाहाकार मचा हुआ है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बात कर लेते हैं मथुरा से, जो खबर आ रही है। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी मिली है कि हादसे के वक्त बस में 65 यात्री सवार थे और बस लखनऊ से नोएडा की तरफ आ रही थी। इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक भीषण टक्कर हुई है। इसके बाद बस का हाल आप देखिए, पूरे शीशे चकनाचूर हो गए हैं। 19 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 4 लोगों की मौत हो गई है। मथुरा में यह बड़ा सड़क हादसा सामने आया। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, जहां पर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। ये बस की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बस के शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट गए हैं, बिखर गए हैं। चलिए अब खबर राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की, जिसमें जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग सिस्टम तक जांच पहुंची है और जांच एजेंसियों की नजर अब दान राशि के बैंक में ट्रांजैक्शन पर है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बड़ा कदम उठाया है और SBI सहित 7 बैंक को नोटिस जारी कर लेनदेन की डिटेल्स मांगी है। पुलिस ने बैंक से ट्रस्ट से जुड़े खातों, लॉकर और सभी संदिग्ध वित्तीय लेन देन का पूरा रिकॉर्ड मांगा है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की जांच की जा सके। पुलिस ने नोटिस देकर 5 साल के लेन देन की जानकारी भी मांगी है। खबर यह भी है कि आरोपियों के बैंक डिटेल्स को बैंक ने पुलिस के साथ कल ही साझा भी किया। और उधर खबर है कि आरोपियों ने अपने फोन से अहम जानकारी डिलीट भी कर दी थी। ट्रस्ट से जुड़े सभी खातों की जानकारी पुलिस ने मांगी है। तो इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी ये मिली है कि SBI ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट के सदस्य किसी भी बदलाव से तैयार नहीं हुए। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ट्रस्ट के सदस्यों ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी थी। SBI को 3 महीने पहले ही शक हुआ था दानपात्र से चढ़ावे के पैसे निकाले जा रहे हैं। SBI की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कथित तौर पर कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। आउटसोर्सिंग एजेंसी ने हटाने की तैयारी कर ली थी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने नहीं दी थी मंजूरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ देखिए एसबीआई को 3 महीने पहले ही शक हुआ था और दानपात्र से चढ़ावे के पैसे निकाले जा रहे हैं और सिफारिश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस बात को माना क्यों नहीं गया?
2: देखिए पूजा, कई परतें हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी और उसी के कड़ी में कल पुलिस की टीम ने एसबीआई बैंक जाकर पूछताछ भी की है, वहां के जो मैनेजर हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और कई जवाबों के साथ कई जो डिटेल्स हैं अक्यूज की या कंप्यूटर से जुड़े अन्य लोगों की वो मांगी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि उसी दौरान बैंक की तरफ से ये भी पुलिस को बताया गया है कि 3 महीने पहले उन्हें इस बात का डाउट हुआ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको लेकर उन्होंने ट्रस्ट के अधिकारियों को सूचित भी किया था, लेकिन उनका दावा यह भी है कि ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों की तरफ से प्रेशराइज किया गया कि किसी को के लेकर कोई एक्शन ना लिया जाए, फिर कुछ चेंजेस वहां पर काउंटिंग को लेकर जो लोग काउंटिंग कर रहे हैं उनमें स्टाफ में ना किए जाएं। यह बड़ा दावा जो है वो बैंक की तरफ से किया गया है पुलिस पूछताछ के दौरान। एक और बड़ी अपडेट यह भी है इस पूरे मामले में, केवल एसबीआई ही नहीं बल्कि जो भी आरोपी हैं उनके जहां जहां अन्य बैंक्स में भी अकाउंट्स हैं वहां वहां भी पुलिस ने पूछताछ की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। यानी कि केवल रडार पर एसबीआई ही नहीं बल्कि अन्य बैंक भी हैं जिनसे कि जो अकाउंट डिटेल्स हैं, या फिर पुलिस मुख्यतः ये चेक करना चाहती है कि कहीं पर ज्यादा ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप सैलरी देखेंगे उनकी तो 12 से 15 हज़ार सैलरी हर एम्प्लॉय की मोटा मोटा पता चल रही है, तो उसके अलावा इतना पैसा आखिर कहां से आ जाता है जहां बड़े बड़े मकान बन जाते हैं।
0: दायरा भी देखिए काफी ज्यादा बढ़ गया है, पुलिस भी काफी अच्छे तरीके से जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। तो राम मंदिर के लिए आया चढ़ावा कहां गया, किसके खाते में गया है या बैंक पहुंचने के पहले ही गायब हो गया, ये वो सवाल है जिनके जवाब जांच एजेंसियां तलाशने में जुटी हुई है और जांच की आंच बैंक तक जा पहुंची।
3: राम मंदिर के चंदे में गबन को लेकर चल रही जांच अब बैंकिंग व्यवस्था तक जा पहुंची है। जांच एजेंसियां अब पैसों के पूरे मूवमेंट और ट्रांजैक्शन ट्रेल को खंगाल रही हैं। पुलिस ने एसबीआई समेत 6-7 बैंकों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने इन बैंकों से ट्रस्ट से जुड़े खातों, लॉकर और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड मांगा है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि दान राशि का मूवमेंट कहां कहां हुआ और कहीं किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई। ट्रांजैक्शन ट्रेल के जरिए पैसे के फ्लो को ट्रेस किया जा रहा है। एसबीआई की शाखा से जुड़े 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप भी जांच के दायरे में हैं। ये दोनों बैंक के पेरोल पर कार्यरत हैं। इनके नीचे 6 आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से कुछ चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। अब इस डेटा और चैट्स को रिकवर करने के लिए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। चंदा गबन केस में पूछताछ के लिए अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70 से 80 लोगों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि मामला जितना नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सिमर चावला, अयोध्या आज तक।
0: तो इस बीच आज तक की खबर का एक असर हुआ है। 17 साल से जमे रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आरोपियों के फोन से डेटा और डिलीट किए गए चैट रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं सियासी तनातनी बढ़ गई है। आज कांग्रेस नेता रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ही अजय राय को होटल में नजरबंद करने की खबर भी सामने आ रही है। तो इस पूरे मामले में आज तक की खबर का असर हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद सवालों के घेरे में आए वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव का ट्रांसफर कर दिया गया। 17 साल बाद आरएमओ अर्जुन देव का तबादला हुआ है, उन्हें गोरखपुर रवाना कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन देव लंबे समय से अंडर ट्रांसफर चल रहे थे, लेकिन हर बार उनका तबादला रुक जाता था। अर्जुन देव 2009 से अयोध्या में आरएमओ के पद पर तैनात थे। इस दौरान कई बार उनके तबादले के आदेश जारी हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उन्हें निरस्त करा दिया गया। और जांच के दौरान गठित एसआईटी की रिपोर्ट में भी अर्जुन देव की भूमिका पर काफी सवाल उठाए गए थे। तो उधर गिरफ्तारी आरोपियों पर लगातार खुलासे हो रहे जो गिरफ्तार आरोपी हैं, वहीं कई आरोपियों ने पिछले कुछ समय में बेशकीमती प्रॉपर्टी खरीदी है और इन्हीं में से एक है लवकुश मिश्रा। आज तक की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर लवकुश मिश्रा का आलीशान मकान बन रहा है। ये जमीन राम मंदिर में नौकरी मिलने के बाद 8,80,000 रुपए में पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी गई थी।
4: चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने संपत्तियां भी बनाई थी। ये चर्चा का विषय है, लेकिन हम आज एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो बताएगा कि कैसे मामूली तनख्वाह पर राम मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले आरोपी ने लाखों की कीमत का अयोध्या में मकान बनवा लिया। पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है, लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा, जी हाँ उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं, एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी, इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अजय राय को अयोध्या के होटल पद्मश्री पैलेस में रखा गया है। दरअसल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाला था और इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के यूपी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और एमएलसी शामिल हैं। ये सभी सुबह 9:30 बजे अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने वाले हैं और इसी की तैयारी के लिए अजय राय अयोध्या पहुंचे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान अजय राय ने पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए।
5: बता दीजिए क्या बोल रहे हैं,
6: कह रहे हैं कि
5: लखनऊ नहीं है,
6: नहीं
5: उधर वो नहीं जा सकते, तो हम तो फिर अपन कर दीजिए, हम नहीं जाएंगे तो लखनऊ थोड़ी जाएंगे, तो मैं थोड़ी यहाँ आए, आप देखिए गिरफ्तार करके जेल दे दीजिए हमको, ठीक है बात है, हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे,
6: अब क्या आपको
5: हम लखनऊ
6: जब आपको कह दिया कि सांकेतिक रूप से कर दिया जाएगा,
7: समझ रहे
8: हैं आप,
7: तो कोई
8: नहीं
5: ऊपर से आ रहे हैं, राम जी भी कहेंगे जा रहा है तो कहेंगे हम नहीं घूमने जाएंगे, महाराज अभी क्या है,
6: नहीं ऐसा कुछ नहीं,
5: आप अधिक अधिकार है वो अलग विषय है, हम जब आए दर्शन दर्शन के लिए सरकार रोक रही है,
6: नहीं आपके घर परिवार के हैं इसलिए हम करते हैं,
5: घर परिवार तो दर्शन के लिए रोक देंगे,
6: ये दर्शन करा देंगे।
0: उधर अजय राय की पत्नी रीना राय ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। देखिए
9: आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके दिया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है।
0: तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जारी है और जांच तेज होती नजर आ रही है, ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले पर तंज कसा है, उन्होंने कहा है कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसे गोली मार दी गई होती।
10: चंदा चोरी का मामला बहुत हाईलाइट है, क्या आप क्या सुन रहे हैं, क्या
11: अब देखिए हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते उसको, मामला खत्म हो जाता, गलती उन्होंने की मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना, अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है क्या, क्या मैं क्या बोल क्या बोल क्या बोलेंगे बताइए आप, अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे सभी केंद्रीय सचिवों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर रहेगा, साथ ही नौकरशाही की प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बैठक में ईज ऑफ लिविंग यानी कि जीवन को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने के प्लान पर चर्चा होगी। इसके अलावा गैर वित्तीय नियामक सुधारों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक केंद्रीय कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच हो रही है, इसलिए काफी ज्यादा अहम भी मानी जा रही है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि इस बैठक का पूरा एजेंडा क्या है, कितनी अहम ये बैठक है, क्या मायने इस बैठक के निकलकर सामने आ रहे, कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। ईज ऑफ लिविंग एजेंडा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी किस तरीके से बिजनेस को आसान बनाना, उस पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। वहीं गैर वित्तीय नियामक सुधार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद होंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर भी इस बैठक में एजेंडा रखा गया है, आत्मनिर्भर भारत का। विकसित भारत 2047 यानी 2047 को लेकर भी बात होगी। तो ये एजेंडा है इस बैठक का। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को कर्तव्य भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक के दौरान हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौते पर एमओयू साइन किया गया।
3: 32 साल बाद आखिरकार हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबित जल बंटवारे के मुद्दे पर समझौता हो गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू साइन किया। यह समझौता 32 साल पहले हुआ था, लेकिन नहर व्यवस्था न होने से इस पर अमल नहीं हो पाया। अब इस नए समझौते के तहत मानसून के महीनों में हथनी कुंड बैराज से एक भूमिगत जल पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
7: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है।
3: समझौते के बाद रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि यमुना का अतिरिक्त पानी राजस्थान भेजे जाने से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में भूजल रिचार्ज कम होने की आशंका है।
8: पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक जाने के लिए ये हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा माननीय वो पीने के लिए उपयोग होगा।
3: राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जमीन अधिग्रहण, पाइपलाइन निर्माण और निगरानी की जिम्मेदारी दोनों राज्यों के बीच तय होगी। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।
0: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। बिना सुरक्षा के घूमने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा है कि सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा है जनता की समस्याएं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
12: आप पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में बात करें, बिहार में बढ़ते अपराध, बढ़ता भ्रष्टाचार के बारे में बात करें, ये असल मुद्दा है। महंगाई बढ़ रही है, यहाँ छात्र को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं, किसान को मुआवजा देने के लिए नहीं है। लेकिन दिल्ली से जो फरमान आता है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, उसी पर स्टैंप मार करके एक रुपया में कई एकड़ जमीन दे दिया जाता फ्री। तो आप देखिए ना, काम करना चाहिए कि बिहार को निवेश बिहार में आए, इसका काम करना चाहिए। तो जो गरीब राज वो मुफ्त में जमीन दिया जा रहा है बिजनेसमैनों को।
0: बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। ये सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस शील नागू की पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई से जांच कराए जाने की गुहार लगाई है और पिछले हफ्ते इस मामले की गंभीरता के मद्देनजर इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई गई थी, लेकिन तब जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इस पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार करते हुए रजिस्ट्री से संपर्क कर समुचित प्रक्रिया का पालन करने को कहा था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और याचिकाकर्ता का आरोप है कि भरत भूषण तिवारी की मौत हत्या का एक मामला है और इसकी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है ताकि कानून के हाथ असली मुजरिमों तक पहुंच सके। तो दायर याचिका में क्या कुछ कहा है, आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। चलिए इस मामले से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। अब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। कहा गया है कि एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, जो कि पहली मांग है इस याचिका में जो गुहार लगाई गई है। पहली मांग है कि इस एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति इस पूरे मामले में गठित की जानी चाहिए। और यह भी कहा गया है कि यह हत्या का मामला निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो, यह तीसरी मांग है। भरत तिवारी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। वहीं आगे बढ़ते हैं, 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा की अब बात कर लेते हैं, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से 2 जुलाई को रवाना होगा और इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए अनंतनाग समेत कई इलाकों में मॉक ड्रिल तेज कर दी गई है। वहीं जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार मां तवी की भव्य संध्या आरती शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। देशभर से यात्री भगवती नगर यात्री निवास पहुंच रहे हैं, जहां पर पंजीकरण, स्वास्थ्य, ठहरने और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। तो वही उत्तर प्रदेश के शामली में रहने वाले आयुष मलिक की घर वापसी हो गई है। धर्म परिवर्तन कर मोहम्मद अली बने आयुष ने वापस सनातन धर्म अपना लिया है। आयुष के पिता ने चांदनी कुरैशी नाम की युवती और उसके परिवार पर ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया है।
13: मंदिर में आरती पूजा पाठ कर रहे इस युवक का नाम है आयुष मलिक, जिसने धर्मांतरण के बाद सनातन धर्म में वापसी की है। आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक की ओर से जारी किए गए वीडियो में आयुष धर्म परिवर्तन के लिए अपने माता पिता से माफी मांगता नजर आ रहा है।
14: मेरा नाम आयुष मलिक, माँ मैं इस्लाम में चला गया था, मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर।
0: और चलिए अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन बारिश अब राहत से ज्यादा आफत बनती नजर आ रही है। हिमाचल से लेकर पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बाढ़ और फ्लैश फ्लड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो कहीं पर ग्लेशियर पिघलने से सड़कें बह गई हैं, तो कहीं लोग और मवेशी बाढ़ में फंस गए हैं।
3: दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की है, जहां ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा अपने साथ बहा ले गया। अचानक आए सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाके में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। असम में भी लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। टिकारी नदी का जलस्तर आसपास के इलाकों में कहर ढा रहा है। कोराई बाड़ी 4 में 15 से ज्यादा लोग सैलाब के बीच घिर गए, करीब 100 मवेशी बाढ़ की चपेट में हैं। असम के धेमाजी में भी हालात बिगड़े हुए हैं, यहां सिमेन नदी में 4 लोग बह गए। हालांकि 3 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि चौथे की तलाश जारी है। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। जगह जगह फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। सरकार ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में न जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मोहनी नदी उफान पर है, कई बस्तियों और खेतों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश के बाद नाले में आई बाढ़ से सड़कें जलमग्न हो गई। पानी के तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। पहाड़ी राज्यों में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
0: और चलिए अब सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। बेंगलुरु में 2 महीनों में एक ही जगह पर हुए कई हादसों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सहारनपुर में यमुना नदी में नहाने गए युवक, डूबने की वजह से एक की गई जान। उधम सिंह नगर में कार में अचानक से लगी आग से हड़कंप, चालक ने कूद कर बचाई जान, कोई जनहानि नहीं। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत। देहरादून में रेस्टोरेंट पार्किंग में एक युवक पर बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असम के जोरहाट में हार्डवेयर गोदाम में लगी भयंकर आग, 10 करोड़ से अधिक का नुकसान। गुजरात के साबरकांठा में महिला के लापता मामले के बाद हिंसा, गुस्साई भीड़ ने दुकानों में लगाई आग। एमपी के खरगोन में झमाझम बारिश से मोहनी नदी उफान पर, कई बस्तियों और खेत में भरा बाढ़ का पानी। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर।
15: In association with
16: भारत,
15: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
17: Jack, you're killing me.
15: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
18: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: हमने तब भी सवाल किया था।
16: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
15: हम आज भी सवाल करते हैं।
16: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
15: ऑपरेशन अग्नि,
16: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
15: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
17: In association with
18: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
19: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
20: हाँ सर, बहुत खुशी, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश है सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटते चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
6: ईरान के राष्ट्रपति बोले, अमेरिका एमओयू का पालन करे तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति का संदेश, समझौता दो तरफा प्रक्रिया, अमेरिका के कदम पर निर्भर करेगा आगे का रास्ता। ईरान ने कहा, फैसलों में तर्क और गरिमा, कार्रवाई में बेखौफ, रक्षा हमारी नीति, धमकियों का जवाब दृढ़ता से होंगे। ईरान ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ कोई बैठक तय नहीं। कतर में दोनों प्रतिनिधिमंडलों के दौरे अलग अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम साबित हो सकती है और इसके नतीजों का इंतजार किया जाएगा। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, कई अहम सुधारों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न, सेशल्स दौरे को बताया सार्थक, बोले दोनों देशों के लिए अगले 50 साल नवाचार और साझा समृद्धि के होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 जुलाई तक आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राज्य के 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन, उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को ऑपरेशन सिंदूर में नेतृत्व और रणनीतिक योगदान के लिए राष्ट्रपति ने दिया सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री संग बड़ी बैठक, मीटिंग में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहेंगे मौजूद। आज अयोध्या जाएगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, अजय राय के नेतृत्व में रामलला के दर्शन करेंगे 9 सांसद। कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 6 बैंक को नोटिस जारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 80 लोगों को नोटिस, चंपत राय का बयान दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा विवाद का दान पर नहीं पड़ा कोई असर, गर्मी की छुट्टियों में बढ़े श्रद्धालु, चढ़ावा भी हुआ 2 गुना। महाराष्ट्र विधान परिषद में खाली उप सभापति पद के लिए चुनाव की घोषणा, 1 जुलाई को मतदान। पुणे केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी। पुणे पुलिस ने कहा, सिया और चेतन के फोन से डिलीटेड डेटा कोई रिकवरी कर फोरेंसिक जांच करनी है, साथ ही केतन के गायब पासपोर्ट पर सिया से सवाल जवाब। महाराष्ट्र के सतारा में पेपर लीक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का हल्ला बोल, कराड़ में मटकी हांडी फोड़ कर किया आंदोलन। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में भिवंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया और उनके पास से पेपर हुआ बरामद। सीएम योगी आज रामपुर और बरेली के दौरे पर विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, बोले 9 साल पहले समाजवादी सरकार में मुरादाबाद उपद्रव के लिए जाना जाता था, अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, 2 जुलाई को शुभेंदु कैबिनेट में ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी, सीएम ने कहा अगस्त में लाएंगे यूसीसी बिल। सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति में दसवीं के छात्रों को बड़ी राहत, मौजूदा बैच पर नहीं लागू होगा नया नियम। पॉलिसी को लेकर सीबीएसई की नई गाइडलाइन जारी। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईबी पॉलिसी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले पर गरमाया विपक्ष ने सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पुणे की स्पेशल कोर्ट में नसरपुर में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई गई। नसरपुर रेप मर्डर मामले में दोषी को फांसी की सजा मिलने पर सीएम फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, बोले ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। नसरपुर रेप और हत्या केस में कोर्ट के फैसले का सुप्रियो सुले ने स्वागत किया, बोली जल्द से जल्द दी जाए फांसी की सजा ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने विश्वास नांगरे पाटिल, आरएसएस कार्यक्रम पर हुए विवाद को लेकर बोले मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। कर्नाटक में भाषा नीति को लेकर नया विवाद सामने आया। राज्य के शिक्षा मंत्री मधु ने सीबीएसई से कक्षा 6 के लिए

जुनाई से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूटा। सिमाजी में सिमेना नदी में आई बाढ़ की वजह से 4 लोग बहे एक लापता, 3 को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचाया। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में रास्ते हुए बंद। प्रदेश गृह मंत्री बोले एनडीआरएफ एसडीआरएफ और वायुसेना राहत कार्य में तैनात। दिल्ली एनसीआर में अचानक से बदला मौसम, बारिश से चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में अचानक से पानी छोड़े जाने की वजह से मकोड़ा पत्तन पर बना पुल बहा, 7 गांव का संपर्क बाकी हिस्सों से टूटा। पटना के कई इलाकों में आज हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश के बाद सफर सदर अस्पताल में जलभराव की वजह से मुश्किल हुआ। पूरे परिसर में पानी भरने के कारण बढ़ी लोगों की परेशानी। राजस्थान में जल्द खत्म हो सकता है मॉनसून का इंतजार, 2 जुलाई से राजस्थान में मॉनसून के एक्टिव होने के आसार। 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार। कोटा और उदयपुर में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। उधम सिंह नगर में कार में अचानक से लगी आग की वजह से हड़कंप मचा, चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान, कोई जनहानि नहीं। बेंगलुरु में 2 महीनों में एक ही जगह पर हुए कई हादसों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सहारनपुर में यमुना नदी में नहाने गया एक युवक डूबने की वजह से गई जान। सीतामढ़ी में सिलेंडर फटने की वजह से भीषण अग्निकांड, 8 घर जलकर खाक हुए, 2 लोगों की हालत नाजुक। कौशाम्बी में पतंग फंस जाने के कारण हाईटेंशन टावर पर चढ़ा किशोर, वायरल वीडियो होने की वजह से हड़कंप मचा, पुलिस ने सकुशल नीचे उतारा। अजमेर में गाय को बचाने के चक्कर में पलटी गाड़ी, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। इंदौर में जमीन विवाद के चलते पुलिस पर हमले का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में आकाशीय बिजली गिरने के कारण 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत, इलाके में पसरा मातम। नागपुर में इमारत का हिस्सा गिरने की वजह से 1 की मौत हुई, इमारत का मलबा गिरने के कारण गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। प्रतापगढ़ में महिला ने दरोगा पर लगाया शादी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप, आरोपी दरोगा को किया निलंबित। करौली में तार टूटने की वजह से बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आने के कारण 3 युवकों की मौत, बाइक जलकर राख। बिजनौर में ससुर ने बहू के प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा। श्रीगंगानगर के होटल में 13 साल की मासूम संग रेप मामले पर आक्रोश, एसपी और कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का प्रदर्शन, होटल पर बुलडोजर की मांग। कर्नाटक के मंगलुरु हाईवे पर बदमाशों ने सरफा कारोबारी से 180 ग्राम सोना लूटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। जयपुर हाईवे पर सीएनजी से असम के जोरहाट में हार्डवेयर गोदाम में लगी भयंकर आग, 10 करोड़ से अधिक का नुकसान। गुजरात के साबरकांठा में महिला के लापता होने के मामले में उसके बाद हिंसा हुई, गुस्साई भीड़ ने दुकानों में लगाई आग। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, 2 घायल। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत। गुजरात के जामनगर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। इंदौर में बिना अनुमति आयोजित हाई प्रोफाइल हाउस पार्टी पर पुलिस का छापा, पार्टी शुरू होने की वजह से पहले 6 आयोजकों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार कार पोहे वाले की दुकान में जाकर घुसी, इलाकों का नुकसान। गुजरात के द्वारका में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन, अवैध बॉक्साइट खनन मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। गुजरात के अमरेली गांव में तेंदुए ने पालतू कुत्ते का शिकार किया, रिहायशी इलाकों में घटना से लोगों में दहशत। तेलंगाना के निजामाबाद में एक स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद हुआ, बीजेपी नेताओं और अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रिंसिपल समेत कई पर केस दर्ज। झारखंड के जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया का कहर मचा, 48 घंटे में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप। एमपी के खंडवा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग की टीम पर हमला, महिलाओं की आड़ में बरसाए तीर पत्थर, 6 से ज्यादा लोग घायल। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 रेलवे विहार में गंगाजल पाइपलाइन के खुले गड्ढे में गिरी कार, बाल बाल बची युवक की जान। गुजरात के पाटन में दलित युवक की शादी में हंगामा, दूल्हे को घोड़े से गिराकर की मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी, 5 के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर व्रज झरने में फंसे 6 युवक, 18 घंटे बाद वन विभाग और दमकल की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म मीठा का टीजर रिलीज हुआ, 28 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 3 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 3 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म अल्फा। फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में आएंगे नजर। फिल्म अल्फा की प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची एक्ट्रेस आलिया और शर्वरी, महिला बाइकर्स के साथ ली सेल्फी। थिएटर में फिल्म देखने के लिए पहुंचने पर शर्वरी और वेदांग रैना की तस्वीर आई सामने, मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट, कहा दर्शकों ने फिल्म को अपनाया। मई में देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़कर 5.1% हुई, अप्रैल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.9% थी। अब बिना रोक टोक मिलेगा पेट्रोल डीजल, 1 जुलाई से हटेंगी सारी पाबंदियां। मिडल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से

सप्लाई चेन पर पड़ा था असर। ग्लोबल लेवल पर सप्लाई में सुधार होने के बाद पाबंदियां हटाने का फैसला। समस्या चुनकर एआई से सॉफ्टवेयर बनाकर अच्छे से हल करने वालों को दिया जाएगा इनाम। राज शमानी और इमर्जेंट ने 1 करोड़ का अनाउंस किया चैलेंज। मंगोलिया में एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2026 में भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया रणकौशल। ऑपरेशनल तैयारियों के साथ खेल भावना का भी प्रदर्शन किया। दिव्या अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बड़ी तादाद में जुटने लगे हैं श्रद्धालु। बम बम भोले के जयकारों की गूंज। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में बनाए गए स्वागत द्वार। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव। सरयू तट पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। सरयू तट पर 5151 दीपों से की गई भव्य महाआरती। मधुर भक्ति सुरों से गूंजा सरयू तट। पंजाब के फरीदकोट में कैदियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के लिए शानदार पहल। जेल में रेडियो स्टेशन सेंटर और आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः काल 5:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

समस्या हो सकती है, करियर में बाधा दिखाई दे रही है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। गुड़ का अगर आप दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। सरसों से सरसों।
8: डॉक्टर रामनु लोहिया जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है।
9: डॉक्टर रामनु लोहिया जी के संकल्पों के उनके आदर्शों पे उनकी बताई हुई नीतियों पे
10: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
9: डॉक्टर रामनु लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
11: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है। एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुन तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है। राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
12: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
11: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है। 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
15: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

की जांच में 6-7 बैंकों तक आज बंद ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड तलब। आज तक की खबर के बाद 17 साल से जमे आरएमओ का तबादला। कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले सियासी तनातनी। अजय राय को होटल में नजरबंद करने का दावा। पत्नी ने बताया जान का खतरा। थोड़ी देर में दर्शन को पहुंचेंगे सभी नेता। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही प्रक्रिया में बदलाव के संकेत। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथनी कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी। 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन। दिल्ली में आज से एसआर की शुरुआत। 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन। 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। चढ़ावा चोरी मामले में बेअसर है राम भक्तों की भक्ति, अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, राम मंदिर के चढ़ावे में इजाफा, पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। क्या मथुरा से निकलेगा 2027 की जीत का रास्ता, अयोध्या के जवाब में योगी का मथुरा कार्ड। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें फिर तेज, कब होगा बदलाव, कैसा होगा बदलाव, पूरी खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के साथ जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, SIT जांच में अब बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए MOU का पालन, जांच के दायरे में है। राम मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच विस्तृत कार्य प्रणाली तय की गई थी। और सूत्रों के मुताबिक SIT जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि प्रावधानों का नियमित रूप से पालन ही नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2025 में ट्रस्ट और SBI के बीच हुए MOU में दान पत्र खोलने और गिनती कक्ष संचालन के लिए ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। गणना में लगे कर्मियों के लिए ड्रेस कोड तय किया गया था, लेकिन इन व्यवस्थाओं का हर स्तर पर प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ। समझौते में बैंक अधिकारियों के मासिक रोटेशन का प्रावधान था, जबकि कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में कार्यरत होने का प्रावधान था। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, इस MOU की डिटेल्स बताइए, और क्या बिल्कुल पालन MOU का नहीं हुआ, या फिर अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी थी तो वो क्या थी?
1: देखिए, नया सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि बैंक और ट्रस्ट के बीच में एक MOU साइन हुआ था, और उसमें तय किया गया था कि कैसे पारदर्शी बनाया जाएगा जो दान प्रक्रिया की काउंटिंग प्रोसेस है, या जो अन्य चीजें दान को लेकर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र का मंदिर है और करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, और केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी तमाम लोग दान, कोई दान पात्र गहनों के माध्यम से करता है, कोई कहीं ना कहीं कोई कैश के माध्यम से करता था, कोई अन्य चीजों से करता था। तो ये डिसाइड हुआ था कि एक CCTV जो है वो लगातार ऑपरेशनल रहेगा, एक ड्रेस कोड बनाया जाएगा, जो भी कर्मी काउंटिंग प्रोसेस में रहेंगे वो पर्टिकुलर ड्रेस कोड में रहेंगे, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आसान हो। इवन जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे, जब वो आएंगे तो चेकिंग होगी, जाते वक्त चेकिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी। और ये भी एक बैंक की तरफ से एक सुझाव दिया गया था कि समय समय पर हम जो आउटसोर्सिंग कंपनी के वाया एम्प्लॉयज को देंगे, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका एक तरह से ड्यूटी चेंज किया जाएगा, यानी कि एक ही व्यक्ति लंबे समय तक काउंटिंग प्रोसेस में नहीं रहेगा, या तो उसको वीकली या महीने, वो दोनों ही लोगों को मिलकर डिसाइड करना था कि समय समय पर चेंज किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर कार्य प्रणाली जो है एक तरह से निष्पक्ष रहे, कोशिश ये थी। लेकिन धरातल पर जो है चीजें उस तरीके से उन नियमों का पालन ही नहीं हो सका। अगर उन नियमों का शायद पालन हो गया होता तो इस तरह की कोई घटना सामने ही नहीं आती। अब इसमें यह पालन क्यों नहीं हुआ, किसकी तरफ से चूक हुई, बैंक की तरफ से चूक हुई, या फिर ट्रस्ट के अधिकारियों की तरफ से चूक हुई, या फिर कुछ किन्हीं कारणों की वजह से जो एम्प्लॉयज या जो वर्कर्स वहां पर इन्वॉल्व थे काउंटिंग प्रोसेस में, उनको नहीं हटाने दिया गया और एक ही व्यक्ति को कंटिन्यू करने दिया गया,
0: जिसके फलस्वरूप चढ़ावा चोरी की जांच अब बैंक तक पहुंच गई है। जांच टीम अब बैंक से ट्रस्ट से जुड़े खातों, लॉकर्स और लेन देन की जानकारी निकलवा रही है, ताकि मनी ट्रेल के जरिए चोरी की तह तक पहुंचा जा सके।

0: भगवान राम का चढ़ावा किसने चुराया, चोरी की रकम किसके बैंक खाते में गई, उस खाते से पैसा आगे कहां गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब बैंकों तक पहुंच गई है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 6 से 7 बैंकों को नोटिस जारी किया है। जिन बैंकों को नोटिस भेजा है उनमें भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन बैंकों से ट्रस्ट से जुड़े खातों, लॉकर और सभी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है ताकि धन के प्रवाह में किसी भी तरह की अनियमितता की जांच की जा सके। दरअसल अब पुलिस और जांच एजेंसी ट्रांजैक्शन ट्रेल का पता करने में जुटी है, यानी पैसा कहां से आया, पूरी जानकारी निकालने की कोशिश हो रही है और इसके साथ ही आरोपियों और ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोगों के बैंकिंग और वित्तीय रिकॉर्ड की भी गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि बैंक डिटेल सामने आने के बाद इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और जांच की दिशा और अधिक स्पष्ट होगी। इस बीच पुलिस ने बैंकों को नोटिस जारी करने के बाद बैंक कर्मचारियों और कैश हैंडलिंग में शामिल स्टाफ की भूमिका की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच का फोकस इस बात पर है कि दान की गिनती, उसकी सुरक्षा और बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में किन स्तरों पर लापरवाही या संभावित मिलीभगत हुई। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से जुड़े 2 कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। ये दोनों बैंक के पैरोल पर कार्यरत हैं और इनके अधीन कुल 6 आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करते थे। इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जिम्मेदारी दान की गिनती और उसे सुरक्षित तरीके से बैंक तक पहुंचाने की थी। जानकारी के मुताबिक चढ़ावा चोरी में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें सुभाष और टिन्नू को छोड़कर बाकी सभी आरोपी आउटसोर्सिंग स्टाफ से जुड़े बताए जा रहे हैं। इधर अयोध्या पुलिस की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नया घाट शाखा भी पहुंची, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मुख्य बैंक खाता संचालित होता है। पुलिस ने यहां बैंक स्टाफ से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द ही बैंक मैनेजर का बयान भी दर्ज करेगी। जांच टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि दान की राशि की काउंटिंग, हैंडलिंग और बैंक तक ट्रांसफर की प्रक्रिया में किन किन स्तरों पर संभावित गड़बड़ी हुई। फिलहाल पुलिस बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और कैश मूवमेंट से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में बैंकिंग सिस्टम की भूमिका को लेकर और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सिमर चावला, अयोध्या आज तक।
1: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर, की जो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, इसकी जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया?
2: नया, देखिए ये बहुत अहम हिस्सा है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का। एसबीआई की जो नया घाट शाखा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल, क्योंकि यहां से निकलकर सामने आता है। कल पुलिस की टीम ने लगभग 2-3 घंटे वहां पर पूछताछ की है और जिस पूछताछ में जो अकाउंट डिटेल्स, खासकर वो आरोपी जो इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं और इस वक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, उनके निकाले हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के जो और मेंबर्स जिनमें पुलिस का शक है, उनके अकाउंट डिटेल्स मांगे गए हैं और काफी इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा दी गई है। लेकिन सबसे अहम कड़ी जो सूत्रों के मुताबिक मालूम पड़ी है वो ये है कि पुलिस पूछताछ में जो एसबीआई के जो ओनर, जो मैनेजर हैं, उनकी तरफ से ये बात साझा की गई है पुलिस से कि 3 महीने पहले ही बैंक को इस बारे में शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ी प्रतीत हो रही है, जिसको लेकर जो ट्रस्ट है उसे अलर्ट भी किया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब बड़ी बात इस पूरे मामले पर निकलकर ये आ रही है कि आखिर जब बैंक के द्वारा ट्रस्ट के ऑफिशियल्स को अलर्ट किया गया था तो क्या वो कारण थे जिनके बावजूद भी जो स्टाफ काउंटिंग में इन्वॉल्व था, जो अब आरोपी की भूमिका में दिखाई पड़ता है, उन्हें क्यों नहीं हटाया गया। ये एक बड़ी बात सामने आ रही है जो पुलिस पूछताछ में बैंक कर्मियों ने साझा की है कि एक ऐसा हिंट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस मामले में आज तक की खबर का असर हुआ है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में खुलासे के बाद। सवालों के घेरे में आए वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस अफसर अर्जुन देव का अब ट्रांसफर किया गया है। 17 साल बाद आरएमओ अर्जुन देव का यह तबादला हुआ है, उन्हें गोरखपुर रवाना कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन देव लंबे समय से अंडर ट्रांसफर चल रहे थे, लेकिन हर बार उनका तबादला रुक जाता था। अर्जुन देव 2009 से अयोध्या में आरएमओ के पद पर कार्यरत थे और इस दौरान कई बार उनके तबादले के आदेश जारी हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उन्हें निरस्त करा लिया। उन्होंने जांच के दौरान गठित एसआईटी की रिपोर्ट में अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल उठाए गए। वहीं मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है, उल्टा मंदिर में आने वाले दान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जहां पहले प्रतिदिन औसतन 10 से 12 लाख रुपए बैंक में जमा होते थे, वहीं अब ये राशि बढ़कर 20 से 24 लाख रुपए प्रतिदिन हो गई है। बैंक सूत्रों के मुताबिक इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह गर्मी की छुट्टियों के दौरान अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भारी संख्या है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका सीधा असर मंदिर वाले दान पर और दक्षिणा पर दिखाई दे रहा है। हालांकि दान राशि में बढ़ोतरी के इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं की है। फिलहाल ये जानकारी बैंक और अन्य सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ट्रस्ट की जानकारी के मुताबिक 2024-25 में राम मंदिर ट्रस्ट को 327 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिसमें 153 करोड़ का दान मिला। प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 41.92 लाख रुपए होता है। इसे प्रति घंटे के हिसाब से देखें तो ये करीब 2.25 लाख रुपए होता है। यानी राम मंदिर में हर मिनट 2,912 रुपए का चढ़ावा आता है। अगर श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो 22 जनवरी 2024 से 2026 तक के अनुमानित आंकड़े ये बताते हैं कि 12 करोड़ लोगों ने अब तक राम मंदिर का दर्शन कर लिया है। रोजाना तकरीबन 50 से 60 हजार लोग भगवान श्री राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और चढ़ावा चोरी मामले में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। आरोप यह है कि कांग्रेस सांसद के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अजय राय को अयोध्या के होटल में रखा गया है। दरअसल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाला था। ऐसे प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के यूपी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और एमएलसी शामिल हैं। ये सभी सुबह 9:30 बजे अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने वाले थे। इसी की तैयारी के लिए अजय राय अयोध्या पहुंचे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक ही लिया है और इस दौरान अजय राय ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए।
3: बता दीजिए क्या बोल रहे हैं फिर?
4: कह रहे हैं कि लखनऊ की
3: नहीं, लखनऊ नहीं
4: है,
3: नहीं उधर तो नहीं जा सकते, तो हम तो फिर अब्दुल खान भी चलिए, हम नहीं जाएंगे तो लखनऊ थोड़ी जाएंगे, थोड़ी यहाँ आए आप देखिए गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए हमको, ठीक है बात है, हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे।
4: अब क्या कौन से होते
3: हैं हम लखनऊ,
4: जब आपको कह दिया कि साकेती को कर दिया जाएगा,
5: आप समझ रहे हैं कोई
3: जाने
5: ना
3: कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं हम कैसे करेंगे, तभी नहीं जाएंगे। राम जी भी कहेंगे महाराज अभी क्या है, अधिकार है वो अलग विषय है, हम जब आए दर्शन दर्शन के लिए सरकार रोक रही है,
4: नहीं घर परिवार के हैं इसलिए हम
3: घर परिवार तो दर्शन के लिए रोक देंगे,
4: ये दर्शन करा देंगे।
1: उधर अजय राय की पत्नी रीना राय का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।
6: आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है।
1: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, पुलिस तो कह रही है कि हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन पत्नी का तो अलग आरोप है, वो कह रही है हिरासत में लिया गया है और उनकी जान तक को खतरा है।
2: नेहा देखिए, पूरी कांग्रेस की टीम जिसमें अजय राय के नेतृत्व में जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं, कई विधायक और पूर्व एमएलसी, ऐसे लोगों की एक पूरी टीम आज अयोध्या पहुंची थी, इनफैक्ट कल से ही पहुंची है, और ये लोग आज अयोध्या पहुंचकर दर्शन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। तो बीती रात को ही अजय राय को उनके होटल में हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस ने उन्हें होटल में ही रोक लिया है और कई नेता अयोध्या पहुंचे हुए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि प्रशासन को लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के आने से और यहां पर बिना परमिशन
5: चूंकि उन्होंने कहा यह जा रहा है कि परमिशन के लिए अप्लाई तो की थी लेकिन प्रशासन ने फिलहाल परमिशन नहीं दी थी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें रोक लिया गया है। पत्नी का आरोप अपनी जगह है लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो तमाम का जो प्रतिनिधिमंडल है ये जरूर पहुंचा है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ये पहुंचा और ये रामलला के दर्शन के बाद इस पूरे चढ़ावा चोरी पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला था लेकिन अभी फिलहाल उनको रोक लिया गया है और उनको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं उनके रोके जाने से हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को भी सियासी फायदा हो, लेकिन कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है अयोध्या। नेहा,
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय सोमवार को तकरीबन 3 घंटे तक लंबी पूछताछ करने के बाद उनका बयान दर्ज किया है। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णय, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। उनके बयान का मिलान और अन्य गवाहों और उपलब्ध दस्तावेज से किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जरूरत पड़ी तो अब उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी। पुलिस से चंपत राय ने कहा कि उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है, इसकी जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए, संदिग्धों को पकड़ा, FIR दर्ज भी कराई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जारी है और इस पर सियासत के बीच AIMM सांसद ओवैसी ने पूरे मामले पर तंज कस दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसे गोली मार दी गई होती।
7: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या क्या मैं क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार चढ़ावा चोरी के मामले पर सरकार को घेर रही है, लेकिन चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच सीएम योगी ने मथुरा का मुद्दा उठाकर अखिलेश को घेरने की कोशिश की। तो क्या मथुरा के रास्ते योगी 2027 की जीत का रास्ता निकालेंगे?
8: अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए।
9: चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर सरकार। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है, चंपत राय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने सियासी पेच पर चढ़ावा चोरी पर सियासी बाउंसर मारना शुरू कर दिया है। ऐसे में सीएम योगी भी अब हिंदुत्व की पेच पर चौके छक्के मारने उतरे हैं। अखिलेश ने अयोध्या को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण भूमि वाला चैलेंज दे दिया।
8: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए, अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो।
10: हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो, चंदा चोरी की हो, सीसीटीवी में फुटेज हो, सीसीटीवी से तो घबरा ही रहे हैं, सीसी से और ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता जान गई है चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, वो सब जग जाहिर हो गई है।
9: अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घिरी बीजेपी 2027 की राजनीति में मथुरा की एंट्री करवा रही है। 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से चुनावी शंखनाद करना चाहती है।
11: अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है।
9: श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सीएम योगी ने क्यों उछाला, इसकी कैलकुलेशन भी अब आपको समझाते हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई, और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट भी 87-89% तक पहुंचे।
1: और अब यूपी से निकलकर बात देश की सियासत की करेंगे। मोदी सरकार के विस्तार की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स से लौट आए हैं और एक बार फिर कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। कब होगा फेरबदल, कैसा होगा फेरबदल, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
0: सेशेल्स का 3 दिन का दौरा खत्म कर पीएम मोदी दिल्ली लौटे तो एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली के सियासी गलियारे में अटकलें जोर पकड़ी कि इसी वीकेंड यानी शनिवार या रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इसके आसार कम है। जरा कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। आज और कल राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। कल से 3 जुलाई तक जापान की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर रहेंगी। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा है। 5 जुलाई का दिन खाली है। 6 जुलाई को पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर निकल जाएंगे।
12: 11 जुलाई को विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं, या फिर 5 जुलाई को जो एक विंडो खाली है उसमें कैबिनेट विस्तार को अमली जामा पहनाया जा सकता है। इतना जरूर है कि अब जल्द से जल्द मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा।
0: तो क्या मानसून सत्र से एन पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जबकि सदन में मंत्रियों को कई सवालों के जवाब तैयारी करके देने होते हैं।
12: संसद का सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में क्या कैबिनेट में विस्तार हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इससे पहले 2021 में 7 जुलाई को कैबिनेट में विस्तार हुआ था और 14 जुलाई से संसद का सत्र था। तब रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नेताओं को कैबिनेट से हटाया गया था। ये पहले भी हुआ है और अब भी हो सकता है।
0: मंत्रिमंडल फेरबदल की तारीख के साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि मोदी मंत्रिमंडल में क्या बदलने वाला है। कुछ नाम चर्चा में हैं, जैसे पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं, अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद के चलते इनकी मंत्री पद वाली सीट खाली हो सकती है, ताकि पूरा फोकस 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में संगठन पर रख सके। रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री हैं। 21 जून को राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो चुका है। पंजाब चुनाव में पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू पूरा ध्यान लगा सके, इसलिए हो सकता है कि इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली रहेगी। हर्ष मल्होत्रा सहकारिता राज्य मंत्री रहे, मई महीने में इन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी भी खाली हो सकती है। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री 23 जून को इस्तीफा दे चुके हैं।
12: पंकज चौधरी, हर्ष मल्होत्रा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में भी मंत्री बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले जी किशन रेड्डी, विजय सापला, सर्वानंद सोनेवाल प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे, क्योंकि उन राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। क्या इसी फार्मूले के तहत पंकज चौधरी भी मंत्री बने रहेंगे, या फिर एक व्यक्ति एक पद वाला फार्मूला ही चलेगा? कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: आपको याद होगा शामली में रहने वाला आयुष मलिक जिसका धर्म परिवर्तन हुआ था, अब उसकी घर वापसी हो गई है। धर्म परिवर्तन कर मोहम्मद अली बने आयुष ने वापस सनातन धर्म को अपना लिया है। आयुष के पिता ने चांदनी कुरैशी नाम की युवती और उसके परिवार पर ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया था।
13: मंदिर में आरती पूजा पाठ कर रहे इस युवक का नाम है आयुष मलिक, जिसने धर्मांतरण के बाद सनातन धर्म में वापसी की है। आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक की ओर से जारी किए गए वीडियो में आयुष धर्म परिवर्तन के लिए अपने माता पिता से माफी मांगता नजर आ रहा है।
14: मेरा नाम आयुष मलिक, माँ मैं इस्लाम धर्म में चला गया था, मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, आप मुझे माफ करना।
13: आयुष मलिक के धर्मांतरण को लेकर उसके पिता देवराज मलिक ने पुलिस को एक तहरीर दी थी, जिसमें चांदनी कुरैशी नाम की एक युवती और उसके पिता पर आयुष का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद आरोपी युवती और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चांदनी कुरैशी के परिवार के बाकी सदस्य और धर्मांतरण करवाने वाले मौलाना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि आयुष की घर वापसी से परिवार बेहद खुश है। आयुष का कहना है कि वो अब अपने माता पिता के छांव में रहना चाहता है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।
1: और बात मानसून की, देश के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ लिया, लेकिन बारिश अब राहत से ज्यादा आफत बनती जा रही है। हिमाचल से लेकर पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक बाढ़ और फ्लैश फ्लड ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं ग्लेशियर पिघलने की खबरें आ रही हैं, जिससे सड़कें बह गई तो कहीं लोग और मवेशी बाढ़ में फंस गए।
15: दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की है, जहाँ ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा अपने साथ बहा ले गया। अचानक आए सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाके में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। असम में भी लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। टिकारी नदी का जलस्तर आसपास के इलाकों में कहर ढा रहा है। कोराई बाड़ी 4 में 15 से ज्यादा लोग सैलाब के बीच घिर गए। करीब 100 मवेशी बाढ़ की चपेट में है। असम के धेमाजी में भी हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ सिमेन नदी में 4 लोग बह गए। हालांकि 3 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि चौथे की तलाश जारी है। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहाँ भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। जगह जगह फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। सरकार ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में न जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मोहनी नदी उफान पर है। कई बस्तियों और खेतों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश के बाद नाले में आई बाढ़ से सड़कें जलमग्न हो गई। पानी के तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। पहाड़ी राज्यों में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
18: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

बढ़ावा। चोरी की जांच में 6-7 बैंकों तक आंच बंद। ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड तलब। आज तक की खबर के बाद 17 साल से जमे आरएमओ का तबादला। कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले सियासी तनातनी। अजय राय को होटल में नजर बंद करने का दावा। पत्नी ने बताया जान का खतरा। थोड़ी देर में दर्शन को पहुंचेंगे सभी नेता। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही प्रक्रिया में बदलाव के संकेत। 32 साल बाद राजस्थान गौहत्ती कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी। 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन। दिल्ली में आज से एसआर की शुरुआत। 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन। 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।

0: 9:30 बज गए हैं, वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: देहरादून में पार्किंग बनी रणभूमि, मामली कहा सुनी के बाद कार के पीछे ले जाकर युवक ने धारदार हथियार से किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, सर और कान पर लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस से नामजद आरोपियों समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। हल्दिया रिफाइनरी में नाफ्था पाइपलाइन में भीषण आग, कई कर्मचारी झुलसे, कुछ की हालत गंभीर। आग लगने से अफरा तफरी, आसमान छूती लपटें आई नजर आई, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मंगलुरु तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 मछुआरों की जान बचाई। समुद्र में डूबती नाव से सुरक्षित निकाल लिए गए सभी 6 क्रू मेंबर्स, सचेत जहाज ने दिखाई तत्परता। खराब मौसम में कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी, रात भर चले ऑपरेशन में सफल बचाव कार्य। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर पिघलने से नाले में अचानक बाढ़, सड़क टूट गई, 50 से ज्यादा पर्यटक फंसे। एमपी के खरगोन में झमाझम बारिश से मोनी नदी उफान पर, कई बस्ती और खेतों में भरा बाढ़ का पानी। खरगोन में पहली बारिश से बड़ी लोगों की मुसीबत, जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश से किसानों को राहत। जालना में मूसलाधार बारिश के चलते नाले में आई बाढ़, पानी में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे हैं सफर। नोएडा के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश, सेक्टर 16 से तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर दान घोटाले में जांच तेज, 7 बैंक से 5 साल के खातों का पूरा रिकॉर्ड तलब, वित्तीय ट्रेल खंगाल रही है पुलिस। आरोपी और ट्रस्ट के बैंक खातों की गहन जांच जारी, पुलिस ने ट्रांजैक्शन, केवाईसी और कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड जुटाए। अयोध्या में दान फंड की फोरेंसिक ऑडिट शुरू, संदिग्ध लेनदेन और बैंकिंग गतिविधियों की हो रही है पड़ताल। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज, कहा जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई, एफआईआर कराई गई दर्ज। पूछताछ में चंपत राय ने खुद को निर्दोष बताया, बोले ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर होती थी नियुक्ति प्रक्रिया। आज अयोध्या जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, अजय राय के नेतृत्व में रामलला के दर्शन करेंगे 9 सांसद। कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज, अनिल मिश्रा, गोपाल राय समेत 80 लोगों को नोटिस, चंपत राय का बयान दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर दान पर नहीं पड़ा असर, गर्मियों की छुट्टियों में डबल हुआ चढ़ावा। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला यूपी दौरा, 3 और 4 जुलाई को लखनऊ में करेंगे संगठन की समीक्षा। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी के साथ पहली समीक्षा। मुरादाबाद में योगी की मैराथन समीक्षा बैठक, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, सड़क खराब करने वाले ठेकेदारों पर एफआईआर के आदेश। सीएम योगी का सख्त संदेश, बिजली चोरी, गौ तस्करी, लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई, हर जगह हर घर जल और सोलर योजना की समीक्षा। रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट, जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा, बिना स्वीकृति नक्शे के 38 भवनों को भेज दिया गया है नोटिस। 5 जुलाई को आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस, सभी जिला मुख्यालयों से होगा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव 5 जुलाई को पटना में नहीं रहेंगे, इसलिए 1 जुलाई को ही स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, 3 जुलाई को तेहरान रवाना होंगे। भारत एनकाउंटर मामले में बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा बोले, ये एनकाउंटर नहीं, पूरी तरह से गलत कार्रवाई है, सीआईडी जांच की मांग। महाराष्ट्र विधान परिषद में खाली उपसभापति पद के लिए चुनाव की घोषणा, 1 जुलाई को मतदान। पुणे केतन मर्डर मामले में आरोपी सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी। पुणे पुलिस ने कहा सिया और चेतन के फोन से डिलीट डेटा का रिकवर कर फोरेंसिक जांच कर दी है। महाराष्ट्र सतारा में पेपर लीक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का हल्ला बोल, करार में मटकी हांडी फोड़कर किया आंदोलन। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में भिवंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों आकाश, राजीव और धीरज को किया गिरफ्तार। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, कई अहम सुधारों पर होगी चर्चा। मोदी के सेशेल्स 3 दिवसीय आज की यात्रा संपन्न, सेशेल्स दौरे को बताया सार्थक, बोले दोनों देशों के लिए अगले 50 साल नवाचार और साझा समृद्धि के होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 जुलाई तक आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी, राज्य के 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन, उत्तरी कमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को ऑपरेशन सिंदूर में नेतृत्व और रणनीतिक योगदान के लिए राष्ट्रपति ने दिया सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री संग बड़ी बैठक, मीटिंग में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे मौजूद। कर्नाटक में भाषा नीति को लेकर नया विवाद। राज्य के शिक्षा मंत्री बंधु बंगारप्पा ने सीबीएसई से कक्षा 6 के लिए कन्नड़ को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के निर्देश को वापस लेने की मांग की। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, राज्य में कन्नड़ पहले से ही पहली या दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य। पैगंबर मोहम्मद पर नाजिया इलाही ने दी आपत्तिजनक टिप्पणी। विरोध में अटल समाज सेवा कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का शुभारंभ। दो दिन चलेगा सांस्कृतिक महोत्सव। उधम सिंह नगर में कार में अचानक लगी आग। सरगम चालक ने कूदकर बचा।

बिजली गिरने से दो बच्चों समेत तीन की मौत, इलाके में पसरा मातम। नागपुर में इमारत का हिस्सा गिरने से एक की मौत, इमारत का मलबा गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान। प्रतापगढ़ में महिला ने दरोगा पर लगाया शादी का झांसा देकर कई साल तक शारीरिक शोषण का आरोप, आरोपी दरोगा को किया गया निलंबित। करौली में तार टूटने से बाद बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत, बाइक जलकर राख। बिजनौर में ससुर ने बहू के प्रेमी की चाकू मारकर हत्या की, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा। श्रीगंगानगर के होटल में 13 साल की मासूम संग रेप मामले में आक्रोश, एसपी और कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का प्रदर्शन। कर्नाटक के बेंगलुरु हाईवे पर बदमाश ने सराफा कारोबारी से 180 ग्राम सोना लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर हाईवे पर सीएनजी से भरे ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी बस के पीछे से मारी टक्कर, तीन की मौत, छह घायल। असम के जोरहाट में हार्डवेयर गोदाम में आग, 10 करोड़ से अधिक का नुकसान। गुजरात के साबरकांठा में महिला के लापता होने के बाद हिंसा, गुस्साई भीड़ ने दुकानों में लगाई आग। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, चार की मौत, दो घायल। गुजरात के जामनगर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट, सीसीटीवी फुटेज वायरल। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं जम्मू। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लगी लंबी कतार, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर लगाए हर हर महादेव के नारे। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को जवानों ने परखा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर इलाकों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, सभी जगहों पर मुस्तैद दिखे जवान। इमरान हाशमी सारर फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज, फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघर में होगी रिलीज। फिल्म अल्फा के प्रमोशन से जयपुर पहुंची अभिनेत्री आलिया भट्ट और शर्वरी। यूनियन एनटीआर की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म का पोस्टर जारी। एनटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा शिव के पुत्र पार्वती के गौरव, वेलकम टू द जंगल के कमाल, चार दिन में कमा डाले 100 करोड़ रुपए। ईरान के राष्ट्रपति बोले अमेरिका एमओयू का पालन करे तो हम भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति का संदेश, समझौता दो तरफा प्रक्रिया है, अमेरिका के कदम पर निर्भर करेगा आगे का रास्ता। ईरान ने कहा फैसलों में तर्क और गरिमा, कार्रवाई में बेखौफ रक्षा हमारी नीति है। ईरान ने साफ किया आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ कोई बैठक तय नहीं। कतर में दोनों प्रतिनिधिमंडल के दौरे अलग अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम साबित हो सकती है और इसके नतीजों का इंतजार किया जाएगा। यूक्रेन में रूसी सेना का भीषण हमला, 2 अलग अलग हमलों में 8 की मौत, 5 लोग की मौत में 28 भी घायल। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक, पाक सेना के हमले में 36 लोगों की मौत, 160 घायल। जर्मनी के उत्तर शहर स्टाडे में अंधाधुंध गोलीबारी, 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल, पुलिस ने आरोपी समेत 2 को किया गिरफ्तार। अमेरिका के कोलोराडो यूटा इलाके में जंगल में आग से तबाही, आग में जलकर 3 दमकल कर्मियों की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से नहीं थम रही है मौतें, मृतकों की संख्या 1719 हुई।

0: और अब बात यूरोप की, जो इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है। यूरोप के 40 डिग्री जो गर्मी है वो इस वक्त जानलेवा हो गई है। 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और भारत में सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि यहां तापमान 35 से 40 डिग्री हो गया तो लोगों की जान जाने लगी। लेकिन यूरोप में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों को गर्मी की आदत नहीं है। वहां गर्मियों में 20 से 22 डिग्री का तापमान ही रहता है, इसी के लोग आदी हैं। और ऐसे में अब अचानक से तापमान जब दोगुना हो जाएगा तो लोगों की जान जा रही है।
1: देखने में आपको ये तस्वीरें समर वेकेशंस की लग रही होंगी, ठंडी फुहारों में मस्ती करते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। लेकिन ये मस्ती नहीं, मजबूरी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्मी से हालात इतने जानलेवा हो गए हैं कि जिसे पानी में जाने का जहां मौका मिल रहा है वो जा रहा है। समंदर से लेकर नदी और फव्वारे से लेकर तालाब तक लोगों से भरे हुए हैं। दिन हो या रात, गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने वाले वाहन घूम रहे हैं। लोग सड़क किनारे लगे वाटर स्प्रिंकलर से राहत का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हर कोशिश, हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है और हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूरोप के 20 से ज्यादा देश हीटवेव की चपेट में आ चुके हैं। 38 से 42 डिग्री तापमान से गर्मी जानलेवा हो रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत 12 देशों में रेड अलर्ट जारी हो गया है। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे शरीर गर्म रहने से हार्ट अटैक।

0: और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। मृतकों में 80% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बिजली का संकट बढ़ गया है, हजारों घरों में बिजली नहीं है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि एयर कंडीशनर के बिना कई साल गुजार देने वाले लोग दुकान खुलते ही एसी खरीदने के लिए उमड़े जा रहे हैं और दुकानों में लूटपाट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये तस्वीर पेरिस की है, जहां एसी के लिए उमड़े लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। फ्रांस में एक बस हादसे का शिकार सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि बस में एसी नहीं था और ड्राइवर बेतहाशा गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। झुलसा देने वाली गर्मी में बिना किसी गैस के इस तरह अंडे फ्राई करने का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अब एक और तस्वीर जर्मनी की दिखाते हैं। ये लिप्ज़िग शहर है, जहां गर्मी की वजह से पटरियों के आसपास की जगह पिघली जा रही है। मजबूरी में प्रशासन को कई इलाकों में ट्रॉम की आवाजाही पर ही रोक लगा देनी पड़ी है। ये ईस्ट यूरोप का एक और देश है लिथुआनिया, जहां रविवार को भयंकर हीटवेव का कहर आया, दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यहां तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने पिछले साल जून का रिकॉर्ड तोड़ा है। यूरोप गर्मी के लिए बना ही नहीं है, इसलिए सरकारों को भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। ये यूरोप के प्राग शहर की तस्वीरें हैं, जहां तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि चेक रिपब्लिक में गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गई है। लोगों के ऊपर ऐसी ही पानी का स्प्रे किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के टूरिस्ट इन देशों में गर्मियां बिताने जाते हैं, क्योंकि ये शहर ठंडे रहते हैं और अब यहां भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात कराची ब्लास्ट की, जिसमें अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की है। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतें, बुजुर्ग और बच्चे समेत 25 लोगों की जान चली गई।
2: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनुगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का टीटीपी का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है, और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक देरो
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज तक।
3: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
4: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
3: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1999।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Vimal, bolo zuba kesri. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: हमने तब भी सवाल किया था।
2: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
1: हम आज भी सवाल करते हैं।
2: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
1: ऑपरेशन अग्नि,
2: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
1: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
3: इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में यही लगेगा कि कुछ दोस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। ये शानदार म्यूजिक में पूल पार्टी कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और गाने की धुन पर थिरक रहे हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक ये शख्स यहाँ ऊंचाई से सिर के बल पूल में छलांग लगाता है, बाकी के दोस्त इस छलांग पर जश्न मनाते हैं। ये आदमी पानी में सिर के बल कूदा, अब तक इसके दोस्तों को नहीं पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद ये शख्स पानी से बाहर नहीं आया बल्कि इसका शव उतराने लगा। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवण के वायरी में मालवणी पाहुण चार रिसोर्ट की हैं। दरअसल ये पूल 4 फीट गहरा था और ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इस शख्स का सिर पूल के फ्लोर से टकराया और इसकी जान चली गई। मृतक का नाम श्रेणी मिलिंद ताकले है, ये कोल्हापुर का रहने वाला था। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसे बता के नहीं होते। किसे पता था कि चंद मिनट पहले जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे, चंद मिनट में ही एक हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। भरत केसरकर, सिंधुदुर्ग, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब पूरा देश पूरी दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है। बीजेपी कहती है कि राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए। राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दांव चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति ये है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है। यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। इतना ही नहीं, आने वाली 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से ही विजय का शरसंधान करना चाहती है। कारण ये है कि 2022 चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट प्रतिशत भी 87-89% तक पहुँचे। अब मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मामला छोड़कर सीएम योगी ने यदुवंश की विरासत और पीटीए की सियासत का दावा करने वाले अखिलेश के सामने दुविधा खड़ी करने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी चाहे भले मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्मे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीडीए की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
5: राम मंदिर दान घोटाले को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम के निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चंदे की चोरी को अंजाम दिया गया।
6: इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
5: अखिलेश यादव ने राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है। अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद अयोध्या को बेमिसाल धार्मिक नगरी बनाने का दावा कर रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पूछा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या निर्माण कैसे करेंगे।
7: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
5: रामलला के चढ़ावे में गबन के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अयोध्या से संतोष शर्मा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: चोरी की जांच में 6-7 बैंकों तक आंच, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड तलब, दान पात्र खोलने से लेकर गिनती तक लापरवाही के सबूत। अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय नजरबंद, आज तक से कहा रात में जबरन गेस्ट हाउस में रखा, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे, केजरीवाल आए तो हमसे क्या दिक्कत। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथिनी कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन। दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नमस्कार, मैं हूं अंशवी इस्तवाल। आज सुबह में आपका स्वागत है। 10 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जारी राजनीति की। साथ ही बताएंगे कि चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब क्या बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ आज बात करेंगे केंद्रीय सचिवों के साथ पीएम मोदी की बैठक की, जिसमें कई अहम एजेंडों पर चर्चा की उम्मीद है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आयुष मलिक की, जिसने इस्लाम छोड़कर फिर हिंदू धर्म की तरफ वापसी कर ली है। राम मंदिर चढ़ावा, शुरुआत इसी से करते हैं। चोरी मामले से शुरुआत कर रहे हैं, जहां सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस सांसद के अयोध्या दौरे से पहले यूपी की कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाला था। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के यूपी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और एमएलसी शामिल है। इसी की तैयारी के लिए अजय राय अयोध्या पहुंचे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान अजय राय ने पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

0: और इस बीच अजय राय से आज तक ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। हम यहां दर्शन करने तो आए लेकिन हमें नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार आखिर किस बात से डरी हुई है।
1: अजय राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपका एक वीडियो देखते हैं हम, जिसमें कुछ पुलिस कर्मी है और आप कहीं कमरे में बैठे हैं। क्या आप उसी कमरे में हैं और क्या हुआ बताइए।
2: जी नमस्कार सभी आप सभी साथियों को। मैं हम लोगों ने कल एक दर्शन बाबा यहाँ पे भगवान राम के दर्शन के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया था कि जो भगवान राम के यहाँ जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हो रही है, जिस तरीके की चीजें यहाँ चल रही हैं, तो भगवान राम से चल के प्रार्थना करेंगे कि आपके नाम पर ये पूरे देश के अंदर भाजपा के लोग आज अपनी दुकान चलाए और पूरा विस्तार किया और भगवान के दरबार में ही चढ़ावा चोरी हो रही है। चढ़ावा चोरी जो माँ हमारी दादी माँ आंचल ने पैसा लेकर जाती थी, आंचल का भी पैसा इन्होंने छीन लिया। और उसमें हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग सब लोग मिलकर एक मेरे साथ डेलीगेशन था जिसमें किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी के सांसद, राकेश राठौर जी सीतापुर के सांसद, हमारे उज्जवल रमण जी प्रयागराज के सांसद और तनुज पुनिया जी बाराबंकी के विधायक, हमारे वीरेंद्र चौधरी, पूर्व MLC हमारे दीपक सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद AP गौतम जी, हम लोगों ने डेलीगेशन बनाया थे, चल के भगवान से वहां दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे सद्बुद्धि के लिए। तो आज इन लोगों ने, मैं कल शाम को आ गया था यहाँ पर अयोध्या में, रात को इन लोगों ने मुझे होटल पहुंचकर गिरफ्तार किया, वहां हाउस अरेस्ट किया, फिर वहां से जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाकर, पुलिस की गाड़ी में बैठाकर, ये आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर अयोध्या में, वहां रात को गेस्ट हाउस में लाकर रुके और पूरी तरीके से इन लोगों ने रात भर परेशान किया। और हम लोग दर्शन करने के लिए कोई जाना चाहते थे और जाने नहीं दिया। हम लोगों की केवल एक ही सोचे भगवान राम से दर्शन करेंगे और चल के प्रार्थना करेंगे और सद्बुद्धि हो कि कम से कम जो भगवान के नाम पे आप पूरे देश में विस्तार किए वहां पर ही आप पैसा खा रहे हैं, वहीं चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, ये बस हम लोग की इतनी मनसा थी दर्शन करने की।
1: जी, आपने ना पूरी फहरिस्त सुनाई, इतने 8-10 नेताओं को लेके आप जा रहे थे, तो क्या कोई आप वहां पे कानून व्यवस्था में खलल डालते हैं क्या? क्योंकि सियासत तो आप अगर इतने सारे नेताओं को लेके जाएंगे तो यानी कि मंशा सियासत करने का ही है ना राम मंदिर मुद्दे।
2: नहीं, देखिए सियासत की दर्शन आप देखेंगे मेरे कार्यक्रम जो मैंने जारी किया मौसमी जी, उसमें सीधे है कि मैं भगवान के हम लोग दर्शन करेंगे, मैं और मेरे साथ पूरा डेलीगेशन दर्शन करेगा, कोई सियासत की बात नहीं थी। सियासत तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग को गिरफ्तार करके रोका रहे, आपके पास तो पूरी व्यवस्था है, पूरी फोर्स लगा के ले आके दर्शन कराइए ना, कौन मना कर, जितनी फोर्स हमारे अभी गेस्ट हाउस से बाहर लगा रखा है, चारों तरफ पूरा बंद कर रखा है, हमारे लोगों को नहीं मिलने दे रहे हैं, अभी तक हम लोगों को चाय नाश्ता तक नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया जा रहा है, बैठाया गया। और समझ सकते हैं कि ये सियासत की नहीं थी, केवल दर्शन की भावना थी। हाँ, भगवान से जरूर प्रार्थना करते कि भगवान राम इनको सद्बुद्धि दें और ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जो जमीन के घोटाले हैं, और भाजपा के लोग जो इसमें बड़े बड़े, नृपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन इस कम पूरे के पूरे इस राम ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं, आप मोदी जी के साथ इन्होंने 5 साल 3 महीने उनके सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे, वो उसमें शामिल है, चंपत राय जो सबसे बड़े वहां पर महासचिव है वो चंपत कर गए सारा चढ़ावा का माल, अनिल मिश्रा एक है वो है उसमें शामिल है, एक वहां गोविंद गिरी है जो कोषाध्यक्ष है वो भी शामिल है। तो ये भगवान से चल के हम लोग प्रार्थना करते कि सबको सद्बुद्धि दे और मोदी जी और क्योंकि केंद्र के द्वारा ही सब लोग नामित हैं तो उनको निश्चित तौर से उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए।
0: इस बीच अजय राय की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की जान को इस सरकार से खतरा है।
3: पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या होटल में रुके थे, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है।
0: और आइए सुनते हैं कि इस पर पूरी राजनीति क्या हो रही है।
4: ऐसा कुछ नहीं, इसके पहले क्यों नहीं गए, सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं।
5: ऐसा कि भी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर पर जो भी हुआ है किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की, जांच भी हुई और जो दोषी थे पकड़े जा रहे हैं और पूछताछ के बाद जो भी होगा वो सही सच जनता के सामने आएगा। लेकिन ये जो घटना हुई है इससे बहुत लोग मर्माहत है, आहत हैं। SIT गठित हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, SIT पर भरोसा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा।
0: और आइए अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक का। अभिषेक, अब जो कांग्रेस का प्लान था कि नेता जाएंगे दर्शन करेंगे, उसका क्या होगा, कुछ पता चल पा रहा है?
6: देखिए अंजलि, अजय राय लगातार कह रहे हैं नजरबंद होने के बावजूद कि वो हर हाल में दर्शन करेंगे, यानी कि अब ये मुद्दा और वो दर्शन को बना रहे हैं कि वो दर्शन करने आए थे और उन्हें रोका गया है। निश्चित तौर पर देर रात को ही पुलिस ने उनको उनके होटल में ही रोक लिया था, नजरबंद कर लिया था। पत्नी ने आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन पहुंच रहा था, खास करके तमाम जो सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, MLC हैं, ऐसे लोग हैं। तो सियासत तो इसमें अपने चरम पर है। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अयोध्या एक ऐसा मुद्दा है जो कि आने वाले चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा साबित होगा। तो अजय राय, जो कि सड़क पर लड़ने के जुझारू नेता हैं, उन्होंने पूरा एक पूरा डेलीगेशन के साथ पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने फिलहाल रोक दिया है। सरकार को लगता है कि इस वक्त जांच चल रही है और किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स वहां पर कहीं ना कहीं माहौल खराब कर सकता
0: जी,
6: है,
0: बिल्कुल
6: तो ये वजह है। लेकिन अभी उनका कहना है कि जब छूटेंगे तब वो जा करके दर्शन करेंगे।
0: जी कुमार अभिषेक, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी राजनीति के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर हमला कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की नजर नेशन पर नहीं डोनेशन पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अखिलेश ने यह भी कह दिया कि भविष्य में बीजेपी को न दान मिलेगा, न चंदा और न वोट।
7: चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई, ये किस पर है आरोप? भाजपाइयों, ये आस्था और श्रद्धा का सवाल है। हमारे सभी सनातनियों का आस्था, भरोसे पर और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया और प्रभु श्री राम ने सच्ची छोरी खोल दी। अभी तो जांच चल रही है, अभी तो जनता के अदालत में जांच चल रही है, आपके कैमरों के सामने जांच चल रही है। अभी तो भगवान ने सच्ची चोरी की पोल खोली है, अभी प्रभु श्री राम और भी पोल खोल देंगे, कौन कौन लोग शामिल है।
0: तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जारी जांच और तेज होती सियासत के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसे गोली मार दी गई होती।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको, मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे? अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना इस सब तमाशे हो रहे हैं।
0: तो इस वक्त आपको बता दें कि देश के बड़े अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आज एक खास बैठक होने वाली है। विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरकार के शीर्ष नौकरशाहों के साथ बड़े मंथन की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे सभी केंद्रीय सचिवों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर रहेगा, साथ ही नौकरशाही की प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बैठक में ईज ऑफ लिविंग यानी कि जीवन को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को आसान बनाने के प्लान पर चर्चा होगी। इसके अलावा गैर वित्तीय नियामक सुधारों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर भी चर्चा होगी। ये बैठक केंद्रीय कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच हो रही है, इसलिए काफी अहम मानी जा रही है।

0: आपको बता दें कि बड़ी बैठक है ये, जिस पर कई मुद्दों पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मोदी विदेश से लौटते ही ये बैठक कर रहे हैं। आपको बता, राज्यों में चुनाव भी आने उससे पहले सरकार के कार्यकाल को देखते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे लंबे कार्यकाल दुनिया का जो प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा किया है, उसके बाद ये प्रशासनिक सुधारों और आर्थिक सुधारों को लेकर होगी चर्चा। अहम मुद्दे, जो जो गोल्स रहे हैं, एजेंडे रहे हैं मोदी सरकार के, चाहे वो विकसित भारत रहा हो, मेड इन इंडिया रहा हो, इन सब को लेकर, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत रहा हो, इन सब को लेकर केंद्रीय सचिवों के साथ ये बैठक होगी। यानी कि जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, जो सबसे उच्च पदों पर हैं, उनके साथ ये बैठक होने वाली है। 4:30 बजे शाम को ये बैठक है। अब इसका एजेंडा तय है और प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे से लौटते ही इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक और बैठक की चर्चा लगातार होती रही है और वो है मंत्रिमंडल में फेरबदल की, लेकिन ये बैठक सचिवों के साथ, नौकरशाहों के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम सेशल्स के दौरे से लौट आए हैं। अब सबकी नजर इस खबर पर लगी है कि मोदी 3.0 यानी कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। आज तक के पास खबर है कि सब कुछ तय हो चुका है, कौन मंत्री बनेगा, किसका पत्ता कटेगा, किसका प्रमोशन होगा, किसका केवल विभाग बदलकर फिर से मौका मिलेगा, किस फॉर्मूले से सीट पक्की होगी, किस पैटर्न से कुर्सी खिसकेगी, ये सब कुछ तय हो चुका है।
1: नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किसकी सीट पक्की है, किसकी कुर्सी जाएगी, कितने नए चेहरों का प्रवेश होगा, कितने पुराने चेहरों की विदाई होगी, किस किस मंत्री का विभाग अब की बदला जा सकता है, पिछड़ों और महिलाओं को क्या बंपर सीट मंत्रिमंडल में मिलेगी, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख क्या है, चुनावी राज्य वाला एंगल मंत्रिमंडल विस्तार में कितना दिखेगा। खूब पतंग नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल के चेहरों तक पर उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग सियासी गलियारों में सब सूत्रों की पतंग उड़ा रहे हैं। पहला सवाल, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या तारीख आ चुकी है। 3 दिन का दौरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स से लौटे। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर तेज हो गई है। 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 1 जुलाई से 3 जुलाई जापान की पीएम का भारत दौरा रहना है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा है। 5 जुलाई का दिन जरूर खाली है। 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर पीएम मोदी निकल जाएंगे। 11 जुलाई तक वो दौरे पर रहेंगे।
2: 11 जुलाई को विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं, या फिर 5 जुलाई को जो एक विंडो खाली है उसमें कैबिनेट विस्तार को अमली जामा पहनाया जा सकता है। इतना जरूर है कि अब जल्द से जल्द मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा।
1: अब सवाल नंबर 2 आता है, क्या मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जबकि सदन में मंत्रियों को कई सवालों के जवाब तैयारी करके देने होते हैं।
2: संसद का सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में क्या कैबिनेट में विस्तार हो सकता है? जी हां, हो सकता है। इससे पहले 2021 में 7 जुलाई को कैबिनेट में विस्तार हुआ था और 14 जुलाई से संसद का सत्र था। तब रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नेताओं को कैबिनेट से हटाया गया था। यह पहले भी हुआ है और अब भी हो सकता है।
1: सवाल नंबर 3, कितने नए मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने मंत्री हटाए जाएंगे, कितने मंत्रियों की पोस्ट खाली हो रही। जैसे पंकज चौधरी अभी वित्त राज्य मंत्री, अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद के चलते इनकी मंत्री पद वाली सीट खाली हो सकती है। ताकि पूरा फोकस 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में संगठन पर रख सके। रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री हैं। 21 जून को इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्यसभा की नई सीटों के चुनाव में इन्हें जगह नहीं मिली। पंजाब चुनाव में पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू पूरा ध्यान लगा सके, इसलिए हो सकता है कि इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली रहेगी। हर्ष मल्होत्रा सहकारिता राज्य मंत्री रहे। मई महीने में इन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। एक व्यक्ति एक पद की नीति के चलते इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली हो सकती है। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। 23 जून को ये इस्तीफा दे चुके हैं।
2: पंकज चौधरी, हर्ष मल्होत्रा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में भी मंत्री बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले जी किशन रेड्डी, विजय सापला, सर्वानंद सोनेवाल प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे, क्योंकि उन राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। क्या इसी फार्मूले के तहत पंकज चौधरी भी मंत्री बने रहेंगे या फिर एक व्यक्ति एक पद वाला फार्मूला ही चलेगा? कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, मोदी 3.0 में काफी हलचल हो रही है। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की बात और दूसरी तरफ आज शाम की मीटिंग जो नौकरशाहों के साथ होने वाली है, क्या क्या एजेंडा है बताइए।
3: देखिए, जो सभी विभागों के सचिवों के साथ मुलाकात है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग पे और उनके साथ साथ जो है आर्थिक सुधार को लेकर एक बड़ी चर्चा जो है वो होगी सभी सचिवों के साथ। और सबसे बड़ी इसमें अगर देखा जाए तो बात यह है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों की 2 साल की रिपोर्ट मंगाई थी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी अचीवमेंट क्या है, उनकी जो अचीवमेंट उन्होंने टारगेट किए थे जो नहीं अचीव कर पाए उसके कारण क्या है, किन स्कीम्स को नई लेकर आए हैं, किन स्कीम को धरातल पे कितनी नीचे तक उतारा गया, ये तमाम चीजों को लेकर जो है एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और उसमें भी जो है आर्थिक सुधारों से लेकर तमाम जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग को लेकर चर्चा हुई थी। और प्रधानमंत्री ने बताया था कि किस तरीके से पश्चिमी एशिया के हालात हैं और उससे भारत जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और सभी मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं, ये एक तरीके से जो चुनौती है उसको भारत पार पा रहा है। तो वो उस वक्त था, इस वक्त क्योंकि सचिवों के साथ बैठक और सचिवों की बैठक के अंदर परफॉर्मेंस रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर चर्चा होगी। और
0: बिल्कुल, और हम भी नजर रखेंगे इस पूरी बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। तो 12 साल में मोदी मंत्रिमंडल में 4 बड़े बदलाव देखे गए हैं। नवंबर 2014 जब 4 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 14 राज्य मंत्री के साथ कुल 21 नए मंत्री जुड़ने से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 45 से बढ़कर 66 हो गई थी। पहले कार्यकाल में दूसरा विस्तार जुलाई 2016 में पीएम ने किया जब 19 नए चेहरे शामिल किए गए और 5 मंत्रियों को हटा दिया गया। सितंबर 2017 में पहले कार्यकाल के दौरान तीसरा विस्तार हुआ, 6 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए, 9 नए राज्य मंत्री जोड़े गए, 4 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ। जुलाई 2021 में दूसरे कार्यकाल का पहला और अब तक का चौथा विस्तार मोदी मंत्रिमंडल में हुआ जो अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल रहा। अब 36 नए चेहरे शामिल हुए थे, उस वक्त 12 सीनियर मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए थे, 7 तत्कालीन राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। क्या अब रिफॉर्म और परफॉर्म की बात पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल विस्तार में रिफॉर्म करके परफॉर्म वाले पैमाने पर ध्यान देंगे? और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल के हल्दिया रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। नाफ्था ले जाने वाली एक पाइपलाइन में अचानक भीषण आग लग गई है जिसकी चपेट में खबर आ रही है कि 15 लोग घायल हुए हैं उसकी चपेट में आने से। बड़ा हादसा ये है जो भीषण आग लगी है। नाफ्था ले जाने वाली जो पाइपलाइन होती है जो कि एक अहम कॉम्पोनेंट होता है रिफाइनरी में, उसमें आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बंगाल के हल्दिया से आ रही है भीषण आग की तस्वीर। कोशिश यही है कि उसको बुझाया जाए। तस्वीरों में आप बुझाने की जो वहां पर प्रक्रिया चल रही है, प्रयास हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। रिफाइनरी में यह हादसा कब हुआ, क्या उस वक्त वहां पर मजदूर मौजूद थे, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा। अनुपम, इस हादसे के बारे में हम क्या जानते हैं?
4: जी देखिए, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे के आसपास ये हादसा बताया जा रहा है, जब जो पाइपलाइन होती है नफ्ता ले जाती है, उस पाइपलाइन में अचानक से विस्फोट हुआ और उसके बाद जो हल्दिया पेट्रोकेमिकल के बाहर की जो जगह है, जो झोपड़ी वगैरह हैं, जो घर हैं, वो उनमें आग लग गई। काफ़ी सारे घर जल गए और लगभग 15 लोग झुलस गए, जिनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। कुछ की हालत संगीन भी बताई जा रही है। और ये जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहाँ करीब से ही एक रेल लाइन भी गुजरती है, तो रेल लाइन के जो पटरी होती है उस पर भी कहा जा रहा है कि हल्का सा नुकसान हुआ है। ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही है, उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ा था सुबह के वक्त में। अब एक शुरुआत में तो जितने लोग झुलसे उनको अस्पताल ले जाया गया, आग पर काबू पाया गया। लगभग 12 फायर टेंडर्स लगे इस आग पर काबू पाने में, कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। और अब ये जानने की कोशिश की जा रही कि आगे आखिरकार ये आग कैसे लगी और ये विस्फोट कैसे हुआ, क्या कोई लीकेज हुआ था या क्या हुआ था, ये एक जांच का विषय है जो फिलहाल जांच होगी।
0: जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि आग भीषण थी। जांच इस पर हो रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजह रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि आसपास की जो रिहाइश थी, जो बस्ती थी, उस पर असर पड़ा। क्या ये रिफाइनरी की जो पाइपलाइन है ये घने बस्ती वाले इलाके से होकर गुजर रही थी? रिफाइनरी कितनी दूर थी, किस तरह की गलती या किस तरह के हादसे की आशंका हो सकती है, क्या लीकेज रहा होगा, क्या वहां पर मेंटेनेंस का काम लगातार होता है, ये सब पहलू क्या देखे जा रहे हैं?
4: जी देखिए, सभी पहलू, सभी एंगल्स देखे जा रहे हैं कि आखिर ये आग, ये विस्फोट कैसे हुआ। क्योंकि ये जो पाइपलाइन गुजरती है हल्दिया पेट्रोकेमिकल के ठीक बाहर में रिहायशी इलाका है जहां पर आग लगी। जब विस्फोट हुआ उसके बाद ये काफ़ी फ्लेमेबल गैस होती है नाफ्ता, उसके चलते यहां पर आग लग गई, कई सारे घर झुलस जल गए और लगभग 15 लोग झुलस गए, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक पास में एक पटरी भी जा रही है, वहां भी नुकसान पहुंचा। अभी जांच शुरू की गई है, जांच में पता चलेगा कि आखिर इस आग लगने की वजह क्या थी।
0: जी शुक्रिया आपका अनुपम। तो पाइपलाइन में लगी आग जिसकी वजह से 15 लोग झुलसे। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट।
7: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
8: England takes on Democratic Republic of the Congo in Atlanta, and the USA battles Bosnia and Herzegovina in Santa Clara. Both England and the USA are huge favorites. England is -1,000 to qualify for the next round, and USA is -630.
7: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
8: हमने तब भी सवाल किया था।
9: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
8: हम आज भी सवाल करते हैं।
9: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
8: ऑपरेशन अग्नि,
9: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
8: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
10: In association with
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

दावत चोरी की जांच में 6-7 बैंकों तक आज। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड तलब। दान पात्र खोलने से लेकर गिनती तक लापरवाही के सबूत। अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय नजरबंद। आज तक से कहा रात में जबरन गेस्ट हाउस में रखा, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। केजरीवाल आए तो हमसे क्या दिक्कत। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, कई घर जलकर खाक, 15 लोग जख्मी। नेफ्था पाइपलाइन लीक होने से हुआ हादसा। दिल्ली में आज से SIR की शुरुआत। 13,000 से ज्यादा BLO घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन। 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब बैंकों तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा कदम उठाया है और SBI सहित 7 बैंकों को नोटिस जारी कर लेन देन की डिटेल्स मांगी हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं होने की बात कही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच से जुड़ी बड़ी खबर। SIT जांच में अब बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए MOU का पालन जांच के दायरे में आ गया है। राम मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के बीच विस्तृत कार्य प्रणाली तय की गई थी। सूत्रों के मुताबिक SIT जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि MOU के कई प्रावधानों का नियमित रूप से पालन नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2025 में ट्रस्ट और SBI के बीच हुए MOU में दान पात्र खोलने और गिनती कक्ष के संचालन के लिए ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। गणना में लगे कर्मियों के लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया था, लेकिन इन व्यवस्थाओं का हर स्तर पर प्रभावी अनुपालन नहीं हो सका। समझौते में बैंक अधिकारियों के मासिक रोटेशन का भी प्रावधान था, जबकि कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में कार्यरत रहे।
1: एक न्यूज आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या में जो घपला चल रहा था, 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युद्ध खत्म भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का कम भी हो जाए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए।
0: इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिली है कि SBI ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट के सदस्य किसी भी बदलाव से तैयार नहीं हुए थे। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ट्रस्ट के सदस्यों ने कैश काउंटिंग स्टाफ को

0: गया था टेंपल ट्रस्ट को कि कुछ ना कुछ अनियमितता हो रही है चढ़ावे को लेकर। उन्होंने ये भी एडवाइस किया था कि जो एम्प्लॉयज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उनका बदलाव किया जाए, लेकिन उस वक्त ट्रस्ट ने बैंक की नहीं सुनी और उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हालांकि पुलिस ने यह भी पूछा कि आपने फिर आगे बात क्यों नहीं बढ़ाई, तो बैंक सूत्रों ने बताया है कि जवाब में ये कहा गया है कि टेंपल ट्रस्ट की तरफ से प्रेशराइज भी किया गया कि आपको बहुत कुछ इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से टेंपल ट्रस्ट ने जो है मना कर दिया था? आप लोग बैंक से ही हैं?
1: हाँ,
0: क्या पुलिस यहाँ पहुंची थी?
1: नहीं, हम इधर खुद नए आ जाए।
0: आप नए हैं? कल आप थे यहाँ पर?
1: नहीं, कल
0: आप नहीं थे यहाँ पर। देखिए, एक बैंक कर्मी एक कर यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं, पुलिस की टीम यहाँ पहुंचती है और जांच प्रक्रिया आगे आ गई। अब सवाल सबसे बड़ा तो यही उठता है कि अगर बैंक ने अलर्ट किया था तो टेंपल ट्रस्ट ने कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? क्या टेंपल ट्रस्ट को मालूम था कि अंदर चढ़ावे चोरी में क्या हो रहा है, चढ़ावे के नाम पर चोरी हो रही है? ये सारी चीजें एक बड़ी बड़ी घटना के रूप में सामने आई हैं और एसबीआई की शाखा
2: जी समर्थ बड़ी पूछ जी समर्थ बिल्कुल और नजर रहेगी लगातार हमारी इस जांच पर। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से सोमवार को 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णय, चढ़ावे का प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। उनके बयान का मिलान अन्य गवाहों और उपलब्ध दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ में चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा कि उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए थे, संदिग्धों को पकड़ा, FIR भी कराई। उन्होंने स्वीकार किया कि कोई हेरफेर न हो इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिनू यादव बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, उसने गलत किया इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। क्या चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों के बाद अब चंपत राय पर शिकंजा कसने का नंबर है? चंपत राय से जांच टीम ने लंबी पूछताछ की है। चंपत राय का चढ़ावा चोरी के सवालों से सामना हुआ। जांच टीम ने गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों को लेकर चंपत राय से कई सवाल पूछे। कई घंटों चली इस पूछताछ के दौरान चंपत राय ने खुद को बेकसूर बताया, अपना बयान दर्ज करवाया, लेकिन चंपत राय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि 4 जून को चढ़ावा चोरी का पता चलने के बाद उन्होंने पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश आखिर क्यों की।
3: चढ़ावा चोरों का गॉडफादर आखिर कौन है? पूछताछ में चंपत राय ने पुलिस को क्या बताया? चढ़ावा चोरों के व्हाट्सएप चैट में किसका नाम? चढ़ावा चोरों का मोबाइल बोलेगा, राज खोलेगा? चंपत राय ने चढ़ावा चोरी पर पर्दा क्यों डाला?
4: ये कार्य कई दिनों तक चलता है, यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
3: सीसीटीवी फुटेज की गवाही से फंस गए चंपत राय। आज चढ़ावा चोर अंदर, अब चंपत राय का नंबर। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों ने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड का एक सिरा सीधे चंपत राय से जोड़ दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज यही गवाही दे रही है कि चढ़ावा चोरी का खुलासा होने से पहले चंपत राय को पता था कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी ही चढ़ावे की रकम को चुरा रहे थे। यहां तक कि चंपत राय के कहने पर बिना किसी आधिकारिक शिकायत के पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर 5 जून को पहुंची थी। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के घर से लाखों का कैश भी बरामद किया था। मतलब चंपत राय चढ़ावा चोरी कांड से बेखबर नहीं थे, लेकिन चोरी के खेल पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। यही वजह है जब चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो उन्होंने गिरफ्तारी से ठीक पहले अपने व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर दिया। सभी आरोपियों ने अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया। तो क्या व्हाट्सएप चैट को डिलीट करने के पीछे मकसद है अपने गॉडफादर को बचाना?
5: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो जेल भेजे गए आरोपियों ने मुकदमा दर्ज होने के बाद और जेल जाने से पहले अपने फोन की चैट्स डिलीट कर दी थी। जिसके बाद अब पुलिस इन सभी आरोपियों के

0: फोन फॉरेंसिक लैब भेजेगी ताकि डिलीट किया गया डेटा और चैट्स को रिकवर किया जा सके। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन चैट्स का सीधा संबंध ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के साथ था, या फिर उनको बचाने के लिए और सबूत मिटाने के उद्देश्य से इन चैट्स को डिलीट किया गया। अब इन सभी सवालों का जवाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा।
1: भले ही चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसे में 8 आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद आज जांच टीम ने चंपत राय से लंबी पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंपत राय से बंद कमरे में कई घंटे तक पूछताछ हुई। चढ़ावे की गिनती, दान की प्रक्रिया और आरोपियों से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, आपको चढ़ावे में चोरी के बारे में कब और कैसे पता चला? सवाल नंबर 2, टिन्नू यादव को आपने मंदिर ट्रस्ट में अहम जिम्मेदारी क्यों दी? सवाल नंबर 3, चढ़ावे की गिनती के लिए बनी गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 4, चढ़ावे की गिनती में कर्मचारियों की नियुक्तियां सिफारिश पर क्यों हुई? सवाल नंबर 5, 8 आरोपियों को आप कब से और कैसे जानते हैं? दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है, जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है। मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है, लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
2: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
1: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी, तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को SIT क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में FIR क्यों दर्ज हुई, जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है।
0: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि CCTV में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की। आपको बता दूं कि 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। CCTV में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना FIR फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
1: सवाल सिर्फ चंपत राय की भूमिका पर नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर भी हैं, क्योंकि चंपत और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होने के बाद भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब ये है कि ये इंतजार क्यों? दरअसल चढ़ावा चोरी में चौतरफा भद पिटने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ट्रस्ट का कहना है कि इस्तीफे पर फैसला 5 जुलाई को होने वाली बैठक में होगा। सवाल ये है कि इतने गंभीर मामले में कार्रवाई के लिए बैठक का इंतजार क्यों? क्या इसके पीछे मामले को शांत करने की मंशा है, ताकि कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ जाए और फिर उस हिसाब से निर्णय लिया जाए।
3: और रुक करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त एक बड़ी खबर का। पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का खेल बेनकाब हुआ है। लाखों रुपए में 45 छात्रों को नकल से पास करवाने की प्लानिंग थी। हाई प्रोफाइल नकल गैंग का पर्दाफाश करते हुए मामा भांजे और चाचा भतीजे की दो अलग अलग गैंगों को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में दो कॉलेजों के संचालक, एचओडी और लेक्चरर तक शामिल पाए गए हैं।
4: चार लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिन छात्रों का इसमें नाम आया था, क्योंकि नाम कच्ची पर्ची पर लिखा हुआ है, उसकी अभी तक तहकीकात चल रही है, उसमें अनुसंधान चल रहा है। कुल पूरे मामले में अभी तक छात्रों से करीब 3 लाख रुपए इनके पास आना प्राप्त हुआ है, और जिन छात्रों के नाम आए उनके बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। इस पूरे परीक्षा में, क्योंकि आज कल और परसों ये परीक्षा चली है, तो संबंधित विभाग को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया था, और उनके द्वारा भी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स लगाने की बात सामने आई है। तो इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की कार्रवाई चल रही है, और जैसे ही कुछ आगे सामने चीजें आती है हम आपके साथ साझा करेंगे।
3: और रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार का, जो जयपुर में ही मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब कॉलेज के संचालक और लेक्चरर तक शामिल थे, तो भंडाफोड़ कैसे हुआ इस गैंग का?
5: देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर मास लेवल पर पेपर आउट करके चीटिंग कराया जाना है। ये वो छात्र हैं, पहले समझिए, पैरामेडिकल की परीक्षा थी प्रथम वर्ष की, द्वितीय वर्ष की, तृतीय वर्ष की। जो छात्र पास होने लायक नहीं थे, बार बार फेल होते थे, उन्हें ये 5.5 लाख रुपए में ठेका लिए थे पास कराने का, और कलवा रोड पर प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज में यहाँ पर सेंटर डाले थे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ का एक प्रिंसिपल भी शामिल था, और बहुत सारे इसमें लोग शामिल थे जिनके डायरियां बरामद हुई है। वो इन छात्रों को यहां पर लेकर आए थे और मास लेवल पर चीटिंग कराया जाना था। जैसे ही पुलिस घुसी वहां पर भगदड़ मच गई। आप देखिएगा किस तरह से लड़के और लड़कियां जो एप्रन भी पहने हुए हैं, खिड़कियां कूद कूद कर भाग रहे हैं। वहां पर बहुत सारे लोगों को भी अरेस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद वहां पर जो बच्चे थे कॉलेज के, या फिर जिन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने खूब वहां पर तोड़फोड़ की भी है। एक टेंट में यहां पर बैठाकर और टेंट में ही मास चीटिंग कराई जा रही थी। एक तरह से कहिए तो वहां पर सारे सिस्टम को इन्होंने हाइक कर लिया था। जो परीक्षा वीक्षक होते हैं उन्हें भी अपने लेवल पे लगाने की तैयारी थी पैरामेडिकल काउंसिल से जुगाड़ करके। ये दृश्य राजस्थान में बिल्कुल विहंगम सा दृश्य है, किस तरह से यहाँ पर जो अस्पताल में आप इलाज कराने जाइएगा तो डॉक्टर के अलावा यही मिलते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, जो पढ़ नहीं सकते, पास नहीं हो सकते, उन्हें किस लेवल पर यहाँ पर पास कराया जा रहा है। वो इस दृश्य को देखिए और समझिए कि इस देश में परीक्षाओं के नाम पर चल क्या रहा है। अच्छी बात है कि पुलिस को पहले से पता चल गया था, सारी पुलिस वहां पर तैनात थी, और जैसे ही परीक्षा शुरू होनी थी वहां पर पहुंच गए।
3: बिल्कुल, तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई रही है। शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
9: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
10: I have no idea how this election is going to play out,
9: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM, commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कर गिनती तक लापरवाही के सबूत।
1: अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय नजरबंद, आज तक से कहा रात में जबरन गेस्ट हाउस में रखा गया, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। केजरीवाल आए तो फिर हमसे क्या दिक्कत है।
0: कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही प्रक्रिया में बदलाव के संकेत।
1: हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, कई घर जलकर खाक, 15 लोग जख्मी, नेपता पाइपलाइन लीक होने से हादसा हुआ।
0: दिल्ली में आज से एसआर की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा पाल।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जांच से 7 बैंकों के 5 साल के खातों का पूरा रिकॉर्ड तलब, वित्तीय ट्रेल खंगाल रही है पुलिस। आरोपी और ट्रस्ट के बैंक खातों की गहन जांच भी जारी, पुलिस ने ट्रांजैक्शन केवाईसी कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड जुटाए। अयोध्या में दान फंड की फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हुई, संदिग्ध लेन देन और बैंकिंग गतिविधियों की पूरी पड़ताल। अयोध्या एसबीआई मामले पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले कि 3 महीने पहले हटाने की सिफारिश हुई थी, बचा कौन रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज, कहा कि जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई की गई, एफआईआर भी दर्ज करवाई। पूछताछ में चंपत राय ने खुद को निर्दोष बताया, बोले कि ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर होती थी पूरी नियुक्ति प्रक्रिया। आज अयोध्या जाकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अजय राय के नेतृत्व में रामलला के दर्शनों का कार्यक्रम है, 9 सांसद जाएंगे। कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय नजरबंद। अयोध्या चंदा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जांच भी तेज। ट्रस्टी कृष्ण मोहन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज, नए सुरागों पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी।
0: राम मंदिर चढ़ावा विवाद का दान पर नहीं पड़ा असर, गर्मी की छुट्टियों में बढ़े श्रद्धालु, चढ़ावा हुआ दोगुना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जारी राजनीति के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की नजर नेशन पर नहीं डोनेशन पर, उनका कहना है कि बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म नाम की चीज नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भविष्य बीजेपी को ना दान मिलेगा, ना चंदा, ना वोट मिलेगा। सबरीमला सोना चोरी केस बड़ा खुलासा, एसआईटी जांच में पूर्व देव सोम प्रमुख समेत कई अधिकारियों की भूमिका के संकेत। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला यूपी दौरा, 3 और 4 जुलाई को लखनऊ में करेंगे संगठन की समीक्षा। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी के साथ पहली समीक्षा। मुरादाबाद में योगी की मैराथन समीक्षा बैठक, लापरवाही के सख्त पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, सड़क खराब करने वाले ठेकेदारों पर एफआईआर के आदेश। सीएम योगी का सख्त संदेश, बिजली चोरी, गो तस्करी, लापरवाह ठेकेदारों पर हो कार्रवाई, हर घर जल और सोलर योजना की समीक्षा। रामपुर में आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट, जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा, बिना स्वीकृत नक्शे पर बने 38 भवनों पर नोटिस।
1: पांच जुलाई को आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस, सभी जिला मुख्यालयों पर होगा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव 5 जुलाई को पटना में नहीं रहेंगे, इसीलिए 1 जुलाई को स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होगा। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, 3 जुलाई को तेहरान रवाना, पीएमओ ने भेजा आधिकारिक निमंत्रण। भारत एनकाउंटर मामले में बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा बोले कि एनकाउंटर नहीं, पूरी तरह गलत कार्रवाई, सीआईडी जांच की मांग। टीडीपी पर लीक केस में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। पुणे के दिन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई। पुणे पुलिस ने कहा कि सिया और चेतन के फोन की डेटा डिलीट किया गया, उसे रिकवरी के लिए फॉरेंसिक जांच करनी आवश्यक है। केतन के गायब पासपोर्ट पर सिया से भी सवाल चला। केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के भाई ने एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए, जेल जो है उनको कानूनी नोटिस भेजा गया है। श्रेया गोयल के भाई का दावा है कि आशुतोष श्रीवास्तव हमारे वकील ही नहीं है, धोखे से हस्ताक्षर और धमकी देने का भी आरोप है।
0: आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, कई अहम सुधारों पर चर्चा। प्रधानमंत्री की सेशेल्स की 3 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा खत्म, सेशेल्स दौरे को बताया सार्थक, बोले दोनों देशों के लिए अगले 50 साल नवाचार और साझा समृद्धि के होंगे। राष्ट्रपति आज से आंध्र प्रदेश दौरे पर, दो विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। संसद समिति नीट यूजी री एग्जाम और एनडीए सुधारों की समीक्षा करेंगी, 1 जुलाई को अहम बैठक। शिक्षा में AI के प्रभाव पर चर्चा, विशेषज्ञ और संस्थाएं समिति के सामने रखेंगे सुझाव। सुल्तानपुर में राहुल गांधी मानहानि मामले में आज स्पेशल रिविजनल कोर्ट में सुनवाई, सीडी वॉइस मिलान और फोरेंसिक जांच की मांग पर दोनों पक्षों में बहस। कर्नाटक में भाषा नीति को लेकर नया विवाद, राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने CBSE की कक्षा के लिए कन्नड़ को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के निर्देश को वापस लेने की मांग की है। मधु बंगारप्पा ने कहा है राज्य में कन्नड़ पहले से ही पहली और दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य है, इसलिए तीसरी भाषा के तौर पर इसे लागू करने की जरूरत नहीं है। पैगम्बर मोहम्मद पर नाजिया इलाही ने दी आपत्तिजनक टिप्पणी, विरोध में अटल समाज सेवा कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का शुभारंभ, 2 दिन चलेगा सांस्कृतिक महोत्सव।
1: बेंगलुरु तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 मछुआरों की जान बचाई गई। समुद्र में डूबती नाव से सुरक्षित निकाले गए सभी 6 क्रू मेंबर्स, सचेत जहाज ने तत्परता दिखाई। खराब मौसम में भी कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी और रात भर चले ऑपरेशन में सफल बचाव कार्य हुआ। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचल दिया, मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर पिघलने से नाले में अचानक आ गई बाढ़, सड़क टूटकर लगभग 50 से ज्यादा पर्यटक वहां फंस गए। MP के खरगोन में झमाझम बारिश के चलते मोहनी नदी उफान पर, कई बस्तियों और खेतों में बाढ़ का पानी भरा। खरगोन में पहली बारिश के चलते लोगों की मुसीबत है, कई जिलों में झमाझम बारिश, किसानों को राहत। जालना में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, पानी के चलते जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं ग्रामीण। नोएडा के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश, सेक्टर 16 से तस्वीरें आई सामने।
0: मुंबई में जमकर हो रही बारिश, कई इलाके जलमग्न, यातायात प्रभावित। मुंबई आने वाले हफ्ते में भारी बारिश की वहां चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पालघर में रेड अलर्ट। नवी मुंबई में भी जोरदार बारिश, APMC मार्केट में जमा हुआ कई फीट पानी, बड़ी परेशानी। देहरादून में पार्किंग बनी रणभूमि, मामले का सुनने के बाद कार के पीछे ले जाकर युवक पर धारदार हथियार से हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, सिर पर और कान पर गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। घटना की CCTV तस्वीरें आई सामने, पुलिस ने नामजद आरोपियों समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की नेफ्था पाइपलाइन में धमाके के बाद आग, कई घर जले, 15 घायल, 2 की हालत गंभीर। आसमान छूती नजर आई लपटे आग से रेलवे ट्रैक प्रभावित, ट्रेन सेवाएं बाधित, जांच शुरू।
1: उधम सिंह नगर में कार में अचानक लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, कोई जनहानि नहीं हुई। बेंगलुरु में 2 महीने में एक ही जगह पर हुए कई हादसे, हादसों का CCTV फुटेज भी सामने आया। सहारनपुर में यमुना नदी में नहाने के लिए गया एक युवक डूबते हुए उसकी जान बचा ली गई। सीतामढ़ी में सिलेंडर फटने से भीषण अग्निकांड, 8 घर जलकर खाक, 2 लोगों की हालत नाजुक है। कौशाम्बी में पतंग फंस जाने से हाई टेंशन टावर पर चढ़ा किशोर, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने सकुशल उतारा नीचे। अजमेर में गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई, इसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इंदौर में जमीन विवाद के चलते पुलिस पर हमले का मामला है, 4 आरोपी गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत, इलाके में फंसे मातम। नागपुर में इमारत का हिस्सा गिरने से 1 शख्स की मौत, इमारत का मलबा गिरने से गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। प्रतापगढ़ में महिला ने दरोगा पर लगाया शादी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप, आरोपी दरोगा सस्पेंड।
0: करौली में तार टूटने से बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत, बाइक जलकर राख। बिजनौर में ससुर ने बहू के प्रेमी की चाकू मारकर हत्या की, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा। श्रीगंगानगर के होटल में 13 साल की मासूम संगरेप, मामले में आक्रोश, SP और कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का प्रदर्शन, होटल पर बुलडोजर चलाने की मांग। कर्नाटक के बेंगलुरु हाईवे पर बदमाशों ने सराफा कारोबारी से 180 ग्राम सोना लूटा, CCTV में कैद हुई वारदात। जयपुर हाईवे पर CNG से भरे ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी बस में पीछे से मारी टक्कर, 3 की मौत, 6 घायल। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रजिस्ट्रेशन के सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लगी लंबी कतार, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह, जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को जवानों ने परखा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर इलाकों में चलाया गया सर्च अभियान, कई जगहों पर मुस्तैद दिखे जवान।
1: इमरान हाशमी से आरंभ फिल्म हवारा पन 2 का टीजर हुआ जारी, फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी महिला बाइकर्स ने किया स्वागत। जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म का पोस्टर भी जारी। एनटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिव के पुत्र पार्वती के गौरव। वेलकम टू द जंगल का कमाल, 4 दिन में कमा डाले 100 करोड़ से ज्यादा। ईरान के राष्ट्रपति बोले अमेरिका एमओयू का पालन करे तो हम भी अपनी प्रतिबद्धता निभाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति का संदेश, समझौता दो तरफा प्रक्रिया है, अमेरिका के कदम पर निर्भर करेगा आगे का रास्ता। ईरान ने कहा कि फैसलों में तर्क और गरिमा कार्रवाई से बेखौफ रक्षा हमारी नीति है, धमकियों का जवाब हम दृढ़ता से देंगे। ईरान ने साफ किया कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ में कोई भी बैठक तय नहीं है। कतर में दोनों ही प्रतिनिधिमंडल के दौरे अलग अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम साबित हो सकती है, इसके नतीजों का इंतजार कीजिए।

0: उधर महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक मामले में आज तक स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से विजेंद्र गुप्ता की पत्नी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक सुमन के सामने विजेंद्र ने पैसों की लेन देन किया था। सुमन को पेपर लीक के बारे में जानकारी थी और अब विजेंद्र गुप्ता को पकड़ने के लिए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज तक के कैमरे में विजेंद्र गुप्ता पहले भी ये कहते हुए कैद हो चुका है कि पेपर लीक करना तो उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तमाम बातें वो आज तक के कैमरे पर कह चुका है, लेकिन अब जब आज तक ने इस मामले में को प्रमुखता से फिर से उठाया तो विजेंद्र गुप्ता की पत्नी पर कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में विजेंद्र पहले भी कैद हुआ था जिसमें वो इसे एक धंधा बता रहा था, अपना ऐसा लगता कि रोजाना का काम बता रहा था। उसे न परवाह थी सरकार की, न डर था पुलिस का।
0: अब आपको दिखाते हैं कि हमारे स्टिंग में विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा।
2: कई बार जेल जाने का था, जेल करके फिर परसों से यही खेल करेंगे।
3: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
2: एमपीपीएससी। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होगा।
3: किसका नाम?
2: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ में, धरा गया, जेल चल गया।
0: अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, विजेंद्र गुप्ता इस वक्त कहाँ है, कोई क्लू मिल रहा है उसके बारे में या फिर अब पत्नी की निशानदेही पर ही उसका पता लग पाएगा?
4: देखिए, फिलहाल विजेंद्र गुप्ता फरार चल रहा है लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबके बीच एक बड़ा एक्शन महाराष्ट्र पुलिस ने लिया है, जो विजेंद्र गुप्ता की पत्नी है सुमन, उसे गिरफ्तार किया है। और सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि जो ये पूरा पेपर लीक था टीईटी का, उसके बारे में विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता को पूरी जानकारी थी, उसके सामने पैसों का लेन देन हुआ था, इस वजह से सुमन गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ चल रही है। साथ ही चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि दरअसल विजेंद्र गुप्ता कोई कामकाज नहीं करता है, लेकिन दिल्ली में उसके फ्लैट्स हैं, उसके अलावा पटना में एक पॉश इलाके में उसका पूरा कोठी है। तो आखिर इतनी कमाई कैसे हुई, महाराष्ट्र पुलिस को यह शक है कि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का सिंडिकेट है उसके जरिए विजेंद्र गुप्ता ने करोड़ों की कमाई की है। तो एक के बाद एक एक्शन महाराष्ट्र पुलिस का है। और आपको यह भी बता दूं कि टीईटी का जो ये पेपर लीक था इसका खुलासा भी महाराष्ट्र पुलिस ने ही किया था, तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ के बाद विजेंद्र गुप्ता के बारे में जानकारी मिली थी। 2024 में आज तक ने बिहार जाकर विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें विजेंद्र गुप्ता ने कबूला था कि वो 25 साल से इस पेपर लीक के धंधे में है और डंके की चोट पर पेपर लीक कराता है। उसके बाद से ही लगातार जो विजेंद्र गुप्ता है अंडरग्राउंड हो गया था, दावा ये करता था कि उसका अब इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार फिर
1: संपत्तियां उसने स्वाभाविक ऐसे धंधे से बनाए होंगे जो कोई और कामकाज नहीं करता था। आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन सिंह ऑपरेशन के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, अब वो फरार है और अब फिर से सवाल उठ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से देते हैं, जहां पर पैरा मेडिकल परीक्षा में नकल का खेल बेनकाब हुआ है। पैरा मेडिकल परीक्षा में लाखों रुपयों में 45 छात्रों को नकल से पास करवाने की प्लानिंग थी। हाई प्रोफाइल इस नकल गैंग का पर्दाफाश हुआ है। मामा भांजे, चाचा भतीजे की दो अलग अलग गैंग को पकड़ा गया है।
0: और चौंकाने वाली बात इस पूरे मामले में यह है कि इस खेल में दो कॉलेजेस के संचालक, एचओडी और लेक्चरर तक शामिल पाए गए। नकल का मामला सामने आते ही वहां मौजूद अन्य छात्र भड़क गए। नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी, हंगामा, तोड़फोड़ किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित छात्रों ने कुर्सियां फेंक दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से हटाया जा सका। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ये मामला कैसे संज्ञान में आया, कहां से खुला?
5: देखिए, कहीं ना कहीं पैरा मेडिकल काउंसिल के स्टाफ यानी सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज है कालावा रोड में, एक तरह से बड़े ही आउटस्कर्ट में बना हुआ है, वहां पर ये पूरा का पूरा खेल रचा गया। जो पैरा मेडिकल काउंसिल के एग्जाम में फेल हो जाते थे, वैसे 45 फेल हुए बच्चों को जो पास नहीं हो रहे थे, पूरक परीक्षा के नाम पर सेंटर दिया गया। झुंझुनू के गोविंदगढ़ से वहां का संचालक आया और यहां मिलकर ये एक तंबू लगाए थे और तंबू में मास चीटिंग कराने का प्लान था। अपने मर्जी से वीक्षक लगाने का प्लान था। एग्जामिनेशन कंट्रोलर यानी कि पैरामेडिकल काउंसिल के लोग इसमें शामिल थे, और ये पैरामेडिकल स्टाफ वो होता है जो डॉक्टर के अलावा अस्पताल में मरीजों की देखभाल करता है, और ये पास नहीं होने वाले सारे स्टूडेंट थे। 45 छात्रों से 5.5 लाख रुपये प्रति छात्र लिया गया है, और इस कॉलेज की पहले भी शिकायत आई है, मगर राजनीतिक रसूख के बल पर इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इस बार जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहले से ही बाहर तैनात थी, और जैसे ही टेंट में परीक्षा शुरू हुई पुलिस अंदर चली गई और रंगे हाथों इन्हें दबोच लिया। उसके बाद वहां जो छात्र थे वो आप देखेंगे विजुअल में कैसे खिड़कियों से कूद कूद कर बाहर भाग रहे हैं खेतों में, जो परीक्षा पेपर खरीदने के लिए पैसे लिए थे, और इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है, चारों को, और भी लोग इसमें अरेस्ट हो सकते हैं। जी
1: बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं।
6: इन चार लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिन छात्रों का इसमें नाम आया था, क्योंकि नाम कच्ची पर्ची में लिखा हुआ है, उसकी अभी तक तहकीकात चल रही है, उसमें अनुसंधान चल रहा है। कुल पूरे मामले में अभी तक छात्रों से करीब 3 लाख कुछ रुपए इनके पास आना प्राप्त हुआ है, और जिन छात्रों के नाम आए उनके बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। इस पूरे परीक्षा में, क्योंकि आज कल और परसों ये परीक्षा चली थी, तो संबंधित विभाग को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया था, और उनके द्वारा भी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स लगाने की बात सामने आई है। तो इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की कार्रवाई चल रही है, और जैसे ही कुछ आगे सामने चीजें आती हैं आपके साथ साझा करेंगे।
0: और बात यूरोप की, जो इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है। यूरोप में 40 डिग्री का तापमान हो गया है, 1300 से ज्यादा लोगों की वहां जान चली गई है। भारत में सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि तापमान 35 से 40 डिग्री हो गया तो लोगों की जान क्यों जा रही, लेकिन वहां के लोगों को इसकी आदत नहीं, और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अमूमन वहां पर 20 से 22 डिग्री का ही तापमान रहता है, जब अचानक से वहां तापमान दोगुना हो गया तो लोगों की जान तक जाने लगी।
7: देखने में आपको ये तस्वीरें समर वेकेशंस की लग रही होंगी, ठंडी फुहारों में मस्ती करते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, लेकिन ये मस्ती नहीं, मजबूरी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्मी से हालात इतने जानलेवा हो गए हैं कि जिसे पानी में जाने का जहां मौका मिल रहा है वो जा रहा है। समंदर से लेकर नदी और फव्वारे से लेकर तालाब तक लोगों से भरे हुए हैं। दिन हो या रात, गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने वाले वाहन घूम रहे हैं, लोग सड़क किनारे लगे वाटर स्प्रिंकलर से राहत का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश, हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है, और हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूरोप के 20 से ज्यादा देश हीटवेव की चपेट में आ चुके हैं। 38 से 42 डिग्री तापमान से गर्मी जानलेवा हो रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत 12 देशों में रेड अलर्ट जारी हो गया है। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे शरीर गर्म रहने से हार्ट अटैक और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। मृतकों में 80% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बिजली का संकट बढ़ गया है, हजारों घरों में बिजली नहीं है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि एयर कंडीशनर के बिना कई साल गुजार देने वाले लोग दुकान खुलते ही एसी खरीदने के लिए उमड़े जा रहे हैं, और दुकानों में लूटपाट जैसे हालात पैदा हो गए। ये तस्वीर पेरिस की है, जहां एसी के लिए उमड़े लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। फ्रांस में एक बस हादसे का शिकार सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि बस में एसी नहीं था और ड्राइवर बेतहाशा गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। झुलसा देने वाली गर्मी में बिना किसी गैस के इस तरह अंडे फ्राई करने का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अब एक और तस्वीर जर्मनी की दिखाते हैं। ये लिप्ज़िग शहर है, जहां गर्मी की वजह से पटरियों के आसपास की जगह पिघली जा रही है। मजबूरी में प्रशासन को कई इलाकों में ट्राम की आवाजाही पर ही रोक लगा देनी पड़ी है। ये ईस्ट यूरोप का एक और देश है लिथुआनिया, जहां रविवार को भयंकर हीटवेव का कहर आया, दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यहां तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने पिछले साल जून का रिकॉर्ड तोड़ा है। यूरोप गर्मी के लिए बना ही नहीं है, इसलिए सरकारों को भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। ये यूरोप के प्राग शहर की तस्वीरें हैं, जहां तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि चेक रिपब्लिक में गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गई है। लोगों के ऊपर ऐसे ही पानी का स्प्रे किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के टूरिस्ट इन देशों में गर्मियां बिताने जाते हैं, क्योंकि ये शहर ठंडे रहते हैं, और अब यहां भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक।
9: वेलकम बैक टू yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
10: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
9: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.
11: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
13: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
14: Jack, come home. It's supper time.
13: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
15: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
13: Jack FM, playing what we want. Beauty.
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: माँ भी हमेशा P-Mark मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: P-Mark, the mustard specialist since

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से।
1: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
0: विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
4: हमने तब भी सवाल किया था,
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं,
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here.
2: England takes on Democratic Republic of the Congo in Atlanta, and the USA battles Bosnia and Herzegovina in Santa Clara. Both England and the USA are huge favorites.

0: England is minus 1,000 to qualify for the next round, and USA is minus 630. This has been your official Odyssey Sports Match Day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
7: सरसों से सरसों।
8: वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाही ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सिलेंडर कर दिया था कि नहीं साहब, आप जमीन ले लीजिए, बकस दो। विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: चढ़ावा चोरी जांच में 6-7 बैंकों तक आंच, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड तलब, दान पात्र खोलने को लेकर पुलिस से लेकर गिनती तक लापरवाही के सबूत।
1: यूपी के रामपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा समाजवादी पार्टी के राज में अन्याय का पर्याय था रामपुर, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी।
0: कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही प्रक्रिया में बदलाव के संकेत।
1: हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, कई घर जलकर राख, 15 लोग जख्मी, नेप्था पाइपलाइन लीक होने से हुआ हादसा।
0: दिल्ली में आज एसआर की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: और सीधे आपको ले चलेंगे रामपुर, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं।
3: जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के रामनव जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्यौहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उसका परिणाम भी मिला है, विरासत को सम्मान दे करके कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है, ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है, सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है, वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है, आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है, 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी, वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं, अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे काल नेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है, और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिड़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई, उनकी चिड़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया, उनकी चिड़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया, और उनकी चिड़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिड़ है नेमी सारण के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके

0: चढ़ावा चोरों को बचाने वाले बड़े चेहरे कौन? क्या ट्रस्ट को पता था चढ़ावा चोरी का राज? चोरों को हटाने से ट्रस्ट ने बैंक को क्यों रोका? बैंक एक्शन लेना चाहता था, अड़ंगा किसने लगाया? चढ़ावा चोरी के खेल में बैंक की क्या भूमिका? पैसे कहां से आए, कहां गए, पूरी डिटेल आज तक पर ट्रांजैक्शन ट्रेल पर बड़ा खुलासा। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने इससे खिलवाड़ किया। खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप सब कुछ देखता रहा। कैसे, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। SBI ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। SBI की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। सवाल है कि ट्रस्ट के पदों पर बैठे वो लोग कौन थे जिन्होंने बैंक को शक के दायरे में आने वाले चेहरों को हटाने से रोका? चढ़ावा चोरों के वो सरपरस्त कौन थे? आपको बता दें, ऐसा आरोप विपक्ष पहले ही लगाता रहा है, तो क्या चढ़ावा चोरों को संरक्षण देने के ये आरोप सही थे?
1: अयोध्या में जो घपला चल रहा था, 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है।
0: चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 चेहरों को दबोचा गया है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये तो छोटी मछलियां हैं, बड़े और विशाल काय मगरमच्छों को पकड़ना अभी बाकी है। इन्हें पकड़ने का जिम्मा अब यूपी पुलिस और SIT पर है, जिसका फोकस अब चोरी के पैसे की लेन देन को खंगालने पर है। खबर है कि पुलिस ने 7 बैंकों से आरोपियों और ट्रस्ट के 5 साल के रिकॉर्ड मांगे हैं, विस्तृत अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, KYC डॉक्यूमेंट, जमा रिकॉर्ड और दूसरी बैंकिंग जानकारी मांगी गई है। मकसद ये पता लगाना है कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ और क्या भक्तों के चढ़ावे के पैसे को गलत तरीके से कहीं और भेजा गया या संदिग्ध लेन देन हुआ। जांच के तहत ही पुलिस की एक टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या धाम ब्रांच गई, जहां ट्रस्ट का मुख्य दान खाता है। वहां से बैंकिंग रिकॉर्ड और प्रक्रिया से जुड़े डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए गए। जांच टीम ने 6 अन्य बैंकों का भी दौरा किया ताकि आरोपियों के खातों से जुड़े रिकॉर्ड हासिल किए जा सकें। अयोध्या में SBI की नया घाट ब्रांच भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रांच में 8 में से 7 आरोपियों और मंदिर ट्रस्ट के खाते हैं।
2: सूत्रों के मुताबिक बैंक ये बताता है कि 3 महीने पहले अलर्ट किया गया था टेम्पल ट्रस्ट को कि कुछ ना कुछ अनियमितता हो रही है चढ़ावे को लेकर। उन्होंने ये भी एडवाइस किया था कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको उनका बदलाव किया जाए, लेकिन उस वक्त ट्रस्ट ने बैंक की नहीं सुनी और उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हालांकि पुलिस ने यह भी पूछा कि आपने फिर आगे बात क्यों नहीं बढ़ाई, तो बैंक सूत्रों ने बताया है कि जवाब में ये कहा गया है कि टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से प्रेशराइज भी किया गया कि आपको बहुत कुछ इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से टेम्पल ट्रस्ट ने जो है मना कर दिया था?
3: हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, थोड़ा सा बैंक को और क्लैरिटी देनी चाहिए कि 3 महीने पहले ट्रस्ट के किस सदस्य को उन्होंने जानकारी दी और किस सदस्य ने इसको नजरअंदाज किया है, या ट्रस्ट के सभी लोगों को पता था और SBI ने उनको जानकारी दी और सबने आंखें मूंदी रखी?
4: देखिए राजीव, ट्रस्ट को अगर कोई वहां जो हेड कर रहे हैं वो चंपत राय थे और अनिल मिश्रा, और कहते हैं कि तमाम जो ट्रस्ट के काम हैं इनके जरिए ही

0: संचालित होते हैं, चाहे वो बैंक का हो चाहे वो मंदिर का हो। तो जो एक डिटेल्ड एमओयू साइन हुआ था और उस एमओयू साइन होने में भी इन लोगों की ही भूमिका थी, तो चंपत राय हो अनिल मिश्रा हो, यही दोनों ऐसे शख्स या ऐसे चेहरे हैं जो कि बैंक और ट्रस्ट के बीच की सबसे अहम कड़ी थे। तो जब कुछ दिन पहले अनियमितता या फिर चढ़ावा चोरी जैसी चीजें सामने आई थी जिसको नजरअंदाज किया जा रहा था, ये भी था कि लगातार बैंक की तरफ से जो एजेंसी हायर की गई थी उसकी तरफ से ये कहा भी गया कि जो प्रोटोकॉल है उसको पालन किया जाना चाहिए, मसलन जो इसके ड्रेस है ड्रेस कोड होने चाहिए, जो कर्मचारी गिनती में शामिल है उनका बदलाव होना चाहिए, तो ये चीजें नहीं हुई थी। लेकिन अगर बैंक को मनाही की गई तो ये इन्हीं दोनों लोगों के लेवल पर थी, क्योंकि और किसी दूसरे का इतना लेवल नहीं था कि चाहे वो टिन्नू यादव हो या कोई हो कि वो बैंक को डिक्टेट कर सके। निश्चित तौर पर चाहे वो चंपत राय हो अनिल मिश्रा हो, इन दोनों के लेवल से ही बैंक में भी जो बातें हुई हैं वो हुई हैं, और जो निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक के ऊपर भी एक दबाव था ताकि जो एमओयू साइन हुई है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर ये भी कि पुलिस ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछताछ की है और अपनी भूमिका को लेकर पुलिस से डिटेल में चंपत राय ने बातचीत की है। अपना बचाव करते हुए उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, उनको पता चलते ही वो एक्टिव हो गए थे।
2: अब वो सक्रिय था, आपने देखिए भी कि जब पहले भी आरोपी के बारे में जानकारी थी कोई एफआईआर नहीं करवाए गए थे। चंपत राय के लिए असली सिरदर्द कोई और नहीं बल्कि टिन्नू यादव है, लगातार यही सरदर्द बना हुआ है। जिन लोगों को ट्रस्ट में नौकरी दी गई और खासकर टिन्नू यादव को लेकर चंपत राय से लंबी पूछताछ की गई, किस सवाल पर चंपत राय ने क्या जवाब दिया, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: चंपत राय आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक एक ऐसी शख्सियत जो केंद्र में रही, वो अब सवालों के घेरे में है, जिन पर आरोपों का शिकंजा हर दिन कसता जा रहा है, जिनके इस्तीफे को लेकर आवाज लगातार बुलंद हो रही है। उसी चंपत राय को हालात ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि उन्हें पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा। खबर है कि पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे की मैराथन पूछताछ की है, उनसे प्रशासनिक निर्णय और चढ़ावा प्रबंधन पर सीधे सवाल किए गए, उनसे कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निपटारे के बारे में सवाल किए गए।
4: सूत्रों की माने तो पुलिस पूछताछ में कई सवालों पर चंपत राय फंसते हुए दिखे, कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब चंपत राय के पास नहीं थे। इतना ही नहीं, कुछ सवालों पर चंपत राय ने खुद को निष्पक्ष बताया, लेकिन ये भी माना कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि अब पुलिस के पास चंपत राय का पहला आधिकारिक बयान है।
3: आज तक को चंपत राय से पूछताछ के बारे में कई एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो पुलिस से चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की इस जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। दरअसल चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत की वजह टिन्नू यादव है। टिन्नू से नजदीकी उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। जाहिर है पुलिस ने टिन्नू से उनके रिश्तों को लेकर सवालों की बौछार कर दी। इस पर चंपत राय बस इतना कह पाए, टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया, इस पर चंपत राय का जवाब था जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही।
4: जांच का दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में एसआईटी जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी, वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
3: चंपत राय ही वो कड़ी है जिनसे पुलिस को अब दूसरे आरोपियों से पूछताछ में सामने आए खुलासों का मिलान करना है। चंपत ने क्या बताया और क्या छिपाया, इसी पर जांच एजेंसी चंदा चोरी के तमाम सिरे को जोड़ पाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई खलबली मचाने वाले हैं। ऐसा ही वाक्या आरएमओ अर्जुन देव का है। आरएमओ यानी रेडियो मैनेजमेंट ऑफिसर, जो 2009 से यानी 17 साल से अयोध्या में तैनात थे, कई बार तबादले के आदेश हुए पर हर बार आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जांच की जा रही है कि एक ही जिले में 17 वर्ष तक तैनाती की वजह क्या रही। सच कहा जाए तो जांच एजेंसी के लिए चढ़ावा चोरी की तह तक जाने की बड़ी चुनौती है। उसके सामने सुलगते सवालों का दरिया है जिसे पार कर उसे आगे बढ़ना है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
1: एसआईटी जांच में अब तक बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए एमओयू का पालन जांच के दायरे में आ चुका है। राम मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच विस्तृत कार्य प्रणाली तय की गई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले कि एमओयू के कई प्रावधानों का नियमित रूप से पालन नहीं हुआ।
2: सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच में हुए एमओयू में दान पात्र खोलने और गिनती कक्ष के संचालन के लिए ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। संयुक्त उपस्थिति गणना में लगे कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तय था, लेकिन इन व्यवस्थाओं का हर स्तर पर पालन नहीं हुआ। चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस के सांसद आज अयोध्या कूच करने वाले थे, लेकिन खबर यह है कि कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
1: कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाला था। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के यूपी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी शामिल थे। इसी की तैयारी के लिए अजय राय अयोध्या पहुंचे, पुलिस ने रोक दिया। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, करंट स्टेटस क्या है? अभी भी रोका हुआ है अजय राय को?
4: बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के उस होटल में जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है। इसमें कांग्रेस सांसद केएल शर्मा हैं, विधायक हैं, तमाम पूर्व एमएलसी हैं, तमाम पूरी लीडरशिप आप देखें। पहले मैं आपको दिखाऊंगा पुलिस का पहरा कि किस तरीके से पुलिस भारी संख्या में इस वक्त यहां पहुंच गई है और कांग्रेस के नेता यहां पर जय सियाराम के नारे लगा रहे हैं। ये पूरी पुलिस की टीम है जिन्होंने इस वक्त कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अयोध्या का ये होटल है और ये होटल है जहां पर ये लोग रुके हैं। तमाम कांग्रेस के नेता आपको हम दिखा रहे हैं, जुड़ी तस्वीरें आपको। दीपक सिंह है पूर्व एमएलसी, उनसे पूछते हैं आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या कहेंगे?
5: देखिए, हम सवाल सीधा है, आखिर दर्शन करने से क्यों रोक रहे हैं? लोग बसों में भर के आते थे, पूरे राज्य के अन्य हिस्सों से, प्रदेश के बाहर से लोग आते थे। अगर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आता है, ऐलान करके आता है हम खाली दर्शन करके जाएंगे, तो क्या बात, कौन सा चंदा चोरी खोल देते हम?
4: बीजेपी कह रही है कि यही मूवमेंट चुन रहे हैं, जिस वक्त जांच चल रही है वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, सियासत कर रहे हैं।
5: अच्छा, हम सियासतदान लोग हैं ना, सियासत नहीं करेंगे तो उनकी तरह थोड़ा होंगे हम सियासतदान के नाम पे चंदा चोरी करेंगे। हम चंदा चोर नहीं है ना, हम तो नारा देने आए हैं चंदा छोर मंदिर छोड़। हम इस उद्देश्य से आए हैं कि दर्शन करते, प्रभु श्री राम का वापस जाते।
4: कितने लोग हैं आपके, कितने सांसद विधायक इस वक्त यहाँ पर?
5: देखिए, पहले जब किशोरीलाल शर्मा जो एमपी हुए थे दर्शन करने आए थे, तो अमेठी के लोगों ने, रायबरेली के लोगों ने कहा था हम भी चलेंगे, क्योंकि हम लोग कम लोग चले आए थे। जब हम कम लोग आए तो उन्होंने कहा कि हम दर्शन करने सभी लोग साथ जाएंगे, इसलिए सारे तो साथ आए हैं।
4: तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर केएल शर्मा भी हैं और तमाम नेता, अन्य विधायक और अन्य एमपी हैं यहाँ पर मौजूद। और ये होटल है जहाँ पर ये इस वक्त इकट्ठे हुए हैं भारी संख्या में। हम अन्य नेताओं से भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस टीम्स को आप दिखाएं एक बार। केएल शर्मा साहब, आप आज तक पर इस वक्त लाइव हैं, आप बताएं आप लोगों को यहाँ रोका गया है, अगला स्टेप क्या होगा आपका?
6: अगला, हम लोग यहाँ पे हैं, इन्होंने हाउस अरेस्ट किया एक तरह से हमको। हम लोग इनसे ऊपर ऑफिसर से बात कर रहे हैं कि हमको ये पुलिस संरक्षण में ले जाए, हमको दर्शन करा के हमको विदा कर दे, ठीक है? बस इतनी सी बात है, ये क्यों नहीं, हम किस बात से गवर्नमेंट
4: लोग यहाँ आए? तमाम बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को सालों तक राम जी याद नहीं आए और अब एकदम से राम जी याद आने।
6: ऐसा है ना, वो लोग आते हैं तो यहाँ फोटो खिंचवा के जाते हैं, हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग आते हैं तो कोई सेलिब्रिटी की तरह तो आते नहीं, तो हम क्या आज पहली बार आ रहे हैं क्या? ठीक है,
4: तो बता रहे हैं कि आप लोग पदयात्रा निकालना चाहते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग। फर्स्ट अप वी हैव गॉट हैरिसन रैपिंग हिज डॉक्टर पेपर इन अ टाइनी क्विल्ट सो इट फील्स एट होम।
9: Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
10: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
9: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.
11: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here.
12: England takes on Democratic Republic of the Congo in Atlanta, and the USA battles Bosnia and Herzegovina in Santa Clara. Both England and the USA are huge favorites. England is minus 1,000 to qualify for the next round, and USA is minus 630.
11: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
13: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
14: Hexa Organic.

0: राम मंदिर दान घोटाले को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम के निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चंदे की चोरी को अंजाम दिया गया।
1: इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
0: अखिलेश यादव ने राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है। अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद अयोध्या को बेमिसाल धार्मिक नगरी बनाने का दावा कर रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पूछा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या निर्माण कैसे करेंगे।
2: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अयोध्या से संतोष शर्मा, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: चढ़ावा चोरी की जांच में 6 से 7 बैंकों तक कांच, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड तलब। दान पत्र खोलने से लेकर गिनती तक लापरवाही के सबूत। मंदिर दर्शन से पहले कांग्रेस के कई नेता अयोध्या में हाउस अरेस्ट। अजय राय ने आज तक से कहा जबरन किया गया नजरबंद, बिना दर्शन किए तो नहीं जाएंगे वापस। यूपी के रामपुर में ये गर्जे, योगी आदित्यनाथ कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आस्था की वकालत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज में अन्याय का पर्याय था रामपुर। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत। 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन। 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। आज तक इंडिया टुडे के खुलासे का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, बहुत बड़ा असर हुआ है। टीटी पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से सुमन को अरेस्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक सुमन के सामने विजेंद्र ने पैसों की लेन देन की थी। सुमन को पेपर लीक के बारे में जानकारी थी। जांच में खुलासा हुआ है पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ने पेपर लीक से करोड़ों की कमाई की है।
2: देखिए, महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से पेपर माफिया विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन को गिरफ्तार किया है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि सुमन गुप्ता को इस पेपर लीक के बारे में पूरी जानकारी थी और विजेंद्र गुप्ता ने सुमन के सामने ही पैसों की पूरी डीलिंग की थी। तो सुमन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, मुंबई लेकर पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि आज तक इंडिया टुडे ने 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें विजेंद्र गुप्ता ने कई बड़े खुलासे किए थे पेपर लीक माफियाओं को लेकर, और यह भी दावा किया था कि वो 25 साल से पेपर लीक के धंधे में है, डंके की चोट पर पेपर लीक कराता है। इन सबके बीच सुमन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस को जांच में पता चला है कि जो विजेंद्र गुप्ता है पेपर माफिया, उसका दिल्ली में फ्लैट है, पटना के आलिशान इलाके में उसका फ्लैट है। तो इतनी कमाई आखिर कैसे हुई?
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली खबर जयपुर से। ये खबर छात्रों से जुड़ी हुई है। जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का खेल बेनकाब हुआ है। पुलिस ने हाई प्रोफाइल नकल गैंग का पर्दाफाश करते हुए मामा भांजे और चाचा भतीजों, ये दो अलग अलग गैंग का पर्दाफाश किया, उन्हें गिरफ्तार किया है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में 2 कॉलेजों के संचालक, एचओडी और लेक्चरर तक शामिल पाए गए। जानकारी के मुताबिक लाखों रुपयों में 45 छात्रों को नकल से पास करवाने की साजिश रची गई थी।
3: जयपुर में 45 पैरामेडिकल छात्रों के मास चीटिंग करवाने का सनसनीखेज मामला आया है, जिसमें 5.5 लाख रुपए लेकर जयपुर के पास प्रभात देवी पीजी कॉलेज में मास चीटिंग करवाया जा रहा था। संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो बच्चे पैसे देकर परीक्षा दे रहे थे उनकी भी तलाश की जा रही है। ये सामने आया है कि लंबे समय से इस खेल को खेला जा रहा था और हो सकता है पैरामेडिकल काउंसिल के अधिकारी भी इस पूरे खेल में शामिल हों। जैसे ही पुलिस पहुंची और मास शीटिंग पकड़ा गया, कॉलेज के छात्रों ने जमकर वहां पर पत्थर बरसाए, कुर्सियां तोड़ी और जो छात्र पैसे देकर परीक्षा दे रहे थे वो खिड़कियां कूद कूद कर भागे।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब बात करेंगे अयोध्या में चढ़ावा चोरी केस की जांच की। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से सोमवार को 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उनका बयान दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा कि उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका ही नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि टिन्नू यादव ने जो किया उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी।
4: चंपत राय से एसआईटी और पुलिस दोनों ने बयान दर्ज कराए हैं और जो बयान चंपत राय ने दिया है वो चौंकाने वाला है। चंपत राय ने ये बताया है कि उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि चढ़ावे में चोरी हो रही है। लेकिन जब ये पूछा गया कि जब आपको ये जानकारी थी तब आपने इस बात को अपने तक ही सीमित क्यों रखा, तो इस पर उनका जवाब गोलमोल था। उनका कहना था कि चढ़ावे की चोरी के बारे में भनक थी, लेकिन इस तरीके से चोरी हो रही होगी, ये तमाम लोग उसमें ऐसे शामिल हो गए, इसकी जानकारी नहीं थी। यही नहीं, उन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि उन्होंने खुद पहल करके SIT जांच करवाई है और बकायदा रिकवरी भी कराई।
0: चढ़ावा चोरी की जांच अब बैंकों तक पहुंच गई और जांच टीम अब बैंकों के ट्रस्ट से जुड़े हुए खातों, लॉकर्स और लेन देन की पूरी जानकारी निकलवा रहे हैं ताकि मनी ट्रेल के जरिए चोरी की तह तक पहुंचा जा सके। आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहा है।
5: अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब मनी ट्रेल तक पहुंच गई है, यानी कि उस बैंक तक पहुंच गई है जहां जिसके साथ टेंपल ट्रस्ट का एक 2025 फरवरी में MOU साइन हुआ और उसमें यह तय किया गया कि कैसे दान प्रक्रिया की काउंटिंग प्रोसेस को एक तरीके से पारदर्शी बनाए रखना है। उस MOU में यह भी तय हुआ कि जो काउंटिंग प्रोसेस में रहेंगे वो एक ड्रेस कोड के साथ रहेंगे, उनकी रैंडम चेकिंग भी होती रहेगी। इतना ही नहीं, वो कभी भी जब आएंगे और जाएंगे उस वक्त भी उनकी चेकिंग होगी, समय समय पर उनका बदलाव भी होगा, पारदर्शी तरीके से CCTV फुटेज लगातार अवेलेबल रहेगी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि उस MOU में जो बातें कही गई थी उनमें कुछ ही चीजों का पालन हुआ और अधिक चीजों को समय के साथ भुला दिया गया।
0: चढ़ावा चोरी केस की जांच के बीच में रामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आस्था की वकालत कर रहे हैं।
6: राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी।
0: 12:12 रिपोर्टों में अयोध्या से अगली बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर रामलला के दर्शनों से रोकने के गंभीर आरोप लगाए। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अजय राय ने आरोप लगाया कि वो रामलला के दर्शन करने आए थे, उन्हें और उनके सहयोगियों को होटल में जबरदस्ती उठाकर आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रख दिया गया।

0: सियासी पारा गर्माता जा रहा है। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नजरबंद किया गया है। उनका आरोप है कि तमाम नेता उनके साथ जो आए थे, चाहे वो उज्जवल रमन सिंह हो या सीतापुर के सांसद हो, के एल शर्मा हो, अमेठी के सांसद, उनके साथ वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन देर रात उनको होटल से उठा लिया गया और जबरदस्ती आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय में नजरबंद किया गया है। उनका आरोप है कि सरकार डरी हुई है, वो कोई सियासत नहीं करना चाहते थे और हर हाल में वो बिना राम मंदिर के दर्शन किए नहीं जाएंगे।
1: मैं कल शाम को आ गया था यहाँ पर अयोध्या में, रात को इन लोगों ने मुझे होटल पहुंचकर गिरफ्तार किया, वहां हाउस अरेस्ट किया, फिर वहां से जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाकर, पुलिस की गाड़ी में बैठाकर, ये आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर अयोध्या में, वहां रात को गेस्ट हाउस में लाकर रोके और पूरी तरीके से इन लोगों ने रात भर परेशान किया और हम लोग दर्शन करने के लिए कोई जाना चाहते तो जाने नहीं दिया।
2: अब रिपोर्ट, दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक से जुड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी आज सभी केंद्रीय सचिवों के साथ में बैठक करने वाले, और बैठक में क्या होगा, क्या इसकी अहमियत है, क्या एजेंडा रहने वाला है, बता रहे आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल।
3: बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रालयों के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया है। प्रेजेंटेशन होगी और ये तय किया जाएगा कि हिंदुस्तान को कितना और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वो कौन सी पॉलिसीज हैं और स्कीम्स हैं जिससे कि जो विकसित भारत का एक सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने देखा है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। एआई की अगर बात करें तो एआई एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि हिंदुस्तान बहुत आगे है, लेकिन पॉलिसीज और स्कीम्स के साथ और आगे बढ़ सकता है और विश्व में नंबर वन की ख्याति भी प्राप्त कर सकता है। जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होंगी उनमें बताया जाएगा कि कौन से मंत्रालयों ने अब तक क्या क्या काम किया है और आगे आने वाले समय में मंत्रालय क्या क्या काम करेंगे, पूरी समीक्षा होगी।
2: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच में सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 8 से 9 पड़ोसी देशों में वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को उच्चायुक्त बनाने पर विचार कर रही है। पूरी खबर क्या है बता रहे आज तक के सीनियर रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा।
4: पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो है वो अपने रिश्तों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी सरकार अपने 8-9 पड़ोसी देशों में वरिष्ठ राजनेताओं को उच्चायुक्त नियुक्त करने पर विचार कर रही है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों में वरिष्ठ राजनेताओं को लेकर उनकी सूची तैयार की जा रही है। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड और मेघालय में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत घर घर जाकर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है।
5: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 5 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। दिल्ली के साथ कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र और झारखंड भी इसमें शामिल है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक लगभग 7,29,00,000 से ज्यादा वोटरों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें सिर्फ दिल्ली में ही 1,45,00,000 से ज्यादा वोटर हैं। घर घर जाकर बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर इन सारे वोटर्स की तस्दीक करेंगे, यानी जो गणना फॉर्म है वो उनके घर जाकर जमा करेंगे। इसके बाद वोटर्स को लगभग उसमें से बहुत सारी जानकारी पहले से भरी हुई होती है, जिससे कि मतदाता का नाम, मतदाता का वोटर आईडी नंबर, इसके साथ ही आधार नंबर, ये सारी चीजों का कॉलम उसमें रहते हैं। मतदाता अपनी सारी जानकारी भरेंगे, यानी अब जुलाई तक ये एक महीने का समय है जिसमें ये मतदाता फॉर्म जमा किए जाएंगे और जमा करने के लिए भी बीएलओ उनके घर आकर ये मतदाता फॉर्म लेके जाएंगे।
2: आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की आज विदाई हो गई है और जनरल धीरज सेठ नए सेना अध्यक्ष बन गए हैं। आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी को समारोह में जो है विदाई दी गई।
6: भारतीय सेना को आज नया प्रमुख जनरल धीरज सेठ के रूप में मिल रहा है और जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। साउथ ब्लॉक के लॉन्च में उन्हें आधिकारिक विदाई दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही उन्हें विदा किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने विदाई संबोधन में कहा कि लगातार भारतीय सेना ताकतवर हो रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, सेना का स्वरूप भविष्य की लड़ाइयों के हिसाब से बदल रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 साल तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे। इस दौरान भारतीय सेना ने तमाम अहम ऑपरेशन देखे और ऑपरेशन सिंदूर उनमें से अहम है। इसी के साथ ही भारतीय सेना नए आकार और नए स्वरूप में और ज्यादा तेज ताकतवर बन रहा है। अश्नी प्लाटून हों या बास बटालियंस, लगातार भारतीय सेना आधुनिकीकरण के साथ आगे बढ़ रही है।
2: अब बात पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा है। पूरा मामला क्या है बता रहे आज तक संवाददाता ओमकार बाबले।
7: सिया गोयल और उनके भाई साहिल गोयल ने पुणे के वड़गांव मावल कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया है, जिस एफिडेविट में साफ साफ लिखा है कि उनकी वकीली और उनका जो वकालत पत्र है वो विपुल दुशिंग करेंगे, वही उनकी साइड कोर्ट के सामने लाएंगे। इससे पहले जो आशुतोष श्रीवास्तव इसमें आ रहे थे वो बात रख रहे थे, वो उनके ऑफिशियल वकील नहीं है। इसके बाद अब आशुतोष श्रीवास्तव ने साहिल गोयल के नाम 10 करोड़ की डिफेमेशन नोटिस भेज दी है और नोटिस के बाद एग्जैक्टली कोर्ट में अब क्या होगा वो देखना अहम रहेगा।
2: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट झारखंड से। झारखंड के पलामू जिले में रहस्यमय बीमारी से 10 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई।
8: गांव में रहने वाले कुलदीप महतो के परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। रहस्यमय बीमारी के चपेट में ये पूरा परिवार है। सबसे पहले 19 जून को कुलदीप महतो की मौत हो जाती है, उसके बाद 20 तारीख को बबीता महतो जो उनकी बेटी होती है उनकी मौत होती है, 26 को दूसरी बेटी इंदु महतो की मौत हो जाती है और उसके बाद 28 को उनकी बहू श्वेता महतो की मौत हो जाती है और 29 जून को यानी 10 दिनों के अंतराल में उनका बेटा नकुल महतो भी गुजर जाता है। अभी उनकी पत्नी लाखो देवी, एक बेटा और एक पोता इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती है। 2 मौत जो है रांची के रिम्स में होती है, बहू श्वेता महतो और बेटा नकुल महतो की मौत जो है वो रांची के रिम्स में होती है और बाकी की मौतें जो है पलामू में होती है। और बिल्कुल जो है चिंता और ये रहस्यमय बीमारी कौन सी है इसको लेकर हड़कंप मच जाता है पूरे पलामू में और झारखंड में।
2: 12:12 रिपोर्ट में बात अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, आज से यात्रियों को टोकन देने और रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया।
9: इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी और अभी तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन की है, लेकिन आज जो ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है खुले जम्मू में तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और साफ तौर पे जो रिस्पांस है इस साल वो पिछले सालों से कई ज्यादा है। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं और जिस तरीके का जो मॉक ड्रिल्स और सुविधाओं पे जो ध्यान इस साल देखने को मिला है शायद ही पिछले सालों में इतना जो है मेटिकुलस प्लानिंग देखने को मिली है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 2 जुलाई की सुबह जम्मू से जो कॉन्वॉयज हैं चाहे बालतल या पहलगाम के लिए फ्लैग ऑफ होंगी।
2: अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे ने 4 बार के चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। मंगलवार को बॉस्टन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले का निर्धारित समय 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में जर्मनी इससे पहले कभी भी पेनल्टी शूटआउट में नहीं हारा था। तो फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ है और ब्राजील ने से पहले जापान को 2-1 से हराया, लेकिन निर्धारित समय तक 1-1 का मुकाबला था, लेकिन उसके बाद पेनल्टी शूटआउट का समय जब आया उसमें ये बहुत बड़ी मायूसी उनके हाथ लगी।
10: फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी अब इस टूर्नामेंट में आपको नहीं दिखेगी। जर्मनी पैराग्वे से हारकर अब इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। 1-1 की बराबरी पर था स्कोर जब एक्स्ट्रा टाइम आया, लेकिन उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे जर्मनी पर भारी पड़ा और वहीं 4-3 से ये मुकाबला जीतकर आगे की दौर में पहुंच गया। अगर वहीं दूसरे मुकाबले की बात की जाए जहां पर ब्राजील और जापान आमने सामने थे, एक वक्त पर लग रहा था कि शायद जापान यहां पर ब्राजील को अंडर प्रेशर रखा हुआ है, डिफेंस मजबूत था, लेकिन लास्ट मिनट में किया गया गोल अब जापान के बर्फ में नहीं था, यानी वहां ब्राजील ने एक बार फिर से हारे हुए मैच को जीता और अगले दौर में जगह बना ली। ये मुकाबला 2-1 के स्कोर पर खत्म हुआ।
2: जो जर्मनी 4 बार के चैंपियन, जब ये मैच शुरू हो रहा था उससे पहले सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो बहुत आसानी से जर्मनी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पैराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूट आउट में चार दिन से हराया, बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया और इसके साथ साथ शुरुआत में निर्धारित समय पर एक एक की बराबरी पर यह समाप्त हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन मैच का जब फैसला आया वह पेनल्टी शूट आउट से आया और उसके बाद से जो जश्न मनाते हुए दिखाई दिए पैराग्वे के लोग, तो दूसरी तरफ जर्मन के जो फैन जर्मनी फैंस थे वो बहुत बहुत उदास, बहुत मायूस दिखाई दिए। इससे पहले हमने देखा कि जब मैच होते हैं फीफा वर्ल्ड कप के तो हर एक मैच में भावनाएं जुड़ जाते हैं लोगों की, लेकिन यहाँ बहुत निराशा हुई। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को कर्तव्य भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के दौरान हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच में यमुना जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौते पर एमओयू साइन किया गया।
12: 32 साल बाद आखिरकार हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबित जल बंटवारे के मुद्दे पर समझौता हो गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू साइन किया। यह समझौता 32 साल पहले हुआ था, लेकिन नहर व्यवस्था न होने से इस पर अमल नहीं हो पाया। अब इस नए समझौते के तहत मॉनसून के महीनों में हथनी कुंड बैराज से एक भूमिगत जल पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
13: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है।
12: समझौते के बाद रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि यमुना का अतिरिक्त पानी राजस्थान भेजे जाने से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में भूजल रिचार्ज कम होने की आशंका है।
14: पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये कम्युनिकेशन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा माननीय वो पीने के लिए उपयोग होगा।
12: राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जमीन अधिग्रहण, पाइपलाइन निर्माण और निगरानी की जिम्मेदारी दोनों राज्यों के बीच तय होगी। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
2: उत्तर प्रदेश के शामली से बड़ी खबर आपको देते हैं। शामली में आयुष मलिक की घर वापसी तो हो गई, लेकिन उसके बाद से एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। अब शामली धर्मांतरण केस में उस मौलवी की तलाश की जा रही है जिसने धर्म परिवर्तन करवाया था। शामली धर्मांतरण केस में एक बड़ा अपडेट इस समय आपको देते हैं। आयुष ने घर वापसी कर ली है और बयान भी आ गया है, लेकिन इस बीच में मौलवी के बारे में जानकारी कि मौलवी अंडमान या फिर चेन्नई में छिपा हो सकता है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, मौलाना पर क्या आरोप है और पुलिस क्यों ढूंढ रही है मौलाना को?
15: जो ये मौलाना है इस पूरे धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ है और आरोप है कि जो आयुष मलिक मोहम्मद अली बना था, चांदनी कुरैशी और उसके पिता शामिल थे उसमें, उसमें इस मौलवी की बड़ी भूमिका थी धर्मांतरण कराने में। तो फिलहाल शामली पुलिस इस मौलवी की तलाश कर रही है। अंडमान और चेन्नई ये दो जगहों पर इसकी लोकेशन मिली है और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार शामली पुलिस कोशिश कर रही है। साथ ही खुलासा ये भी हुआ है, जब आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और मोहम्मद अली बन गया था, जब पहली बार पुलिस को यह जानकारी मिली तो घर का सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक डायरी मिली जिसमें आयुष मलिक ने लिखा था आई एम ऑन मिशन और एक बड़ा चाकू भी बरामद हुआ था। अब आई एम ऑन मिशन आयुष मलिक ने क्यों लिखा था इसकी भी जांच जो पुलिस है वो कर रही है और पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश से आयुष मलिक बच गया।
2: आई एम ऑन मिशन, वो कौन सा मिशन था, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
1: Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
8: We
10: mark the mustard specialist since 1933.
11: हमने तब भी सवाल किया था।
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं।
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि,
12: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: In association with
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा है।
2: रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी ने विकास उपलब्धियां गिनाई। यूपी के रामपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा समाजवादी पार्टी के राज में अन्याय का पर्याय था रामपुर, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी। चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा कि आज राम के दुश्मन राम का नाम ले रहे हैं। मुरादाबाद में योगी की मैराथन समीक्षा बैठक, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का निर्देश, सड़क खराब करने वाले ठेकेदारों पर FIR का आदेश। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला यूपी के दौरा, 3 से 4 जुलाई को लखनऊ में करेंगे संगठन की समीक्षा। राम मंदिर दान घोटाले में जांच दे, 7 बैंकों में 5 सालों के खातों का पूरा रिकॉर्ड तलब, वित्तीय ट्रेल खंगाल रही है पुलिस। आरोपियों और ट्रस्ट के बैंक खातों की गहन जांच जारी है, पुलिस ने ट्रांजैक्शन KYC और कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड जुटाए। अयोध्या में दान फंड के फॉरेंसिक ऑडिट की जांच भी शुरू हुए, संदिग्ध लेन देन और बैंकिंग गतिविधियों की पड़ताल। अयोध्या SBI मामले पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पवन खेड़ा बोले कि 3 महीने पहले हटाने की सिफारिश हुई थी, बचा कौन रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज, कहा कि जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई हुई, FIR कराई गई दर्ज। पूछताछ में चंपत राय ने खुद को निर्दोष बताया, बोले कि ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर होती थी नियुक्ति प्रक्रिया। अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय नजरबंद, आज तक से कहा कि रात में जबरन गेस्ट हाउस में रखा गया, बिना दर्शन किए हम वापस नहीं जाएंगे, अगर केजरीवाल कर सकते हैं तो हमसे क्या दिक्कत। अयोध्या चंदा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की कोर्ट की तरफ से मंजूरी, जांच भी तेज। ट्रस्ट टीम कृष्ण मोहन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान, नए सुरागों पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राजनीति के बीच में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर बोला हमला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की नजर नेशन नहीं डोनेशन पर है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के शब्द कोश में धर्म और शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। अखिलेश ने यह भी कहा कि भविष्य में बीजेपी को न दान मिलेगा, न चंदा, न वोट। बिजनौर में ओवैसी का राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ा हमला, बोले कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी जाती, मामला सुलझ जाता। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मायावती का बयान, कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, राजनीतिकरण भी ना हो, पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। शामली धर्मांतरण केस में नैमूर, इस्लाम कबूल करने वाले आयुष मलिक ने अब घर वापसी कर ली है, मंदिर में पूजा पाठ भी की, चांदी कुरैशी नाम की लड़की सर पर ब्रेन वॉश करने का आरोप। आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनाए जाने की जांच में भी खुलासा, पुलिस सर्च में घर से चाकू और संदिग्ध डायरी बरामद, आई एम ऑन मिशन लिखे पन्नों ने जांच बढ़ा दी। पुलिस को धर्मांतरण केस में एक मौलवी की तलाश जारी है, मौलवी शामली से फरार होकर अंडमान या चेन्नई में कहीं छुपा हुआ है। संभल में 101 करोड़ के 38 बीघा जमीन घोटाला, 32 लोगों पर FIR, सरकारी जमीन फर्जी पट्टों का खुलासा हुआ है। सुल्तानपुर में राहुल गांधी मानहानि केस में आज स्पेशल रिविजनल कोर्ट में सुनवाई, CD वॉइस मिलान और फॉरेंसिक जांच की मांग पर दोनों ही पक्षों में बहस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: बुलेटिन में आगे बढ़ते और बड़ी खबर हम आपको देते हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी मामले पर सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को काल नहीं बताते हुए राम भक्तों पर लाठी गोली चलाने वाला उनको करार दिया।

0: आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है।
1: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चोरी के आरोपी तो पकड़ लिए गए, लेकिन जांच अब भी जारी है। अब एसआईटी और पुलिस की कोशिश चोरों के सरदार तक पहुंचने की है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चोरी की घटना के पीछे के जिम्मेदारों की कलाई भी खुल रही है।

0: अयोध्या के चढ़ावा चोरी के कांड में अब दो तरह की हलचल है। एक तरफ जांच एजेंसियां सच की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, चोरी के गैंग का असली सरगना कौन था वहां तक जाने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी तरफ चोरी के अयोध्या कांड का सियासी मुनाफा बटोरने की होड़ लगी हुई है।
1: अब तो न इन्हें चंदा मिलने जा रहा है, न दान और न वोट, इसलिए ये घबराए हुए। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और न भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें।
0: जांच के नाम पर भी अब दो एजेंसियां हरकत में हैं। एक जांच पुलिस की चल रही है जो दर्ज मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारियां, पूछताछ और तलाशी अभियान चला रही है। दूसरी जांच एसआईटी की भी चल रही है जो चढ़ावा चोरी से ट्रस्ट पर लगे तमाम आरोपों की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पिछले 24 घंटे की जांच में सूत्रों के हवाले से जो बड़े खुलासे हुए हैं उसमें जांच की सुई दोनों ओर घूम रही है। ट्रस्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद राव की जिम्मेदारी, जवाबदेही और भूमिका की जांच चल रही है, तो दूसरी ओर अब स्टेट बैंक की भूमिका की जांच में भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि स्टेट बैंक ने ट्रस्ट के साथ हुए करार का नियमित पालन नहीं किया। बैंक ने फरवरी 2025 में हुए करार में दान पात्र खोलने से लेकर गिनती कक्ष की प्रक्रिया में लापरवाही बरती। करार के मुताबिक गिनती के समय ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य थी, जिसका पालन नहीं हुआ। करार के मुताबिक नोट गिनने के लिए विशेष ड्रेस कोड तय किया गया था, उसका भी पालन नहीं हुआ। करार के मुताबिक बैंक अफसरों को हर महीने बदला जाना था, जो नहीं बदले जा रहे थे। दान गिनती कक्ष में आने जाने वाले कर्मचारियों की औचक तलाशी नहीं हो रही थी। हर दान पात्र की राशि का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। इतना ही नहीं, दैनिक रिपोर्ट, जमा पर्चियों, रजिस्टरों से जुड़े सत्यापन के रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में है।
2: हमारी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में SBI के नया घाट शाखा पर है, जहां का अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची और घंटों तक यहां इस मामले को लेकर पूछताछ की गई है।
0: अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पिछले 5 साल के आय का ब्योरा क्या था और इन्होंने पिछले 3 साल में कितनी चल अचल संपत्तियां खरीदी। जांच एजेंसियां अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मी जांच के दायरे में हैं और उनकी ड्यूटी, कार्य प्रणाली व संदिग्ध गतिविधियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी रोस्टर, CCTV फुटेज, प्रवेश निकास के रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के बयान भी जुटा रही हैं। यह भी देखा जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान किस गार्ड की तैनाती किस स्थान पर थी और उस अवधि में क्या गतिविधियां हुई। चढ़ावा प्रकरण सामने आने और 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद दान गणना की व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में गणना कार्य में 39 कर्मी लगाए गए हैं, पहले यह संख्या 45 थी, जबकि शुरुआत में 22 कर्मी तैनात थे।

0: सोमवार को बैंक मैनेजर समेत 5 बैंक कर्मियों से पूछताछ के बाद ये खबर निकली है कि ट्रस्ट को गड़बड़ियों की शिकायत के बाद बैंक ने मंदिर में तैनात आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को हटाने की कवायद शुरू भी कर दी थी, लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट के अधिकारियों ने ही संदिग्ध कर्मचारियों को नहीं हटाने दिया। अब कांग्रेस यही सवाल उठा रही है कि जब बैंक ने ट्रस्ट को चढ़ावे में हेरा फेरी की आशंका जताते हुए बदलाव की बात कही थी, तब ट्रस्ट ने उसे मना क्यों किया।
1: 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है।
0: कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना तो मोदी सरकार ने अपनी मर्जी से उसमें लोगों को रखा, और जब ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई तो सरकार जिम्मेदारी लेने से भाग रही है।
2: दोषी तो कहते हैं ना कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। पूरा का पूरा ट्रस्ट भ्रष्ट है, क्योंकि ट्रस्ट ने विश्वासघात किया है। ट्रस्ट किनका है? ट्रस्ट मोदी जी का और ट्रस्ट संघ के भागवत जी का बनाया हुआ है। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है। ट्रस्ट में शुद्ध संघ के आदमी है, ट्रस्ट में शुद्ध भाजपा के आदमी, ट्रस्ट में शुद्ध बीएचपी के आदमी। पूरे के पूरे ट्रस्ट ने चोरी की है, पूरे के पूरे ट्रस्ट ने विश्वासघात किया है। तो जिन लोगों ने यह ट्रस्ट बनाया, यानी मोदी जी और भागवत जी, वो भी परोक्ष रूप से चोरी के, डकैती के जिम्मेवार हैं।
0: सूत्रों के मुताबिक कड़ी सुरक्षा के बावजूद चढ़ावे की चोरी से निगरानी तंत्र की नाकामी साबित होने के बाद आरएमओ अर्जुन देव पर कार्रवाई हुई है। वह वर्ष 2009 से ही अयोध्या में तैनात था। कई बार तबादले के आदेश हुए पर हर बार रुक गए। जांच की जा रही है कि एक जिले में 17 वर्ष तक तैनाती की वजह क्या रही। अर्जुन वीआईपी दर्शन समेत ट्रस्ट के कई कामकाज में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उन्हें भी चंपत राय का खास माना जाता है। एसआईटी उनसे पूछताछ कर चुकी है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला जितना आस्था को ठेस का मामला है, उससे कहीं ज्यादा चुनावी सियासत का एक मसला बन चुका है। वरना चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अयोध्या में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला नहीं शुरू हो जाता। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जो अयोध्या में अस्पताल बनाना चाहते थे, जी हां अस्पताल, वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, और अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या जाना चाहता है लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया है।
4: अरविंद केजरीवाल को तो पूरे सात लोग गए थे, उनके भी उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल थे, उनके सांसद यहाँ के इंचार्ज हैं वो भी थे, संजय सिंह जी, बाकी लोगों को भी तो लेकर गए थे अरविंद केजरीवाल। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देकर बाकायदे अंदर के फोटोज जारी करने पड़े। हम लोग भी दर्शन करने 4 दिन पहले आए थे तो हमें बाहर गए, हमको तुम्हारा मोबाइल तक ले जाने नहीं दिया गया, मुझे बाहर रोक दिया गया। और बाहर जो फोटोज हम लोग के आप देखेंगे, बाहर के फोटोज हैं भगवान राम मंदिर के, और अरविंद केजरीवाल जी को अंदर गर्भगृह का फोटो उनको जारी किया गया।
3: अजय राय का आरोप है कि अयोध्या में उन्हें पुलिस ने होटल से उठाकर आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में नजरबंद करके रख दिया है। कांग्रेस के कई और सांसद भी होटल में ही रोक दिए गए हैं। सांसद केएल शर्मा ने भी आरोप लगाया कि उन्हें भी पुलिस ने अयोध्या दर्शनों से रोका हुआ है।
5: कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल अयोध्या पहुंचता है राम मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है उस होटल में जहां वो रुकते हैं। पहले फोर्सेस को देखें आप यहां पर, जो भारी संख्या में पुलिस तैनाती की गई है। अब आप देखें उन नेताओं को, कांग्रेस सांसद केएल शर्मा, दीपक सिंह, अन्य कांग्रेस के नेता सब यहां पर पहुंचे हुए हैं, और हम तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं जो तमाम कांग्रेस के नेता देखिए यहां पहुंच गए हैं, और अब होटल से निकलकर राम मंदिर दर्शन के लिए यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। आपको तस्वीरें हम यहां पुलिस कर्मियों को भी दिखाते चलें। एक तरीके से हाउस अरेस्ट इन्हें किया गया है, रोका गया है कि जिससे कि ये कांग्रेस के नेता राम मंदिर की ओर ना जा पाए। एक दावा यह भी किया जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि कांग्रेस के नेता पदयात्रा निकालकर राम मंदिर जाना चाहते हैं, इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। ये प्रक्रिया की जा रही है।
6: देखिए, हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम सब लोग अयोध्या का दर्शन करने जाएंगे, तो हम सब लोगों ने सहमति दिया, और अध्यक्ष जी ने बकायदा रिटर्न में सूचना दी कि हमारा ये डेलीगेशन यहाँ पे आके दर्शन करेगा। तो उसमें गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? हमको दर्शन, हम तो कहते हैं कि भाई पुलिस संरक्षण में ले जाएं, हमको दर्शन करने दें, हम भी हिंदू हैं, हमारी भी आस्था प्रभु श्री राम में है, ठीक है? तो क्या यही

0: प्रभु श्री राम का इन्होंने ठेका लेकर हम लोगों को।
1: बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जब इस समय जांच प्रक्रिया चल रही है तो क्या कांग्रेस के नेताओं की आस्था इसी वक्त जाग रही है?
0: भाई हम तो पहले भी आए हैं, कोई नया थोड़ी कि उस पे आए हैं। ठीक है, ये तो इनकी जो मानसिकता है ना, गंदी मानसिकता इनकी, ये वो सोच है ये बता रहे हैं। जांच में हम कोई व्यवधान डालने वाले हैं या पुलिस थाने जिनको पुलिस ने पकड़ा उनको छुड़ाने तो नहीं आए हम लोग।
1: अब देखना यह है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पहुंचा है वो रामलला के दर्शन कर पाता है या नहीं। इस बीच में कांग्रेस सवाल उठा रही है चंदा चोरी मामले पर भी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सरकारी चाबुक एक बार फिर से चमक रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे रामपुर में आजम खान की मिल्कियत पर पड़ रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर बनी 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे की इमारत घोषित कर दिया है और जवाब भी मांगा है।
3: ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक दिन पहले यूपी के रामपुर का विकास प्राधिकरण आजम खान की यूनिवर्सिटी को नोटिस थमाता है और दूसरे दिन सीएम योगी का कार्यक्रम उसी रामपुर में होता है।
4: 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था।
3: जिस रामपुर में सीएम योगी 690 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं की सौगात इलाके के लोगों को दे रहे हैं, उसी रामपुर में एक समाजवादी नेता की विकास परियोजना सियासत के जाल में फंस गई है। दरअसल यूपी में जिस तरह योगी राज के अंदर सख्त हुकूमत के कानूनी हाथ संभल में नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी ही सख्ती रामपुर के आजम खान की मिल्कियत के खिलाफ भी नजर आ रही है। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने कहा है कि आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे।
5: जो उसके अंदर निर्माण है उसमें से मात्र दो ही निर्माण ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है, शेष निर्माण बिना अनुमति के बने हुए हैं। इस संबंध में उन्हें नोटिस दिया गया है कि अगर उनके पास कोई अनुमति है तो प्रस्तुत करें, अन्यथा की दिशा में जो अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
3: आजम खान की इस यूनिवर्सिटी को लेकर एक नहीं तमाम तरह के विवाद हैं। जमीन हथियाने से लेकर भवन निर्माण और पुस्तकालय की किताबों से लेकर नक्शा विवाद तक आजम खान के ऊपर कानूनी कार्रवाई का कहर टूट रहा है। अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अवैध घोषित किया गया है। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया गया है। इसके अलावा जौहर ट्रस्ट पर 450 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा और 12 ए की छूट वाला रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द किया जा चुका है। आरोप है कि समाजवादी सरकार में जल निगम के 17.76 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर यूनिवर्सिटी की 4 इमारतें बनाई गई थी जिसकी अब कीमत 308 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे जमीन वापस सरकार को मिल चुकी है। आज सीएम योगी के लिए रामपुर और आजम खान की अली जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी पर हमले का बड़ा बहाना बन चुका है।
4: विकास दो लोगों का होता था, या तो सेफई परिवार का या रामपुर के एक परिवार का, बाकी लोग विकास से वंचित रहते थे।
3: समाजवादी हुकूमत में खानदानी विरासत को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे सीएम योगी अब हर मंच से शासन का फर्क बताते हैं और उसमें समाजवादी सरकार के दौर के रामपुर और योगी सरकार के रामपुर का फर्क बताना नहीं भूलते। आमिर खान, रामपुर आज तक।
2: अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में बीजेपी की चुनावी तैयारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दो दिन बाद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष की इस बैठक में यूपी बीजेपी की नवगठित राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। दो दिनों तक लखनऊ में चलने वाले इस बैठक में क्या क्या योजना बन रही है, इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक है, उन्हीं से जानते हैं।
6: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 जुलाई को लखनऊ पहुंच रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए उनकी पहली मीटिंग भी होगी और लखनऊ का उनका पहला दौरा भी होगा। दो बातें खास हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास मोदी का मंत्र लेकर पहुंचेंगे। इसके अलावा संगठन की क्या तैयारी है, बीजेपी जमीन पर किस तरीके से तैयार है, इसकी समीक्षा करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में उसने अपना नया संगठन दिया है जिसमें पार्टी के उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ऐसे तमाम 46 नामों की घोषणा की गई है। अब नितिन नवीन जब आएंगे तो मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम विधायक, मंत्री, सांसद, ऐसे लोगों के साथ मीटिंग होगी। 2 दिवसीय प्रवास है और इन 2 दिनों में नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तैयारियों को देखेंगे और साथ साथ 27 की चुनावी तैयारियों को लेकर मोदी मंत्र विधायकों को देंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
9: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
8: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
10: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
11: Schwarber to right field, and it will leave.
10: From the first pitch of the season to the stretch run,
11: and that's the ball game.
10: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
12: Hex Organic.
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: हमने तब भी सवाल किया था,
17: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
16: हम आज भी सवाल करते हैं।
17: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
16: ऑपरेशन अग्नि,
17: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
16: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
18: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now. Present.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

बाद बैंकों तक आंच, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड तलब, दान पात्र खोलने से लेकर गिनती तक लापरवाही के सबूत। मंदिर दर्शन से पहले कांग्रेस के कई नेता अयोध्या में हाउस अरेस्ट, अजय राय ने आज तक

आस्था की वकालत, समाजवादी पार्टी के राज में अन्याय का पर्याय था रामपुर। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण, सीएम योगी ने गिनाई विकास की उपलब्धियां। सीएम योगी बोले 2017 से पहले रामपुर में अराजकता और विकास का अभाव था, आज बदल गई है तस्वीर। रामपुर जनसभा में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले गरीबों और किसानों के साथ अन्याय होता था। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था विकास में पिछली सरकारों को घेरा, कहा आज यूपी में त्योहार सुरक्षित है। चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा राम के दुश्मन राम का नाम ले रहे हैं। राम मंदिर दान घोटाले में जांच तेज, 7 बैंकों से 5 साल के खातों का पूरा रिकॉर्ड तलब, वित्तीय ट्रेल खंगाल रही है पुलिस। आरोपी और ट्रस्ट के बैंक खातों की गहन जांच जारी, पुलिस ने ट्रांजैक्शन केवाईसी और कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड जुटाए। अयोध्या में दान फंड का फोरेंसिक ऑडिट शुरू, संदिग्ध लेनदेन और बैंकिंग गतिविधियों की हो रही है पड़ताल। अयोध्या एसबीआई मामले पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले 3 महीने पहले हटाने की सिफारिश हुई थी, बचा कौन रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज, कहा जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई, एफआईआर दर्ज। पूछताछ में चंपत राय ने खुद को निर्दोष बताया, बोले ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर होती थी नियुक्ति प्रक्रिया। अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय नजरबंद, नाश्तक से कहा रात में जबरन गेस्ट हाउस में रखा, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे, केजरीवाल आए तो हमसे क्या दिक्कत है। अयोध्या चंदा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की कोर्ट ने दी मंजूरी, जांच तेज। ट्रस्टी कृष्ण मोहन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज, नए सुरागों पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर दान पर नहीं पड़ा असर, गर्मियों की छुट्टियों में बड़े श्रद्धालु, चढ़ावा हुआ दोगुना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की नजर नेशन नहीं डोनेशन पर है, बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म नाम की चीज नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भविष्य बीजेपी को ना दान मिलेगा ना चंदा ना वोट मिलेगा। बिजनौर में ओवैसी का राम मंदिर ट्रस्ट पर हमला, बोले अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी जाती। अयोध्या यहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोली मायावती, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो लेकिन राजनीतिकरण ना हो, पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। संभल में 101 करोड़ की 38 बीघा जमीन घोटाला, 32 लोगों पर एफआईआर दर्ज, सरकारी जमीन फर्जी पट्टों का खुलासा। 60 साल बाद वापस आई सरकारी जमीन पर बड़ा एक्शन, पूर्व अधिकारी बीएसपी नेता सहित कई पर नामजद। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नित्यानंद नवीन का पहला यूपी दौरा, 3-4 जुलाई को लखनऊ में करेंगे संगठन की समीक्षा। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी के साथ पहली समीक्षा। मुरादाबाद में योगी की मैराथन समीक्षा बैठक, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, सड़क खराब करने वाले ठेकेदारों पर एफआईआर के आदेश। सीएम योगी का सख्त संदेश, बिजली चोरी गोतस्करी और लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई, हर घर जल और सोलर योजना की समीक्षा। रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट, जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा, बिना स्वीकृत नक्शे के बने 38 भवनों पर नोटिस। शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़, इस्लाम कबूल करने के बाद आयुष मलिक की घर वापसी, घर में मंदिर में पूजा पाठ, कुरैशी नाम की लड़की पर ब्रेन वॉश का आरोप। शामली में धर्म परिवर्तन का मामला, आयुष मलिक ने मोहम्मद अली बनाए जाने की जांच में बड़ा खुलासा किया, पुलिस सर्च में घर से चाकू और सैनिटाइजर बरामद, आई एम ऑन मिशन लिखे पन्नों की बढ़ाई गई जांच। पुलिस धर्मांतर केस में एक मौलवी की तलाश जारी, मौलवी शामली से फरार होकर अनवान और चेन्नई में कहीं छुपा है। आसनसोल की एसीएल ओपन कास्ट खदान से उठे धुएं का विशाल गुबार, इलाके में दहशत का माहौल। सबरीमला सोना चोरी मामले में बड़ा खुलासा, एसआईटी जांच में पूर्व देव सोम प्रमुख समेत कई अधिकारियों की भूमिका के संकेत। 5 जुलाई को आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस, सभी जिला मुख्यालयों में होगा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर, तेजस्वी यादव 5 जुलाई को पटना में नहीं रहेंगे, 1 जुलाई को ही स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। खामने के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन। भरत एनकाउंटर मामले, बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा बोले ये एनकाउंटर नहीं, पूरी तरह गलत कार्रवाई है, सीआईडी जांच की मांग। जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का खेल बेनकाब, कॉलेज संचालक और स्टाफ समेत कई गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल नकल गैंग का पर्दाफाश, मामा भांजे और चाचा भतीजे समेत कई गिरफ्तार। 45 छात्रों को पैसे लेकर पास कराने की साजिश, परीक्षा केंद्र पर नकल कराने की योजना फेल। चौंकाने वाली बात, पूरे खेल में 2 कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर थे शामिल। टीडी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। पुणे केतन मर्डर मामले में आरोपी सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी। पुणे पुलिस ने कहा सिया और चेतन के फोन से डिलीट डेटा की रिकवरी कर फोरेंसिक जांच करनी है, साथ ही केतन के गायब पासपोर्ट पर सिया से सवाल जवाब। केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के भाई ने एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव पर लगाए गंभीर आरोप, भेजा कानूनी नोटिस।
सिया गोयल के भाई का दावा, आशुतोष श्रीवास्तव हमारे वकील नहीं है, धोखे से हस्ताक्षर और धमकी देने के आरोप। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, कई अहम सुधारों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री की सेशेल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न, सेशेल्स दौरे को बता सार्थक, बोले दोनों देशों के लिए अगले 50 साल नवाचार और साझा समृद्धि के होंगे। द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दौरे पर, 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। संसदीय समिति नीट यूजी री एग्जाम और एनटीए सुधारों की समीक्षा करेंगी, 1 जुलाई को अहम बैठक। शिक्षा में आए के प्रभाव पर भी चर्चा, विशेषज्ञ संस्थाएं समिति के सामने रखेंगे सुझाव। सुल्तानपुर में राहुल गांधी मानहानि मामले में स्पेशल डिविजनल कोर्ट में सुनवाई, सीडी वॉइस मिलान और फोरेंसिक जांच की मांग पर दोनों पक्षों में बहस। कर्नाटक की भाषा नीति को लेकर नया विवाद आया सामने, राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सीबीएसई कक्षा 6 के लिए कन्नड़ को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के निर्देश को वापस लेने की मांग की। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, राज्य में कन्नड़ पहले से ही पहली और दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य है, इसलिए तीसरी भाषा के तौर पर इसे लागू करने की जरूरत नहीं है। पैगंबर मोहम्मद पर नाजिया इलाही ने दी आपत्तिजनक टिप्पणी, विरोध में अटल समाज सेवा कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का शुभारंभ, 2 दिन तक चलेगा सांस्कृतिक महोत्सव। मैंगलुरु तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 मछुआरों की जान बचाई। समुद्र में डूबती नाव से सुरक्षित निकाले गए सभी 6 क्रू मेंबर्स, सचेत जहाज ने दिखाई तत्परता। खराब मौसम में कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी, रात भर चले ऑपरेशन में सफल बचाव कार्य। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर पिघलने से नाले में अचानक बाढ़, सड़क टूटने के साथ ही 50 से ज्यादा पर्यटक फंसे। एमपी के खरगोन में झमाझम बारिश से मोनी नदी उफान पर, कई बस्ती और खेतों में बाढ़ का पानी भरा। खरगोन में पहली बारिश से बड़ी लोगों की मुश्किल, साथ ही जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश से किसानों को राहत। जालना में मूसलाधार बारिश, बारिश से चलते नाले में आई बाढ़, पानी में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे हैं सफर। नोएडा के कुछ हिस्सों में कल जोरदार बारिश, सेक्टर 16 में तस्वीरें आई सामने। मुंबई में जमकर हो रही बारिश, कई इलाकों में जलभराव, यातायात मुंबई में कई जगहों पर बाधित। मुंबई में आने वाले हफ्ते में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पालघर में रेड अलर्ट। नवी मुंबई में जोरदार बारिश, एपीएमसी मार्केट में जमा हुआ कई फीट पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। देहरादून में पार्किंग बने रणभूमि, मामले की सुनवाई के बाद कार के पीछे ले जाकर युवक की धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में युवक के सर और कान पर लगी गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने, पुलिस ने नामजद आरोपियों समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की नेफ्था पाइपलाइन में धमाके के बाद आग, 15 घायल, 2 की हालत गंभीर। आसमान छूती नजर आई आंख की लपटे, आंख से रेलवे ट्रैक प्रभावित, ट्रेन सेवाएं बाधित। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लगी लंबी कतार, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर लगाए हर हर महादेव के नारे। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को जवानों ने परखा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर इलाकों में चलाया जा रहा है सर्च अभियान, कई जगहों पर मुस्तैद दिखे जवान। इमरान हाशमी सारा फिल्म आवारापन 2 का टीजर लॉन्च, फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघर में होगी रिलीज। फिल्म अल्फा के प्रमोशन के जयपुर पहुंची अभिनेत्री आलिया भट्ट और शर्वरी, महिला बाइकर्स ने किया स्वागत। जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म का पोस्टर जारी, एनटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा शिव के पुत्र पार्वती के गौरव। वेलकम टू द जंगल का कमाल, 4 दिन में कमा डाले 100 करोड़ से ज्यादा। ईरान के राष्ट्रपति बोले, अमेरिका एमओयू का पालन करे तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति का संदेश, समझौता 2 तरफा प्रक्रिया, अमेरिका के कदम पर निर्भर करेगा आगे का रास्ता। ईरान ने कहा, फैसलों में तर्क और गरिमा, कार्रवाई में बेखौफ, रक्षा हमारी नीति, धमकियों का जवाब दृढ़ता से देंगे। ईरान ने साफ किया, आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ कोई बैठक तय नहीं, कतर में दोनों प्रतिनिधिमंडल के दौरे अलग अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम साबित हो सकती है।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब बैंक्स तक पहुंच गई है। पुलिस ने इस मामले एक बड़ा कदम उठाते हुए SBI सहित 7 बैंक्स को नोटिस जारी कर लेन देन की डिटेल्स मांगी। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ की। उन्होंने चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं होने की बात बार बार कही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सियासी माहौल गर्म है। आरोपी है कि कांग्रेस सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से सोमवार को 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उनका बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णय, चढ़ावे का प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों से जुड़े निस्तारण में कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। उनके बयान का मिलान अन्य गवाहों और उपलब्ध दस्तावेज से कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से चंपत राय ने कहा कि उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका ही नहीं है और जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए थे। संदिग्धों को पकड़ा भी है और FIR भी दर्ज कराई। उन्होंने स्वीकार किया कि कोई हेरफेर ना हो इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिंडू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया इसकी उम्मीद नहीं थी। VHP के अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आलोक कुमार जी, जिस तरीके से अब चंपत राय का नाम बार बार लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ में उन्होंने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा व्यक्ति हो, जो मुखिया हो, उसकी आंखों के नीचे, कान के नीचे सब कुछ चल रहा हो, धांधली हो रही हो, उसका खुद का ड्राइवर इन्वॉल्व हो और उसे कानों कान भनक नहीं हो?
1: मैं अभी आपकी बात सुन रहा था। आप बता रही थी कि 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी वैल्यूएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है। इसलिए मैं उनके बयान के किसी भी पार्ट की, क्योंकि वो मेरी जानकारी में भी नहीं है और अन्यथा भी, उस पर कमेंट नहीं करूंगा।
0: आलोक जी, जिस तरीके से अब पूरे मामले में जांच आगे बढ़ी है, 5 से 7 बैंक्स की भूमिका भी अब जांच के घेरे में है, उनसे तमाम ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच हो रही है इस वक्त?
1: मेरे पास में ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी या जांच कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी। पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो समग्र जांच करे। हमारी इच्छा और हिंदू समाज की इच्छा है कि बिना किसी को बचाए पूरी जांच हो। उत्तर प्रदेश की सरकार की इच्छा है कि जांच पूरी हो और जो भी जांच हो रही है उसके हर एक कदम पर आपकी भी नजर है और समाज की भी नजर है। इसलिए मेरे को
0: लेकिन एक चीज जो सबको जानना चाहता है आलोक जी, कि आखिरकार चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, अब वो सभी पदों से रिक्त हो गए हैं, कोई भी पद उनके पास नहीं है, क्योंकि इस्तीफा बहुत देरी से आया है। कहा गया कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जब पूरा मामला ही संज्ञान में आया था और सबसे ज्यादा नाम चंपत राय का चल रहा था, तो पहले इस्तीफा आ जाना चाहिए था अगर नैतिकता के आधार पर ही वो दे रहे थे तो।
1: जब ये कहा गया चारों ओर से कि अगर वो अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है, गवाहों पे दबाव आ सकता है, प्रमाणों से छेड़छाड़ हो सकती है और इसलिए जांच अप्रभावित रहे इसलिए वो त्यागपत्र दें, तो उन्होंने स्वयं होके त्यागपत्र दिया, FIR के 2 दिन में दिया। पर जो लोग पूछ रहे हैं कि त्यागपत्र दें और क्यों नहीं दिया, ऐसे जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनको मैं ये बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी जो एक महापुरुष अयोध्या आए थे और बड़े बयान दिए थे, वो एक समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, शराब घोटाले में उनका नाम आया, गिरफ्तार हुए, जमानत नहीं हुई और कहा कि मैं जेल में से मुख्यमंत्री के नाते शासन चलाऊंगा। राहुल जी और उनकी माता जी अपनी ही पार्टी के नेशनल हेराल्ड के केस में हेरा फेरी के मामले में जमानत पर हैं।
0: ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे आलोक जी, अभी ये चंदा चोरी पर ही फोकस रखते हैं, उस पर नहीं जाएंगे।
1: अच्छा ठीक है,
0: मैं ये जानना चाहती हूँ कि चंपत राय जी क्या अभी भी मंदिर के कामकाज में दखल दे रहे हैं, और जब 4 जून को उनको चंदा चोरी के बारे में पता चला था तो वो अक्यूज को यानी कि आरोपी को खुद पकड़ने क्यों चले गए थे?
1: मेरी जानकारी यह है कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र कंफर्म भी हुआ है और इसलिए मंदिर के संचालन को वो कर रहे हैं, ऐसा सच नहीं है।
0: किसी भी मामले में इस वक्त उनका हस्तक्षेप नहीं है
1: कि अगर किसी मैंने बताया कि मंदिर के संचालन को वो नहीं कर रहे और हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे।
0: और दूसरा सवाल मेरा 4 जून को लेकर था, वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो वीडियो है जिसमें आरोपी को ले जाया जा रहा है, ये वही आरोपी है जिसके बारे में चंपत राय कह रहे हैं कि मैंने ही जानकारी दी थी, मैं ही उसको पकड़ने में हेल्प कर रहा था, क्या है इसकी सच्चाई?
1: मैं बताऊंगा पर आप मेरा उत्तर पूरा होने दीजिए।
0: ठीक है बिल्कुल।
1: किसी भी प्रबंधन को अगर शिकायत मिलती है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी SIT या FIR करने से पहले ये तो उसकी स्वाभाविक जिम्मेवारी है कि वो इस मामले की प्राथमिक जांच तो कर ले कि ये शिकायत ठीक है कि नहीं है, उनका कर्तव्य था। जानकारी को ऐसे कैसे आगे भेजना डाकिये की तरह नहीं होता है, उसमें वो गए, प्रयत्न किया, लोगों ने अपने अपराध स्वीकार किए, लिख कर दिए, पैसा भी रिकवर हुआ। तो जब ये जानकारी पुख्ता हो गई तब उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा ट्रस्ट की ओर से कि SIT बना लीजिए, मामला गंभीर है, इसकी इन डेप्थ जांच होनी चाहिए। और जब SIT की रिपोर्ट प्रिलिमिनरी आई तो जो लोग उसमें नामजद थे और बाकी लोग, इन सब के खिलाफ FIR हो गई और उसके बाद में जांच अप्रभावित रही, उनका इस्तीफा भी हो गया। मुझे लगता है कि इन कदमों में क्वेश्चनेबल कुछ भी नहीं है।
0: अब आपका जवाब कंप्लीट हो गया हो तो मैं सवाल पूछूं सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठे, कहा गया कि इस्तीफा देरी से आया, नैतिकता के आधार पर आया ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले से ही जानकारी थी कि चंदा चोरी हो रहा है, वहां पर काउंटिंग में धांधली हो रही है, तो पहले से ही FIR दर्ज कराते, इतनी देरी से FIR क्यों दर्ज हुई? मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर SIT की प्राथमिक रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें जो नाम आए उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, तो ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर दी जाती है? मामला तो जनता से जुड़ा हुआ है ना, जनता चंदा दे रही है, जानना चाहती है कि क्यों प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है, क्यों सही तरीके से काउंटिंग नहीं हुई। जब SBI ने कहा कि काउंटिंग में धांधली हो रही है तो आपने क्यों संबंधित अधिकारियों को वहां से नहीं हटाया, क्यों आपने शिफ्ट में से उन लोगों को नहीं हटाया जो आपके करीबी थे, रिश्तेदार थे, ड्राइवर थे?
1: रिश्तेदार कोई नहीं है और मैं ऐसा मानता हूं कि आपने जितने प्रश्न पूछे हैं वो सब उसकी जांच का विषय है। पुलिस उन सब पक्षों की जरूर जांच करे, ऐसा हम चाहते, और जांच की पेंडेंसी में हम अपनी राय बांटना नहीं चाहते। दूसरी बात, आपने कहा कि उस जांच को सार्वजनिक क्यों नहीं करते, ये सवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछने का है। पर मेरा अंदाजा ये है कि जांच की टुकड़ों टुकड़ों में जानकारी बाहर जाने से गलत फहमी भी होती है और जांच में बाधा भी पड़ती है।
0: मैं सर जांच सार्वजनिक करने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है कि आप SIT कम से कम प्राथमिक रिपोर्ट सार्वजनिक करें, उसमें कौन से नाम है, वो किस तरीके से इन्वॉल्व थे, कहाँ पर उनका लेन देन से मामला जुड़ा हुआ था, किस प्रोसेस में उन्होंने धांधली करी, कम से कम ये डिटेल्स और नाम तो सामने आने चाहिए ना।
1: मैंने नाम तो सामने आ गए, आठों के नाम जिनके हैं,
0: इतने ही नाम है जिन पर FIR
1: अगर हुई है, बाकी सब भी करेंगे तो जांच में जी जितने नाम उसमें हैं SIT की रिपोर्ट में उन सब पर और 9वें कॉलम में एंड अदर्स लिख करके जितने लोगों पे आरोप लगाए जा रहे सब शामिल हैं। आठ के नाम वहां इसलिए आठ के यहां दिए, एंड अदर्स भी कहा है, एंड अदर्स में वो सब लोग शामिल हैं जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सबकी जांच होना चाहिए।
0: आपका ये मानना है कि SIT रिपोर्ट सार्वजनिक करने से जांच प्रभावित हो सकती है?
1: मेरा अंदाजा है, कारण क्या है ये यूपी सरकार को पता होगा। मेरा अंदाजा है कि अब तक जो जो चीजें सामने आई हैं वो अगर पब्लिक डोमेन में आ जाएं तो सब लोग सतर्क हो जाएंगे, अपराधी भी सतर्क हो जाएंगे। तो कब पब्लिक करना है ये हमने सरकार पे छोड़ना चाहिए।
0: सर ये जो अदर्स जिनका आपने मेंशन अभी किया है, इन अदर्स में SBI के अधिकारी भी हो सकते हैं, वो एजेंसी भी हो सकती है जिन पर काउंटिंग की जिम्मेदारी थी, अलग अलग लोगों को वहां पर एम्प्लॉय करने का ठेका उन्हें दिया गया था, ये वो अदर्स हैं?
1: वो भी हैं, और अगर आरोप चंपत जी, दिनेश जी पे, अनिल जी पे जैसे बताए जा रहे, गोपाल जी पे बताए जा रहे, उनकी भी जांच होनी चाहिए।
0: चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चढ़ावा चोरी का मामला है दरअसल, लगातार इसमें जो जांच हो रही है, कई प्रश्न हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिनका अभी जवाब दिया जाना बाकी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
3: Order for Jennifer C.
4: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
3: Yeah. Can you handle that much caffeine?
4: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
3: Oh, really? That's great.
4: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
3: Yeah, you just said that.
4: Did you say I just said that?
3: Yeah, I'm cutting you off.
4: I can't have any more? Why not?
5: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
9: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here.
10: England takes on Democratic Republic of the Congo in Atlanta, and the USA battles Bosnia and Herzegovina in Santa Clara. Both England and the USA are huge favorites. England is -1,000 to qualify for the next round, and USA is -630.
9: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
11: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
12: What about me, Jack? What about me?
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
13: Great balls of fire.
14: Well played, Jack. Well played.
11: Jack FM, playing what we want.
15: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
16: कुछ तो बात है इस दिल में।
17: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल, बोलो जुबां केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं।
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

चढ़ावा चोरी की जांच में 6-7 बैंक तक आंच, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड तलब, दान पात्र खोलने से लेकर गिनती तक लापरवाही के सबूत। मंदिर दर्शन से पहले कांग्रेस के कई नेता अयोध्या में हाजिर रहे, अजय राय ने आज तक से कहा जबरन किया गया नजरबंद, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे वापस। यूपी के रामपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ का, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कर रहे हैं आस्था की वकालत, समाजवादी पार्टी के राज में अन्याय का पर्याय था रामपुर। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही प्रक्रिया में बदलाव के संकेत। दिल्ली में आज से एसआर की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट, कुल 5 राज्यों में प्रक्रिया का आगाज।

0: Mit dem Namen Paris Lick. Nee, ist lang. Mit dem Telefon da. Haben wir gemacht können.
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी के शामली में एक हिंदू युवक का ब्रेन वॉश कर कुछ दिनों पहले उसका धर्मांतरण करा दिया गया। उसका मुस्लिम लड़की से निकाह भी कर दिया गया। वो रोज नमाज पढ़ता, मौलवियों के वीडियो देखता। अभी उसी लड़के ने एक बार फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। वो आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने वाले युवक ने घर वापसी कर ली है। हिंदू युवक के धर्मांतरण मामले में पुलिस आरोपी लड़की और उसके पिता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन के बाद आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने के बाद वो फिर अब आयुष बन गया है। वो अब घर वापसी कर चुका है, दोबारा सनातन धर्म अपना चुका है। जांच में कई अहम खुलासे भी हुए और सामने आया कि जब पुलिस को जानकारी मिली कि आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया, तब उसके घर पर पुलिस ने सर्च की और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ। साथ ही एक डायरी मिली जिसमें लिखा था आई एम ऑन मिशन। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाने के पीछे बड़ी साजिश थी। और इस पूरे मामले की जांच के लिए शामली पुलिस जुटी हुई है। आयुष का धर्मांतरण और निकाह कराने वाले मौलाना की तलाश तेज है। माना यह जा रहा है कि आरोपी मौलाना इरफान उर्फ फरार हो गया है, अंडमान या चेन्नई में कहीं छुपा हो सकता है। धर्मांतरण कराने वाले मौलाना की तलाश में अब कई अहम बातें सामने आ रही हैं। इरफान उर्फ हाकिम उसका नाम बताया जा रहा है। यही वो मौलाना है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यही आयुष के धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, आई एम ऑन मिशन लिखने का मकसद क्या हो सकता है डायरी में इतना बड़ा बड़ा?
2: बिल्कुल, देखिए ये जो कोड है इसको डिकोड करने की शामली पुलिस कर रही है कोशिश, क्योंकि जो शामली पुलिस है उसका शुरुआत से मामला है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला है और कहीं ना कहीं साजिश के तहत जो आयुष मलिक है उसको मोहम्मद अली बनाया गया। जब शामली पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली थी कि आयुष मलिक नाम का एक लड़का, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उसके बाद शामली पुलिस की टीम उसके घर पर गई, उससे बातचीत की और सर्च किया तो से एक पेज मिला जिसपे लिखा था आई एम ऑन मिशन। अब ये आई एम ऑन मिशन क्या था ये इसकी तहकीकात कर रही है और इसी तहकीकात के तहत एक मौलवी की तलाश की जा रही है जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है। और जब इसकी तहकीकात की जाने लगी तो ये फरार हो गया है और इसकी लोकेशन वो लगातार अंडमान और चेन्नई में मिल रही है, आपको बताऊं, और इसका नाम इरफान उर्फ हाकिम है। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, कुछ और मौलवी की तलाश है लेकिन इरफान उर्फ हाकिम इसकी तलाश शामली पुलिस को है। साथ ही साथ जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो एक बड़ा चाकू मिला, उसके अलावा डायरी में आई एम ऑन मिशन लिखा हुआ था। उसके बाद फिर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी शामली पुलिस ने शुरू की क्योंकि उसको लगा कि एक संवेदनशील मामला हो सकता है और साजिश के तहत आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया, जबकि दस्तावेजों में वो आयुष मलिक ही था, यानी किसी को यह मालूम नहीं था आयुष मलिक के अलावा। धीरे धीरे ये बात उसके परिवार वालों को पता चली। तो फिलहाल इस मौलवी की तलाश की जा रही है और साथ ही साथ डायरी में आयुष मलिक ने आई एम ऑन मिशन क्यों लिखा था इस कोड को भी डिकोड करने की शामली पुलिस कोशिश कर रही है। नेहा
1: बने रहिए हमारे साथ। इस बीच शामली करोड़पति मलिक परिवार ने आयुष के धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत की थी, तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की। आयुष से निकाह करने वाली मुस्लिम लड़की उसके पिता को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अब आयुष ने फिर से सनातन धर्म को स्वीकार लिया है, घर वापसी कर ली है। बेटे के इस कदम के बाद मलिक परिवार काफी खुश है।
0: मैं इस्लाम धर्म में चला गया था, परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
3: एक चेहरे दो पहचान, सही सुना सही देखा सही पहचाना इस युवक को। नाम है आयुष मलिक। यूपी के शामली के रहने वाले मलिक परिवार का इकलौता बेटा आयुष करीब 20 दिन पहले आपने आज तक पर मोहम्मद अली बने आयुष को देखा था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कैसे आयुष मलिक का धर्मांतरण कराया गया, उसे मोहम्मद अली बना दिया गया। इस बात का भी खुलासा हुआ था कि कैसे धर्मांतरण के बाद उसका निकाह रचा दिया गया। लेकिन अब वो मोहम्मद अली से दोबारा आयुष मलिक बन चुका है। इस बार बकरीद पर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने वाले अली अब फिर से आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है और अब वो पूजा पाठ में मगन है। ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के बाद आयुष पूरी तरह बदल गया था, या यूं कहें कि बदलने पर मजबूर कर दिया गया था। लेकिन वो ज्यादा देर तक मजहबी बहकावे में नहीं रह सका। उसके घर वापसी के बाद की ये तस्वीरें देखिए। अब वो अपने घर में अपनों के साथ पूजा पाठ में लीन है। वो मंत्रोच्चार कर रहा है और अपने पुराने दिनों को भुलाने में जुटा है।
0: माँ, मैं इस्लाम में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, आप मुझे माफ करना।
3: धर्मांतरण को ठोकर मारते हुए आयुष ने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। वो पूरी तरह से अपने घर लौट चुका है। परिवार वाले उसका स्वागत कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका मुंह मीठा कर रहे हैं।
2: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है, लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद

0: सा आइडिया आया और दूसरे पक्ष से जब पैसे की मांग प्रॉपर्टी नाम करने की बात और उधर उसकी दाढ़ी ये सब कुछ देखते हैं, मैं अपने दिमाग से देखा कि इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया। चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरेशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पर काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। शादी का निकाह नम्मा फर्जी निकाह नम्मा करा कर मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का।
1: धर्मांतरण के बाद कई बार आयुष को समझाने की कोशिश की गई थी, परिजनों के साथ साथ पुलिस ने भी पहल की थी, लेकिन आयुष दलील देता रहा कि उस पर किसी का दबाव नहीं था।
2: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
3: किसकी?
2: किसी की थी।
3: किसकी थी सर?
2: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
3: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था।
1: लेकिन कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। आयुष मलिक के लौट आने के बाद से पिता देवराज मलिक भावुक है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उनका बेटा अब उनके साथ है। आयुष के धर्मांतरण के खिलाफ उसके परिवार ने FIR दर्ज कराई थी। उस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार किया था। बाद में एक और गिरफ्तारी हुई और अब तक धर्मांतरण की साजिश को लेकर जांच जारी है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।
4: अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, मुझे याद है जब आपने आयुष से इससे पहले इंटरव्यू किया था तो उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया कि किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपनी मर्जी से उन्होंने धर्मांतरण किया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनका वापस सनातन धर्म में वापसी भी हो गई, पूरा दिमाग बदल गया, क्या हुआ ऐसा इस दरमियान?
5: देखिए, जब मैंने इंटरव्यू किया था, इस पूरे मामले का खुलासा किया था, उस दौरान भी जो आयुष मलिक के पिता हैं, करोड़पति व्यवसायी हैं शामली के, उन्होंने आरोप लगाया था इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी, उसने एक प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन कराया, दिल्ली में ले जाकर उसके बाद निकाह कराया और उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी है वो हड़पने की कोशिश थी। आयुष मलिक लंबे वक्त से इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था, वो मस्जिदों में जाने लगा था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता चल नहीं पा रहा था। लेकिन जब ईद के दौरान वो ईदगाह गया, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, उसके बाद उसके पिता को पता चला, उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई और तब इस मामले में शामली पुलिस ने खुलासा किया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा धर्म परिवर्तन कराया गया है। उसको दिल्ली लेकर गई थी चांदनी कुरैशी और उसके परिवार वाले और वहां पर फर्जी निकाह नामा बनवाया था।
4: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अरविंद। वहीं आयुष मलिक मोहम्मद अली बन चुका था, वो बड़ी साजिश का शिकार हो चुका था और उसी साजिश के तहत उसका धर्मांतरण हुआ था। उसके परिवार वालों को भरोसा था कि पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई करेगी और एक दिन सच सामने आएगा। आखिरकार वो दिन आ गया।

आयुष मलिक के खिलाफ बड़ी साजिश हुई थी। ये साजिश थी 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हड़पने की, उसके बिजनेस पर कब्जा जमाने की। शामली के मलिक परिवार का आयुष सॉफ्ट टारगेट बन गया था। उसे साजिश में फंसाने के लिए गिरफ्तार आरोपी चांदनी और उसके परिवार ने जाल बिछाया। परिवार ने चांदनी को आगे कर दिया। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी मौके की तलाश में जुटी रही और इस साजिश में चांदनी के पिता इस्लाम कुरैशी और भाई भी मदद करते थे। साजिशन चांदनी को पहली बार मौका मिला 2018 में। आरोपों के मुताबिक उसी साल आयुष से चांदनी पहली बार मिली, तभी से वो संपत्ति हड़पने के लिए संभल संभल कर कदम आगे बढ़ाने लगी। आयुष के धर्मांतरण और निकाह की साजिश कैसे आगे बढ़ी, इसकी कड़ियों को भी समझ लीजिए और जान लीजिए। दरअसल आयुष शामली में अपने मेडिकल स्टोर संभालता रहा है। उस मेडिकल स्टोर पर गिरफ्तार चांदनी का भाई आस मोहम्मद भी काम करता था। आस मोहम्मद को पता था कि आयुष अकूत संपत्ति का मालिक है। तभी 2018 में आयुष के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसी के इलाज के सिलसिले में वो स्थानीय अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में ही बतौर फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी ड्यूटी कर रही थी। फिजियोथेरेपिस्ट के बहाने चांदनी कुरैशी आयुष मलिक से मिली और उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। चांदनी जिम ट्रेनर भी थी, तो दोनों की मुलाकात का सिलसिला आने वाले दिनों में जिम में भी जारी रहा। समय बीतता रहा, नजदीकियां बढ़ती गई, अब बात निकाह तक आ गई।

0: आरोपों के मुताबिक 5 साल की दोस्ती के बाद 2023 में चांदनी का परिवार आयुष को लेकर दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली में ही आयुष मलिक को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था। उसे मोहम्मद अली के रूप में नई पहचान दी गई। लगे हाथ चांदनी से उसका निकाह करा दिया गया। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को कोई निकाहनामा नहीं मिला था।
1: जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो,
2: दिखाओ
1: बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं, तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो, आपको ताकत आएगी।
2: किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे।
1: यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा, धीरे धीरे करके सीखा जाना, ये नहीं है कि पढ़ा और मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए, तो धीरे धीरे करके सीख रहा था।
0: आयुष मलिक अली मोहम्मद बन चुका था। जब परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी तो उसने आज तक से खास बातचीत में बताया था कि वो पाकिस्तान के मौलाना की तकरीरें भी सुनता था।
2: और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब किस
1: देखता था? ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था।
2: डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
1: धर्म परिवर्तन की तरह,
2: अच्छा,
1: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
0: शामली में धर्मांतरण के इस मामले के खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया था। अब परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। इस मामले में पुलिस ने SIT गठित की थी जिसकी तफ्तीश अब तक जारी है। दिल्ली में आयुष का धर्मांतरण और निकाह कराने वाले मौलाना की तलाश तेज है। माना जा रहा है कि फरार मौलाना अंडमान या चेन्नई में कहीं छिपा हुआ है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।
3: और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां एक बड़ी साजिश सामने आई है। ऐसी साजिश जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक शख्स ने व्हाट्सएप कॉल कर 50 लाख रुपए उससे मांगे गए, नहीं देने पर उसे और उसके बच्चों को गोली मारने की धमकी तक दे दी गई। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पहली गिरफ्तारी हुई और कुछ ऐसा हुआ जिस पर पुलिस भी यकीन नहीं कर पा रही है।
4: बिजनेसमैन पति से पत्नी की उगाही वाली साजिश, पत्नी की गैंगस्टर से डील, पति को धमकी भरा कॉल, गैंगस्टर का कॉल आया, बिजनेसमैन को धमकाया। दिल्ली में हुई इस वारदात से हर कोई हैरान है। रियल टाइप लगने वाले साहिब, बीवी और गैंगस्टर जैसी ये साजिश बिल्कुल रियल है। लक्ष्मी नगर के रहने वाले पीड़ित कारोबारी बिजनेसमैन सचिन जैन को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी पत्नी ही उनसे उगाही वाला अपराध करेगी।
5: आपका और आपकी पत्नी का रिलेशन कैसे
6: था? नहीं, मेरा उनका रिलेशन ठीक था, छोटी मोटी बातें सभी घर में हो जाती हैं, लेकिन इतना भी वो नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएंगी, शायद मैंने भी कभी जीवन में नहीं सोचा। एक सिंगल आदमी का मास्टरमाइंड इतना बड़ा नहीं हो सकता। उनको कुछ ना कुछ तो समझाया होगा, कुछ पढ़ाया होगा, या जैसे भी बहकाया होगा। उनकी बड़ी बहन अभी भी ये कांड होने से पहले रह के गई है और हर महीने 1.5 महीने बाद मेरे घर में आ जाती थी।
4: वारदात इसी 14 जून की है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाले कारोबारी सचिन जैन को गैंगस्टर का व्हाट्सएप कॉल आया था। 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। विदेशी नंबर से धमकी भरे कॉल कर 50 लाख मांगे गए। कॉल करने वाले गैंगस्टर के गुर्गे ने पूछा, सचिन बोल रहे हो? सचिन जैन ने जवाब दिया। तब फोन करने वाले ने कहा, मैं गोगी गैंग से बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते में 50 लाख का इंतजाम कर लो, पैसे नहीं मिले तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गोली मार देंगे। गैंगस्टर के गुर्गे ने सचिन जैन को उनके घर और दुकान की कई तस्वीरें भी भेजी। ऐसे धमकी भरे कॉल से बिजनेसमैन सचिन जैन के होश उड़ गए।
7: सचिन जैन 14 जून को वो अपनी दुकान पर बैठे थे जब उनके पास विदेश के नंबर से, अमेरिका के नंबर से एक कॉल आती है। उन्होंने काट दिया, बार बार कॉल आती है और आखिरकार जब उनकी बात होती है तो सामने वाले ने खुद को एक बड़े गैंग से जुड़ा हुआ बताया और 50 लाख रुपए की रंगदारी मानी। लेकिन चूंकि मामला एक्सटॉर्शन का था, विदेश से जुड़ा हुआ था, गैंगस्टर्स का नाम आ रहा था, इसलिए ये पूरी जांच स्पेशल सेल को दी गई और स्पेशल सेल ने जांच शुरू की। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर सोनीपत से रजत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया।
4: तब तक सचिन अपनी पत्नी की साजिश से बेखबर थे। डरे सहमे वो पुलिस के पास पहुंचे। 18 जून को FIR दर्ज हुई। तफ्तीश तेज हो गई। जांच का दायरा हरियाणा तक पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर कॉल करने वाले की लोकेशन को ट्रेस किया। सोनीपत से रजत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक सचिन जैन अपनी पत्नी और साली की साजिशों से अनजान थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो हैरान रह गए।
6: क्या होता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करती है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। एक लड़का रजत नाम का है, उसको गिरफ्तार करती है और मेरी वाइफ को उठाती है। तो लेकिन कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ अकेले इसमें इन्वॉल्व है या पूरी प्लानिंग इतनी आगे तक वो नहीं जा सकती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनपे एक्शन नहीं हो रहा और जिनके नाम खुल के सामने नहीं आ रहे, और मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ खुल के सामने आए और जो इसमें सही में अपराधी है उनको पकड़ा जाए। जैसे कि मेरी साली है, सीमा है, एक उनके हस्बैंड है, तो सभी से गुत्थी सुलझी जाए, समझी जाए, क्योंकि उनका तो आना जाना था नहीं हरियाणा, वो साली ही मेरी यहाँ पे आती थी।
4: पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार रजत सचिन की पत्नी सपना जैन से लगातार संपर्क में था। वो सपना की बहन से भी बातें कर रहा था। जांच आगे बढ़ी तो साजिश छिप नहीं पाई। सपना और रजत ने मिलकर कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने की साजिश रची थी। खुलासे के मुताबिक सचिन जैन उन पर हमला करने और उनकी मां की हत्या की साजिश थी। आरोपी रजत के मोबाइल की जांच में खुलासा हुआ है कि अमेरिका में बैठे गैंगस्टर के संपर्क में था। पुलिस ने कई अहम चैट भी बरामद की है जिनमें सपना जैन और गोगी गैंग से जुड़े लोगों के बीच बातचीत मिली है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि सचिन और सपना की शादी 2007 में हुई थी। तब से दोनों में घरेलू विवाद चल रहा था। अब इस मामले में पुलिस ने रजत के साथ साथ सपना को भी गिरफ्तार किया है और साजिश में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: वक्त शुरू से ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: Order for Jennifer C.
11: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
10: Yeah. Can you handle that much caffeine?
11: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
10: Oh, really? That's great.
11: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
10: Yeah, you just said that.
11: Did you say I just said that?
10: Yeah, I'm cutting you off.
11: I can't have any more? Why not?
12: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
13: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
14: England takes on Democratic Republic of the Congo in Atlanta, and the USA battles Bosnia and Herzegovina in Santa Clara. Both England and the USA are huge favorites. England is -1,000 to qualify for the next round, and USA is -630.
13: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
15: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
16: Sokudo.

0: 32 साल बाद आखिरकार हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबित जल बंटवारे के मुद्दे पर समझौता हो गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने MOU साइन किया। यह समझौता 32 साल पहले हुआ था, लेकिन नहर व्यवस्था न होने से इस पर अमल नहीं हो पाया। अब इस नए समझौते के तहत मॉनसून के महीनों में हथनीकुंड बैराज से एक भूमिगत जल पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
1: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है।
0: समझौते के बाद रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि यमुना का अतिरिक्त पानी राजस्थान भेजे जाने से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में भूजल रिचार्ज कम होने की आशंका है।
2: पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये कम्युनिकेशन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा माननीय वो पीने के लिए उपयोग होगा।
0: राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जमीन अधिग्रहण, पाइपलाइन निर्माण और निगरानी की जिम्मेदारी दोनों राज्यों के बीच तय होगी। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
6: Pepsi Prebiotic Cola, in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
6: Pepsi Prebiotic Cola, in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
7: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: Sanitary solutions.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: चढ़ावा चोरी की जांच में 6 से 7 बैंकों तक आज, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड तलब, दान पात्र खोलने से लेकर गिनती तक लापरवाही के सबूत। मंदिर दर्शन से पहले कांग्रेस के कई नेता अयोध्या में हाउस अरेस्ट, अजय राय ने आज तक से कहा जबरन किया गया नजर बंद, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे वापस। तेईस विपक्षी पार्टियों ने SIR और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, चीफ जस्टिस को लिखा खत, दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज SIR की प्रक्रिया शुरू, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। यूपी के शामली में धर्मांतरण कराने वाले मौलाना की तलाश, अंडमान या चेन्नई में मिली लोकेशन, ब्रेन वॉश के बाद आयुष को बनाया था अली, अब दोबारा बना सनातनी।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach in association with Bharat.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दशरथ, 2 बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। तो जैसा कि होता है आपको बता देते हैं कि न्यूज रूम लाइव में आज कौन सी बड़ी खबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात होगी अयोध्या की, कि अयोध्या में चंदा चोरी के अभी कितने किरदार हैं और कितने राजदार हैं, क्योंकि जांच हो रही है, एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। जो बड़ी खबर होगी दूसरी वो भी अयोध्या से ही जुड़ी होगी और अयोध्या की ही बात यहां पर की जाएगी, कि चंदा चोरी के चैप्टर में अब काल ने भी की एंट्री हुई है, किसने कराई, किसके लिए की, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो बड़ी खबर होगी जयपुर से, राजस्थान से, जहां पर एक अस्पताल में एक कमरे में ताला लग गया तो बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनकी सांस अभी अटकी हुई है, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है, किसकी लापरवाही, इसके बारे में बात होगी। और ठीक कुछ देर बाद यानी 2:30 बजे हम आपको बताएंगे मौसम का डबल अटैक, डिटेल में बताएंगे कहां पर क्या असर होने वाला है मौसम को लेकर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हस्ताक्षर करके एक खत भेजा गया है, और ये खत किसकी तरफ से भेजा गया है, 23 राजनीतिक दलों ने एक खत लिखा है और SIR को लेकर विरोध जताया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष ने SIR के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, 23 राजनीतिक दलों ने एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए, हालांकि इस मुद्दे पर कुछ हफ्ते पहले ही इंडिया ब्लॉक की बैठक में केवल 21 दल शामिल हुए थे। अब ये पत्र भारत के चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में है। DMK और आम आदमी पार्टी सहित 23 राजनीतिक दलों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनकी भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, इस खत के बारे में बताइए जो 23 राजनीतिक दलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है।
2: एक बार फिर विपक्षी दलों ने कोशिश की है कि बासी कढ़ी में उबाल लाया जाए, और SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में लंबी सुनवाइयों के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी है, और ये कहा था कि ये निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिकार है SIR कराने का। प्रक्रिया को लेकर भी बहुत सारी चीजें जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा था बदलाव होना चाहिए, बदलाव किए गए, लेकिन एक बार फिर ये 23 विपक्षी दल हैं और एक निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल हैं जिन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं, और वो चिट्ठी खुला पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के नाम भेजा गया है, और अब उम्मीद की जा रही है, विपक्षी दल ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस इसे जनहित याचिका में तब्दील करके इस मामले पर सुनवाई करें या इस पर आगे क्या किया जाए। तो अपनी चिंताओं से उन्होंने चीफ जस्टिस को अवगत करा दिया है, अब चीफ जस्टिस को देखना है कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए या ठंडे बस्ते में रहने दिया जाए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से यह पहल कर दी है।
0: लेकिन संजय, इसमें विशेष तौर पर कहा क्या गया है SIR के बारे में, हमने देखा विपक्ष पहले भी सवाल उठाता रहा है, लेकिन इस खत में किन बिंदुओं को जिक्र किया गया है?
2: इस खत में उन्हीं बिंदुओं को एक बार फिर हाईलाइट किया गया है जिन बिंदुओं की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के जरिए पहले भी की जा चुकी है, जिसमें ये कहा गया कि एक तो निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है जिस तरह से ये SIR की प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि अब 17 राज्यों में SIR का अलग अलग चरणों में चल रही है, दिल्ली में आज से शुरू हुई, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र और झारखंड में भी आज से प्रक्रिया शुरू हुई है, घर घर जाकर BLO लोगों को गणना पत्र बांट रहे हैं। तो इसमें पहला मुद्दा ये उठाया गया कि मनमाने तरीके से प्रक्रिया मनमानी है, जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये एक तरह का नागरिकता का परीक्षण है जिसका अधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है, यानी निर्वाचन आयोग अपने दायरे से बाहर जाकर SIR की प्रक्रिया तय कर रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लगाम लगा सकता है, रोक सकता है और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए कह सकता है। तो वो तमाम सवाल जिन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, वो सारे तमाम सवाल इस चिट्ठी में भी उठाए गए हैं और चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की गई है कि चीफ जस्टिस इसमें हस्तक्षेप करें और इस चिट्ठी को जनहित याचिका का रूप देकर भी इस पर आगे सुनवाई करने की कोशिश करें।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी। तो ये तो 23 विपक्षी दलों का चीफ जस्टिस इंडिया को जो पत्र लिखा गया है, खत लिखा गया है SIR को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, वो हम आपको बता रहे थे। और आइए अब बात करते हैं अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या को लेकर पिछले कुछ लंबे वक्त से काफी चर्चाएं चल रही हैं। चंदे की बात चल रही है, चंदे की चोरी की बात चल रही है, लेकिन इस मामले में क्या अपडेट है आज का, वो हम आपको बता देते हैं। बड़े अपडेट आपको बता देते हैं, अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ होगी। अविनाश शुक्ला जो आरोपित है, अब जांच टीम को ये परमिशन मिल गई है, अब जेल में पूछताछ की इजाजत मिल गई है पुलिस को, जो जांच टीम है जो चंदा चोरी के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में जांच कर रही है, तो जेल में पूछताछ की जाएगी। अब अकेला अविनाश तो है नहीं, है ना, और भी कई लोग हैं, तो उनकी भी अब इजाजत मांगी जा सकती है। साथ ही कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया अयोध्या में। अजय राय को आपने देखा होगा आज तक पर, उन्होंने कहा था कि हमें नजरबंद कर दिया गया है, हमें दर्शन नहीं करने दिए जा रहे। अब जब आम आदमी पार्टी दर्शन कर सकती है तो हम दर्शन क्यों नहीं कर सकते, ये अजय राय कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। चौथा बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, राम मंदिर जाने की तैयारी में थे कांग्रेस के नेता, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमको तो निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, कमरे में नजरबंद कर दिया गया है, और ऐसे में वो अपनी पीड़ा मीडिया को बता रहे हैं कि गलत हो रहा है उनके साथ। पांचवा बड़ा अपडेट, चंपक राय से पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, बैंक से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा गया है और 6 से 7 बैंक हैं, अकाउंट भी कई हैं, 5 साल का रिकॉर्ड मांगा गया है और 7 बैंकों से रिकॉर्ड देने को कहा है कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताइए कि क्या क्या ट्रांजेक्शन उसमें हुआ है। 7 बैंक है, कई अकाउंट है, अकाउंटिंग और काउंटिंग स्टाफ बदलने की तैयार, ट्रस्ट नहीं था, जबकि बैंकों ने कहा था कि भाई काउंटिंग स्टाफ चेंज कर दीजिए, बैंक की सिफारिश को दरकिनार किया गया ट्रस्ट की तरफ से, तो इस पर भी अब जांच होगी कि ऐसा क्यों हुआ। 17 साल बाद RMO का तबादला भी हुआ है, तो ये बड़े बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में बड़े अपडेट क्या हैं और अब जांच के शोर आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी हम आपको बता दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, और उनका बयान आया है और वो कह रहे हैं कि SIT रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि SIT रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो गई तो उससे क्या होगा, उससे जो अपराधी हैं वो सतर्क हो जाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार का कहना है कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई तो जितने भी अपराधी हैं वो हो जाएंगे सतर्क, और ऐसा नहीं होना चाहिए।
3: कि अगर SIT की प्राथमिक रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें जो नाम आए उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, तो ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर दी जाती है? मामला तो जनता से जुड़ा हुआ है ना, जनता चंदा दे रही है, जानना चाहती है कि क्यों प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है, क्यों सही तरीके से काउंटिंग नहीं हुई। जब SBI ने कहा कि काउंटिंग में धांधली हो रही है तो आपने क्यों संबंधित अधिकारियों को वहां से नहीं हटाया, क्यों आपने शिफ्ट में से उन लोगों को नहीं हटाया जो आपके करीबी थे, रिश्तेदार थे, ड्राइवर थे।
4: रिश्तेदार कोई नहीं है, वो सब उसकी जांच का विषय है, पुलिस उन सब पक्षों की जरूर जांच करे ऐसा हम चाहते, और जांच की पेंडेंसी में हम अपनी राय बांटना नहीं चाहते। दूसरी बात, आपने कहा कि उस जांच को सार्वजनिक क्यों नहीं करते, ये सवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछने का है, पर मेरा अंदाजा यह है कि जांच की टुकड़ों टुकड़ों में जानकारी बाहर जाने से गलत फहमी भी होती है और जांच में बाधा भी पड़ती है।
3: अदर्स जिनका आपने मेंशन अभी किया है, इन अदर्स में एसबीआई के अधिकारी भी हो सकते हैं, वो एजेंसी भी हो सकती है जिन पर काउंटिंग की जिम्मेदारी थी, अलग अलग लोगों को वहां पर एम्प्लॉय करने का ठेका उन्हें दिया गया था, ये वो अदर्स हैं?
4: वो भी हैं। और अगर आरोप चंपत जी, दिनेश जी पे, अनिल जी पे जैसे बताए जा रहे, गोपाल जी पे बताए जा रहे, उनकी भी जांच होनी चाहिए।
0: तो ये तो आलोक कुमार अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन बयानबाजी भी काफी हो रही है, जैसे तैसे मामला आगे बढ़ रहा है, जांच आगे बढ़ रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो क्या कह रहे हैं कि वो विपक्ष को काल नहीं बता रहे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने विपक्ष को कालनेमी बता दिया, विपक्षी दलों को। राम भक्तों पर लाठी गोली चलाने वाला करार दे दिया, जोरदार पलटवार किया विपक्ष पर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में।
5: अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी।
0: तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अंजाम तक तो पहुंचेगी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई खुलासे भी सामने हो रहे हैं। अब ये खुलासा भी हुआ है कि भ्रष्टाचार की खबर तो पहले ही ट्रस्ट को लग गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने किया क्या, ट्रस्ट ने उस पर मिट्टी डालने का काम किया।
6: अब ये किसी से छिपा नहीं है कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने इससे खिलवाड़ किया। खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप सब कुछ देखता रहा। कैसे, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। एसबीआई ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। एसबीआई की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। सवाल है कि ट्रस्ट के पदों पर बैठे वो लोग कौन थे जिन्होंने बैंक को शक के दायरे में आने वाले चेहरों को हटाने से रोका? चढ़ावा चोरों के वो सरपरस्त कौन थे? आपको बता दें, ऐसा आरोप विपक्ष पहले ही लगाता रहा है, तो क्या चढ़ावा चोरों को संरक्षण देने के ये आरोप सही थे?
7: अयोध्या में जो घपला चल रहा था, 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है।
6: चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 चेहरों को दबोचा गया है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये तो छोटी मछलियां हैं, बड़े और विशाल काय मगरमच्छों को पकड़ना अभी बाकी है। इन्हें पकड़ने का जिम्मा अब यूपी पुलिस और एसआईटी पर है, जिसका फोकस अब चोरी के पैसे की लेन देन को खंगालने पर है। खबर है कि पुलिस ने 7 बैंकों से आरोपियों और ट्रस्ट के 5 साल के रिकॉर्ड मांगे हैं, विस्तृत अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, केवाईसी डॉक्यूमेंट, जमा रिकॉर्ड और दूसरी बैंकिंग जानकारी मांगी गई है। मकसद ये पता लगाना है कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ और क्या भक्तों के चढ़ावे के पैसे को गलत तरीके से कहीं और भेजा गया या संदिग्ध लेन देन हुआ। जांच के तहत ही पुलिस की एक टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या धाम ब्रांच गई, जहां ट्रस्ट का मुख्य दान खाता है। वहां से बैंकिंग रिकॉर्ड और प्रक्रिया से जुड़े डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए गए। जांच टीम ने 6 अन्य बैंकों का भी दौरा किया ताकि आरोपियों के खातों से जुड़े रिकॉर्ड हासिल किए जा सकें। अयोध्या में SBI की नया घाट ब्रांच भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रांच में 8 में से 7 आरोपियों और मंदिर ट्रस्ट के खाते हैं।
8: सूत्रों के मुताबिक बैंक ये बताता है कि 3 महीने पहले अलर्ट किया गया था टेंपल ट्रस्ट को कि कुछ ना कुछ अनियमितता हो रही है चढ़ावे को लेकर। उन्होंने ये भी एडवाइस किया था कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको उनका बदलाव किया जाए, लेकिन उस वक्त ट्रस्ट ने बैंक की नहीं सुनी और उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हालांकि पुलिस ने यह भी पूछा कि आपने फिर आगे बात क्यों नहीं बढ़ाई, तो बैंक सूत्रों ने बताया है कि जवाब में ये कहा गया है कि टेंपल ट्रस्ट की तरफ से प्रेशराइज भी किया गया कि आपको बहुत कुछ इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से टेंपल ट्रस्ट ने जो है मना कर दिया था?
0: तो देखिए, जांच आगे बढ़ रही है तो उसमें पता चल रहा है कि पुलिस ने चंपत राय से भी पूछताछ की। अब जब चंपत राय से पूछताछ की तो चंपत राय ने अपना बचाव किया और चंपत राय ने बोला कि हम हाथ पर हाथ धरे थोड़ी ना बैठे थे, जैसे ही हमें पता चला हम एक्टिव हो गए।
9: चंपत राय आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक एक ऐसी शख्सियत जो केंद्र में रही, वो अब सवालों के घेरे में है, जिन पर आरोपों का शिकंजा हर दिन कसता जा रहा है, जिनके इस्तीफे को लेकर आवाज लगातार बुलंद हो रही है। उसी चंपत राय को हालात ने ऐसे मोड़ पर लाखड़ा किया है कि उन्हें पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा। खबर है कि पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। उनसे प्रशासनिक निर्णय और चढ़ावा प्रबंधन पर सीधे सवाल किए गए। उनसे कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निपटारे के बारे में सवाल किए गए। आज तक को चंपत राय से पूछताछ के बारे में कई एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो पुलिस से चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की इस जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, FIR भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। दरअसल चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत की वजह टिन्नू यादव है। टिन्नू से नजदीकी उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। जाहिर है पुलिस ने टिन्नू से उनके रिश्तों को लेकर सवालों की बौछार कर दी। इस पर चंपत राय बस इतना कह पाए, टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा, रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? इस पर चंपत राय का जवाब था, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें केवल मैं ही नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही।
8: जांच का दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी, वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
9: चंपत राय ही वो कड़ी है जिनसे पुलिस को अब दूसरे आरोपियों से पूछताछ में सामने आए खुलासों का मिलान करना है। चंपत ने क्या बताया और क्या छिपाया, इसी पर जांच एजेंसी चंदा चोरी के तमाम सिरे को जोड़ पाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई खलबली मचाने वाले हैं। ऐसा ही वाकया RMO अर्जुन देव का है। RMO यानी रेडियो मैनेजमेंट ऑफिसर, जो 2009 से यानी 17 साल से अयोध्या में तैनात थे। कई बार तबादले के आदेश हुए पर हर बार आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जांच की जा रही है कि एक ही जिले में 17 वर्ष तक तैनाती की वजह क्या रही। सच कहा जाए तो जांच एजेंसी के लिए चढ़ावा चोरी की तह तक जाने की बड़ी चुनौती है। उसके सामने सुलगते सवालों का दरिया है जिसे पार कर उसे आगे बढ़ना है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, और ये बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर एक कमरे में ताला लगा रह गया, इस वजह से कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों का इलाज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कमरे में तो ताला लगा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के भीतर डॉक्टरों के आपसी तालमेल की कमी कही है या फिर कथित तौर पर निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का खेल कही है। पिछले एक महीने से 11 मरीजों की जिंदगी वेंटिलेटर पर आ गई है और उसके पीछे की वजह यह है कि नेफ्रोलॉजी विभाग के यूनिट हेड के रिटायर होने के बाद 31 मई से 11 मरीजों की फाइल ही नहीं मिली, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा उनका। 31 मई 2026 को रिटायरमेंट हो गए थे डॉक्टर धनंजय अग्रवाल का और उनके कमरे में लगा है ताला। अब जो नए डॉक्टर आए हैं उनका ये कहना है कि भाई ताला लगा हुआ है कमरे में तो ऐसे में फाइलें मिल नहीं पा रही, इलाज नहीं हो पा रहा। ना जाने कितने मरीज हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अब जिन मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिनकी फाइलें नहीं मिल रही हैं, क्यों? क्योंकि कमरे के ताले में बंद हैं, उनके परिजन क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं।
10: फाइल उनको सब जमा कर रिपोर्ट सब जमा कर दी, एनओसी भी आ गई, हमारी पुलिस वेरीफाई भी आ गई, सब हो गया है, बस ये अब ऑपरेशन नहीं हो रहा है, बस फाइल अंदर पड़ी है, फाइल अंदर पड़ी, ऐसे बता रहे हैं। वो तो ये नीचे वाले करते हैं, जो असिस्टेंट है वो सर से बात होती नहीं है।
0: क्या कहते हैं नीचे वाले?
10: फाइल अंदर पड़ी है, फाइल अंदर पड़ी है, सर आएंगे तो ही फाइल लॉक खुलेगा, तो ही फाइल बाहर निकलेगी, तो ऑपरेशन होगा। यूँ
0: सर तो 31 मई को गए, उससे पहले क्या बोलते थे?
10: हो जाएगा 8 दिन में, हो जाएगा 8 दिन में, हो जाएगा। उस हमने 22 तारीख को फाइल जमा कर रखी है वहाँ पे।
11: सर हमारे को 6.5 महीने हो गए यहाँ, कमरा किराया लेकर रहते हैं, दो टाइम हॉस्पिटल जाए जाते हैं, डायलिसन करवा लेते हैं, एक दिन छोड़ रहे एक दिन, और जो दिक्कत आती है तो हम बताते हैं, ट्रीटमेंट कुछ मिल जाता है बस फिर ही काम, पर मतलब स्थायी इलाज नहीं हो रहा भाई, इसका स्थायी इलाज हो जाए। सर हम तो फाइल कंप्लीट होने के बाद में इंतजार ही कर रहे हैं 2 महीने से, भाई अब होगा अब होगा अब होगा अब होगा। सर से मिलते हैं तो सर हमें कोई जवाब नहीं देते हैं।
12: डॉक्यूमेंट्स तो 1-1.5 महीने के लगभग पहले रेडी हो गए थे, वो ट्रांसप्लांट होने वाला ही था, तो इनकी मम्मी के लिए वो ब्लड की कमी आ गई, इसलिए वो ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ। फिर आधार धनंजय सर रिटायर हो गए, इसलिए अभी तक बैठे हैं, अब कब होगा ये हमें पता नहीं।
0: अब सोचिए गजब स्थिति है, 11 मरीज, इलाज होना है लेकिन क्या, फाइलें कमरे में बंद है ताले में। अब छुट्टियां मनाने के बाद जब नेफ्रोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर विनय मल्होत्रा आए, मामले में लीपापोती कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए।
13: नहीं वो तो कमरे की बात थी कि कमरे में ताला है, पर वो जो मरीजों का इलाज है वो तो सुचारू रूप से चल रहा है और वो फाइलें तो डुप्लीकेट होती हैं, फाइलें तो उपलब्ध थी और कमरा भी आज खुल जाएगा। नहीं नहीं कोई वो मरीज सेकेंड यूनिट में थे और सेकेंड यूनिट में उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर संजीव शर्मा जी हैं सेकेंड यूनिट के इंचार्ज, तो उनकी देखरेख में, और एक मेडिकल बोर्ड भी गठित हुआ हुआ है, तो मेडिकल बोर्ड की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।
0: हमारे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। शरद, ये क्या परिस्थितियां आ गई हैं, जिन लोगों का इलाज होना है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, उनकी फाइलें कमरे में ताले में बंद है, क्या करें वो, किसकी लापरवाही है?
14: बिल्कुल बेहद शर्मनाक है ये। जिस तरह से आप राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल के सामने धर्मशाला में ये लोग कमरा लेकर रह रहे हैं और लंबे समय से रह रहे हैं और सारी फॉर्मेलिटीज इनकी पूरी है, उसके बावजूद इनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि डायलिसिस हर दूसरे दिन हो रहा है और कमरे में फाइल बंद होने की वजह से ट्रीटिंग डॉक्टर का कहना है कि मुझे फाइल नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी तफ्तीश में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो ज्यादा समय निजी अस्पताल में गुजारते हैं और फाइलों का हाथ लगाना नहीं चाहते हैं, लिहाजा ताला खोल नहीं रहे हैं, ताला तोड़ा भी जा सकता था जब मरीज गंभीर थे तो, मगर ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर वहां पर काम नहीं करना चाहते हैं। और एक और चौंकाने वाली बात हमारे एक प्रसार में सामने आई कि पूरे राजस्थान में केवल 6 ही नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं और 8 करोड़ की आबादी में 6 नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो समझिए इनका डिमांड कितना ज्यादा हो जाता है निजी अस्पतालों में, जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल के मरीज ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये स्थिति है जयपुर की
0: और बहुत गंभीर चिंता वाली बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कलकत्ता की कर लेते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट अब सख्त हो रही है, किस मामले में? क्योंकि TMC के बहुत से नेताओं पर अंडा फेंकने का मामला सामने आया और अंडा फेंकने का जैसे ही मामला सामने आया तो घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही, एक के बाद एक मामले ऐसे सामने आए जहां पर TMC के नेताओं पर कहीं अंडे फेंके जा रहे हैं, कहीं पर कुछ फेंका जा रहा है। तो ऐसे में अब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है और बताया जा रहा है जस्टिस तापव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी के डिवीजन बेंच ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी थानों को गाइडलाइंस जारी करें। राज्य सरकार को उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट और हलफनामा जमा करने का आदेश दिया गया है और अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई। आपने देखा होगा कई तस्वीरें सामने आई थी, कई वीडियो सामने आए थे जहां पर टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके गए थे। अब इस पर कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं।
15: कंप्लेंट वाज लॉस्ट एज रिगार्ड्स द फर्स्ट इशू इज एग थ्रोइंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स एंड द पर्संस हु आर थ्रोइंग द एग्स पुलिस इज नॉट टेकिंग स्टेप्स अगेंस्ट देम। दिस इज अगेंस्ट कंप्लीटली ह्यूमन राइट।
0: और अब एक और खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा खुलासा हुआ है और अब कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टीईटी पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गिरफ्तार हुई है। महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन को गिरफ्तार किया है। विजेंद्र ने पैसों की लेन देन की थी सुमन के सामने और सुमन को पेपर लीक के बारे में जानकारी थी। विजेंद्र गुप्ता को पकड़ने के लिए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया और आज तक के कैमरे में विजेंद्र गुप्ता पहले भी ये कहते हुए कैद हो चुका है कि पेपर लीक कराना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
17: The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
17: द ग्रेट थिंग अबाउट एटलस बटलर इज दे डू इट ऑल। Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
19: Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
20: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
21: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
22: AU
23: सोच बदलो और बैंक भी।
24: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
25: कुछ तो बात है इस दिल में।
26: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
25: कुछ तो बात है इस दिल में।
27: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
28: हमने तब भी सवाल किया था।
29: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
28: हम आज भी सवाल करते हैं।
29: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
28: ऑपरेशन अग्नि,
29: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
28: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर
30: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा है।
1: रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण, सीएम योगी ने गिनाई विकास उपलब्धियां। यूपी के रामपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा समाजवादी पार्टी के राज में अन्याय का पर्याय था रामपुर, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी। चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा आज राम के दुश्मन आज राम का नाम ले रहे हैं। मुरादाबाद में योगी की मैराथन समीक्षा बैठक, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, सड़क खराब करने वाले ठेकेदारों पर FIR के आदेश। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला यूपी दौरा, 3-4 जुलाई को लखनऊ में करेंगे संगठन की समीक्षा। राम मंदिर दान घोटाले में जांच तेज, 7 बैंकों से 5 साल के खातों का पूरा रिकॉर्ड तलब, वित्तीय ट्रेल खंगाल रही है पुलिस। आरोपी और ट्रस्ट के बैंक खातों की गहन जांच जारी, पुलिस ने ट्रांजैक्शन, KYC और कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड जुटाए। अयोध्या में दान फंड की फॉरेंसिक ऑडिट जांच शुरू, संदिग्ध लेन देन और बैंकिंग गतिविधियों की हो रही है पड़ताल। अयोध्या SBI मामले पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले 3 महीने पहले हटाने की सिफारिश हुई थी, बचा कौन रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज, कहा जानकारी मिलते ही की गई तत्काल कार्रवाई, FIR कराई गई। पूछताछ में चंपत राय ने खुद को निर्दोष बताया, बोले ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर होती थी नियुक्ति प्रक्रिया। अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय नजरबंद, आज तक से कहा रात में जबरन गेस्ट हाउस में रखा, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे, केजरीवाल आए तो हमसे क्या दिक्कत। अयोध्या चंदा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपित अविनाश शुक्ला से पूछताछ की कोर्ट ने मंजूरी दी, जांच तेज। ट्रस्टी कृष्ण मोहन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज, नए सुरागों पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर बोला हमला, बीजेपी की नजर नेशन नहीं डोनेशन पर है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म नाम की चीज नहीं। अखिलेश ने यह भी कहा कि भविष्य में बीजेपी को ना दान मिलेगा, ना चंदा, ना वोट। बिजौर में ओवैसी का राम मंदिर ट्रस्ट पर हमला, बोले अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी जाती। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोली मायावती, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो लेकिन राजनीतिकरण ना हो, पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की SIT जांच में बड़ा खुलासा, फायर एग्जिट की जगह नियमों के खिलाफ लगाई गई थी लिफ्ट।

शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़, इस्लाम कबूल करने के बाद आयुष मलिक ने घर वापसी की। घर के मंदिर में पूजा पाठ, चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर ब्रेन वॉश का आरोप। आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनाए जाने की जांच में बड़ा खुलासा, पुलिस सर्च में घर से चाकू और संदिग्ध डायरी बरामद। आई एम ऑन मिशन लिखे पन्नों ने बढ़ाई जांच। पुलिस को धर्मांतरण केस में एक मौलवी की तलाश जारी, मौलवी शामली से फरार होकर अंडमान और चेन्नई में कहीं छुपा है। संबल में 101 करोड़ की 38 बीघा जमीन घोटाला, 32 लोगों पर FIR दर्ज, सरकारी जमीन फर्जी पट्टों का खुलासा। सुल्तानपुर में राहुल गांधी मानहानि केस में आज स्पेशल रिविजनल कोर्ट में सुनवाई, CD, वॉइस मिलान और फॉरेंसिक जांच की मांग पर दोनों पक्षों में बहस।

0: देखिए जून का महीना खत्म होने को है और हम ये देख रहे हैं कि जुलाई से ठीक पहले देश का मौसम दोहराता जा रहा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियां देखी जा रही हैं। उत्तर में भी बारिश हो रही है, दक्षिण में भी बारिश हो रही है, लेकिन कई जगह पर बारिश का अनुमान अभी इस वक्त कम जताया जा रहा है। और यहाँ पर अब ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि करें क्या, क्योंकि मौसम का अनुमान यहाँ पर लगाया नहीं जा रहा है। पहाड़ों पे भी कई जगह पर बारिश हो रही है। अब आप देखिए असम अरुणाचल भारी बारिश से आफत मची हुई है, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में बारिश कब होगी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि वहां पर धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है और भीषण गर्मी से इस वक्त आम लोगों को जूझना पड़ रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कितना अंतर है। और इसलिए कह रहे हैं कि दोहरे मौसम की मार यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ जोरदार बारिश कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ इतनी धूप पड़ रही है कि वहां भी छाते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मतलब बारिश में भी छाता और धूप में भी छाता, लेकिन एक ही वक्त पर अलग अलग मौसम लोगों को परेशान कर रहा है।
1: मानसून का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला तेज हो गया है, कई शहरों से तबाही हाहाकार की तस्वीरें आ रही हैं, जो मौसम की मार के बीच बढ़ते खतरे की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें चार राज्यों की हैं। असम अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश आफत बन गई है, वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर से भी मौसम की मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पहले हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहाँ ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा अपने साथ बहा ले गया, हाईवे पर मलबा आ गया, आवाजाही ठप हो गई। अचानक आए सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाके में फंस गए। एक दिन पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां से भी सामने आई थी, जहां बाढ़ के चलते अचानक मलबा मुगल रोड पर आ गया और कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही सबसे ज्यादा आफत अरुणाचल प्रदेश में मची है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 13 की हैं। अरुणाचल में हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पर चट्टान बिखरी है, दूर दूर तक तबाही की ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। रास्ते पर पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी भरा है, कहीं मलबा बिखरा पड़ा है। हालात इतने खराब हैं कि इस रास्ते पर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 24 जून को यहां बादल फटने के बाद भारी तबाही मची थी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, अब तक कई लोग गायब भी हैं। तब से अब तक वहां राहत और बचाव का काम जारी है। हर ओर बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये रास्ता अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश की मार के बीच हाईवे पूरी तरह ठप पड़ गया है। बिगड़े हालात के बीच सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित इलाकों में NDRF SDRF की टीमों की तैनाती की है, साथ ही दूरदराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है।
2: अरुणाचल की सरकार पूरी टीम तैनात है, आपका SDRF बोलो NDRF बोली है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के एवोकेशन के लिए बोली है, जिन्होंने कुछ लोग वहां में फंसे हुए थे नदी के बीच में, उसको भी हेलीकॉप्टर से एवोकेट किया गया है। और जहाँ जहाँ सामान नहीं पहुँच रहा, राशन जो पहुँच नहीं पा रहा, जो मेडिकल के मेडिसिन जो पहुँच नहीं पा रहा, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर पूरा तैनात किया हुआ है, और जनता को कई प्रकार का तकलीफें होने नहीं देंगे।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

0: खराब है। धीमाजी इलाके में करीब 70 गांवों में बेहिसाब संकट बढ़ा है, जिसे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धीमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहां की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं।
1: ये अरुणाचल में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सब आप देख रहे हैं, इस तरफ आपके गाड़ी आने जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपके वो जो जंगल कटाई की वजह से और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शायद उसी की वजह से हो रही है। और जो धाराकार बारिश हो रही है, जो आज कल रात से जो कंटिन्यू बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आज यहाँ पे आने जाने की सुविधा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी जो भी है पार करने के लिए असुविधा हो रहा है। और यहाँ पे सामने में जितने भी गांव है, जो सामने मालबुक है, सिले है, केमी पंचायत के जो भी गांव है, पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से पानी आने जाने की असुविधा हो रही है।
0: अब असम के जोरहाट जिले की तस्वीरें देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एक ओर से धस गया है। जोरहाट के शहरी इलाके भी सैलाब के बीच घिरे नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही राज्यों में इन दिनों कुदरत का कहर बरप रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। आने वाले दिनों में भी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में मौसम की मार से राहत जल्द मिलती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
2: तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ असम अरुणाचल में इस तरह की हालात है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप रुद्रप्रयाग आइए, उत्तराखंड आइए, वहां पर भी आपको कुछ इसी तरह के हालात दिखेंगे। अलकनंदा नदी की बात की जा रही है तो वहां भी जोरदार इस वक्त उफान देखने को मिल रहा है बारिश की वजह से। हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी ने अपना मूल बहाव क्षेत्र छोड़ दिया है और नदी मूल बहाव क्षेत्र से तकरीबन 15 से 20 मीटर दूर बह रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जो नदी किनारे स्थित घाट हैं, वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जिन घाटों में कल तक देश विदेश के तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पहुंचते थे, आज उन घाटों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा दूसरे छोर के घाट भी आप देख सकते हैं, यह घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल इन घाटों पर स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद है। ये आप ठीक सामने भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा को देख रहे हैं। यह प्रतिमा नदी से तकरीबन 40 मीटर दूर है और इस प्रतिमा की जो हाइट है वह लगभग 10 फीट है, लेकिन नदी के तेज बहाव का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है।
2: बड़े बुजुर्ग शायद इसलिए कह गए हैं, ये सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अब एक तरफ आप देखिए जोरदार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में मानसून की देरी की वजह से लोग परेशान हैं और जलती चुपती गर्मी भी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है।
4: यूं तो आमतौर पर दिल्ली में मानसून की तारीख 27 जून है, लेकिन 3 दिन बाद भी अब तक ना ही राजधानी में बारिश वाले बादलों की एंट्री हुई है और ना ही लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। भारत में 4 जून को मानसून पहुंच गया है, लेकिन अब भी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत बारिश का इंतजार कर रहा है। बारिश की देरी से हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि कई इलाकों में सूखे जैसा संकट पैदा हो गया है और लोगों को लगातार तपती गर्मी से जूझना पड़ रहा है।
2: आप जहाँ जहाँ पर देखेंगे पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। अब जैसे कनॉट प्लेस में आप देखेंगे, यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से मटका लगाया गया है, लोगों के पानी वानी पीने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जो तापमान है वो काफी ज्यादा है और जब नमी बढ़ जाती है हवा में, तब इसी तापमान में जो फील्ड टेम्परेचर जिसे कहते हैं वो उससे कहीं ज्यादा होता है। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जहाँ
5: यूरोप में, यूरोप के ज्यादातर देशों में तापमान पहले से बढ़ा हुआ है, वहां पर 40 डिग्री जा रहा है, वहां जो मकान है वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो उत्तर भारत में मानसून की देरी के चलते जिसका सीधा असर है न सिर्फ आम जनजीवन पर पड़ेगा बल्कि पानी की जरूरतें बढ़ जाती हैं, और ऊपर से अभी तक मानसून ने जो है वो पूर्वोत्तर भारत में कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पर बहुत

0: ज्यादा सूखा है। मौसम विभाग का अंदेशा यह है कि अभी भी लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है जब मॉनसून की दस्तक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब को होगी, लेकिन तब तक उमस भरी गर्मी से राहत तभी मिलेगी जब 2 से 3 जुलाई के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद हवा में ठंडक होगी।
1: आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में करीब 40% बारिश कम हुई है। ये कमी मध्य भारत में 60% से अधिक रही, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। साथ ही बारिश में लगातार देरी चिंता बढ़ा रही है।
2: एक तो मानसून डिले हो गया है, 15-20 दिन ऑलरेडी हम देखे सब जगह, जहां पे मानसून आना था वहां पे अभी बारिश का मौसम जो है वो अभी नहीं आ रहा है, और जहां भी बारिश हो रही है बहुत हल्की हो रही है। और जो इसका प्रभाव हम देखने वाले हैं कि या तो बारिश कम होने वाली है या फिर बहुत ज्यादातर कम हो जाएगी। इस मीन्स मतलब डेफिसिट जो है हमारा मानसून का वो 50-60% से ऊपर अभी चल रहा है ऑलरेडी अभी के हिसाब से। ये चेंज भी हो सकता है एज वी गो लॉन्ग, बट लेकिन जो जो अभी का मानना है अभी जो वैज्ञानिक जो हमें बता रहे हैं कि इस तरह से बहुत डेफिसिट मानसून है। आप समझिए कि हमारा जो भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण तो है ही, लेकिन हमारा फाइनेंस मिनिस्टर मानसून ही है जो हमारे पूरे साल के फाइनेंस को है। तो बारिश का मौसम नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है आगे 2-4 महीनों में हमें।
1: अब तक जून के महीने में देश में इस बार औसत बारिश 92.2 मिलीमीटर दर्ज हुई है, जबकि जून के महीने में सामान्य बारिश 157.7 मिलीमीटर तक होती है, यानी इस बार कुल 42% कम बारिश जून के महीने में हुई है। बारिश की कमी का यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इसका सीधा असर खेती किसानी के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बीते 100 सालों में यानी 1927 से 2026 के बीच में केवल 2 बार ही देश में ऐसा मौका आया जब जून के महीने में इतनी कम बारिश हुई। 2009 में जून के महीने में 87.5 मिलीमीटर और 2014 में 92.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि अब ये तीसरा मौका आ रहा है जब कम बारिश हो रही है और उत्तर भारत में बारिश में देरी हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जल्द ही दिल्ली एनसीआर में मानसून वाली बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
3: जहाँ तक मॉनसून की बात है तो मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकता है।
4: दिल्ली के लिए कोई तारीख दी जा सकती है?
3: मॉनसून के एडवांसमेंट हम डे टू डे मॉनिटर करते हैं ना, तो इसके एडवांसमेंट कई फैक्टर्स डिपेंड करता है, जैसे ईस्टर्ली विंड्स हो गई, बारिश भी हो गई है, तो उसको हम लगातार देख करके जैसे जैसे सिचुएशंस जो फेवरेबल बन रही होती हैं उसको हम इन्फॉर्म करते हैं।
1: IMD के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव के साथ राहत का भी भरोसा है। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: अगर आप ये सोच रहे हैं कि तपती गर्मी से सिर्फ उत्तर भारत परेशान है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठंड के लिए जो लोग जाते हैं यूरोप घूमने के लिए, अभी इस वक्त ठंडा ठंडा कूल कूल कहा जाने वाला यूरोप भी तंदूर की भट्टी इस वक्त बना हुआ है, और ये आंकड़ा आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और खबर यह है कि यूरोप में 40 डिग्री तक गर्मी पहुंच गई है और 1300 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है।
6: यूरोप में क्लाइमेट चेंज का अंजाम, 7 दिन से गर्मी का कोहरा, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान, 1300 से ज्यादा लोगों की गई जान। देखने में आपको ये तस्वीरें समर वेकेशंस की लग रही होंगी, ठंडी फुहारों में मस्ती करते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, लेकिन ये मस्ती नहीं मजबूरी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्मी से हालात इतने जानलेवा हो गए हैं कि जिसे पानी में जाने का जहां मौका मिल रहा है वो जा रहा है। समंदर से लेकर नदी और फव्वारे से लेकर तालाब तक लोगों से भरे हुए हैं। दिन हो या रात, गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने वाले वाहन घूम रहे हैं, लोग सड़क किनारे लगे वाटर स्प्रिंकलर से राहत का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश, हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है।
5: तो देखिए, जब मौसम ऐसा हो कि आप कुछ समझ ना पाए तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां रुकेंगे बहुत छोटे ब्रेक लिए, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। order for Jennifer C.
9: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
8: Yeah. Can you handle that much caffeine?
9: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
8: Oh, really? That's great.
9: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
8: Yeah, you just said that.
9: Did you say I just said that?
8: Yeah, I'm cutting you off.
9: I can't have any more? Why not?
10: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
11: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
12: Jack, come home. It's supper time.
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
13: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
11: Jack FM, playing what we want.
14: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हुए और उपेंद्र द्विवेदी को साउथ ब्लॉक लोन्स में सेना द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और इससे पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेशनल वॉर मेमोरियल गए जहां उन्होंने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये भी खबर है जो आपको बता दें कि अब उपेंद्र द्विवेदी की जगह जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख होंगे, वो पदभार संभालेंगे। इससे पहले वो सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने आज से सेना प्रमुख का कार्यकाल संभाल लिया है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ
2: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर। ट्यून इन हैज द म्यूजिक टू मैच, फ्रॉम टुडेज हिट्स to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: Sanitary Solutions. Hexa Organic.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त ज्यादातर लोगों की नजर मीटर पर होती है, लेकिन इस मीटर के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। ये कहानी है क्रूड ऑयल की, सरकार के टैक्स की और उन सरकारी कंपनियों की जो देश तक ईंधन पहुंचाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और क्रूड सस्ता होने से इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा तो फिलहाल ऑयल कंपनियों को मिलता दिख रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है कि पेट्रोल और डीजल बेचने पर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन फिर से जंग से पहले वाले स्तर से ऊपर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के दौरान ग्लोबल आयात कीमतों में उछाल आया था। उस वक्त भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी बढ़ाई नहीं गई जितनी लागत बढ़ी थी। इसका असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा, लेकिन हालात बदलते ही तस्वीर भी बदलने लगी है। तेल महंगा होने पर कंपनियों का मार्जिन दबाव में आया था, लेकिन क्रूड सस्ता होने से फ्यूल बिजनेस में सुधार दिखने लगा है। जेपी मॉर्गन के अनुसार बीपीसीएल और आईओसी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं एचपीसीएल के मार्जिन भी पुराने लेवल पर लौटने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस का असर झेलना पड़ सकता है, हालांकि दूसरी तिमाही से कमाई में सुधार के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऑयल कंपनियों के लिए राहत की दूसरी वजह सरकार की टैक्स पॉलिसी है। सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा कंपनियों के पास रहा था। हालांकि इससे सरकार को सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यही बात आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल भी बन सकती है। अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं, तो सरकार दोबारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसे हालात में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव लौट सकता है। एक और चुनौती एलपीजी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कंपनियां अभी भी रसोई गैस पर नुकसान उठा रही हैं, लेकिन अगर तेल की कीमतों में नरमी जारी रही तो ये दबाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है। कुल मिलाकर क्रूड ऑयल में आई नरमी ने सरकारी ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन आगे की कहानी दो चीजें तय करेंगी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं। दूसरी, सरकार ईंधन पर टैक्स को लेकर क्या फैसला लेती है। इन दोनों का ही असर कंपनियों की कमाई से लेकर आम आदमी की जेब तक दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चाल व चोरी की जांच में 6 से 7 बैंकों तक, 5 मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड तलब। दान पात्र खोलने से लेकर गिनते तक लापरवाही के सबूत। मंदिर दर्शन से पहले कांग्रेस के कई नेता अयोध्या में हाउस से रहे। संजय राय ने आज तक से कहा जबरन किया गया नजरबंद, बिना दर्शन के वापस नहीं जाएंगे। 23 विपक्षी पार्टियों ने SIR चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, चीफ जस्टिस को लिखा खत। दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज से SIR की प्रक्रिया शुरू, 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट आएगी। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच में आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। यूपी के शामली में धर्मांतरण कराने वाले मौलाना की तलाश, अंडमान या चेन्नई में मिले लोकेशन। ब्रेन वॉश के बाद आयुष को बनाया था अली, अब दोबारा बना सनातनी।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी ने गिनाई विकास उपलब्धियां। सीएम योगी बोले 2017 से पहले रामपुर में अराजकता, विकास का अभाव था, आज तस्वीर बदली है। रामपुर जनसभा में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले गरीबों और किसानों के साथ अन्याय होता था। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और विकास पर भी पिछली सरकारों को घेरा, कहा कि आज यूपी में त्योहार बड़े सुरक्षित हैं। चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा कि आज राम के दुश्मन राम का नाम ले रहे हैं। राम मंदिर दान घोटाले में जांच ने 7 बैंकों से 5 सालों के खातों का पूरा रिकॉर्ड तलब, वित्तीय ट्रेल खंगाल रही पुलिस। आरोपियों और ट्रस्ट के बैंक खातों की गहन जांच जारी है, पुलिस ने ट्रांजैक्शन किए बाई से कैश डिपॉजिट के रिकॉर्ड जुटाए हैं। अयोध्या में दान फंड की फोरेंसिक ऑडिट जांच शुरू, संदिग्ध लेन देन और बैंकिंग गतिविधियों की पड़ताल हो रही है। अयोध्या एसबीआई मामले पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले कि 3 महीने पहले हटाने की सिफारिश हुई थी, बचा कौन रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज, का जानकारी मिलते ही हमने तत्काल कार्रवाई करवाई, एफआईआर करवाई। पूछताछ में चंपत राय ने खुद को निर्दोष बताया, चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर नियुक्ति प्रक्रिया होती थी। आज तक के साथ खास बातचीत में अजय राय का नजरबंदी पर बड़ा दबाव, बोले कि रात में जबरन गेस्ट हाउस में रखा गया, अगर अरविंद केजरीवाल आए तो हमसे क्या दिक्कत है। अयोध्या चंदा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की कोर्ट ने दी मंजूरी, जांच तेज। राष्ट्रीय कृष्ण मोहन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज, नए सुरागों पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर दान पर नहीं पड़ा कोई इंपैक्ट, गर्मी की छुट्टियों में बढ़े श्रद्धालु, चढ़ावा भी दोगुना हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी की नजर नेशन पर, डोनेशन पर है, बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म नाम की चीज नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में बीजेपी को न दान मिलेगा, न चंदा, न वोट मिलेगा। बिजनौर में ओबीसी का राम मंदिर ट्रस्ट पर हमला, बोले कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी जाती। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मायावती का बयान, का दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, राजनीतिकरण भी ना हो, व्यवस्था पारदर्शी लागू हो। संभल में 101 करोड़ की 38 बीघा जमीन घोटाला, 32 लोगों पर एफआईआर, सरकारी जमीन पट्टों में बड़ा खुलासा हुआ। 60 साल के बाद वापस आई सरकारी जमीन पर बड़ा एक्शन, पूर्व अधिकारी, बीएसपी नेता समेत कई नामजद पर केस। लखनऊ गालीगंज अग्निकांड ने एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, फायर एग्जिट की जगह नियमों के खिलाफ वहां लिफ्ट लगा दी गई थी। 15 छात्रों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट ने खोली कई परतें, ओवरलोड बिजली, अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही उजागर हुई। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला यूपी का दौरा, 3 से 4 जुलाई को लखनऊ में संगठन की समीक्षा करेंगे। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी के साथ पहली समीक्षा। मुरादाबाद में योगी की मैराथन समीक्षा बैठक, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, सड़क खराब बनाने वाले ठेकेदारों पर भी एफआईआर के आदेश। सीएम योगी का सख्त आदेश है, बिजली चोरी, गौतस्करी और लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई, हर घर जल और सोलर योजना की भी समीक्षा। रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट, जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा, बिना स्वीकृत नक्शे के बने 38 भवनों को नोटिस। शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़, इस्लाम कबूल करने वाले आयुष अब घर वापसी की है और घर में मंदिर में पूजा पाठ किया, चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर ब्रेन वॉश का आरोप है। शामली में धर्म परिवर्तन का मामला, आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनाए जाने के जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस सर्च में घर से चाकू और एक संदिग्ध डायरी मिली जिसमें आई एम ऑन मिशन लिखा गया था। पुलिस को धर्मांतरण केस में एक मौलवी की तलाश जारी है, मौलवी शामली से फरार होकर किसी जगह छुपा हुआ है। आसनसोल की ईसीएल ओपन कास्ट खदान से धुएं का गुबार उठा, इलाके में दहशत का माहौल है। सबरीमाला सोना चोरी केस में बड़ा खुलासा, एसआईटी जांच में पूर्व देवसोम प्रमुख समेत कई अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में। 5 जुलाई को आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस है। सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होगा। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव 5 जुलाई को पटना में नहीं रहेंगे, इसलिए 1 जुलाई को स्थापना दिवस का समारोह का आयोजन होगा। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार के राज्यपाल। 3 जुलाई को तेहरान रवाना, पीएमओ ने भेजा आधिकारिक निमंत्रण। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा बोले कि यह एनकाउंटर नहीं, पूरी तरह गलत कार्रवाई, सीआईडी जांच की मांग। भारतीय सेना को नया नेतृत्व मिला, जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख के रूप में उन्होंने संभाला कार्यभार। जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का खेल, बेनकाब कॉलेज संचालक और स्टाफ समेत कई गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल नकल गैंग का पर्दाफाश, मामा भांजे और चाचा भतीजे समेत कई गिरफ्तार। 45 छात्रों को पैसे लेकर पास कराने की साजिश थी, परीक्षा केंद्रों पर नकल करवाने की योजना फेल हो गई। चौंकाने वाली बात है कि पूरे खेल में 2 कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर तक शामिल थे। डीजी पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। पुणे केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई। पुणे पुलिस ने कहा कि सिया और चेतन के फोन से डिलीट डेटा को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जांच करनी है। इसके साथ ही गायब पासपोर्ट पर भी सवाल जमा। केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के भाई ने एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए, कानूनी नोटिस भेजा। अब सिया गोयल के भाई का दावा है कि आशुतोष श्रीवास्तव हमारे वकील ही नहीं है, धोखे से हस्ताक्षर और धमकी देने का आरोप। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, कई अहम सुझाव पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न, सेशल्स दौरे को बताया सार्थक, बोले कि दोनों ही देशों के लिए अगले 50 साल नवाचार और साझा समृद्धि के होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर, 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। संसदीय समिति नीट यूजीसी एग्जाम और एनटीए सुधारों की समीक्षा करेगी, 1 जुलाई को अहम बैठक। शिक्षा में एआई के प्रभाव पर भी चर्चा, विशेषज्ञ और संस्थाएं समिति के सामने सुझाव रखेंगे। सुल्तानपुर में राहुल गांधी मनाने के केस में आज स्पेशल रिविजनल कोर्ट में सुनवाई, और सीडी वॉइस मिलान और फॉरेंसिक जांच की मांग पर दोनों पक्षों में बहस। कर्नाटक में भाषा नीति को लेकर नया विवाद सामने आया, राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सीबीएसई से कक्षा 6 के लिए कन्नड़ को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के निर्देश को वापस लेने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में कन्नड़ पहले से ही पहली और या दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य है, इसलिए तीसरी भाषा के तौर पर इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। पैगंबर मोहम्मद पर नाज़िया इलाही की आपत्तिजनक टिप्पणी, विरोध में अटल समाज सेवा कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन, 2 दिनों तक यह सांस्कृतिक महोत्सव चलेगा। मंगलुरु तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 मछुआरों को बचाया गया। समुद्र में डूबती नाव से सुरक्षित निकाले गए सभी 6 क्रू मेंबर्स, सटेज जहाज ने दिखाई तत्परता। खराब मौसम में भी कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी, रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को बचाया गया। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचल दिया, मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर पिघलने से नाले में अचानक आ गई बाढ़, सड़क टूट गई, साथ ही 50 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। एमपी के खरगोन में झमाझम बारिश के बाद मोहनी नदी उफान पर, कई बस्तियों और खेतों में बाढ़ का पानी भर गया। खरगोन में पहली बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, कई जिलों में इलाकों में झमाझम बारिश, किसानों को भी राहत। जालना में मूसलाधार बारिश के चलते नालों में आई बाढ़, पानी ने जान माल के नुकसान को बढ़ाया। नोएडा के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश हुई, सेक्टर 16 से भी आई तस्वीर। मुंबई में जमकर हो रही बारिश, कई इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित। मुंबई में आने वाले हफ्ते में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पालघर में रेड अलर्ट। नवी मुंबई में जोरदार बारिश, एपीएमसी मार्केट में जमा हुआ कई फीट पानी, लोगों की परेशानियां बढ़ी। देहरादून में पार्किंग बनी रणभूमि, मामूली घास होने के बाद कार के पीछे ले जाकर युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है, सिर और कान पर गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज जारी। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने नामजद आरोपियों समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स के नेत्र पाइपलाइन में धमाके के बाद भीषण आग, 15 लोग घायल हैं, कई घर जल गए, 2 की हालत गंभीर है। आसमान छूती नजर आए आग की लपटें, आग से रेलवे ट्रैक प्रभावित, ट्रेन सेवाएं बाधित, जांच शुरू। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे जम्मू। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लंबी कतार, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर महादेव के जयकारे लगाए। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों की मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को परखा। अमरनाथ यात्रा को लेकर कई इलाकों में सर्च अभियान, कई जगहों पर जवान दिखाई दिए मुस्तैद। इमरान हाशमी से रफेल मावारपन 2 का टीजर हुआ जारी, 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म मैल्फा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी महिला बाइकर्स ने किया स्वागत। जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म का पोस्टर जारी, एनटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिव के पुत्र पार्वती के गौरव। वेलकम टू द जंगल का कमाल, 4 दिन में ही कमा डाले 100 करोड़ से ज्यादा। ईरान के राष्ट्रपति बोले, अमेरिका एमओयू का पालन करे तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति का संदेश, समझौता दो तरफा प्रक्रिया है, अमेरिका के कदम पर निर्भर करेगा आगे का रास्ता। ईरान ने कहा है कि फैसलों में तर्क और गरिमा, कार्रवाई में बेखौफ हमारी रक्षा नीति है, धमकियों का जवाब हम दृढ़ता से देंगे। ईरान ने साफ किया कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ कोई भी बैठक तय नहीं है। कतर में दोनों ही प्रतिनिधिमंडलों के दौरे हैं लेकिन अलग अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम साबित हो सकती है, इसके नतीजों का इंतजार किया जाएगा।

0: Med den arm. Bare sådan lidt. Med slange. Men med til at være der. Og med det bare kønner.
1: यूपी के शामली में एक हिंदी युवा का ब्रेन वॉश करके कुछ दिनों पहले उसका धर्मांतरण कर दिया गया था। उसका मुस्लिम लड़की से निकाह भी कर दिया गया था। वो नमाज पढ़ता था, मौलवियों की वीडियो देखता था। अब उस लड़के ने एक बार फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। वो आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने पर अपने उसने घर वापसी कर ली है। हिंदू युवा के धर्मांतरण के मामले में पुलिस आरोपी लड़की और उसके पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो यूपी के शामली में धर्म परिवर्तन के बाद आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने के बाद वो फिर से आयुष बन गया है। अब वो घर पर वापस भी आ चुका है, वापसी कर चुका है। उसने दोबारा सनातन धर्म अपना लिया है। इस बीच में जांच में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। जांच में पुलिस को सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ है, साथ ही एक डायरी मिली है। उस डायरी पर लिखा था आई एम ऑन मिशन। अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाने के पीछे बड़ी साजिश थी। साथ ही आयुष ने अली बनने के बाद एक मेल आईडी बनाई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो पीएफआई के इस्लामिक मिशन का हिस्सा है 2047। तो उसकी डायरी में आई एम ऑन मिशन लिखा हुआ था। तो वो कौन सा मिशन था जिस मिशन पर मोहम्मद अली बनकर वो चल रहा था या उसे जाने के लिए कहा जा रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। लेकिन उसने वापस सनातन धर्म अपना लिया है और पूजा पाठ करते हुए उसकी तस्वीर भी सामने आई है, वीडियो भी सामने आया।
2: आज तक पर हमने पहले आपके बेटे से बातचीत की थी, आपसे भी बात की थी। अब आपका बेटा घर वापसी कर गया, एक बार फिर सनातन धर्म में शामिल हो गया, क्या कहना है आपका?
3: देखो, सबसे पहले मैं ईश्वर की विशेष अनुकंपा के लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पर कृपा दृष्टि की। सामने मेरे समक्ष हनुमान जी हैं, मैं इनके सामने नमन करता हूं कि मेरा परिवार बचा दिया और हमारी जिंदगी बचा दी।
2: लेकिन जब हमारा आज तक पर इंटरव्यू आयुष मलिक के साथ हुआ, उसको देखकर लोग बोलने लगे कि उसका कोई ब्रेन वॉश नहीं किया।
3: नहीं, कोई ये सब कोई निगेटिव बात नहीं, ये कोई बात नहीं। मैं सभी लोगों का, सभी सम्मानित नागरिकों का और सभी संस्थाओं का, विशेष रूप से हमारे स्वामी जी यशवीर महाराज जी का और जितने भी हमारे प्रेमी हैं, इष्ट विष्ट घनिष्ठ हैं, सभी की प्रार्थना का बहुत करने के लिए और मेरा बच्चे का घर वापसी के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ।
2: बेटा कैसा है अभी आपका? क्या कर रहा है?
3: बिल्कुल स्वस्थ है।
2: पूजा पाठ करा, मस्जिद तो नहीं जाता?
3: नहीं नहीं, कहीं नहीं पूजा पाठ किया। आपके सामने फोटो है, वो सत्य है बिल्कुल, जो है वो सब सत्य है। मेरे साथ में बैठ के पूजा, मेरे सामने बैठ के पूजा कर रहा है वो।
2: खुश
3: हैं हम।
1: अब इस मामले की जांच के लिए शामली पुलिस अभी से जुट गए हैं। आयुष का धर्मांतरण और निकाह कराने वाले मौलाना की तलाश थे सर। ये माना जा रहा है कि आरोपी मौलाना इरफान ये फरार हो गया है और इसकी जो अंतिम लोकेशंस मिली है अंडमान या चेन्नई में कहीं हो सकती है, इसको ढूंढा भी जा रहा है। शामली के करोड़पति मलिक परिवार ने आयुष के धर्म परिवर्तन करवाए जाने की शिकायत की थी। तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अपनी कार्रवाई भी की। आयुष से निकाह करने वाली मुस्लिम लड़की और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब आयुष ने फिर से सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है, घर वापसी कर ली है। बेटे के इस कदम के बाद मलिक परिवार खुश है।
4: परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके व पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
5: एक चेहरे दो पहचान, सही सुना सही देखा सही पहचाना इस युवक को। नाम है आयुष मलिक। यूपी के शामली के रहने वाले मलिक परिवार का इकलौता बेटा आयुष। करीब 20 दिन पहले आपने आज तक पर मोहम्मद अली बने आयुष को देखा था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कैसे आयुष मलिक का धर्मांतरण कराया गया, उसे मोहम्मद अली बना दिया गया। इस बात का भी खुलासा हुआ था कि कैसे धर्मांतरण के बाद उसका निकाह रचा दिया गया। लेकिन अब वो मोहम्मद अली से दोबारा आयुष मलिक बन चुका है। इस बार बकरीद पर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने वाले अली अब फिर से आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है और अब वो पूजा पाठ में मगन है। ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के बाद आयुष पूरी तरह बदल गया था, या यूं कहें कि बदलने पर मजबूर कर दिया गया था, लेकिन वो ज्यादा देर तक मजहबी बहकावे में नहीं रह सका। उसके घर वापसी के बाद की ये तस्वीरें देखिए। अब वो अपने घर में अपनों के साथ पूजा पाठ में लीन है। वो मंत्रोच्चार कर रहा है और अपने पुराने दिनों को भुलाने में जुटा है।
4: माँ, मैं इस्लाम रूम में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
5: धर्मांतरण को ठोकर मारते हुए आयुष ने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। वो पूरी तरह से अपने घर लौट चुका है। परिवार वाले उसका स्वागत कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका मुंह मीठा कर रहे हैं।
6: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है, लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उस दौरान एक बड़ा चाकू और एक डायरी मिली थी। डायरी में आयुष मलिक ने लिखा था, आई एम ऑन मिशन। अब वो मिशन क्या था, ये कोड डिकोड करने की लगातार शामली पुलिस कोशिश कर रही है।
5: शामली के रहने वाले देवराज मलिक अपने बेटे आयुष के धर्मांतरण के बाद से परेशान थे। उन्होंने कई बार अपने बेटे के मजहब को बदलने का विरोध किया था, लेकिन शामली के रहने वाले मुस्लिम परिवार की साजिशों के चंगुल में फंसकर वो खुद को बदल चुका था। आयुष मोहम्मद अली बन चुका था। शहर में उसका मेडिसिन स्टोर है। मलिक परिवार की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तमाम संपत्ति का इकलौता वारिस है आयुष मलिक। उसी संपत्ति को हड़पने की साजिश थी। चांदनी कुरैशी नाम की लड़की ने संपत्ति हड़पने के लिए ही आयुष को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। आयुष के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। आरोप लगाया था कि उनकी करोड़ों की संपत्ति पर शामली की चांदनी और उसके परिवार की नजर है।
3: मुझे इस प्रकरण का कि उसने धर्मांतरण किया, उसकी दाढ़ी से तेरा खरकाव सा आईडिया आया, और दूसरे पक्ष से जब पैसे की मांग, प्रॉपर्टी नाम करने की बात, उधर उसकी दाढ़ी, ये सब कुछ देखते हैं मैं अपने दिमाग से देखा कि इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया। चांदनी नामक एक लड़की ने, चांदनी कुरैशी, उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्यीय स्तर पर काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। शादी का निकाहनामा, फर्जी निकाहनामा करा कर के उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का।
5: धर्मांतरण के बाद कई बार आयुष को समझाने की कोशिश की गई थी। परिजनों के साथ साथ पुलिस ने भी पहल की थी, लेकिन आयुष दलील देता रहा कि उस पर किसी का दबाव नहीं था।
2: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
4: किसकी?
2: किसी की थी।
4: किसकी थी सर?
2: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
4: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था।
5: लेकिन कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। आयुष मलिक के लौट आने के बाद से पिता देवराज मलिक भावुक है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उनका बेटा अब उनके साथ है। आयुष के धर्मांतरण के खिलाफ उसके परिवार ने FIR दर्ज कराई थी। उस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार किया था। बाद में एक और गिरफ्तारी हुई और अब तक धर्मांतरण की साजिश को लेकर जांच जारी है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।
1: आयुष मलिक मोहम्मद अली बन चुका था, वो बड़ी साजिश का शिकार हो चुका था। उसी साजिश के तहत उसका धर्मांतरण करवाया गया। उसके परिवार वालों को भरोसा था कि पुलिस से वो शिकायत करेंगे तो कार्रवाई भी होगी और वे एक दिन वापस लौटेगा।

0: आयुष मलिक के खिलाफ बड़ी साजिश हुई थी। ये साजिश थी 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हड़पने की, उसके बिजनेस पर कब्जा जमाने की। शामली के मलिक परिवार का आयुष सॉफ्ट टारगेट बन गया था। उसे साजिश में फंसाने के लिए गिरफ्तार आरोपी चांदनी और उसके परिवार ने जाल बिछाया। परिवार ने चांदनी को आगे कर दिया। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी मौके की तलाश में जुटी रही और इस साजिश में चांदनी के पिता इस्लाम कुरैशी और भाई भी मदद करते थे। साजिशन चांदनी को पहली बार मौका मिला 2018 में। आरोपों के मुताबिक उसी साल आयुष से चांदनी पहली बार मिली, तभी से वो संपत्ति हड़पने के लिए संभल संभल कर कदम आगे बढ़ाने लगी। आयुष
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
6: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here.
7: England takes on Democratic Republic of the Congo in Atlanta, and the USA battles Bosnia and Herzegovina in Santa Clara. Both England and the USA are huge favorites. England is -1,000 to qualify for the next round, and USA is -630. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
8: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: To right field, and it will leave.
8: From the first pitch of the season to the stretch run.
9: And that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1965।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबां केसरी, कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: हमने तब भी सवाल किया था,
2: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
1: हम आज भी सवाल करते हैं,
2: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
1: ऑपरेशन अग्नि,
2: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
1: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

चढ़ावा विवाद की जांच में 6-7 बैंकों तक आंच। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड तलब। दान पात्र खोलने से लेकर गिनती तक लापरवाही के सबूत। मंदिर दर्शन से पहले कांग्रेस के कई नेता अयोध्या में। हाउस अरेस्ट, अजय राय ने आज तक से कहा जबरन किया गया नजरबंद, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे वापस। तेईस विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, चीफ जस्टिस को लिखा खत। दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज एसआईआर की प्रक्रिया शुरू, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर पर गिरफ्तारी की तलवार, 2 पुलिस स्टेशनों से मिले नोटिस। विवादित और भड़काऊ टिप्पणी मामले में कसेगा शिकंजा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
1: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात देश के बड़े अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली अहम बैठक की। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद शाम 4:30 बजे सभी केंद्रीय सचिवों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर रहेगा, साथ ही नौकरशाही की प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बैठक में ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने के प्लान पर चर्चा होगी। इसके अलावा गैर वित्तीय नियामक सुधारों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर भी चर्चा होगी। ये बैठक केंद्रीय कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच हो रही है, इसीलिए बहुत अहम मानी जा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस समय जुड़ रही है। ऐश्वर्या, बैठक वैसे भी महत्वपूर्ण, लेकिन इसके साथ ही जुड़ गया है जो कैबिनेट विस्तार वाला एंगल, उसकी वजह से और निगाहें इस पर।
2: बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जिस समय ये बैठक हो रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है, रिव्यू किया जा रहा है कि किस तरीके से मंत्रियों ने अब तक काम किया है, मंत्रालयों ने जो जो वायदा किया था टॉप लीडरशिप को, भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या ये सारे वादे पूरे हो चुके हैं। देखिए, जो एंड गोल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, 2047 तक भारत को एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ना है। 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आना है। तो ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिनमें फेरबदल की जरूरत है, और ये भी देखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समीक्षा करेंगे वो इस चीज पर भी करेंगे, क्या ऐसी कोई स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं जो आगामी आने वाले जो चुनाव हैं उन अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो क्या उस तरीके से भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण होगी, और रिपोर्ट कार्ड के साथ जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं वो सब पहुंचेंगे, एक के बाद एक प्रेजेंटेशन होंगी, और आगे किस तरीके से बढ़ना है उन सब चीजों पर आज विस्तार के अंदर विचार विमर्श होगा। श्वेता,
1: शुक्रिया। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता ये जानकारी दे रही थी। सबकी नजर इस खबर पर लगी है कि मोदी 3.0 यानी नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। आज तक के पास खबर है कि सब कुछ तय हो चुका है, कौन मंत्री बनेगा, किसका पत्ता कटेगा, किसका प्रमोशन होगा, किसका केवल विभाग बदलकर फिर से मौका मिलेगा, किस फॉर्मूले से सीट पक्की होगी, किस पैटर्न से कुर्सी खिसकेगी, ये सब कुछ तय हो चुका है।
3: नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किसकी सीट पक्की है, किसकी कुर्सी जाएगी, कितने नए चेहरों का प्रवेश होगा, कितने पुराने चेहरों की विदाई होगी, किस किस मंत्री का विभाग अब की बदला जा सकता है, पिछड़ों और महिलाओं को क्या बंपर सीट मंत्रिमंडल में मिलेगी, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख क्या है, चुनावी राज्य वाला एंगल मंत्रिमंडल विस्तार में कितना दिखेगा। खूब पतंग नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल के चेहरों तक पर उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग सियासी गलियारों में सब सूत्रों की पतंग उड़ा रहे हैं। पहला सवाल, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या तारीख आ चुकी है। 3 दिन का दौरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स से लौटे, इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 1 जुलाई से 3 जुलाई जापान की पीएम का भारत दौरा रहना है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा है। 5 जुलाई का दिन जरूर खाली है। 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर पीएम मोदी निकल जाएंगे। 11 जुलाई तक वो दौरे पर रहेंगे।
4: 11 जुलाई को विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं, या फिर 5 जुलाई को जो एक विंडो खाली है उसमें कैबिनेट विस्तार को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। इतना जरूर है कि अब जल्द से जल्द मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा।
3: अब सवाल नंबर 2 आता है, क्या मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जबकि सदन में मंत्रियों को कई सवालों के जवाब तैयारी करके देने होते हैं।
4: संसद का सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में क्या कैबिनेट में विस्तार हो सकता है? जी हां, हो सकता है। इससे पहले 2021 में 7 जुलाई को कैबिनेट में विस्तार हुआ था और 14 जुलाई से संसद का सत्र था। तब रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नेताओं को कैबिनेट से हटाया गया था। ये पहले भी हुआ है और अब भी हो सकता है।
3: सवाल नंबर 3, कितने नए मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने मंत्री हटाए जाएंगे, कितने मंत्रियों की पोस्ट खाली हो रही। जैसे पंकज चौधरी अभी वित्त राज्य मंत्री, अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद के चलते इनकी मंत्री पद वाली सीट खाली हो सकती है, ताकि पूरा फोकस 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में संगठन पर रख सके। रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री हैं। 21 जून को इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्यसभा की नई सीटों के चुनाव में इन्हें जगह नहीं मिली। पंजाब चुनाव में पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू पूरा ध्यान लगा सके, इसलिए हो सकता है कि इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली रहेगी। हर्ष मल्होत्रा सहकारिता राज्य मंत्री रहे। मई महीने में इन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। एक व्यक्ति एक पद की नीति के चलते इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली हो सकती है। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। 23 जून को ये इस्तीफा दे चुके हैं।
4: पंकज चौधरी, हर्ष मल्होत्रा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में भी मंत्री बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले जी किशन रेड्डी, विजय सापला, सर्वानंद सोनेवाल प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे, क्योंकि उन राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। क्या इसी फार्मूले के तहत पंकज चौधरी भी मंत्री बने रहेंगे, या फिर एक व्यक्ति एक पद वाला फार्मूला ही चलेगा? कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: 12 साल में मोदी मंत्रिमंडल में 4 बड़े बदलाव देखे गए हैं। नवंबर 2014 जब 4 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 14 राज्य मंत्री के साथ कुल 21 नए मंत्री जुड़ने से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 45 से बढ़कर 66 हो गई थी। पहले कार्यकाल में दूसरा विस्तार जुलाई 2016 में पीएम ने किया, जब 19 नए चेहरे शामिल किए और 5 मंत्रियों को हटाया गया। सितंबर 2017 में पहले कार्यकाल के दौरान तीसरा विस्तार हुआ, 6 मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, 9 नए राज्य मंत्री जोड़े गए, 4 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। जुलाई 2021 में दूसरे कार्यकाल का पहला और अब तक का चौथा विस्तार मोदी मंत्रिमंडल में हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल भी रहा, जब 36 नए चेहरे शामिल हुए, 12 सीनियर मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, 7 तत्कालीन राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। क्या अब रिफॉर्म और परफॉर्म की बात पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल विस्तार में रिफॉर्म करके परफॉर्म वाले पैमाने पर ध्यान देंगे?
3: नए चेहरों को चुनने, पुरानों की विदाई का कौन सा फॉर्मूला प्रधानमंत्री ने निकाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी दौर में बीजेपी में मुख्यमंत्री चुनना हो या पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हो, चेहरे जो चुने जाते हैं सबको चौंकाते हैं। क्या यही नितिन नवीन की यानी बीजेपी की नेशनल टीम में नजर आएगा, जिसका ऐलान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हो सकता है? तो टीम में क्या दिखेगा, इसका एक सैंपल आप यूपी की बीजेपी टीम से समझिए, जहां 47% सीट पिछड़ों को दी गई, 13% पद SC/ST को दिए गए, 20% पद महिलाओं को मिले। बताया जा रहा है कि इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में महिलाओं और युवाओं को तरजीह मिलेगी चुनावी साल के हिसाब से, जहां अगले साल 7 राज्यों

0: राज्यों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगी, क्योंकि अगले साल यूपी, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों के अंदर जो है वो विधानसभा चुनाव है।
1: अब सवाल है कि परफॉर्मेंस पर खुद फोकस करने वाले प्रधानमंत्री किस पर परफॉर्मेंस के नजरिए से नजरें टेढ़ी करेंगे और किस पर नए परफॉर्मेंस के लिए भरोसा करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: अब बात अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद की। अयोध्या में चढ़ावे की चोरी को लगातार लेकर खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा खलबली मचाने वाला है। अब यह पता चला है कि चढ़ावे की चोरी की भनक तो पहले ही लग गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने उस पर मिट्टी डाल दी और चढ़ावा जो लोग चुराने का इल्जाम जिन पर है उनको लूट का पूरा मौका मिल
3: गया। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी उसी ने इससे खिलवाड़ किया। खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप सब कुछ देखता रहा। कैसे, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। एसबीआई ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। एसबीआई की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। सवाल है कि ट्रस्ट के पदों पर बैठे वो लोग कौन थे जिन्होंने बैंक को शक के दायरे में आने वाले चेहरों को हटाने से रोका। चढ़ावा चोरों के वो सरपरस्त कौन थे? आपको बता दें, ऐसा आरोप विपक्ष पहले ही लगाता रहा है, तो क्या चढ़ावा चोरों को संरक्षण देने के ये आरोप सही थे?
4: अयोध्या में जो घपला चल रहा था, 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही और शायद आगे भी बचा रही है।
3: चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 चेहरों को दबोचा गया है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये तो छोटी मछलियां हैं, बड़े और विशाल काय मगरमच्छों को पकड़ना अभी बाकी है। इन्हें पकड़ने का जिम्मा अब यूपी पुलिस और एसआईटी पर है, जिसका फोकस अब चोरी के पैसे की लेन देन को खंगालने पर है। खबर है कि पुलिस ने 7 बैंकों से आरोपियों और ट्रस्ट के 5 साल के रिकॉर्ड मांगे हैं। विस्तृत अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, केवाईसी डॉक्यूमेंट, जमा रिकॉर्ड और दूसरी बैंकिंग जानकारी मांगी गई है। मकसद ये पता लगाना है कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ और क्या भक्तों के चढ़ावे के पैसे को गलत तरीके से कहीं और भेजा गया या संदिग्ध लेन देन हुआ। जांच के तहत ही पुलिस की एक टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या धाम ब्रांच गई, जहां ट्रस्ट का मुख्य दान खाता है। वहां से बैंकिंग रिकॉर्ड और प्रक्रिया से जुड़े डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए गए। जांच टीम ने 6 अन्य बैंकों का भी दौरा किया, ताकि आरोपियों के खातों से जुड़े रिकॉर्ड हासिल किए जा सकें। अयोध्या में एसबीआई की नया घाट ब्रांच भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रांच में 8 में से 7 आरोपियों और मंदिर ट्रस्ट के खाते हैं।
5: सूत्रों के मुताबिक बैंक यह बताता है कि 3 महीने पहले अलर्ट किया गया था टेंपल ट्रस्ट को कि कुछ ना कुछ अनियमितता हो रही है चढ़ावे को लेकर। उन्होंने यह भी एडवाइस किया था कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको उनका बदलाव किया जाए, लेकिन उस वक्त ट्रस्ट ने बैंक की नहीं सुनी और उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हालांकि पुलिस ने यह भी पूछा कि आपने फिर आगे बात क्यों नहीं बढ़ाई, तो बैंक सूत्रों ने बताया है कि जवाब में यह कहा गया है कि टेंपल ट्रस्ट की तरफ से प्रेशराइज भी किया गया कि आपको बहुत कुछ इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से टेंपल ट्रस्ट ने जो है मना कर दिया था?
2: एक बड़ी और अहम खबर यह भी आई है कि पुलिस ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की है। चंपत राय ने अपनी भूमिका को लेकर पुलिस से डिटेल में बात की। अपना बचाव करते हुए उन्होंने ये तर्क दिया कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, पता चलते ही एक्टिव हो गए थे।

0: चंपत राय आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक एक ऐसी शख्सियत जो केंद्र में रही वो अब सवालों के घेरे में है, जिन पर आरोपों का शिकंजा हर दिन कसता जा रहा है, जिनके इस्तीफे को लेकर आवाज लगातार बुलंद हो रही है। उसी चंपत राय को हालात ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि उन्हें पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा। खबर है कि पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। उनसे प्रशासनिक निर्णय और चढ़ावा प्रबंधन पर सीधे सवाल किए गए। उनसे कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निपटारे के बारे में सवाल किए गए। आज तक को चंपत राय से पूछताछ के बारे में कई एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो पुलिस से चंपत राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की इस जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, FIR भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। दरअसल चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत की वजह टिन्नू यादव है। टिन्नू से नजदीकी उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। जाहिर है पुलिस ने टिन्नू से उनके रिश्तों को लेकर सवालों की बौछार कर दी। इस पर चंपत राय बस इतना कह पाए, टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा, रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? इस पर चंपत राय का जवाब था, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें केवल मैं ही नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही।
1: जांच का दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी, वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
0: चंपत राय ही वो कड़ी है जिनसे पुलिस को अब दूसरे आरोपियों से पूछताछ में सामने आए खुलासों का मिलान करना है। चंपत ने क्या बताया और क्या छिपाया, इसी पर जांच एजेंसी चंदा चोरी के तमाम सिरे को जोड़ पाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई खलबली मचाने वाले हैं। ऐसा ही वाकया RMO अर्जुन देव का है। RMO यानी रेडियो मैनेजमेंट ऑफिसर, जो 2009 से यानी 17 साल से अयोध्या में तैनात थे। कई बार तबादले के आदेश हुए पर हर बार आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जांच की जा रही है कि एक ही जिले में 17 वर्ष तक तैनाती की वजह क्या रही। सच कहा जाए तो जांच एजेंसी के लिए चढ़ावा चोरी की तह तक जाने की बड़ी चुनौती है। उसके सामने सुलगते सवालों का दरिया है जिसे पार कर उसे आगे बढ़ना है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
2: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सरकारी चाबुक एक बार फिर चमक रहा है और इसका बड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे रामपुर में आजम खान की मिल्कियत पर पड़ रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर बनी 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे की इमारत घोषित कर जवाब मांगा है।

0: ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक दिन पहले यूपी के रामपुर का विकास प्राधिकरण आजम खान की यूनिवर्सिटी को नोटिस थमाता है और दूसरे दिन सीएम योगी का कार्यक्रम उसी रामपुर में होता है।
1: 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था।
0: जिस रामपुर में सीएम योगी 690 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं की सौगात इलाके के लोगों को दे रहे हैं, उसी रामपुर में एक समाजवादी नेता की विकास परियोजना सियासत के जाल में फंस गई है। दरअसल यूपी में जिस तरह योगी राज के अंदर सख्त हुकूमत के कानूनी हाथ संभल में नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी ही सख्ती रामपुर के आजम खान की मिल्कियत के खिलाफ भी नजर आ रही है। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने कहा है कि आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे।
2: खबरें सरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: राम मंदिर दान घोटाले को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम के निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चंदे की चोरी को अंजाम दिया गया।
1: इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
0: अखिलेश यादव ने राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है। अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद अयोध्या को बेमिसाल धार्मिक नगरी बनाने का दावा कर रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पूछा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या निर्माण कैसे करेंगे।
2: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अयोध्या से संतोष शर्मा, आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: घेरे में 6 से 7 बैंक, दान पात्र खोलने से गिनती तक मिली कई खामियां, दर्शन करने से पहले कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट। SIR और चुनाव आयोग पर भड़का विपक्ष, 23 पार्टियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा पत्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज से प्रक्रिया शुरू, 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। भड़काऊ बयान मामले में हुमायूं कबीर पर गिरफ्तारी की तलवार, मुर्शिदाबाद के 2 थानों में नोटिस जारी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर एक्शन में पुलिस। शामली घर वापसी केस में बड़ा खुलासा, आयुष मलिक की ईमेल आईडी का पासवर्ड मिला 2047, PIFI के इस्लामिक स्टेट मिशन से जुड़े तार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: पाई पाई को तरसते पाकिस्तान का सूखा हलम, कंगाल मुल्क की भारत को गीदड़ भभकी,
3: जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे।
2: हाथ काटने वाले खुद भीख मांग रहे,
4: तो ये बहुत एक चैलेंजिंग सूरत हाल।
2: पहलगाम का बदला, सिंधु समझौते पर ताला,
5: और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है।
2: आतंक रुकेगा तभी पाक की प्यास बुझेगी, धमकी छोड़ो पहले पीओके बचाओ।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि यानी वो खबर जहां देश के दुश्मनों की एक एक चाल को मटियामेट होते रिपोर्ट किया जाता है। और आज पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक भारत के जो विरोधी हैं उनका कलेजा कांप रहा है, हलख सूख चुका है। नई दिल्ली के एक फैसले ने इस्लामाबाद को पानी पानी चिल्लाने पर मजबूर कर दिया है, तो उधर बांग्लादेश में बैठे जो भारत विरोधी हैं वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ की नई फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। रणभूमि में आज इन्हीं भारत विरोधी ताकतों का हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे उस कंगाल आतंकिस्तान की, जी हां कंगाल हुए पाकिस्तान की, जिसके हुक्मरान अपनी आवाम को दाने दाने के लिए तो तरसा ही रहे थे, कल रात उनके एक मंत्री ने एक अलग गीदड़ भभकी दे दी। यह कहा कि अगर भारत ने पानी रोका तो वो हाथ काट देंगे। हम पाकिस्तान से यही कहेंगे कि ये जो पुराना अपना चूरन है ना वो बेचना बंद कर दे, ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया में आपने देख लिया, अगर पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान की जल समाधि की तैयारी कर दी जाती है। पिछले डेढ़ साल से पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है पानी के लिए। पाकिस्तान की जो नसें हैं ना वो सूखती जा रही हैं। पाकिस्तान की जो छटपटाहट है ये दिख रही है इस समय, और दुनिया देख रही है इसको। भारतीय सेना के शौर्य का जो नया अध्याय है वो ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देख लिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए महज 88 घंटे लगे, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो अभी आर्मी चीफ थे उनकी जगह आज एक नए आर्मी चीफ ने भारतीय थल सेना के 31वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने कमान संभाल ली। यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ब्लूप्रिंट जो है वो नए थल सेना अध्यक्ष के नेतृत्व में और घातक हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि वो क्या कह चुके हैं और क्या नहीं कहा उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला वार कितना खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश का एक नेता है नाहिद इस्लाम, वो भारत के खिलाफ नफरत का जहर बार बार उगलता है, कोलकाता पर झूठे दावे ठोकता है, हम आपको इन बयानों के पीछे बांग्लादेश के नेताओं का खौफ भी दिखाएंगे। इन तमाम खबरों से जो सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी है, क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इस समय थर्राए हैं, ये भी बताएंगे। दुश्मन की नींद तो उड़ रही है, लेकिन पहले खबर उस कंगाल पड़ोसी आतंकिस्तान की, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान का जो जलवायु परिवर्तन मंत्री है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक, और जो पाकिस्तान का सूचना मंत्री है अताउल्ला तर्रार, दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत को गीदड़ भभकी दे डाली। मुसादिक मलिक ने कहा कि किसी ने अगर सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से का पानी छीना तो इस्लामाबाद उसके हाथ काट देगा। वहीं पाकिस्तान का जो सूचना मंत्री है अताउल्ला तर्रार, उसने जोर देकर कहा कि 1960 का जो सिंधु जल समझौता है कानूनी रूप से बाध्य है भारत के लिए, कोई भी देश एकतरफा इसे निलंबित या रद्द या संशोधित नहीं कर सकता। इस बीच पाकिस्तान आज यानी मंगलवार से इस्लामाबाद में सिंधु जल समझौते पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से कई कानूनी विशेषज्ञ, जल विशेषज्ञ, विदेशी प्रतिनिधि इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और उससे पहले मुसादिक मलिक ने जो गीदड़ भभकी दी, हम आपको पहले वो गीदड़ भभकी सुनवाते हैं और उससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान इस समय इतने खौफ में क्यों है।
3: हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, दो मर्तबा एक डेढ़ साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने दो मर्तबा सीसा पिलाई, दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मर्तबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे।
0: क्या क्या बोलते रहते हैं, दिमाग भी नहीं लगाते क्या बोलते हैं। 88 घंटे में घुटनों के बल आए थे सीज फायर मांगने के लिए, खाने को दाना नहीं है इनके पास, और बात करते हैं भारत से लोहा लेने की। खैर, चाहे पाकिस्तान कितने ही हाथ पैर मार ले, भारत ने और जो नरेंद्र मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब आप बोल सोचेंगे कि ये दरअसल सिंधु जल समझौता है क्या? अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, ये सिंधु जल समझौता जो 1960 में जिस पर हस्ताक्षर हुए थे ये है क्या। पश्चिम की नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता रहा है, इसके तहत इसमें जो नदियां हैं पूर्वी जो नदियां हैं सतलुज रावी ब्यास, ये तीन पूर्वी नदियां हैं, ये भारत के हिस्से की हैं। पश्चिमी नदियां जो है सिंधु झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान का, 20% भारत का। पहलगाम आतंकी हमले से पहले भारत ने के बात कह दिया था, अप्रैल 2025 में संधि निलंबित कर दी गई है, एब्रोगेटेड नहीं है, हेल्ड इन अबेयंस है। फिर 1960 में इसको इस पर हस्ताक्षर हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ हस्ताक्षर, ये एक अलग कहानी है। क्यों हम लोग इतना दिल खोल के पाकिस्तान को नदियों का पानी भी दे रहे थे, बांध बनाने के लिए पैसा भी दे रहे थे? खैर, ये 1960 की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है। लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान कितने ही मंचों पर कितनी ही आवाज क्यों ना उठा ले, कितना रो ले, बिल बिला ले, लेकिन भारत का रुख साफ है। अगर पाकिस्तान को बदले हुए सिंधु जल समझौता, क्योंकि भारत ने कई बार पाकिस्तान से कह दिया है कि अब वो 1960 का समझौता 2026 में नहीं चलेगा, फिर से समझौता हो सकता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को पहले आतंकवाद बंद करना पड़ेगा। जो भारत के प्रति आतंकवाद है वो मिलिट्री टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। देखिए यह खबर,
2: कंगाल हो चुके पाकिस्तान के मंत्रियों की जुबान से आजकल बारूद नहीं बल्कि खौफ टपक रहा है। पाई पाई को मोहताज, अपनी जनता को दाने दाने के लिए तरसाने वाला मुल्क आज दुनिया की महाशक्ति बनते भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है।
3: तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, दो मर्तबा एक डेढ़ साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने दो मर्तबा सीसा पिलाई, दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मर्तबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। तो ऐलान कर चुके हैं।
2: सुनिए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक को, जो कह रहे हैं कि हमारे पानी को छुआ तो हाथ काट देंगे। कोई इन्हें बताए कि पिछले डेढ़ साल से पानी तो वैसे ही बंद है। भारत ने जब से कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है, तब से इस्लामाबाद के हुक्मरानों के हलक सूखे हुए हैं।
5: अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहाँ पसीना छूट रहा है।
2: इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो सीधे युद्ध की धमकी पर उतर आए थे। वो कह रहे थे कि पानी रोका तो जंग होगी।
6: पूरी आबी जा रही है के ऊपर तो हम पूरी पूरी रोड शोर का जंग देंगे, और इनको बिल्कुल इनको आबी जा रही है से कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का
7: पूरा बंदोबस्त होगा इस पर,
6: बिल्कुल इंशाल्लाह।
2: खुद को आतंकवाद का शिकार बनाने वाला पाकिस्तान आज पानी को ढाल बनाकर भारत को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वैसे ये बात अच्छी है कि पाकिस्तान इसराइल का उदाहरण दे रहा है। भारत और इसराइल न केवल आतंक के खिलाफ एक हैं, बल्कि उसका इलाज भी उतनी ही अच्छी तरह करना जानते हैं।
3: जो काम इसराइल कर रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई ट्रीटी, हमारे तो जो सामने आएगा हम तो जेनोसाइड कर डालेंगे। तो वही बात ये हमारा हमसाया मुल्क कह रहा है कि होगी कोई ट्रीटी, होगी नहीं ट्रीटी, है ट्रीटी।
2: भारत ने साफ कर दिया है कि अब हमारे किसानों के हक का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं जाएगा, चाहे बांध बनाने पड़े, नहरें खोदनी पड़े या दीवार खड़ी करनी पड़े, भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा।
3: हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है, और हमारे पास तो ट्रीटी है। ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे सबके सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे, अभी भी दो जगह पे करके आए, दोबारा कल पेश करेंगे।
2: न्यू इंडिया का साफ संदेश है कि ये पुराना दौर नहीं है। जब तक सीमा पार से आतंक नहीं रुकेगा तब तक भारत से पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, चाहे पाकिस्तान कितनी ही गीदड़ भभकियां क्यों न दे। आज तक ब्यूरो।
0: देखा आपने किस तरह बिलबिला रहा है इस समय पाकिस्तान। इस वक्त एक बड़ी खबर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आ रही है। भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, क्रूर चेहरा है, ये एक बार फिर बेनकाब हुआ है पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में। पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर और वहां के रावलाकोट में आधी रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन से हमला कर दिया। आवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि प्रदर्शन स्थल पर ड्रोन के जरिए टाइमर लगे चार आरडीएक्स जैसे विस्फोटक डिवाइस गिराए गए। गनीमत यह रही कि वहां जो वॉलंटियर्स थे वो मुस्तैद थे और वक्त रहते ही उन्होंने बमों को ढूंढ लिया, उन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। सैकड़ों लोगों की जानें बच गई, लेकिन इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में ये देखिए, ये हजारों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है और पाकिस्तान की सरकार और सेना जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर की आवाम पर, उसके खिलाफ इनकलाब की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इनके पास पीने को पानी नहीं है, यहां से जो बिजली बनती है उसका लाभ पाकिस्तान का पंजाब सूबा उठाता है, वही बिजली पाकिस्तान का पंजाब सूबा सस्ते में लेता है, महंगे दामों पर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में बेची जाती है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे सरदार अमान खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। सरदार अमान खान ने दो टूक कह दिया है कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने भारत के साथ कारोबार का रास्ता खोलने का इशारा कर दिया है। अमान खान ने चेतावनी दी है कि अगर सारे रास्ते खोल दिए जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत मिन्नतें करती रह जाएगी, ये असलियत पाकिस्तान जान ले, और ये पाकिस्तान के मन में इस समय सबसे बड़ा डर है।
8: ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिनतें करो, हमारे तरले करो, कहीं ऐसा ना हो। तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है।
0: और ये एक बार नहीं, बार बार कहा उन्होंने कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब देखिए परिस्थिति कैसे बदलती है। एक समय यह था जब इस तरह की बातें यहां कहलवाई जाती थी, अब एक समय यह है कि सरहद के उस पार पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं ये खुलकर कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत के साथ रास्ते खोल दिए जाए, व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी, तो वो देखेंगे यहां कितना विकास है, यहां कितने IIT और IIM खुल रहे हैं, यहां कितना पर्यटन है और वहां कितना अत्याचार है। वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, हालांकि यह चिंताजनक खबर है। कतर की मध्यस्थता में दोहा में होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है, बेहद संवेदनशील और गुप्त बातचीत, या अचानक पूरी तरह से अटक गई है, खबर यह आ रही है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, रेड सी यानी लाल सागर में जारी तनाव और ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की शर्तों पर जो पेच है वो फंस गया है। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष किसी साझा सहमति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी के बाद जो महावार्ता है फिलहाल उसे टाल दिया गया है। मध्य पूर्व में पहले से ही जारी भीषण युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच इस कूटनीतिक बातचीत का रुकना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका आने वाले समय में हो सकता है। माना यह जा रहा है कि इस विफलता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव का खतरा और ज्यादा एक बार फिर बढ़ गया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कतर इस बातचीत को दोबारा पटरी पर ला सकता है या फिर मध्य पूर्व की जो आग है ये तेजी से फैलेगी, दावानल यानी जंगल की आग की तरह फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। उधर तेहरान में आयातोला सैयद अली खमेनेई के सम्मान में विदाई समारोह की तैयारियां चल रही हैं। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला को इस्लामिक क्रांति के शहीद नेता आयातोला सैयद अली खमेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तेहरान जाएंगे। ईरान ने इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खमेनेई मारे गए थे। अब शनिवार यानी 4 जुलाई को उनका विदाई समारोह शुरू हो जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को एक जगह रखा जाएगा जहां लोग आकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे पाएंगे। 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की मजार में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और अब बात भारत की तीनों सेनाओं में आज नेतृत्व के स्तर पर परिवर्तन की है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज आर्मी चीफ के पद से सुपर एनुएट यानी रिटायर हो गए। उनकी जगह जनरल धीरज सेठ ने ली जो भारत के 31वें थल सेना अध्यक्ष हैं। उन्हें भारतीय सेना में लगभग 4 दशक का अनुभव है। जनरल धीरज सेठ ने दिसंबर 1986 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री ली थी। उनके पूर्ववर्ती जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कार्यकाल में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 88 घंटों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान सीज फायर मांगने पर मजबूर हो गया था। जनरल द्विवेदी ने आज कहा 2 वर्षों में भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी, संतुलन और सतर्कता मजबूती से बनाए रखी है। ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रमुख उदाहरण है।
9: मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूं। वे एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेतृत्व करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प के साथ और भी बुलंदियों को छुएगी।
0: जो नए आर्मी चीफ है ना, और ये एक बड़ी बात है, ये आर्मर्ड कोर के हैं और ये एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, यू गए जनरल शंकर रॉय चौधरी के बाद 1997 के बाद पहले आर्मर्ड कोर के अधिकारी हैं जो थल सेना अध्यक्ष बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने दो कमांड की हैं, एक सदर्न कमांड, एक साउथ वेस्टर्न कमांड। उसके अलावा इनके कमांड और स्टाफ अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बहुत एक्सटेंसिवली डिप्लॉयड रह चुके हैं। हम विस्तार से आपको बताते हैं कि कहां कहां ये रह चुके हैं। ये जो तस्वीर आप इस समय अपने कैमरे पर देख रहे हैं, जनरल धीरज सेठ का मैंने इंटरव्यू किया था, उसकी ये तस्वीरें हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अच्छा, जो नए परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। जैसे नए थल सेना अध्यक्ष 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ, ये वाइस चीफ थे, तो जो नए वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, ये नए वाइस चीफ के रूप में आए हैं। आर्मी कमांडर्स की अगर हम बात करें तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, उन्हें नियुक्त किया गया है। और ये वेस्टर्न बॉर्डर की अगर बात करें तो सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, नए दोनों जगह नए आर्मी कमांडर्स आए हैं। जनरल पुष्कर आए हैं सदर्न कमांड में, जनरल मल्होत्रा आए हैं साउथ वेस्ट कमांड में, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ये सदर्न कमांड में है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड। अच्छा, जो 14 कोर है या फायर एंड फ्यूरी कोर जिसे कहा जाता है, वहां लेफ्टिनेंट जनरल मदन राज पांडे की नियुक्ति हुई है। ये थल सेना की नियुक्तियां हैं। लद्दाख में नई नियुक्ति है, एक कोर लेवल पर और कमांड लेवल पर, जयपुर में और पुणे में। उसके अलावा वायुसेना में नए वाइस चीफ आए हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में आए हैं। तो काफी नए अपॉइंटमेंट्स और बहुत ही संवेदनशील समय में ये अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी और चौंका देने वाली खबर आ रही है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की संसद में एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर खुले में उगला गया। ढाका से सांसद नाहिद इस्लाम ने भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर एक झूठा आरोप लगाया है। यह वही नाहिद इस्लाम है जिसने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन चुनावों में बुरी तरह हार मिली और अब वहां पर बीएनपी की सरकार है। लेकिन संसद में खड़े होकर नाहिद इस्लाम ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर बांग्लादेशी विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है, सुनिए। नाहिद इस्लाम कह रहे हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल का सांप्रदायिक विभाजन किया, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल सच नहीं है, यह भारत के खिलाफ मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। दरअसल सच्चाई क्या है, मैं आपको देखिए फैक्ट चेक करना हमारा काम है और हम आपको सच बता रहे हैं यहां पर कि बांग्लादेश में किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के विभाजन की भूमिका रखी या उसको कराया, ये झूठ है। सच क्या है? मुस्लिम लीग के करने दंगे कराए, नौखाली नरसंहार के बाद विभाजन हुआ। कौन चाहता था यह विभाजन? मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था यह विभाजन। डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत कलकत्ता में दंगे कराए गए, नौखाली में नरसंहार हुआ। विभाजन की जो प्रतिक्रिया थी यही उसकी सच्चाई है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई उनकी भूमिका नहीं थी, उन्होंने तो पूरे बंगाल को पाकिस्तान की गोद में जाने से बचा लिया था। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां तुरंत होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
10: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. England takes on Democratic Republic of the Congo in Atlanta, and the USA battles Bosnia and Herzegovina in Santa Clara. Both England and the USA are huge favorites. England is -1,000 to qualify for the next round, and USA is -630. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
13: Pure Ayurvedic Beauty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: हमने तब भी सवाल किया था।
8: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
7: हम आज भी सवाल करते हैं।
8: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
7: ऑपरेशन अग्नि,
8: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
7: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
9: In association with
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: Talk Sport presents The S-Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
2: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
3: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
2: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
3: Remember, around here, we use the F-Word.
2: Never the S-Word.
1: The S-Word, available now on TuneIn,
4: wherever you get your podcasts,
1: and on the S-Word YouTube channel.
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों।
10: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
11: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटते चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

करने से पहले कई कांग्रेसी नेता हुए हाउस अरेस्ट। बंगाल के हुगली से टीएमसी पार्षद शकील अली गिरफ्तार। 2023 में श्रीराम नवमी पर हिंसा और बमबारी भड़काने का आरोप, एनआईए को थी तलाश।

0: जब तक सांसे रहेंगे तब तक आते रहेंगे। बोल महादेव बाबा की। बोल सच्चे दरबार।
1: भोलेनाथ की कृपा से और पिछले दो बार लगातार होके आए हैं हम, इस बार भी हम भोलेनाथ की कृपा से आज पहले जत्थे के साथ जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
2: शुरू हो रहा है आस्था का संगम। हिमालय की पहाड़ियों में दृश्य विहंगम। आप भी कीजिए बाबा बर्फानी के दर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे सजग है निगहबान। जत्थों की पूरी तैयारी, मुश्किलों पर आस्था भारी। पवित्र गुफा तक पहुंचने और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब बढ़े जा रहा है। बाबा के जयकारों से पहाड़ गूंज रहे हैं। प्रथम पूजा के साथ ही अमरनाथ यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। क्या है इस बार की यात्रा की खास तैयारियां और किस तरह मीलों दूर से खींचा चला आ रहा है आस्था का सैलाब, देखिए हमारी इस खास पेशकश में।
3: आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। आज बात रणभूमि में कर्म भूमि और धर्म भूमि की करेंगे, क्योंकि शुरू होने जा रही है बाबा अमरनाथ की यात्रा। तो एक तरफ देश भर से श्रद्धालु हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, धर्म यात्रा शुरू हो रही है, तो दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा और सुविधाओं में सरकार और प्रशासन जुटे हुए हैं। सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, तमाम समाजसेवी संगठन, सभी के लिए ये कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र ऐसा बन गया है। कुरुक्षेत्र क्यों? क्योंकि पाक प्रायोजित आतंकवाद का खतरा तो है, उससे भी निपटना है। हजारों फीट की ऊंचाई पर तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए 57 दिनों की यात्रा सकुशल संपन्न हो, यह सभी की इच्छा भी है और आस्था भी है और कामना भी है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और पहले जत्थे को 2 जुलाई जम्मू से रवाना किया जाएगा। जम्मू में देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन है इस समय किया जा रहा है और इसके लिए आस्था का सैलाब वहां पर पहुंचा है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं लेकिन उत्साह में कमी नहीं है, उमंग जबरदस्त है। भगवान महादेव की जय, उनका जयकारा, बाबा बर्फानी का जयकारा हर ओर सुनाई दे रहा है। इधर प्रथम पूजा के साथ ही बाबा बर्फानी की तस्वीरें भी सबके सामने आ गई हैं और इस यात्रा के लिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कहीं हेलीकॉप्टर्स हैं तो कहीं डॉग स्क्वाड है, कहीं ड्रोन की मदद ली जा रही है, तो कहीं पर अलग अलग इलाकों में सेना को पहले से ही तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। सड़क से लेकर पहाड़ों तक मॉक ड्रिल की जा रही है और उससे आपको अंदाजा लगेगा खतरा बड़ा है। और खासतौर पर उस पहलगाम आतंकी हमले के बाद कोशिश यही है कि वो जो पाकिस्तानी आतंकवाद है वो सफल ना हो जाए। जैसा हम आपको बता रहे हैं 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। पहले जत्थे को रवाना करने के लिए जम्मू में तो तैयारियां कर ली गई हैं। यात्रा मार्ग पर पुलिस और प्रशासन दोनों तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रथम पूजा के साथ सभी विभागों की बैठक भी ले चुके हैं। किस तरह की तैयारी है जम्मू से लेकर बालटाल और पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक और भगवान शिव के भक्त उनमें किस तरह का उत्साह है, ये एक्सक्लूसिव आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।

ये भक्ति में सराबोर उमंगों का उत्सव है। ये उस अदृश्य शक्ति का असर है जो जन सैलाब को मुश्किलों से पार पाने और अपने बर्फानी स्वरूप के दर्शन के अवसर दे रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में हिलोरे भर रही हैं। बम बम भोले और महादेव के जयकारों से सड़कों से लेकर पहाड़ तक गूंज रहे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरी है तैयारी, अब बाबा बर्फानी के दर्शन की बारी। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक के मोर्चे पर मुस्तैद जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की गई, यात्रा की सकुशलता की कामना की गई और फिर आरती हुई। इसी पूजा के साथ हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की विधिवत शुरुआत की जाती है। इस दौरान बाबा बर्फानी का

0: की जाएगी। जम्मू में हजारों भक्तों के आने से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। जहां नजर डालो वहीं शिव भक्तों का रेला नजर आ रहा है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले मां तवी की भव्य आरती का आयोजन भी किया गया। तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार सूर्य पुत्री मां तवी की संध्या आरती का उद्देश्य बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना और जम्मू की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और दीपों की रोशनी के बीच साधु संतों और पुरोहितों ने विधि विधान से मां तवी की आरती संपन्न करवाई।
1: ये शंखनाद हो गया है कि जो श्रद्धालु देश भर से आने वाले हैं उनका आगमन जो है वो होना शुरू हो चुका है। और 3 तारीख को पहला जत्था जो कि जम्मू के यात्री निवास यानी भगवती नगर से होगा, और इस समय हम तवी रिवर फ्रंट पर हैं क्योंकि तवी रिवर फ्रंट पर ये तमाम एक पहली बार यहां पर ये जो है वो प्रस्तुति आरती की जा रही है ताकि श्रद्धालु जो है वो आकर्षण जो है केंद्र का आकर्षण बने। तो लगातार जो है वो जम्मू प्रशासन और यहाँ के लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इस यात्रा को जो है वो सफल बनाया जाए।
0: महादेव के धाम की ओर जाने वाले शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। घंटों तक लाइन में लगना और कई किलोमीटर पैदल चलना अब एक उत्सव बन गया है। भक्तों के कष्ट को कम करने और उन्हें सुविधाएं देने के लिए प्रशासन और समाज सेवियों ने भी पूरे यात्रा मार्ग पर कमर कस ली है। आज तक ब्यूरो।
2: जो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक देश नहीं था, अंग्रेजों ने हमें एक देश बनाया, उन्हें हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को देखना चाहिए कि कहां रामेश्वरम और कहां भगवान अमरनाथ, और कैसे श्रद्धालु रामेश्वरम भी जाते हैं, अमरनाथ के दर्शन भी करते हैं। एक देश, यही हमारी आस्था है जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। जो पूरी अमरनाथ यात्रा है ना उसके दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुए वो अमरनाथ की यात्रा का रूट है। दरअसल उस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2 अलग-अलग मार्ग हैं। हम आपको दोनों मार्गों के बारे में बताते हैं। जो पहला रूट है ये 14 किलोमीटर है, हालांकि थोड़ा इसकी हाइट ज्यादा है तो थोड़ी कठिन चढ़ाई होती है। दूसरा रूट 42 किलोमीटर है, लेकिन ये पहलगाम से जो होकर जाता है ना ये आप धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पहुंच ही जाते हैं और आसानी से जाते हैं, लेकिन 42 किलोमीटर लंबा है। हालांकि मैं ये भी मैं आपको बता दूं हेलीपैड भी है, हेलीकॉप्टर से भी दर्शन होते हैं, लेकिन उसको निर्भर करता है वहां के मौसम पर। पहलगाम से जो रास्ता जाता है वो पहलगाम आप पहले पहुंचिए, वहां पर कैंप लगा रहता है, वहां से चंदनवाड़ी पहुंचिए, पिस्सू टॉप, नागाकोटी, शेषनाग, फिर महागणेश होते हुए पंचतरणी संगम और फिर पवित्र गुफा में जाके आपके दर्शन संपन्न होते हैं। बहुत आनंद आता है। ये तो हुआ पहला रास्ता। जो दूसरा रास्ता है बालटाल से होकर जो रास्ता जाता है वो बालटाल से बराड़ी होते हुए फिर वही संगम पहुंचते हैं और वहां से आप चढ़ाई चढ़ते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। चुनौतियां लेकिन कई आती हैं, बहुत सी तैयारियां भी की जाती हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए। आप ऑल्टीट्यूड देखिए, मान यानी ऊंचाई देखिए, इसके लिए आपको वहां पहुंचकर पहले किस तरह से आप सांस लीजिए, वैसे बहुत खूबसूरत पूरा वातावरण है, ऐसा लगता है कि आप सदैव स्वर्ग पहुंच गए हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं? हर पल मौसम बदलता रहता है, ऑक्सीजन की आपको कमी ऊंचाई पर नजर आती है, बारिश और बर्फ कभी कभी पड़ सकती है। अच्छा, फिटनेस बहुत जरूरी है, वो तो वैसे भी जीवन में फिटनेस बहुत जरूरी है, और ये पाक प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद इसकी एक बड़ी चुनौती है जिससे लगातार देश निपट रहा है। जम्मू में आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस समय बनाया गया है। 600 से ज्यादा कैमरे अलग अलग जगह लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी पैनी निगाह रखी जा रही है। पहाड़ों पर न केवल रेस्क्यू टीमें तैनात है, अलग अलग जगह पर वो पहले से ही तैनात की गई है, जरूरत पड़ने पर वो आपको रेस्क्यू भी कर सकती है, और सिक्योरिटी टीम्स अलग अलग भी हैं। जगह जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टरों को पहले ही तैनात कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर्स भी स्टैंड बाय पर हैं, लेकिन वो मौसम पर निर्भर करता है। चप्पे चप्पे पर जो बहुत ऊंचाई के इलाके हैं वहां पर भारतीय सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, उनको अलग अलग जगह तैनात किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हर पल जो बदलता मौसम है इसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे ना इन खूबसूरत वादियों में तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश कितना सुंदर है, कितना मजा आता है।

0: इस पूरी यात्रा के दौरान एक बात और, हमने आपको दोनों मार्गों के बारे में बताया, साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है, वहां पर खूब मेला भी लगता है, लेकिन चुनौतियां भी है, मौसम अलग इंतजाम लेता है। दूसरी तरफ नापाक इरादे रखने वाले वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान जिन्हें प्रायोजित करता है, दोनों ही मोर्चों पर दुरुस्त आपकी यात्रा रहे, सेना, अर्धसैनिक बल, प्रशासन, पुलिस हर तरह से तैयार हैं। किस तरह की है उनकी तैयारियां, उस पर देखिए ये रिपोर्ट।
1: हर मोर्चे पर मुस्तैद है सुरक्षा बल, जमीन से लेकर आसमान तक, तलाशी से लेकर तकनीक आजमाने तक। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन और सेना ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जम्मू में रजिस्ट्रेशन केंद्रों से लेकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा इंतजामों का जाल बिछा दिया गया है। सारे सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए, सभी विभागों के समन्वय के लिए और किसी भी आपदा से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया।
2: अरे यात्री ध्यान दें, सुरक्षित कारणों की वजह से यात्रा को स्थगित किया जाता है, कृपया सारे यात्री पुलिस का सहयोग करें, हम आपको सेफ जोन में लेके जाएंगे।
1: अर्धसैनिक बलों के लिए भी यात्रा को सुरक्षित बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस चुनौती से निपटने के लिए सीआरपीएफ ने भी कई स्तर पर तैयारियां की हैं।
3: श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 दिन में शुरू होने जा रहे हैं और हम 84 बटालियन रामबन में डिप्लॉयड हैं रोड सिक्योरिटी के लिए। यहां से यात्री जो है, लाखों यात्री देश के अलग अलग कोनों से आएंगे और यहां से होते हुए आगे दर्शन के लिए जाएंगे। यात्रा एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट है और हमारी तरफ से पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट अभी कर दिया है और रोड पे जगह जगह पे जो हमारा जो मेन पावर है, रिसोर्सेस हैं, डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, ड्रोन्स हैं, क्विक एक्शन टीम्स हैं, टैक्टिकली डिप्लॉयड हैं, पूरा हाईवे को कवर किया हुआ है। एडिशनल फोर्सेस जो आए हैं वो भी डिप्लॉयड हैं, बाकी जेकेपी और इंडियन आर्मी का लोग भी डिप्लॉयड हैं, अलग अलग रोल्स हैं। हमारा जो इंट एजेंसीज हैं वो एकदम फुल स्विंग पे काम कर रही है।
0: इस खबर पर लगातार रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग शुरू, सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक, प्रशासनिक आर्थिक सुधारों पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा मामले में घेरे में 6 से 7 बैंक, दान पात्र खोलने से गिनती तक मिली खामियां, दर्शन करने से पहले कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट। बंगाल के हुगली से टीएमसी पार्षद शकील अली गिरफ्तार, 2023 में रामनवमी पर हिंसा और बमबारी भड़काने के आरोप में एनआईए को थी तलाश। शामली घर वापसी केस में बड़ा खुलासा, आयुष मलिक की ईमेल आईडी का पासवर्ड मिला 2047, पीएफआई के इस्लामिक स्टेट मिशन से जुड़े तार। जनरल धीरज सेठ बने नए सेना प्रमुख, उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान, रेगिस्तानी क्षेत्र से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अहम भूमिका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड में मुसलमान वाले सवाल की एंट्री को लेकर है। पुलिस और एसआईटी की जांच में आशंका बढ़ रही है कि अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी मामूली चोरी नहीं है, लेकिन संगठित भ्रष्टाचार का एक मामला नजर आ रहा है। ऐसा मानने की कई वजह भी है। एक तो ये खुलासा हुआ है कि स्टेट बैंक ने ट्रस्ट को काफी पहले ही हेराफेरी की आशंका जताई थी और एक कर्मचारी हटने वाला था, लेकिन आरोप यह है कि ट्रस्ट ने उस पर रोक लगा दी। ऊपर से कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मंदिर की व्यवस्था 12 करोड़ सालाना खर्च कर निजी सिक्योरिटी एजेंसी को दी गई थी, जो सत्ताधारी पार्टी के सांसद से जुड़ी हुई है, और उसी एजेंसी की सुरक्षा में लापरवाही भी सामने आई है। ऊपर से चोरी के खुलासे के बाद आनाकानी करते करते मुकदमा आखिरकार दर्ज कराने में 3 हफ्ते गुजर गए। इन तमाम तथ्यों के आधार पर राम मंदिर में चोरी करप्शन का बड़ा मुद्दा नजर बनता आ रहा है। लेकिन यूपी में चूंकि चुनाव है और इस चुनाव में धर्म, मजहब, आस्था, अकीदत की दुकानें सजाई जा रही है, इसीलिए रामदान की चोरी में भी अब मुसलमान का विमर्श पैदा किया जा रहा है। खुद को देश और यूपी के मुसलमानों का एकमात्र खिदमतगार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर इस ट्रस्ट में मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी जाती और मामला रफा दफा हो जाता। यानी ओवैसी अब इस घनघोर करप्शन के मामले की बहस में मजहबी बुनियाद और मुस्लिम उत्पीड़न की चर्चा भी देखना चाहते हैं और लाना चाहते हैं। तो रामदान की चोरी के बहाने में और किस किस पटरी पर पॉलिटिकल रेल तोड़ रही है, इन्हीं सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष के सियासी तीरों की बौछार थम नहीं रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म।
2: भाजपा का नाम भाजपा नाम देना चाहिए।
3: लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी बाबर जनता पार्टी हो गई।
0: विपक्ष के निशाने पर अब अयोध्या का चढ़ावा चोर गैंग नहीं सीधे बीजेपी नेतृत्व आता जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दावा हुआ मंदिर के दान में हो रही चोरी की जानकारी स्टेट बैंक ने ट्रस्ट को काफी पहले दे दी थी। अब कांग्रेस यही सवाल उठा रही है कि जब बैंक ने ट्रस्ट को चढ़ावे में हेरा फेरी की आशंका जताते हुए बदलाव की बात कही थी, तब ट्रस्ट ने उसे क्यों मना किया।
4: 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है।
0: कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना तो मोदी सरकार ने अपनी मर्जी से उसमें लोगों को रखा, और जब ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई तो सरकार जिम्मेदारी लेने से भाग रही है।
3: दोषी तो कहते हैं ना कि रस्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। पूरा का पूरा ट्रस्ट भ्रष्ट है, क्योंकि ट्रस्ट ने विश्वासघात किया है। ट्रस्ट किनका है? ट्रस्ट मोदी जी का और ट्रस्ट संघ के भागवत जी का बनाया हुआ है। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है, ट्रस्ट में शुद्ध संघ के आदमी है, ट्रस्ट में शुद्ध भाजपा के आदमी, ट्रस्ट में शुद्ध बीएचपी के आदमी। पूरे के पूरे ट्रस्ट ने चोरी की है, पूरे के पूरे ट्रस्ट ने विश्वासघात किया है। तो जिन लोगों ने यह ट्रस्ट बनाया यानी मोदी जी और भागवत जी, वो भी परोक्ष रूप से इस चोरी के डकैती के जिम्मेवार हैं।
0: इन तमाम खुलासों के बीच जब चढ़ावा चोरी की जवाबदेही जिम्मेदारी ट्रस्ट और ट्रस्ट बनाने वालों की ओर सरकाई जा रही है, तो विपक्ष पूरे मामले की लीपापोती के लिए सरकार को अपना आइडिया पेश कर रहा है।
5: तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे? अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, इतना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
2: क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है, और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
0: चढ़ावा चोरी कांड में लीपापोती के आरोप विपक्ष शुरू से लगा रहा है, चाहे वो खुलासे की बात हो, छापेमारी के राज हो, एसआईटी का प्रकरण हो या मुकदमे की बात। विपक्ष का कहना है कि सारी कवायद लीपापोती के लिए ही है, लेकिन ओवैसी के तंज ने योगी राज में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार का सवाल उठाया। वैसे अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड में अब दो तरह की हलचल है, पुलिस और एसआईटी दो एजेंसी हरकत में है। पिछले 24 घंटे की जांच में सूत्रों के हवाले से जो बड़े खुलासे हुए उसमें जांच की सुई दोनों तरफ घूमती है। ट्रस्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की जिम्मेदारी, जवाबदेही और भूमिका की जांच चल रही है, तो दूसरी ओर अब स्टेट बैंक की भूमिका की जांच में भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि स्टेट बैंक ने ट्रस्ट के साथ हुए करार का नियमित पालन नहीं किया। बैंक ने फरवरी 2025 में हुए करार में दान पात्र खोलने से लेकर गिनती कक्ष की प्रक्रिया में लापरवाही बरती। करार के मुताबिक गिनती के समय ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य थी, जिसका पालन नहीं हुआ। करार के मुताबिक नोट गिनने के लिए विशेष ड्रेस कोड तय किया गया था, इसका भी पालन नहीं हुआ। करार के मुताबिक बैंक अफसरों को हर महीने बदला जाना था, जो नहीं बदले जा रहे थे। दान गिनती कक्ष में आने जाने वाले कर्मचारियों की औचक तलाशी नहीं हो रही थी। हर दान पात्र की राशि का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। इतना ही नहीं, दैनिक रिपोर्ट, जमा पर्चियों, रजिस्टर्स से जुड़े सत्यापन के रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियां अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी जांच रही है। सूत्रों के अनुसार करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मी जांच के दायरे में और उनकी ड्यूटी, कार्यप्रणाली और संदिग्ध गतिविधियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, दाखिल होने और निकलने के रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के बयान भी जुटा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान किस गार्ड की तैनाती किस जगह पर थी और उस दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
6: कल ही हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा रहे थे और कह रहे थे कि इतना ही अगर धार्मिक प्यार है तो कृष्ण जन्मभूमि पर भी हमें समर्थन दीजिए। और आज ओवैसी इसमें मुस्लिम आरोपी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमान होता तो शायद मार दिया जाता या बुलडोजर एक्शन होता। तो क्या इसमें अब सांप्रदायिक तत्व को लाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे भ्रष्टाचार के कांड में? इस पर चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रही है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे। शादाब चौहान AIMIM के नेता भी चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल मेरे पैनल के सामने और हमारे दर्शकों के सामने। पहला सवाल, क्या चढ़ावा चोरी पर मुसलमान वाला ओवैसी का बयान मजहबी सियासत की कोशिश है? दूसरा सवाल, क्या राम मंदिर में चोरी की घटना संगठित भ्रष्टाचार के तौर पर उभर रही है? क्योंकि अब मामला सिर्फ किसी एक व्यक्ति के चोरी का नहीं है तो एक संगठित भ्रष्टाचार का मामला नजर आ रहा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट पे भी यही निकल कर आया था। तीसरा सवाल, क्या चोरी चोर और लीपापोती में घिरे ट्रस्ट की जवाबदेही सरकार की अब नहीं है? क्योंकि आखिरकार ट्रस्ट की नियुक्ति भी सरकार ने ही की थी। इसमें 15 में से 12 मेंबर सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। यानी अब कहीं ना कहीं उंगली सरकार के तरफ भी उठती नजर आ रही है। तो सरकार इस पर क्या करेगी, इस पर भी बहस होगी। लेकिन शुरुआत शादाब चौहान आप ही से करनी पड़ेगी। आप यहां पर सांप्रदायिकता कहां से लेकर आ गए? क्योंकि मामला तो भ्रष्टाचार का चल रहा था, अब उसमें आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमान होता तो अलग कार्रवाई होती।
7: ताहिल भाई, मुसलमान लेकर के नहीं आए। पिछले 9 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर किसी मुसलमान पर आरोप लगता है तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर बुलडोज कर देता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यही हमारे न्याय का प्रतीक है। जबकि हम उससे कल भी असहमत थे, आज भी असहमत है। लेकिन आज मैं पूछना चाह रहा हूं, मेरे नेता ने वही बात कही, क्या उस बुलडोजर में पंचर हो गया आप? क्या उस बुलडोजर का तेल खत्म हो गया जो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? दूसरी बात, ये अजीब मामला है कि कोष में यानी कि धन में चंदे में समस्या है, भ्रष्टाचार है, वहां डकैती हुई है और कोषाध्यक्ष पे मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी बात यह कि जब चंपत मुंह खोलेगा तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलेगा, यह सच्चाई है। इसीलिए चंपत को बचाया जा रहा है क्योंकि तार कहीं और तक जुड़े हैं इस महाडकैती के। और जिस नाम पर यह जनभावना भड़काने का कार्य किया था इन लोगों ने और आरोप लगाए थे कि मुगलों ने मंदिर लूटा, उसका तो कोई प्रमाण है या नहीं वो अलग विषय इतिहास का। लेकिन आज राम का नाम लेकर सत्ता में आने वाले, राम का नाम लेकर के बड़े बड़े ढोंग रचने वालों की सरकार में श्री राम के नाम पर कितने 100 करोड़ की डकैती हुई है अभी ये पता ही नहीं चल रहा है। और ये जांच पूरी तरह से सही इसलिए नहीं हो रही, मैं कंप्लीट कर रहा हूं कि बताइए, जब स्टेट बैंक बोल रहा है और स्टेट बैंक जो CCTV और स्टेट बैंक के कर्मचारियों का मामला है उसमें कितनों को जांच बैठाई आपने? लेकिन अगर मुसलमान होता, इनसे गलती हो गई, मुसलमान को रिजर्व में डालकर रखना चाहिए था, बलि का बकरा बनाने के लिए केस क्लोज हो जाता, बड़ी हेडलाइन चलती कि देखो हमने घर गिरा दिया, मुसलमान को मार दिया। यही प्रॉब्लम है, अगर अपराधी उच्च जाति का होगा या इनके जुड़े हुए लोग होंगे तो उस पर ये कार्रवाई की प्रक्रिया अलग होती है और मुसलमान और विपक्षी लोगों पर कार्रवाई ये दूसरे तरीके से करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं।
6: पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी आर्थिक अपराध में भी काफी सांप्रदायिकरण यहां पर चल रहा है और उस पर चर्चा होगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्या आप इससे सहमत है जो AIMIM सवाल उठा रहा है? इसमें मुसलमान को लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान होते तो अलग कार्रवाई होती।
8: नहीं साहिल, मुझे लगता है कि मुद्दे को भटकाने की जरूरत नहीं है, मुद्दे को बिल्कुल एक तस जहां पर है वहीं पर रहने दें जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे भाग नहीं सकती है। सांप्रदायिक जो कह रहे AIM वो उनकी भाषा हो सकती है। अभी हम बहुत क्लियर कट पूछने जा रहे हैं कि जो सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारे 200 किलो की ईंट कहां गई, जो व्यापारी समाज कह रहा है कि हमारे सोने की ईंटें कहां गई, जो महिलाएं कह रही हैं कि हमारे चांदी की काग भूषण कहां चली गई, और कार सेवा पूछ रहे हैं कि ये 1250 सोने और चांदी की रामशिलाएं कहां गई। जब तक इसका सवाल का जवाब नहीं
6: कौन भटका रहा है,
8: तो मुद्दा कोई भी भटकाए हम भटकने नहीं देंगे, हम सवाल का जवाब लेंगे। वही सवाल का जवाब जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मुंह खोलूंगा तो फंस जाऊंगा, वही जो विनय कटियार ने कहा है कि सब के सब चोर हैं, वही जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी MLA कह रहे हैं, महिपाल सिंह ने यह कहा कि मेरे सामने चोरी हुई है, महिपाल सिंह जो वहां पर लेखाधिकारी हैं। स्वामी करपात्री महाराज ने कहा कि ये
6: कहीं आपका इशारा एमआईएम के तरफ तो नहीं है मुद्दा भटकाने के मामले में?
8: हमारा मुद्दा किसी की तरफ नहीं है।
6: नहीं, आपका इशारा की तरफ नहीं, आपका इशारा एमआईएम की तरफ तो नहीं है।
8: ना आपको भटकाने देंगे, ना एआईएम को भटकाने देंगे। बहुत साफ साफ है। आप देखिए मोटी मोटी बात, 22 जनवरी 2024 से आज हम जब बात कर रहे हैं, लगभग मई में लगभग 850 दिन हो गए हैं, और सूत्र बताते हैं कि 15 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक चंदा प्रतिदिन आता है। मोटा मोटा 450 करोड़ रुपए की चोरी, चंदा चोरी में चली गई। बाकी तो बात की बात है, क्या शिलाएं गई, क्या सोने चांदी की चीजें गई, वस्तुएं गई, किसी की बिछिया गई, किसी के कान की कुंडल गए, 450 करोड़ तो फ्लैट करेंसी। अरे नोटबंदी इनके ऊपर क्यों नहीं लगती है?
6: आपको ऐड करना चाह रहे हैं पैसा। मैं इससे पहले कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलूं, उससे पहले शादाब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
7: मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं कि आशुतोष भाई वही है जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में सिर्फ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़िए, आप मत लड़िए। ये आज हमें बता रहे हैं कि आप मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन विडंबना ये आशुतोष भाई और उनके 111 विधायक और अखिलेश जी मुसलमानों की मस्जिद गिरे नहीं बोलते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं बोलते हैं, ये तो मुसलमानों पे बोलते नहीं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे हैं। और हमने कहा मिल करके बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो आशुतोष भाई कूद पड़े, नहीं आप चुनाव मत लड़िए, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? लोकतंत्र में अधिकार सिर्फ आपको प्राप्त है क्या? सर उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपका
6: सॉफ्ट हिंदुत्व कहां से आ गया? राम मंदिर के चोरी पर सवाल नहीं, राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें सवाल उठाना सॉफ्ट हिंदुत्व होता है?
7: होता है कि इतने मस्जिद मदरसे खानका गिर गए, नहीं बोले, संबल हो, फतेहपुर हो, मेरठ हो, इतनी मस्जिदें गिर गई, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, फर्जी एनकाउंटर हुए, बुलडोजर का दुरुपयोग किया गया, लेकिन ये नहीं बोले क्योंकि मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, इनके 111 विधायक नहीं बोले, लेकिन कभी बोलते हैं ये केदारेश्वर मंदिर बनवाएंगे, कभी राजा सुहेलदेव की मूर्ति बनवाएंगे, आज तो कमाल अख्तर साहब को बेइज्जती करके हटा दिया।
6: मैं आज सोच रहा था कि इन सारे मुद्दों को लेकर प्रदीप भंडारी से सवाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो एमआईएम के प्रवक्ता यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये देखिए, और इसी बीच ये खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने चीफ व्हिप जो है कमाल अख्तर उनको हटा दिया है। अब मामला कुछ और है, यूपी विधानसभा में चीफ व्हिप थे कमाल अख्तर, उनको कहा गया है कि आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि आदेश के मुताबिक वो इस्तीफा दे रहे हैं, अखिलेश यादव के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, कमाल अख्तर यहां पर कह रहे हैं। रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच में कुछ तनातनी हो गई थी, और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें हटा दिया है। और चुनाव से पहले दरअसल ये अखिलेश यादव का बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि रुचि वीरा जो है वो आजम खान के नजदीकी मानी जाती है, और मुरादाबाद की सांसद और आजम खान के खेमे के नेता रुचि वीरा से कमाल अख्तर की तनातनी हो गई थी, और इसी आधार पर दरअसल ये कार्रवाई की गई है माना जा रहा है। अब इस इस्तीफे की असली वजह क्या है वो पता चलना मुश्किल, लेकिन फिलहाल तो कमाल अख्तर इतना ही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के निर्देशों का पालन बुक कर रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक, क्या कारण है इस इस्तीफे का? असली वजह क्या है? कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
9: देखिए साहिल, निश्चित तौर पर आप कुछ दिन पहले याद होगा जब रुचि वीरा जो कि सांसद है मुरादाबाद की, उन्होंने पीडीए पंचायत के दौरान पार्टी पर ही सवाल उठाए थे, संगठन को लेकर सवाल उठाए थे। ये बात सही है कि उन्होंने कमाल अख्तर का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके निशाने पर कमाल अख्तर थे, वो आजम खान के गुट की मानी भी जाती रही हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर कोई बड़ा विवाद नहीं चाहती थी, उन्होंने सीधे सीधे अपने मुरादाबाद मंडल के जो संगठन है उसको टारगेट किया था। आज अखिलेश यादव ने, पार्टी ने कमाल अख्तर से कह दिया कि आप ये पद छोड़ दें, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो आदेश है उसका पालन किया है, लेकिन साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि ये पद वो बहुत समय से छोड़ना भी चाहते थे। लेकिन ये दो लोगों की लड़ाई थी, मुरादाबाद मंडल के संगठन की लड़ाई थी, और कहीं ना कहीं रुचि वीरा का वो जो उस दिन का बयान था वो बहुत अहम रहा है साहिल।
6: ठीक है, तो बात यह है कि आखिरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहे थे और इसी के चलते ये कदम यहां पर अखिलेश यादव ने उठाया है। कुमार अभिषेक हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन शादाब अब देखिए यहां पर चीफ व्हिप को भी हटा दिया, एक मामला चल रहा था उसके बीच में, और अभी आप आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी पर भी, ये कुछ अलग ही मामला चल रहा है। आप यहां पर मुसलमान लेके आते हैं आर्थिक चोरी के मामले में और यहां पर यह मामला हट रहा है।
7: साहिल भाई, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, इसीलिए ना हमारे मुद्दे पे बोलते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, जौनपुर में 34 साल पुराने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के नेता ने सपा के कार्यालय में मारा गया, लेकिन वो अभी पार्टी से नहीं निकला। सुनील सिंह, जो मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालने की रेप करके करने की धमकी देता था, वो इनकी पार्टी में है। और कमाल अख्तर साहब को निकाला ही नहीं है, चीफ व्हिप से हटाया नहीं है, बल्कि बदतमीजी की गई है। और रुचि वीराजी, जो 50% मुस्लिम बाहुल्य सीट से लोकसभा सांसद है, उनके कहने पर, और जबकि वो डायरेक्ट बीजेपी के संपर्क में है, वो कई सांसद इनके जाने के लिए हृदय परिवर्तन।
6: ये बड़ी दिलचस्प बात है डॉली शर्मा, आपसे प्रतिक्रिया इस पर। एआईएमआईएम की एंट्री के बाद अब ये पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं और जा रहा है, इस पर चर्चा होना शुरू हो गया है कि भाई मुसलमानों की प्रताड़ना वहां पर हो रही है। आशुतोष जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉली शर्मा जी आऊंगा आपके पास। डॉली शर्मा पहले जवाब दीजिए
10: जी। साहिल जी, मुझे लगता है आज की जी साहिल जी मुझे लगता है आज सबसे अहम मुद्दा भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जो चोरी की है, इन्होंने भगवान राम के नाम पर वोट भी लिया और चंदा भी लिया, तो अब हिसाब देने से क्यों डर रहे हैं? पूरी देश की जनता आज देख रही है कि कई कई लोग जिनको मैंने देखा और जिनके बारे में मैंने सुना कि एक व्यक्ति ने तो अपनी 1 करोड़ की जमीन बेची, और जमीन बेचने के बाद उन्होंने वो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया भगवान श्री राम के नाम पर मंदिर निर्माण में दे दिया। आज वो भी सोच रहे होंगे बुजुर्ग व्यक्ति कि मैंने तो वो पैसा जमीन बेचकर अब भगवान राम के मंदिर को दिया, आज मेरा पैसा उस मंदिर में लगा कि नहीं लगा, जीवन भर जो उन्होंने बटोरा था। ऐसे ही 200 किलो चांदी की भी चर्चा है, ऐसे ही उस हार की, कागभूषण, वो उसके अलावा ना जाने कितने असंख्य लोग जिन्होंने राम मंदिर को आस्था के नाम पर ये दिया कि ये हमारी तरफ से प्रभु श्री राम के चरणों में, लेकिन आज वो प्रभु श्री राम के चरणों में नहीं, मंदिर के ट्रस्ट, ये जो सरकार द्वारा बनाई गई एक घोषित स्वघोषित टीम है उसने ले लिया, वो टीम किसने
6: नहीं, यहीं पर तो ओवैसी सवाल उठाते हैं ना,
10: सरकार ने, पीएमओ ने, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर,
6: ये हिंदू है इसीलिए 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनकी पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। चंपत राय सिर्फ इस्तीफा देकर, बयान देकर निकल जाते हैं, लेकिन मुसलमान होते तो गोली मार दिया जाता। ये एक नया एंगल उसमें घुस गया है, अलग तरीके से चर्चा शुरू करना चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से न्याय किया जाता है, ये बात सही मानी जाएगी? चर्चा किसकी होनी चाहिए?
10: साहिल जी देखिए, इस सरकार में एक बात तो तय है, जो इस सरकार का व्यक्ति है, चाहे 18 बच्चे मर जाए तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, रेल में हादसों में कई कई सौ लोग मर जाएं, रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं। उसके बाद आप लगातार देख लीजिए, आज भी पेपर लीक हुआ है ना, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? क्योंकि साठगांठ है इस सरकार के साथ, कभी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद पीएमओ ऑफिस से वो कमेटी बनती है राम मंदिर की, चंपत राय को बचा लिया, अनिल मिश्रा को बचा लिया, और आपने अभी बोला, और जो हम सब देख रहे हैं कि नाम तो आ गए एफआईआर में सबके हंगामे के बाद, लेकिन उनको अरेस्ट किया क्या? नहीं किया।
6: तो ओवैसी जो कह रहे हैं वो सही है ना,
10: क्योंकि ये साफ पता चल रहा है,
6: जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना।
10: चंपत राय का जो ड्राइवर है आज करोड़ों का मालिक बन गया, हो सकता है गोली भी लग जाती, हो सकता है गोली भी लग जाती, क्योंकि ये तो इन्हें बहुत अच्छे से आता है ना, ड्रामा इन्हें बहुत अच्छा आता है। आज योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े नाम लेते हैं, लेकिन इस प्रदेश के मुखिया हैं वो, और उनकी नाक के नीचे ये सब हुआ, तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार क्यों
6: नहीं है? ये बहस तो हो रही है, जो ओवैसी कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है? डॉली शर्मा जी, स्पेसिफिक चीज है जो ओवैसी कह रहे हैं उससे आप इत्तफाक रखती है कि नहीं रखती है?
10: साहिल जी, साहिल जी ये भी, इस पर भी जवाब दूंगी। और आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल अजय राय जी के नेतृत्व में जब जाना चाहता था, कई हमारे सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, उन्हें आज हाउस अरेस्ट कर लिया, वहां ऐसा वो करने क्या जा रहे थे? वो प्रभु राम के दर्शन करने
6: तो
10: जा रहे थे।
6: लेकिन आप ओवैसी वाला जवाब दीजिए ना, इस पर तो चर्चा होगी अलग से,
10: लोग कुछ बताना,
6: चर्चा अलग से हो रही है
10: कर दिया। देखिए
6: इस पर अलग से चर्चा हो रही है,
10: देखिए मैं
6: जो ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, क्या वो उस तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
10: अरे साहिल जी मैं तो आज कह रही हूं इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। जो जो हजारों करोड़ का घपला हुआ है, चोरी हुई है प्रभु राम के नाम पर। इन्होंने कहा था ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
11: तो यही मुद्दा उठता है,
10: चोरी कौन कर रहा है वो नहीं बताएंगे।
11: समाजवादी पार्टी इसे हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसे हिंदू मुस्लिम नहीं कराना चाहिए, शादाब चौहान की पार्टी चाहती है कि इसे हिंदू मुस्लिम को भी एक एंगल उसमें ले लेना चाहिए। प्रदीप भंडारी, देखिए आपस में ही इन पर चर्चा शुरू हो गई है, इसीलिए मुझे आपके पास आखिरी में आना पड़ रहा है। लेकिन बात तो सही है नहीं?
12: देखिए साहिल जी आज देश से कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। प्रभु श्री राम है। इन्होंने प्रभु श्री राम को इमाम हिंद कैसे बुलाया? इनकी तुष्टीकरण की राजनीति उससे शुरू होती है। इनका पूरा खानदान, पूरा इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनने दिया।
10: बाबा
12: की
10: मजार
12: पे तीन बार चले गए और ये प्रभु श्री राम की बात करेंगे? ये राजनीतिक, ये सुप्रिया श्री ने बोल रहा हूँ,
11: कब बुलाया?
12: ये ना चलिए सुना रहा हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
10: अरे आपके फेक वीडियो देखे हमने सुप्रिया श्रीनेत जी के बारे में भी, किस तरीके से आपका प्रोपेगेंडा।
11: चलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो अलग से डिबेट हो रही है,
12: माफी मांगो।
11: मैंने बयान पर तो अलग से डिबेट हो रही है। जो ओवैसी बोल रहे हैं वो क्या है?
12: प्रभु श्री राम,
11: ओवैसी बोल रहे हैं वो क्या है? क्या वो कम्युनल पॉलिटिक्स है? क्या आपको लगता है कि इसमें कम्युनल पॉलिटिक्स लाई जा रही है? या आपको लगता है कि सचमुच में ये 8 अपराधियों में से कोई अगर मुसलमान होता तो अलग तरीके से न्याय किया जाता?
12: मैं 10 सेकंड में जवाब दूंगा, पर आज कांग्रेस पार्टी देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। राहुल गांधी के पास अयोध्या जाने में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में मौका था, नहीं गए। हनुमानगढ़ी से 1 किलोमीटर दूर अयोध्या था, प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। कपिल सिब्बल, जिसने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने के खिलाफ वकालत करी कांग्रेस में रहते हुए, वो कपिल सिब्बल कांग्रेस से थे। तो कांग्रेस राम विरोधी है, सिर्फ राजनीतिक गीत की अवसरवादिता दे रही है। अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी पे। ये असदुद्दीन ओवैसी तो कांग्रेस की भी टीम है, कांग्रेस इस पे सांप्रदायिकता करने का काम करी, क्योंकि कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो इनको मस्त सी मिठाइयां खिलाते हैं और कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं। और सुनिए, किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान को नहीं रख सकते, और अगर मुसलमान होता तो असदुद्दीन ओवैसी जाते और जैसे आतंकवादियों के केस वापस लेने जाते वैसे
11: आतंकवादियों के। बीजेपी कहने लग गई है कि कांग्रेस की टीम है,
12: बाबर जिंदाबाद कहते हैं कांग्रेस की। सुनिए आपको, मैं तो तस्वीरों से बात कर रहा हूँ। क्या है, रेवंत रेड्डी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गरीबों के मसीहा है। उसके बाद ये सुनिए, ये अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी से अलायंस की बात करते हैं, ये दोनों चोरी।
11: मुझे आशुतोष जी और संगीत रागी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से प्रदीप भंडारी एक मिनट मैं दोनों तरफ से एक एक सवाल पूछता हूँ। मुझे आशुतोष जी और संगीत रागी के पास जाना, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी एक बात बताइएगा, और ये बात बार बार इसलिए भी उठती है क्योंकि कई सारे उदाहरण नजर आते हैं। आफरीन फातिमा 2022 का केस, झांगुर बाबा का 2025 का केस, संभल मस्जिद हॉल, नवाब इकबाल मकबूत बाग का केस, ये सारे मामलों में जब जब आरोपियों की गिरफ्तारियां होती है कुर्की शुरू हो जाती है, बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है। इस मामले में भी तो कुर्की या बुलडोजर एक्शन हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं दिखेगा, और इसीलिए शादाब की पार्टी सवाल उठा रही है, बोल रही है कि इन पर क्यों नहीं एक्शन होता है, क्यों नहीं कुर्की हो रही है, क्यों नहीं उनका जो घर है वो बुलडोजर एक्शन से तोड़ा जा रहा है। अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी तो उसी ट्रस्ट के मेंबर है ना
12: साहिल जी। पहली बात तो बुलडोजर एक्शन अवैध निर्माण पे होता है। अगर इनमें से कोई भी अभियुक्त के क्या कोई भी अवैध निर्माण है तो उसपे कानूनी कार्रवाई अच्छी खासी होगी। तो मैं चाहता हूं शादाब, अजौली शर्मा और आशुतोष जी, अगर अवैध निर्माण के आपके पास सबूत है तो जाकर दीजिए। अरे हमने तो एसआईटी गठित करी, केरला के अंदर क्या हुआ? आज ही केरला हाईकोर्ट ने 2 CPM के लीडर्स प्रशांत और साथ में अनिल कुमार, प्रशांत और अनिल कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करा। ये सच्चाई है शादाब जी ने, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इतना रैटल मत होइए। सब लोग मेरे, आप लोग सब आज जब मैं तथ्य रख रहा हूं तो आप सभी घबरा रहे हैं, क्योंकि आज राम
11: यही तो बात है
12: आप देश के सामने
11: नहीं, ये बात तो है ना, आप कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। प्रदीप भंडारी, बात तो इसी बात पर आकर घूम कर आ रही है ना कि स्टेट बैंक ने तो कहा था
12: अवैध निर्माण,
11: जो प्रोसेस वहां पर चल रही है वो गलत चल रही है, कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है। आप सही कह रहे हैं, सबूत देना चाहिए, सबूत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। डॉली शर्मा,
12: साहिल जी
10: साहिल जी बुलडोजर हमने अंकिता भंडारी के रेपिस्ट के वहां चलकर सबूत मिटाने के लिए भी देखा है। इन्हें अपने नेता को बचाना था तो वहां सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया। इनका बुलडोजर इनकी मर्जी से चलता है, इनका बुलडोजर इनकी मर्जी से चलता है, सबूतों को मिटाने के लिए चलता है, लेकिन जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां नहीं चलता। धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा,
12: पे चलेगा
10: जो चोरों के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा।
12: राहुल गांधी के घर बुलडोजर चला देंगे,
10: वोट भी मांगा,
12: राहुल गांधी
10: के राहुल गांधी उनके घर जमानत के
12: बाहर है, राहुल गांधी जमानत के बाहर है तो क्या राहुल गांधी के घर पे बुलडोजर चला दे? राहुल गांधी के घर पे बुलडोजर चलवाए क्या? क्योंकि राहुल गांधी जमानत पे बाहर है, सोनिया गांधी की जमानत पे बाहर
10: है, सोनिया गांधी के घर पे बुलडोजर चलाते
12: ये चाह रहे हो?
10: राहुल गांधी अपराधी हो गए क्या?
11: आशुतोष, पिछले चार दिन से ठीक है एक मिनट आशुतोष, पिछले चार दिन से राम मंदिर के भ्रष्टाचार, राम मंदिर के भीतर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर डिबेट चल रही है। संगीत रागी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पहली बार इसमें हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल दिखाई दे रहा है, पहली बार। अब तक पूरी चर्चा में समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाए थे, कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाए थे, बीजेपी जब से इस चर्चा में शामिल हुई है पहली बार हिंदू और मुस्लिम की बात इसमें सामने आई है। इसी बहाने एक बार फिर मुस्लिम
13: हत्याकांड का मामला। मैं साहिल इतने दिनों से यही सोच रहा था कि अभी तक इसमें MIM क्यों नहीं कूदी, और MIM के कूदते ही आपने देखा कि मुद्दों को कैसे बदलने की कोशिश की जा रही। जो मामला सांप्रदायिक नहीं था उसको सांप्रदायिक किया जा रहा, यानी जो असली मुद्दा है उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। यह काम बखूबी MIM करती है, बखूबी। उनका क्या लेना देना इस पूरे मसले, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन असली मुद्दे पर जिसमें बीजेपी फंस सकती है, जिसमें संघ परिवार फंस सकता है, जिसमें योगी सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, जिसमें मोदी सरकार जवाबदेह होना चाहिए, वहां से पूरे मामले को बड़े करीने से MIM ने दूसरे मुद्दे पे लाके खड़ा कर दिया है। यह है उनकी पॉलिटिक्स। चार सवाल बड़े महत्वपूर्ण है इसमें। पहला सवाल यह है कि जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो केंद्र सरकार ने अभी तक ट्रस्ट भंग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं भंग किया? यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी जो पावरफुल लोग हैं अभी भी ट्रस्ट में मौजूद हैं और न जाने कितने सबूत अब तक मिटा दिए गए होंगे। दूसरा, जब यह मामला सामने आया उसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने FIR क्यों नहीं किया? वो SIT गठित की जिसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, जिसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं इस पूरे मामले के अंदर, और 20 दिन का वक्त दिया गया, यानी वो वक्त भी सबूतों को मिटाने के लिए काफी था। तीसरा, RSS ने अभी तक पूरे घटनाक्रम की निंदा क्यों नहीं की और क्यों इन सब लोगों को अभी निकाला क्यों नहीं गया विश्व हिंदू परिषद ने? अब यह कहा जा रहा है नैतिकता के आधार पर हमने जो है इस्तीफा दे दिया, मतलब इससे बड़ा फ्रॉड कोई बात नहीं हो सकता। आप सोचिए, अयोध्या में इस वक्त जो बार एसोसिएशन है उसने कह दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर चेतन ये चंपत राय, गोपाल राव और साथ ही साथ अनिल मिश्रा को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहां जाम कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया MIM ने। आप देखिए, ये है पॉलिटिक्स इनकी, जहां हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं वहां जाके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
11: दादा,
13: किसकी मदद कर रहे हैं?
11: सुना आपने,
13: किसकी मदद कर रहे हैं ताकि असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए? भाई, जो मैंने कहा तीन सवाल,
11: असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए
13: सरकार क्या कर रही है? हां, मोदी सरकार क्या कर रही, क्यों नहीं भंग किया? योगी सरकार ने पहले FIR
11: आशुतोष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे थे और ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, जो असली मुद्दे हैं वो छोड़कर कहीं ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
7: नहीं, डाइवर्जन। अगर तथ्यों को जनता के सामने रखना को ध्यान भटकाना आशुतोष जी कह रहे हैं, वो कहें, उनका हृदय परिवर्तन कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, वो उनको मुबारक। वो कभी लेफ्ट हो जाते हैं, कभी अल्ट्रा लेफ्ट हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, वो उनको मुबारक। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ये सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 साल की सरकार को उठा करके देख लीजिए कि क्या मुसलमान पर अगर आरोप लगता है तो कार्रवाई नहीं होती। अभी भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं, उनका तो घर अवैध नहीं है। तो ये बात कौन तय करता है? आशुतोष जी, मैं आपसे एक स्पष्ट रूप से पूछना चाह रहा हूं, क्या हमने ये नहीं कहा कि भाई ये जांच होनी चाहिए? चंपत ने पूरा चपत लगा दिया, दूसरी बात यह कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अगर अपनी बात रख रहे हैं, आपको क्या समस्या है? भाजपा को हमने कौन सा बचा लिया? आप ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्यों आंदोलन नहीं कर रही, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही, और सिर्फ श्री राम के मंदिर की बात आएगी तो आप बात करेंगे? इतनी मस्जिदें गिरी क्यों नहीं बोले? आपका दर्द कहां चला गया? जब अभी संबल की मस्जिद को गिराया गया, आपका दर्द नजर नहीं आया? मुसलमानों की पॉपलिंचिंग हुई, आपका दर्द नजर नहीं आया? 17,000 एनकाउंटर हुए, आपका दर्द नजर नहीं आया? क्योंकि मुसलमान पे अत्याचारों का दर्द है। हमने ये कहा कि बीजेपी से गलती हो गई कि मुसलमान को नहीं रखा। मुसलमान को रखा होता तो ये उसको एनकाउंटर करके पूरे पर्दे उस पर पूरा पर्दा डाल देते। हम लोग तो ये बोल रहे हैं।
11: आशुतोष
13: साहिल देखिए, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है वही ओवैसी की भाषा है। मेरे मुझको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग मेरे ऊपर नाम लेके हमला करते हैं, जो आरोप लगाते, एग्जैक्टली वही भाषा है माइम की, वही भाषा ओवैसी की भाषा है। पूरी दुनिया जानती है कि मैं मेरी जो सोच है वो कहां पे खड़ी हुई है। मेरे ऊपर वैसे ही हमला किया जा रहा है जैसे आरएसएस के लोग हमला करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये है ओवैसी की पॉलिटिक्स।
11: नहीं लेकिन
13: ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की खुलकर मदद के लिए
11: आशुतोष जी जरा एक मिनट के लिए सोच लीजिए।
13: आपने सादा आपको मौका दिया, आपने सादा
11: एक सेकंड 200 बार नहीं, एक सेकंड मेरी बात, मेरे एक बात का जवाब दीजिए ना। 200 बार हमने इस पर डिबेट की हुई है, मैंने कई बार आपको भी सुना हुआ ये कहते हुए कि भाई देखिए पक्षपात के तौर पर योगी आदित्यनाथ वहां पर काम करते हैं, आपने उन पर आरोप लगाए हुआ है कई बार। मुसलमान का घर होता है तो डिमोलिश कर दिया जाता है, संभल के मामले में डिमोलिश कर दिया गया था। यही बात अगर आज एमआईएम की तरफ से कही जा रही है, ओवैसी कह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की भाषा बोलने की कोशिश है या ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये दोनों चीजों को अलग अलग कैसे देखा जाए? आशुतोष जी ये भी बोल दीजिए।
13: बहुत चालाकी से फेंका हुआ पासा है ये, बहुत चालाकी के साथ। राम मंदिर के मामले में ओवैसी की एंट्री इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, पूरा संघ परिवार किस तरीके से विचलित है। जैसा मैंने आपको कहा, अयोध्या के अंदर जिस तरीके से चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद की हालत वहां हो गई है, एक भी वकीलों ने कह दिया कि एक भी वकील जो है वो इनकी पैरवी नहीं करेगा, एक भी वकील। पूरा इलाका जाम करने की बात की जा रही, चंपत राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा से लोग नफरत कर रहे हैं वहां पे। अब जहां मामला ये है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसमें मुसलमान की एंट्री ओवैसी ने करा दी। यानी ओवैसी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से उनको बचाव में टूट पड़े हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुसलमानों का फायदा नहीं कर रहे। ओवैसी इस देश के अंदर मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं लगातार कंसिस्टेंटली।
11: ठीक है संगीत रागी।
14: वैसे तो इस देश के मुसलमानों का नुकसान कर रहे थे, कांग्रेस ने बहुत अच्छा भला किया 70 साल तक, इसीलिए रंगनाथ मिश्रा आयोग ने मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में जिक्र किया, तो उसमें उस दुर्दशा में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस की ही थी। दूसरी बात, ओवैसी राजनीति कर रहे हैं तो अखिलेश क्या कर रहे हैं, अखिलेश के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? राम आस्था के नाम पर, अरे भाई उनमें राम में आस्था थी, आस्था के नाम और आस्था होना दोनों में दो फर्क है। तीसरी बात, जब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनता था उसमें माखनलाल फोतेदार का क्या काम था? क्यों जा तो श्रीमती गांधी उसमें भी घपले हुए थे, श्रीमती गांधी चोर थे। इसके बाद जो तिरुपति बालाजी, देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। आपने 5 मिनट लगातार बोला है आशुतोष।
11: पहले इतिहास की बात करेंगे उसके बाद राम मंदिर पर आएंगे। आशुतोष जी एक मिनट, उनको अपनी इतिहास की बात रख लेने दीजिए, उसके बाद वो राम मंदिर पर आएंगे। एक मिनट संगीत रागी जी, आपकी बात खत्म करेंगे प्लीज।
13: साहिल
14: देखिए, साहिल जब तिरुपति बालाजी का श्राइन बोर्ड था उसमें गिनाने लगू तो कितने कांग्रेसी विधायक और कितने कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस राम मंदिर यदि आज वहां पर खड़ा है तो ये कांग्रेसियों के कारण नहीं, समाजवादियों के कारण नहीं। समाजवादियों ने तो हत्या की थी और कांग्रेसियों ने तो कहा कि राम मिथक था, इसके बावजूद राम मंदिर वहां पर खड़ा है। तो सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई
11: की एंट्री को लेकर क्या कहेंगे तो सेवक संघ के जो अभी आकलन आशुतोष जी ने यहाँ पर रखा हुआ है, क्या आपका भी वही आकलन है?
14: देखिए मैं उस आकलन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। रादर आशुतोष पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कांग्रेस से बेहतर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के आशुतोष, उनको नहीं चाहिए कि मेरा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान कोई आ जाए, नहीं आ जाए, उनको नहीं लगता है। उनको चाहिए क्या कि मुसलमानों की वो बपौती उनकी कांग्रेस पार्टी के पास रहनी चाहिए, नहीं तो राहुल गांधी रहेंगे कहां से। अरे तेलंगाना में उनके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, रेवंता रेड्डी यानी इस्लाम, दोनों बराबर हैं। ये तो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी,
11: पहली बार ऐसा हो रहा है कि संगीत रागी जो कह रहे हैं उस पर एमआईएम के प्रवक्ता के चेहरे पर हास्य नजर आ रहा है, पहली बार उनके चेहरे पर स्माइल नजर आ रही है। संगीत रागी नॉर्मली क्या है, एमआईएम के प्रवक्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट।
13: साहिल साहिल साहिल साहिल एक बात समझिए,
14: साहिल साहिल अखिलेश यादव भी शुद्ध राजनीति ही कर रहे हैं।
11: एक एक आशुतोष
14: नहीं, नहीं, नहीं, साहिल साहिल नहीं साहिल नहीं नहीं साहिल ये गलत बात होगा। साहिल साहिल आपने राजकुमार भाटी का आपने आप एक ट्वीट देखा है, उन्होंने कहा 25% पीडीए भी गिरफ्तार हुए हैं। जो पार्टी इस नीचता के हद तक जा सकती है कि उसमें जाति ढूंढ रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता कैसी होगी। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ट्वीट है, तो आप समझिए वो क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस
11: शर्मा जी पहले आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी को चैट करना चाहिए। प्रदीप भंडारी पहले, उसके बाद आशुतोष वर्मा, उसके बाद डॉली शर्मा। प्रदीप भंडारी जी,
12: मैं आज आशुतोष जी का साधुवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज सही में मैं कहता हूं कि मैं स्वीकारता हूं और आज पूरा पैनल स्वीकार रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आशुतोष जी से ज्यादा अच्छा कोई सपोर्ट ही नहीं कर सकता, बैक ही नहीं सकता कांग्रेस पार्टी। इसके लिए मैं आशुतोष जी ताली बजाना चाहता हूं आपके लिए, आपसे अच्छा कोई नहीं है इस चीज में, क्योंकि जैसे आप कांग्रेस को बैक कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। देखिए इनकी सोच क्या है, आशुतोष जी चाहते हैं मुसलमानों की बात सिर्फ कांग्रेस करे, वही कांग्रेस जिसने 70 साल बाद सच्चर कमेटी लेके आई, जिसमें कहा कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा और मुसलमानों की हालत खराब हो गई। दूसरी बात, वही कांग्रेस जो अभी तक अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गई, आज उसको अचानक से राम भक्ति जाग गई। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं साहिल जी आपका, कि जितना समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में राम राम नहीं किया होगा, जितना राहुल गांधी के पूरे परिवार ने 70 साल में राम राम नहीं किया होगा, जितना आशुतोष जी ने अपनी पूरी डिबेटिंग इतिहास में राम राम नहीं किया होगा,
13: मुझे जवाब देना
12: है। इसके बाद प्रभु श्री राम को तो याद तो कर रहे हैं, परंतु काल नेमी ही होता है, और ये राम भक्त देख रहे हैं
11: राम राम करने के लिए। लेकिन प्रदीप भंडारी, राम मंदिर के भीतर भ्रष्टाचार होना पड़ा
12: उसको,
11: तभी जाकर राम राम करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती आज की स्थिति में। राम मंदिर के भीतर भ्रष्टाचार होना पड़ा, तब उसके बाद अगर आप कह रहे हैं तो राम राम करना, इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती मेरे ख्याल से।
12: कई बार
11: अगर वो स्टेट बैंक का सुन लिया होता तो शायद
12: कई बार
11: शायद ये ट्रस्ट जो है इन सवालों के घेरे में नहीं आता।
10: क्या
13: साहिल साहिल
12: कई बार जवाब जनता के सामने रखने के लिए ये होता है।
14: इतने दिनों से क्यों नहीं बात कर रही थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
11: ठीक है आशुतोष पहले जवाब देंगे, उसके बाद
14: डीएम क्या कर रहे थे वो उस ट्रस्ट के, वो स्टेट
8: साहिली जवाब देने दीजिए, बहुत सवाल हमारे ऊपर पूछे गए हैं।
14: आशुतोष अक्सर बात करते
11: हैं। एक मिनट आशुतोष जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा।
14: 1987 में आया था।
13: देखिए
11: संगीत रागी आता हूँ आपके पास, आशुतोष को जवाब देना।
10: साहिली मेरा कब नंबर आएगा
13: आपके?
11: जी आपके पास भी आएगा नंबर जी।
13: देखिए साहिल, आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी एमआईएम और आरएसएस का नेक्सस कितना स्पष्ट हो गया, तीनों मिलकर मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि मैंने बीजेपी का नाम नहीं दिया इसमें, तीनों मिलकर हमला करें। ये है दरअसल, ये ओवैसी की पॉलिटिक्स है लगातार। जब भी भारतीय जनता
11: पार्टी शर्मा, आपको भी यही दिखता है क्या?
8: देखिए साहिल जी कितना बढ़िया डिबेट हो रहा है कि सबसे फायदे में इसमें जो है एआईएम के नेता हैं, जिनको संगीत रादी और प्रदीप भंडारी दोनों बैकअप में लेके चल रहे हैं। ये मौका तो बहुत कम मिलेगा, और हम तो बार बार कहते हैं इनसे, जहां जहां तुम शादाब चौहान जो आएंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी थंबिंग मेजोरिटी से जीत के आ रही है। आप देखते चले जाओ इतिहास में, इसीलिए हमने कहा था शादाब भाई
14: क्यों
8: जी कभी दो
14: बंगाल में
8: एक पड़ेगा दो कदम पीछे रुक के रखो, भारतीय जनता पार्टी को हम हटा देंगे, फिर लड़ लेना, फिर लड़ लेना, फिर लड़ लेना, अरे फिर लड़ लेना। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है
11: आशुतोष वर्मा जी,
8: साहिल जी, दूसरी बात यह है कि कहानी यह नहीं है कि एआईएम क्या करना चाहते हैं। मुद्दा मैं फिर बोल रहा हूँ, अटकने नहीं देंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन सबको फांसी होनी चाहिए। जब तक फांसी नहीं होगी
11: अटकते नहीं देंगे। डॉली शर्मा, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे आखिर
10: जी? आपके हिसाब से साहिल जी,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1900।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Vimal, bolo zuba kesri. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या? रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
2: हमने तब भी सवाल किया था।
3: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
2: हम आज भी सवाल करते हैं।
3: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
2: ऑपरेशन अग्नि,
3: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
2: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
4: इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में यही लगेगा कि कुछ दोस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। ये शानदार म्यूजिक में पूल पार्टी कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और गाने की धुन पर थिरक रख रहे हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक ये शख्स यहाँ ऊंचाई से सिर के बल पूल में छलांग लगाता है, बाकी के दोस्त इस छलांग पर जश्न मनाते हैं। ये आदमी पानी में सिर के बल कूदा, अब तक इसके दोस्तों को नहीं पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद ये शख्स पानी से बाहर नहीं आया, बल्कि इसका शव उतराने लगा। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवण के वायरी में मालवणी पाहुण चार रिसोर्ट की हैं। दरअसल ये पूल 4 फीट गहरा था और ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इस शख्स का सिर पूल के फ्लोर से टकराया और इसकी जान चली गई। मृतक का नाम श्रेणी मिलिंद ताकले है, ये कोल्हापुर का रहने वाला था।

इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसे पता के नहीं होते। किसे पता था कि चंद मिनट पहले जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे, चंद मिनट में ही एक हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। भरत केसरकर, सिंधुदुर्ग, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: कंगाल हो चुके पाकिस्तान के मंत्रियों की जुबान से आजकल बारूद नहीं बल्कि खौफ टपक रहा है। पाई पाई को मोहताज अपनी जनता को दाने दाने के लिए तरसाने वाला मुल्क आज दुनिया की महाशक्ति बनते भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। कोई इन्हें बताए कि पिछले 1.5 साल से पानी तो वैसे ही बंद है। भारत ने जब से कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है, तब से इस्लामाबाद के हुक्मरानों के हलक सूखे हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो सीधे युद्ध की धमकी पर उतर आए थे। वो कह रहे थे कि पानी रोका तो जंग होगी। खुद को आतंकवाद का शिकार बनाने वाला पाकिस्तान आज पानी को ढाल बनाकर भारत को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वैसे ये बात अच्छी है कि पाकिस्तान इसराइल का उदाहरण दे रहा है। भारत और इसराइल न केवल आतंक के खिलाफ एक हैं, बल्कि उसका इलाज भी उतनी ही अच्छी तरह करना जानते हैं।
1: जो काम इसराइल कर रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई ट्रीटी, हमारे तो जो सामने आएगा हम तो जेनोसाइड कर डालेंगे। तो वही बात ये हमारा हमसाया मुल्क कह रहा है कि होगी कोई ट्रीटी, होगी नहीं ट्रीटी, है ट्रीटी।
0: भारत ने साफ कर दिया है कि अब हमारे किसानों के हक का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं जाएगा। चाहे बांध बनाने पड़े, नहरें खोदनी पड़े या दीवार खड़ी करनी पड़े, भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा।
1: हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है और हमारे पास तो ट्रीटी है। ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे सबके सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे। अभी भी दो जगह पे करके आए, दोबारा कल पेश करेंगे।
0: न्यू इंडिया का साफ संदेश है कि ये पुराना दौर नहीं है। जब तक सीमा पार से आतंक नहीं रुकेगा तब तक भारत से पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, चाहे पाकिस्तान कितनी ही गीदड़ भभकियां क्यों न दे। आज तक ब्यूरो।

0: हर मोर्चे पर मुस्तैद है सुरक्षा बल। जमीन से लेकर आसमान तक, तलाशी से लेकर तकनीक आजमाने तक, अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन और सेना ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जम्मू में रजिस्ट्रेशन केंद्रों से लेकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा इंतजामों का जाल बिछा दिया गया है। सारे सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए, सभी विभागों के समन्वय के लिए और किसी भी आपदा से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया।
1: अरे यात्री ध्यान दे, सुरक्षित कारणों की वजह से यात्रा को स्थगित किया जाता है। कृपया सारे यात्री पुलिस का सहयोग करें, हम आपको सेफ जोन में लेके जाएंगे।
0: अर्ध सैनिक बलों के लिए भी यात्रा को सुरक्षित बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस चुनौती से निपटने के लिए सीआरपीएफ ने भी कई स्तर पर तैयारियां की हैं। यात्रा के पूरे मार्ग के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड से लेकर हाईटेक उपकरणों की मदद से जांच की जा रही है ताकि किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। हर गुजरते वाहन की जांच की जा रही है और सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फ की चुनौतियां कई तरह की दिक्कत लेकर आती हैं। ऐसे में हजारों भक्तों की सुरक्षित आवाजाही किसी बड़े अभियान से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर रेस्क्यू टीमें पहाड़ों पर इसी अभियान को दुरुस्त करने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: राम मंदिर दान घोटाले को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम के निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चंदे की चोरी को अंजाम दिया गया।
3: इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
2: अखिलेश यादव ने राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है। अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद अयोध्या को बेमिसाल धार्मिक नगरी बनाने का दावा कर रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पूछा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या निर्माण कैसे करेंगे।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
2: रामलला के चढ़ावे में गबन के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अयोध्या से संतोष शर्मा आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग, सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घमासान, कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस परिवार का मुंह में राम बगल में छुरी, दर्शन करने जा रहे नेता हाउस अरेस्ट। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच, सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चा के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा है इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान, रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का लंबा अनुभव। मुंबई के चेंबूर में स्कूली बस पर गिरा पेड़, एक बच्चे की मौत, 5 अस्पताल में भर्ती।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
3: राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं।
2: देखो वो जा रहे हैं भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई।
3: राम की भक्ति ऐसे काल नेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है।
4: भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहती।
5: उधर हो
6: असल में चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी नहीं है, वो हिंदुओं की आस्था पर इतिहास में सबसे बड़ा हमला है।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में हर पार्टी अपनी सहूलियत की सियासत कर रही है और आज चढ़ावा चोरी का चंपत चैप्टर हम आपके सामने हल्ला बोल में रखने वाले हैं। अखिलेश यादव तंज कसते हुए सच्चे सनातनियों को बीजेपी से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। सीएम योगी ने भी कालनेमी वाला पलटवार करके हिसाब बराबर कर दिया तो कांग्रेस चढ़ावा चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर बीजेपी पर हमला कर रही है। वहीं अयोध्या में चढ़ावे की चोरी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब तो ये पता चला है कि चढ़ावे की चोरी की भनक तो पहले ही लग गई थी लेकिन ट्रस्ट ने उस पर मिट्टी डाल दी। चढ़ावा चोरों को लूट का पूरा मौका दिया। पुलिस की रडार पर बैंक भी है, यह भी खुलासा हुआ है कि बैंक ने काउंटिंग स्टाफ बदलने की सिफारिश की थी जिसे ट्रस्ट ने दरकिनार कर दिया। तो क्या ट्रस्ट, वो भी राम मंदिर का ट्रस्ट था, इतना भ्रष्ट? इधर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से पुलिस लंबी पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में चंपत खुद को नीट एंड क्लीन बता रहे हैं। अब सवाल है कि 6 जुलाई को जो राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होने वाली है उसमें किसका किसका विकेट गिरने वाला है, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर चुनावी धुरी का केंद्र राम मंदिर ही होगा क्योंकि चंदा चोरी के आरोपों के बाद सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने नजर आ रहे हैं।
1: अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता है, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
2: अब तो ना इन्हें चंदा मिलने जा रहा है, न दान और न वोट, इसलिए ये घबराए हुए हैं। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें।
0: जब हम इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर से संबंधित कई जिम्मेदार पदों पर संघ के लोगों को जानबूझकर जगह दी गई और कांग्रेस मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखने पर भी सवाल उठा रही है।
3: अयोध्या में जो घपला चल रहा था, 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही और शायद आगे भी बचा रही है।
0: यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी चंदा चोरी पर मचे बवाल के बीच दल बल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया।
4: आचार्य नरेंद्र देव किसी विद्यालय के गेस्ट हाउस में हूं और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है।
0: वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों को इस मामले में एक आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। उधर एफआईआर में नाम नहीं होने के बावजूद पुलिस ने चंपत राय से कई घंटे पूछताछ की जिसमें कई अहम खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो चंपत राय ने पुलिस से कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हां, मैं मानता हूं कोई हेरफेर ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया, इस पर चंपत राय का जवाब था जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही।
5: जांच का दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में एसआईटी जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
0: जांच में जुटी पुलिस ने 7 बैंकों से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है। ये रिकॉर्ड ट्रस्ट के खाते और आरोपियों के निजी खाते से जुड़े हैं। SBI ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। SBI की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। अयोध्या में SBI की नया घाट ब्रांच भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रांच में 8 में से 7 आरोपियों और मंदिर ट्रस्ट के खाते भी हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने इससे खिलवाड़ किया। खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूंसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप देखता रहा। इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चढ़ावा चोरों को संरक्षण दिया गया, इसीलिए लंबे वक्त तक चंदा चोरी के मामले को दबाया गया। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारिणी की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में उम्मीद है कि ट्रस्ट चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र को बुलाकर उनका पक्ष भी सुने। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। आइए चर्चा की इस मुद्दे पर शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं VHP के। राजनीतिक मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनमें गौरव भाटिया प्रवक्ता BJP के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मनोज काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विनोद बंसल जी प्रवक्ता VHP के और वारिस पठान AIMIM का पक्ष रखेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी आपके पास भी मैं जाऊं, उससे पहले सुरेंद्र जैन जी से जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम संस्थाएं और लोग जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं आज वो बहुत आहत है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, आप राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव है VHP के, VHP की तरफ से क्या कहेंगे? चढ़ावा चोरी का जो ये पूरा आरोप चल रहा है, SIT गठित करके अब जांच हो रही है, लेकिन लोग तो ये पूछ रहे हैं ना कि भाई जानकारी सीधे सीधे आ रही है कि चंपत राय जी को पहले ही पता चल चुका था लेकिन FIR से उनका नाम गायब है। अनिल मिश्रा जिन पर शक की सुई जा रही है, FIR में नाम गायब है। गोपाल राव नाम नहीं है। इस जांच पर आपको कितना भरोसा हो रहा है?
6: हमको जांच पर पूरा भरोसा है। हमने SIT की डिमांड की, उस समय बात आ रही थी कि FIR होनी चाहिए। FIR किन पर हो, ऐसे ही हवा में की जा सकती है क्या? कितने बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, किस प्रकार की नीचे तक जाकर इस विषय का विस्तार हो चुका है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसलिए ट्रस्ट ने इसकी डिमांड की SIT की, सरकार ने स्वीकार किया। जांच शुरू होते ही जैसे ही 8 नाम सामने आते, और ध्यान दे केवल 8 नाम नहीं है, 8 नाम जद हैं एंड अदर्स ये शब्द भी दिया हुआ है, यानी कोई व्यक्ति जिस पर संदेह है, कोई व्यक्ति जो कहीं भी लिप्त पाया गया उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये अभी तक की जांच से स्पष्ट हो रहा है। चंपत जी ने खुद कहा ना, मेरी जांच कीजिए, 2 बार बुलाया, SIT ने बुलाया, पुलिस वालों ने बुलाया, वो तो पीछे नहीं भागे। जैसे राजनीतिक लोग भागते रहते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं, बहाना नहीं बनाया, हर प्रश्न का जवाब दिया। हाँ अंजना जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बार बार ये आ रहा है कि उन्होंने ये जवाब दिया या वो जवाब दिया, किसने बताया? क्या पुलिस वालों ने बताया? क्या चंपत जी ने बताया? मुझे ऐसा लगता है कि सूत्रों के बहाने से या कुछ लोग राजनीतिक आरोप लगाते हैं उसके बहाने से केवल और केवल चरित्र हनन की राजनीति करना चाहते हैं और इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं।
0: ठीक है, लेकिन
6: हमने अंजना जी इन सब राजनीतिक दलों को स्पष्ट कहा था कि हम दोषियों को सामने लाना चाहते हैं, कृपया राजनीति मत करें, जो करेगा, क्योंकि राम के नाम पर पहले भी राजनीति की है, इन्होंने पहले भी मुंह की खाई है, मेरा आज भी करबद्ध निवेदन है, मत खेलिए हिंदुओं की आस्थाओं के साथ, बड़ी मुश्किल से यह दिन आया है, दोषी पकड़े जाएंगे, धैर्य रखिए, कोई भी हो, कितने भी ऊंचे स्थान पर हो, थोड़ा भी लिप्त होगा वो आएगा सामने, पकड़ा जाएगा, सजा मिलेगी, वो छोड़ा नहीं जाएगा।
0: जैन जी, आप ही की बातों से डॉक्टर साहब तीन सवाल मेरे खड़े हो रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां ये पार्टियां सेक रही हैं या सबसे ज्यादा हिंदुओं की आस्था पर चोट उन लोगों ने किया है जिन्होंने पैसा चुराया। भाई लड़ाई क्या थी? लड़ाई यही थी ना कि मुगलों ने लूटा, मुगलों ने तोड़ा। 500 साल की लड़ाई इसलिए थोड़ी लड़ी गई कि एक दिन ऐसा आएगा जब राम मंदिर बन जाएगा और फिर वहां पर एक ट्रस्ट बनेगा जिसको चलाएंगे चंपत राय जी, और फिर सबकी नजरों के सामने ऐसी चोरी वहां होगी चढ़ावा की कि 80 लाख तो कैश बरामद हुआ है। भाई क्यों ना गुस्से में आए लोग, इस ट्रस्ट से गुस्से में क्यों ना आए? इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्ट ट्रस्ट दिख रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने तो यह मुद्दा उठाया। सुरेंद्र जैन जी, मैं जो प्रश्न पूछ रही हूं ये सिर्फ देश का गुस्सा दिखा रहा है, आप समझिए इसकी गंभीरता को। आज ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है या कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल होकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, वरना ऐसी जानकारी तो आ ही रही है कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे पहले ही पता चल गया था। नहीं नहीं, सुनिए ना जैन साहब, उन्होंने खुद ही कहा है चंपत जी ने कि भाई पहले पता चल गया था।
6: जी जी जी,
0: तो फिर पहले पता चल गया था तो इसको सामने लाना चाहिए था ना, तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, है कि नहीं? ये कोई किसी का निजी मंदिर तो है नहीं घर का, ये भगवान राम का मंदिर है और ये लोगों के पैसे से बना है जैन साहब।
6: ऐसा है अंजना जी, किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं है। चंपत जी ने क्या कहा ये लोगों को कैसे मालूम चला ये हमको नहीं मालूम है। चंपत जी से हमारी इन दिनों में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्हें पता था और उन्होंने इस पर जानकारी नहीं दी या कार्यवाही नहीं की, मैं समझता हूं उन पर कार्यवाही होगी, अवश्य होगी। और इस समय तो बहुत खुशी की बात है कि कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, ये सब एप्लीकेशंस लेकर गए हैं कि CBI जांच करे, ED जांच करे या जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। जो भी फॉर्मेट कोर्ट स्वीकार करेगी, आदेश करेगी, हम उसमें सहयोग देंगे। और जो भी अपराधी है, जितने भी लोग हैं, जितना भी बड़ा दायरा है, वे सब के सब इसमें आएंगे, लेकिन इसको लेकर आंदोलन करेंगे? अरे जब जांच हो रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, आप राम के दर्शन करने जा रहे हैं या आंदोलन करने जा रहे हैं? और साफ कह रहे हैं कि सनातनी वोट न दें, सनातनी टिकट ना मांगे, ये चुनावीकरण नहीं है क्या? चोरी करने वालों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, कानून के अनुसार ही नहीं, मानवता के साथ और राम के साथ गद्दारी की है। मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग रावण की तरह से साधु बनकर सीता का हरण यानी हिंदुओं की आस्थाओं का हरण करना चाहते हैं, अब तक नहीं गए राम मंदिर, अब आंदोलन करने जाओगे, साफ समझ में आ रहा है तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम ये नहीं चाहते कि अपराधी कौन है वो सामने आए, उसको दंड मिले, तुम चाहते हो कि इसको किस तरीके से भुनाया जा सके, सफल नहीं हो पाओगे, ये मैं फिर बता रहा हूं।
0: एक आखिरी प्रश्न है आपसे, मैं आपके विवेक पर यह प्रश्न कर रही हूं, आपके विवेक से आप इसका जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े बड़े दिग्गज थे जो पूरे राम मंदिर में ऐसे घूमते थे जैसे ये मंदिर उन्हीं का है, तब जहां घुसना, जहां आना, कहां जाना, आपको भी पता है मैं किस किस की बात कर रही हूं, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इन लोगों को पता ही नहीं था कि चोरी हो रही है, 80 लाख कैश बरामद हो चुका है, इन लोगों की नजर से बचा हुआ था, किसी को पता ही नहीं था, सब अनजान बोले थे, एक पूरा रैकेट वहां पर चल रहा था, ऐसा मानने को सुरेंद्र जी अपने विवेक से कि आप तैयार हैं?
6: मुझे लगता है अंजना जी, जांच हो रही है, जांच होने देनी चाहिए। केवल यही लोग जिनकी ओर इशारा किया जा रहा है वही थे या और भी थे, ये भी तो जांच होनी बाकी है। कहीं ऐसा तो संभव नहीं है कि कुछ नाम सामने आ गए और उनको बिना सिद्ध हुए हम अपराधी घोषित कर दें? वो हमारे को अधिकार है, हम कर सकते हैं, किसी के बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस आड़ में बाकी तो नहीं बच जाएंगे, किसी को बचाने की तो कोशिश नहीं हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं खुली जांच हो, सब पर हो, कोई ना बचे। आरोप अभी तीन पर हैं जिनमें गोपाल जी ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, सदस्यों में केवल दो नाम है, जो भी नाम है सामने लाने चाहिए, अपराध क्या है वो बताना चाहिए, कठोरतम सजा कानून के द्वारा इनको मिले, ये हम सभी तरह के जांच के जितने भी मैकेनिज्म है उन सब से निवेदन करेंगे और बाकियों से भी करबद्ध निवेदन है। जो भी आपके पास जानकारी है, तथ्य है, कृपया वो तथ्य पुलिस के पास लाएं, वो तथ्य कोर्ट में लेकर आएं। अपराधी नहीं बचने चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। बच गए तो आपको हिंदू समाज आपको भी माफ नहीं करेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए, बहुत धन्यवाद। गौरव भाटिया जी अब आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भगवान राम से बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, आपका जवाब।
7: सभी दर्शकों को नमस्कार। अंजना जी, पहले कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताती थी वो पार्टी अब चर्चा में आने लगी है, उस पर बाद में आएंगे। आज जो मुख्य मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। करोड़ों दर्शक आपका चैनल देख रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या कार्रवाई हुई है उस पर बात करेगा। सबसे पहले मैं कहता हूं कार्रवाई त्वरित हुई है और मजबूत हुई है। अंजना जी, हमें समझना होगा कि पहले एक SIT का गठन किया गया और मुझे याद है योगी आदित्यनाथ जी ने आज से करीब 13-14 दिन पहले एक बड़ी स्पष्टता से बात कही थी, 500 साल तक हमने इंतजार किया है, SIT का गठन हो गया है और 10 दिन का इंतजार और कर दीजिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने तब बयान दिया था और मैं शब्दशः कहता हूं, उन्होंने कहा था SIT क्या है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद FIR दर्ज हुई। अंजना जी, FIR जब दर्ज हुई तो केवल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नहीं हुई, FIR में 8 लोग नामजद हुए और अज्ञात लिखा गया कि कोई और व्यक्ति अगर संलिप्त है उसके खिलाफ भी मजबूत कार्रवाई होगी। दूसरी बात, आपको मालूम है 25 तारीख को FIR हुई, 25 जून को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई, 24 घंटे के अंदर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कानून के तहत कार्रवाई भी होगी, कानून के तहत लोगों को पकड़ा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी बात, 80 लाख रुपए जो थे वो रिकवर किए गए, आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही है। और इसके अलावा कितनी व्यापक है ये विवेचना, 140 ऐसे लोग हैं जिनको हमने इंटरोगेट किया है और उनके बयान दर्ज किए हैं। तो सबसे बड़ा संदेश तो ये है, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, कोई नहीं है जो बख्शा जाएगा। अगर भगवान राम के आंगन में चोरी करी, मंदिर में चोरी करी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जेल में सड़ेगा। दूसरी बात, आज आप ही की चैनल पे एक रिपोर्ट चल रही थी जिसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था। कुछ दिन पहले से कांग्रेस हो, सपा हो, जो कि हिंदुओं से नफरत करती है, ये अब राजनीति कर रहे हैं। तो सवाल ये भी पूछा जाएगा, अंजना जी अगर कोई कमी है जांच में, अगर आपका कोई सुझाव है, ये तो आपको देना चाहिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करोगे, वो ऐसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, तो ये क्या ये उचित है? और इसका उत्तर है नहीं, है। और केवल नहीं।
0: ठीक है, अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी इतने गंभीर मुद्दे पर, आपको लग रहा है कि वहां पर जाकर इससे पहले दर्शन के लिए कोई नहीं गया? क्योंकि बीजेपी इसी मुद्दे पर आपको बार बार घेरती है कि कोई दर्शन के लिए पहले तो गया नहीं, अब वहां आंदोलन के लिए पहुंच गए।
8: जितना वर्णित आपने किया है उससे भी बहुत जघन्य पाप है ये। सनातन धर्म में समूची सृष्टि का सबसे बड़ा पाप क्या है जानती हैं आप? देव द्रव्य की चोरी। और ये अग्नि पुराण में कहा गया है, स्वयं दत्ता परम दत्ता वायो हरेत वसुंधराम षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जयते क्रमी। अर्थात जिसने देव द्रव्य की, भगवान की भूमि की, भगवान के चढ़ावे की चोरी की है, 60,000 वर्षों तक वो मलमूत्र के कीड़े के रूप में जन्म लेगा। जिस पार्टी का नाम राम के झूठे जाप से प्रारंभ हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खिलाफ किए हुए पाप से वो राजनीतिक दल समाप्त हो जाएगा, आज मैं कह रहा हूं। बागेश्वर महाराज ने और विश्व हिंदू परिषद के साथी ने अभी रावण का जिक्र किया, तो जिस प्रकार रावण ने माता सीता का हरण किया था, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई, राजनीति से भय से प्रीत से छद्म वेश धारण करके वे से भारतीय जनता पार्टी ने इस सत्ता का हरण किया है। और याद रखिए, विभीषण ने कहा था उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कि नाभि कमल चोट रघुबीरा, कि जो कम नाभि कमल है रावण का वहां अमृत है वहां चोट कीजिए। और आज मैं कहता हूं कि इस कलयुग में मैं कहता हूं कि कमल नाभि चोट रघुवीरा, इन कमल की नाभि में चोट कीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि अखंड पाप में डूबे। इन दोनों सत्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सत्ता और केंद्र की मोदी सरकार ने, आश्रय दिया है चोरों को। यह आज का प्रश्न नहीं है। चलो ये कहते हैं, सुझाव दीजिए, ये मेरे पास 1990 मार्च के महीने का नोटिस विश्व हिंदू परिषद का है, वो कि वही मोडस ऑपरेंडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धारा 131 में नोटिस दिया कि चंदा चुराया इन लोगों ने। 100,000 लोग भगवान का चंदा इकट्ठा करने 500,000 गांव गए 100-100 रुपए की रसीद लेकर। हूबहू यही किया था 90-80 और 90 के दशक में, रसीदें छपवाई और गांव गांव गए चंदा इकट्ठा करने। उस समय भी लिखी चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्मोही अखाड़े ने, उन्होंने कहा 1400 करोड़ रुपए की आंदोलन के दौरान चोरी हुई। हमने आग्रह किया, प्रधानमंत्री जी जमीन की खरीद फरोख्त में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो वैभवशाली मंदिर बनना है 825% तक दाम बढ़ाकर घोटाला किया है, कोई जांच इन लोगों ने नहीं की। 3,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए और 900 दिन हुए मंदिर को उद्घाटन से आज दिनांक तक 9-10 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। 500 रुपए भी एवरेज मानो तो 5,000 करोड़ रुपए कितने बना बताए इन्होंने, 54 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। वो हजारों करोड़ रुपए कहाँ है? पाप और श्राप के भागी हो गए आप।
0: लेकिन अभय जी,
8: बहुत बड़ा पाप आप कर रहे
0: हैं। अभय जी, अभय जी, आपने ठीक है, आपने सब बातें बोली वो हमने भी रिपोर्ट में दिखाई, लेकिन आपने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब देखो सुबह से शाम तक ये भगवान राम राम राम राम कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये कभी किए नहीं, और वो राम मंदिर है, कोई आंदोलन की जगह थोड़ी है।
8: अगर अभय दुबे अगर दर्शन करने नहीं जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को राम जी के चढ़ावे में चोरी की खुली छूट हो जाएगी क्या? क्या बात करती हैं आप, ये आस्था खंडित हुई है। माओ ने बहनों ने अपने पल्लू में बचा बचा कर जो पैसे रखे थे वो पूरी आस्था के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चढ़ाए, और क्या इनको खबर नहीं थी? नवंबर 2020 में जो ऑडिट करने वाली फर्म है उसने गंभीर आपत्तियां ली थी, उसने इस चोरी की ओर इशारा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री भी मौन साधे इनको आश्रय देते रहे, आदित्यनाथ जी भी मौन साधे इनको आश्रय देते रहे। अभी बताया 3 महीने पहले बैंक ने, प्रवन खेड़ा जी ने उल्लेख किया कि SBI ने इंडिकेट किया था, तो हर जगह से संकेत मिल रहे थे। जमीन की चोरी का खुलासा भी आज तक ने बहुत प्रामाणिक रूप से किया था, रजिस्ट्रियों के दस्तावेज बताकर कि अयोध्या की भारतीय जनता पार्टी के महापौर उपाध्याय के उस पर हस्ताक्षर है, इस अनिल मिश्रा के उस पर हस्ताक्षर है, SIT की जांच लिपापोती की जा रही, किसको सौंपी? उसी एडिशनल सेक्रेटरी को।
0: चलिए गौरव भाटिया जी, अब इसका आप जवाब दीजिए, और इस बीच अपने दर्शकों को भी बता दें कि आज रात राम मंदिर में, इसके बाद आ रही हूं मनोज जी, इस आज रात राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी पर आज तक की सबसे बड़ी पड़ताल हम रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे, जमीन से लेकर चढ़ावा क्या क्या घोटाले किए गए हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, एक सेंस जो बन रहा है वो यही है कि बड़े ही ग्लव्स के साथ, जिसको कहते हैं ना किड्स ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कुछ लोगों को, बहुत ही संभाल कर, मतलब ऐसे लोग जो वहां पर जिसको कहते हैं ना बिगर देन द टेम्पल ऐसे बन गए थे, उनका नाम भी नहीं लिखा जा रहा है FIR में या कहीं पर, पूछताछ हो रही है, कहीं नामजद नहीं है, क्या वजह है इसकी?
7: अंजना जी आभारी हूं, आपने अज्ञात जो FIR में लिखा है उसके बारे में प्रश्न किया, मैं भी उस पे विधिक मत रखना चाहता हूं क्योंकि पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर पहले देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने केवल तुच्छ हल्की घटिया राजनीति करी है। ये कह रहे थे सनातन का जो अपमान करेगा वो मलमूत्र और कीड़ा बन के आएगा अगले जन्म में, तो खड़गे जी ने तो कहा था मोदी जी अगर सत्ता में आए तो सनातन का राज है, मलमूत्र में कीड़े बन के आएंगे खड़गे जी, आप ये कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काल्पनिक बताती है भगवान राम को, मलमूत्र में कीड़े बन के आएंगे क्या अगले जन्म में? और आप कह रहे हैं कि चंदा, मैं पूछना चाहता हूं सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया है? पल्लू की बात कर रहे थे, सोनिया गांधी ने अपने पल्लू में बचा के 1 रुपए का चंदा दिया। बीच में ना बोलिए, बीच में मत बोलिए, कमजोर पड़ते हैं तो बीच में बोलते, बीच में मत बोलिए, कमजोर है क्या? सबसे पहले ये बताइए सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया है, पहला। दूसरा, आपने कहा भगवान राम काल्पनिक है, अयोध्या आप कभी गए नहीं, यहां पे केवल राजनीति कर रहे हैं। और मैं अज्ञात पे आपको बताता हूं अंजना जी, एक चीज समझने की होती है, जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद जिन जिन व्यक्तियों के नाम आए और संलिप्तता पाई गई उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया। क्या एफआईआर में अगर नाम नहीं होगा, नामजद नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ऐसे व्यक्ति की कार्रवाई क्या नहीं करी जा सकती? मैं आपको बताता हूं, बाद में अरेस्ट भी हो सकती है, चार्जशीट भी हो सकता है और जांच भी होती है। और जिसका आप नाम ले रहे, बड़ी मछली छोटी मछली, कोई मछली बड़ी हो छोटी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और चंपत राय जी से भी तो पूछताछ हुई है, ये क्या दिखाता है कि पुलिस अपना काम कर रही है? अगर कोई रोड़ा अटका रहा है तो वो केवल और केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मैं कहता हूं इन बहरूपियों से बच के रहना, और जैसा योगी जी ने कहा इन काल नेमियों से बच के रहना। ये तो चाहते हैं कि सनातन धर्म आगे ना बढ़े और जो हमारी पहचान है उसको मिटाना चाहते हैं।
0: ठीक है, अब एक बार मनोज काका जी बोल ले, उसके बाद अभय जी मैं आ रही हूँ। मनोज काका जी की पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। मनोज काका जी, अब ये यही कह रहे हैं कि भाई जांच हो रही है, एसआईटी पूछताछ कर रही है, चंपत राय से भी कई घंटों की पूछताछ हुई है, तो सब पुलिस तो अपने तरीके से ही ना काम करेगी, या पहले ही दिन पकड़ के सबको वो कर दे?
9: अंजना जी, पहले तो साधुवाद आपका कि आपने कई सारे बड़े सवाल आपने स्वयं उठाया है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका बीजेपी के साथी ने जवाब नहीं दिया है। जब एफआईआर की बहुत विधिक वरिष्ठ साथी बहुत विधिक बात बता रहे थे, मैं भी अधिवक्ता हूं, मैं अपने आप को वरिष्ठ तो स्वयं अपने मुंह में अमिट्ठी नहीं बन सकता हूं मैं, लेकिन अधिवक्ता हूं। एफआईआर में नाम होने पर आरोपी को तुरंत दोषी नहीं मान लिया जाता। अगर जिस पर आरोप है, जो व्यक्ति पर पूरे देश को आरोप है, जो व्यक्ति उस ट्रस्ट का संचालन कर रहा था, समन्वय कर रहा था, जो व्यक्ति जिस चंपत राय के बिना इशारे के वहां एक व्यक्ति एक अधिकारी एक पत्रकार कोई जा नहीं सकता था, उस व्यक्ति पर पूरा आरोप है। जो व्यक्ति कभी इस देश के प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताता था, दरबारी गिरी करता था, वो व्यक्ति पर जब आरोप लगे, जब आपने ही कहा 79,80,000 रुपए जब बरामद हुए, जमीन से लेकर जवाहरात तक खरीदे गए, जमीन से लेके जवाहरा जो जेवर थे उसमें दलाली खाई गई, 2.5 करोड़ की जमीन और तुरंत 5 मिनट में 18.5 करोड़ की ले ली जाती है, 3 करोड़ जमीन 55 करोड़ में ले ली जाती है, और सब उसमें लेने वाला विक्रयकर्ता और क्रयकर्ता दोनों में जो वो हैं, जो गवाह हैं, वो ट्रस्ट के लोग होते हैं। मैं चंपत राय से और पूरा देश यह जानना चाह रहा कि कैसे आपको पता होती थी रजिस्ट्री ऑफिस से तुरंत कि फला जमीन फला ने 2.5 करोड़ में खरीदा है और तुरंत इसको आप खरीदना चाह रहे हैं 18.5 करोड़ में। वो तो ट्रस्ट में पैसा तो हमारे आपके सबके भावनाओं का पैसा था। और अगर सरकार में इतनी ही शुचिता है तो चंपत राय का, गोपाल राय का, अनिल मिश्रा का नाम आपने क्यों नहीं डाला? वही तो पूरे ट्रस्ट का संचालन कर रहे थे। वहां जब SBI बैंक था, SBI बैंक को हटा करके एक प्राइवेट फर्म क्या रमाशंकर ने अनुकल्प में रख लिया? क्या छोटे लोगों की हैसियत है कि वो तय करने लगे कि नहीं अब गिनती अब ऑडिट का काम प्राइवेट फर्म करेगी? निश्चित रूप से चंपत जी ने किया होगा। जो खबरें आ रही है कि गोपाल राव का भतीजा ट्रेन से ले जाता है जवाहरात और सारी चीजें ट्रेन से ले जाता है कर्नाटक और उधर से फ्लाइट से आता है इस देश में आप बीजेपी कह रही
0: है। मनोज काका जी देखिए, हां खत्म कीजिए। देखिए मैंने भी तीनों का नाम लिया और तीनों पर पॉइंटेड सवाल मैंने पूछा, आ रही हूं बंसल साहब और वारिस जी, तीनों का नाम पूछा कि भाई चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव नाम क्यों नहीं? लेकिन आप भी कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा, उन्होंने लिया होगा, फिर आप ही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप भी बचपच के ही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रामाणिक तौर पर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की बात को नहीं कहा जा सकता ना, तो आप भी होगा होगा करके कह रहे हैं, तो होगा होगा पर किसी को नहीं पुलिस कन्विक्ट कर सकती है ना। मैं सिर्फ पूछ रही हूं आपसे,
9: आपका
0: जांच तो होगी
9: ना, आपको सवाल करने का पूरा हक है। जांच तब होगी ना जब FIR में नाम होगा। अगर हम क्या किसी को
0: पूछताछ हो रही है, वो किस लिए हो रही है मनोज?
9: पूछताछ हो रही ये हमारे आपके पास क्या प्रमाणिक रिपोर्ट है? और जो SIT कह रही थी कि हमारी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, उस SIT ने उसी ट्रस्ट के कृष्ण कुमार को अपनी रिपोर्ट क्यों दे दी? जिस ट्रस्ट पे सारे भ्रष्टाचार सारे गमन का आरोप है उसी को क्यों नहीं दे दी? और साथ ही कह रहे थे कि राजनीति हो रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का छोटो फोटो करके और अपना खूब बड़ा सा पोस्टर लगा के नरेंद्र मोदी राजनीति नहीं कर रहे थे? उद्घाटन और शिलान्यास में देश के धर्माचार्य गए थे कि नरेंद्र मोदी गए थे? वो राजनीतिक व्यक्ति हैं कि साधु हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं। तो सबसे राजनीति करने का काम धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर बीजेपी ने किया है। और समाजवादियों को मत सिखाइए, समाजवादियों ने 1961 में ही रामायण मेला लगवाना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे राम आदर्श है, हमारे राम सत्य के लिए हैं, हमारे राम मानवता के लिए हैं। और योगी आदित्यनाथ क्या बात करेंगे, लखनऊ में बच्चे धू धू करके जल गए और योगी आदित्यनाथ वहां ममता दिखाने के बजाय एक महिला से बदतमीजी भरी बात कर रहे थे। तो आदर्श राम के आदर्श हो सकते हैं जिसमें निर्ममता हो, कूटता हो, जिसमें निर्दयता हो, राम का आदर्श हो सकता है, वो रावण का आदर्श है।
10: ठीक है आपका, विनोद जी एक बार बोले, गौरव जी आ रही, विनोद जी और वारिस जी को दिखाई। विनोद जी वो कह रहे समाजवादी पक्के राम भक्त है, और दूसरी तरफ मतलब ऐसा तो हो गया ना कि कुछ संगठन जो जुड़े थे, जो ट्रस्ट के मेंबर्स थे, मतलब आपस में भी खूब सब में ताना खींची हो रही थी, इस वजह से कम ये बात तो बाहर आई, वरना कुछ लोग तो मंदिर से भगवान से भी बड़े बन गए थे यहां पर।
11: अंजना जी, दो तीन बात बड़ी गंभीर हैं जो अभी मनोज काका जी ने भी कोट की और उन्होंने भी कोट की अपने कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं सब बातों को जवाब दूंगा टू द पॉइंट, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, इन्हें मनोज काका जी ने जो बातें कही, मैं सिर्फ एक ही बात का जवाब देता हूं, पहले इनसे पूछ लीजिए, अगर ये जवाब दे सकते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं इन्होंने। एक तो क्या कोई गोपाल राव नाम का व्यक्ति ट्रस्ट में है? क्या गोपाल राव नाम का व्यक्ति कोई ट्रस्ट में नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं एक बार। दूसरी बात यह कि गोपाल का कोई भतीजा, गोपाल जी हैं, उनका नाम में राव नहीं है। दूसरी बात यह गोपाल जी का कोई भतीजा ट्रस्ट और ट्रस्ट के दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। जिसकी बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं आपके माध्यम से एसआईटी को भी इन्वाइट कर रहा हूं कि आज की इस डिबेट के कंटेंट लेकर के इन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो इनसे पूछें। आप जैसी वरिष्ठ पत्रकार हैं,
10: क्या है गोपाल राव
11: बहुत गंभीर होगी।
10: एक सेकंड फैक्ट्स पर ही बात कर लेते हैं, अगर इसमें कोई गलती होगी तो हम करेक्शन कर लेंगे, लेकिन हमारा रिसर्च और जितने न्यूज आर्टिकल्स अभी तक आए हुए हैं उसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय, ट्रस्ट मेंबर अनिल मिश्रा एंड गोपाल राव लिखा रहा है। अगर इसमें कोई, आप कह रहे हैं कि गोपाल नाम से है तो क्या है पूरा नाम?
11: अब मैं इसमें करेक्शन कर देता हूं, मैं कह रहा हूं गोपाल राव नहीं है, आपकी वजह से नहीं कह रहा, मैं इनको कह रहा हूं जो
10: क्या नाम है बताइए ना गुरुजी,
11: और आपके माध्यम से बाकी सबको भी करेक्ट कर देना चाह रहा हूं। गोपाल जी है, राव नहीं है, उनका सरनेम कुछ और है, वो तो कर्नाटक है भाई, कर्नाटक में वो उनके नाम के आगे राव नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उनका कोई भतीजा नहीं है जिसके बारे में कह रहे हैं कि 50 बार गया, बोरी भर के ले गया, ये ले गया, वो ले गया। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, आज आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि बताएं वो भतीजा कौन सा, उनके भाई का नाम क्या था, और नहीं तो आज ही माफी मांगे तुरंत।
10: बोले मनोज का,
9: कैसी माफी मांग ले, ये आरोप है, और आरोप ये फिर है, ये इन्होंने भी कहा गोपाल राव, एक नहीं इंडियन एक्सप्रेस से लेके हजारों रिपोर्ट है कि गोपाल राव वहां के कर्ता धरता है, गोपाल राव बहुत सारे चीजें तय करते हैं, तो किस बात की माफी मांग ले,
11: इंडियन एक्सप्रेस की
9: किस बात की माफी मांग ले?
11: अरे भाई आप जिम्मेदारी लो ना, क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हो, अपनी जिम्मेदारी को इंडियन एक्सप्रेस पे क्यों थोप रहे हो?
9: मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का
11: अंजना जी, और मुझे पूछिए गोपाल राव का कोई, गोपाल जी का कोई भतीजा है क्या? एक तो ये बताएं कि गोपाल राव नहीं गोपाल जी हैं, बोलिए आप, बोलिए
9: आप जो
11: या बोलिए मनोज राव, गोपाल राव नाम को कोई व्यक्ति ट्रस्ट में है क्या?
9: रिपोर्ट आ रही है गोपाल राय की कड़ी से कड़ी
11: जांच, चैनल को मारो बोली यार, चैनल क्या चला रहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैनल पर चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप मुझे बताइए।
10: विनोद बंसल जी को मेरे साथ दिखाइए, चूंकि विनोद बंसल जी आप इस बात पर अब अड़ गए हैं, आप विनोद जी की जिनकी हम तस्वीर गोपाल जी की दिखा रहे हैं वो आप भी मान रहे हैं कि गोपाल जी है, आपका कहना है कि टाइटल उनका ये नहीं है, पूरी बहस अब इस पर नहीं चलेगी, ठीक है? अब आप चूंकि इतना कुछ जानते हैं इसके बारे में, और एक सेकेंड सर मेरा सवाल तो सुने विनोद बंसल जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि चूंकि आपको इतना कुछ पता है कि आप दिल्ली में ही बैठे हैं ना, दिल्ली में ही है ना अभी?
11: बिल्कुल
10: दिल्ली से बैठे आप अयोध्या में गोपाल जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, है ना? आप खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं, एसआईटी की जांच अपनी
11: जगह दे रहा, मैंने कहा दिया, मैंने नहीं दिया, नहीं, मैं क्लीन चिट कैसे दे सकता हूँ, ना आरोपी है ना अपराधी है, तो मैं क्लीन चिट कैसे दे सकता हूँ अंजना जी, बताइए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जबरदस्ती इन पे आरोप लादने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके भतीजे ने बोरी भर के ले गया, तो भतीजे का नाम बताया ना जी, राव की बात नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं मनोज काका को बोल रहा हूँ कि इन्होंने अभी बोला ना आपके चैनल पर कि गोपाल राव के भतीजे ने कर्नाटक में बोरी भर भर के ले गए थे।
10: ठीक है, तो ये 80 लाख जो बरामद हुआ है,
11: विनोद जी का नाम क्या है?
10: विनोद जी, ठीक है, उनके भाई का और उनका नाम उनको पता करके वो आपको बताएंगे। उन्होंने जो भी आरोप लगाया वो आरोप मैंने नहीं लगाया, लेकिन चूंकि आप इतना जानते हैं इस केस के बारे में, आप कह रहे हैं ना वो ना आरोपी है ना अपराधी है, उन पर क्यों बोल रहे हैं? तो ये 80 लाख जो मिला, 80 लाख जो मिला विनोद जी, मुझे भी एहसास है क्योंकि आप भी उतने ही आहत होंगे। मंदिर के दौरान हर खबर वहां से, हर तस्वीर आप सबको दे रहे थे और आप बहुत जुटे हुए थे इस काम में, जिसकी मैं प्रशंसा भी करती हूं। लेकिन पैसा तो निकला है, चढ़ावा तो चोरी हुआ है। मुगलों के खिलाफ बोलते थे तन तन के, तो आज इनके खिलाफ भी उसी आक्रामकता से बोलिए, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि ट्रस्ट को कुछ भी नहीं पता था। ट्रस्ट के जितने कर्ता धरता थे उनकी नाक के नीचे से ये पैसा चोरी हो रहा था और किसी को पता नहीं था। एसआईटी की रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा कर रही है कि ये अभी का नहीं है, कुछ साल से ही, मतलब जब से मंदिर हुआ है उसके बाद से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो उसी आक्रामकता से आज इनके खिलाफ बोलिए ना, जिन्होंने चोरी की है भाई।
11: मैं बोल रहा हूं,
10: हाँ
11: मैं बोलूं क्या?
10: बोलिए ना
11: अंजना जी। जितना आक्रामकता के साथ आप बोल रही हैं, मैं कहता हूं उससे 4 गुना आक्रामकता के साथ हम बोल रहे हैं। हमारी सुरेंद्र जैन, डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी अभी आपके चैनल पर थे, उन्होंने बोला साफ साफ कि, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले प्रेस में बोला था कि भाई FIR दर्ज होनी चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन डीप इनसाइड होना चाहिए, अपराधियों से रिकवरी होनी चाहिए। और ये हम अभी भी कह रहे हैं, अपराधी कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, उन सबके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लेकिन अंजना जी साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम हिंदुओं के धार्मिक भावना और आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ भी न करें और जो अक्यूज नहीं है उसको जबरदस्ती टीवी चैनल पर बैठ के अक्यूज बना दें कि उसका भाई, उसका भतीजा। ऐसे ही में भी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा चंपत जी का भतीजा, चंपत जी का कोई भतीजा ट्रस्ट में नहीं है, ये मैं बता दूं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। ऐसे गोपाल जी का कोई भतीजा ट्रस्ट से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है, मुझे पता नहीं भतीजा है भी नहीं उनका।
10: काफी वहां पर थे। एक सवाल और है बस बंसल जी, ये टिन्नू यादव की कहां तक पहुंच थी? टिन्नू यादव कौन था? टिन्नू यादव
11: ये मुझे जानकारी नहीं है। देखिए टिन्नू यादव जो है वो SIT बताएगी अब इसमें। देखिए हम किसी को बचा नहीं रहे अंजना जी, मैं कह रहा हूँ आप दोबारा कह रहा हूँ, कोई बचेगा नहीं, ये हमारा संकल्प है
10: जी। और वारिस पठान जी को दिखा दीजिए, वारिस जी मतलब जब कुछ नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम एंगल आपके नेता लेकर आ जाते हैं। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा सके। क्या कहते हैं वैसी साहब, थ्योरी लेकर आते हैं कि अगर एक भी मुस्लिम पकड़ा जाता तो कुछ भी, हैदराबाद से बैठे बैठे।
12: देखिए अंजना जी, अभी आपने मुझे लास्ट में मौका दिया, 3 मिनट का जरा बोलने दीजिए मुझे। अरे मुझे बहुत पुराना एक गाना और बहुत फेमस गाना याद आ रहा है, सब देखकर, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए, कॉन्स्पिरेसी के जरिए शहीद कर दिया, वहां पे भव्य राम मंदिर बना दिया, उसमें ट्रस्ट बना दिया, अब 2 से लेके राम जी का नाम लेते रहते यहां तक पहुंच गए। अब क्या होगा ट्रस्ट के अंदर? इतना बड़ा घपला, हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, उनकी आस्था का कत्ल कर दिया गया है इन लोग द्वारा। माफ नहीं करेगा हमारा हिंदू भाई भी देश का इन लोगों को। आज ये बीजेपी वाले रस्ते पे जा रहे, लोग चिल्ला रहे घपला चोर, घपला घपलेबाज चिल्ला रहे लोग रस्तों के ऊपर। और अब क्या होगा अंजना जी, क्यों हम बता रहे मालूम है? अगर कोई मुसलमान होता तो सोचिए, अब तक तो पूरी कौम को चंदा चोर घोषित कर दिया गया होता। और वो बुलडोजर कहां चला गया? अभी क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया? जो अभी तक नहीं चला, मुसलमान होता तब तक तो बुलडोजर चढ़ जाता। और वो कहां चले गए? वीडियो देखने को एक भी नहीं मिला हमको, वो लगड़ाते हुए आ रहे हैं 2 कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए, वो भी नहीं मिल रहा है। SIT फॉर्म हुई, उसके बाद FIR हो गया, 8 जनों के नाम आ गए, पुलिस कस्टडी भी नहीं मिली, डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी मिल गई उनको। इतने बड़े अधिवक्ता बैठे हुए यहाँ पे, बताइए ना क्यों? ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का था, 80 लाख रुपया बरामद हुआ है और बाकी का रुपया कहाँ है वो चेक करना है।
10: ठीक है, जवाब सुनिए ना, गौरव जी बताएंगे। गौरव जी
7: देखिए अंजना जी, होता क्या है, चाहे सपा के प्रवक्ता हो, चाहे वो AIMIM के प्रवक्ता हो, ये PhD की क्लास में नर्सरी का बच्चा बैठा हुआ है। पहले सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर देता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि FIR में कंप्लेनेंट कौन है? ट्रस्ट का सदस्य है।
10: बारी बारी बारी
7: ट्रस्ट का सदस्य है, सुनिए, चुप हो जाइए। ट्रस्ट का सदस्य FIR कराता है, ये सत्य है, किसी और ने नहीं कराई है, ऐसा नहीं है अखिलेश यादव या OAC जी कंप्लेनेंट है। दूसरी बात, अभी ज्ञान दिया जा रहा था, लग रहा है अखिलेश यादव लॉ यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री पाई है, कह रहे थे अगर FIR में नाम नहीं होगा तो पूछताछ कैसे होगी, अरेस्ट कैसे होगी। ये भी गलत है। जो BNSS आया है उसकी धारा 173 पढ़ लीजिएगा या 154 CRPC की, किसी से भी पूछताछ हो सकती है, चाहे नामजद हो चाहे ना हो, और गिरफ्तारी भी हो सकती है। तीसरी बड़ी बात, गायत्री प्रजापति जिन्होंने बलात्कार किया था और आरोप आए थे, FIR नहीं दर्ज कर रही थी सपा की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, मेरे पास ऑर्डर है, तब FIR हुई, इसलिए हमें ज्ञान ना दीजिए। अखिलेश यादव राम मंदिर देखने नहीं गए, कभी दर्शन करने नहीं गए, यहां बातें

इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
8: तो बात है
10: मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
11: हमने तब भी सवाल किया था।
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं।
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि,
12: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
15: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

यूरोप इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। देश के 54 विभागों ने रेड अलर्ट जारी किया है और कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के अनुमान है। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के चलते अब तक 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी से बिजली उत्पादन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जर्मनी में तो गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है। न्यूज एजेंसी AFP के अनुमान के मुताबिक रविवार को यूरोप के करीब 19.1 करोड़ लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान का सामना करना पड़ा। कहीं सड़कें पिघल रही हैं, कहीं स्कूल बंद करने पड़े हैं, तो कहीं जंगलों में भीषण आग भड़क उठी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप का तापमान दुनिया के औसत तापमान की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।

0: भविष्य में ऐसी गर्मी की लहरें और अधिक बार आएंगी, ज्यादा समय तक रहेंगी। पूरे ब्रिटेन में 1000 से अधिक स्कूलों को बंद करना पड़ा है। कंक्रीट और पुरानी तकनीक से बनी क्लासरूम की इमारतें इतनी गर्म हो गई हैं कि बच्चों और शिक्षकों का वहां बैठना मुश्किल हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी खतरनाक हीट वेव अब लगभग हर साल देखने को मिल रही है।
1: आमतौर पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माने जाने वाला यूरोप ने कभी ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दशकों तक कभी तापमान 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री के पार गया ही नहीं था, लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर भूमध्य सागर के ऊपर गर्म हवाओं के चलते यूरोप उबल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय गर्मी के प्रकोप झेल रहे हैं। आमतौर पर ये पूरा वो इलाका होता है जो ठंडा रहता है, लोग ठंडियों में यूरोप की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय यूरोप में हाहाकार है, तापमान 40 डिग्री के पार है और अब इसका असर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को भी अपनी चपेट में ले रहा है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर चुनावी धुरी का केंद्र राम मंदिर ही होगा, क्योंकि चंदा चोरी के आरोपों के बाद सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर से संबंधित कई जिम्मेदार पदों पर संघ के लोगों को जानबूझकर जगह दी गई, और कांग्रेस मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखने पर भी सवाल उठा रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी चंदा चोरी पर मचे बवाल के बीच दलबल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों को इस मामले में एक आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। उधर एफआईआर में नाम नहीं होने के बावजूद पुलिस ने चंपत राय से कई घंटे पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो चंपत राय ने पुलिस से कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कोई हेरफेर ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया, इस पर चंपत राय का जवाब था जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही। जांच में जुटी पुलिस ने 7 बैंकों से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है, ये रिकॉर्ड ट्रस्ट के खाते और आरोपियों के निजी खाते से जुड़े हैं। एसबीआई ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। एसबीआई की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। अयोध्या में एसबीआई की नया घाट ब्रांच भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रांच में 8 में से 7 आरोपियों और मंदिर ट्रस्ट के खाते भी हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने इससे खिलवाड़ किया। खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूंसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप देखता रहा। इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चढ़ावा चोरों को संरक्षण दिया गया, इसीलिए लंबे वक्त तक चंदा चोरी के मामले को दबाया गया। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारिणी की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में उम्मीद है कि ट्रस्ट चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र को बुलाकर उनका पक्ष भी सुने। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त ज्यादातर लोगों की नजर मीटर पर होती है, लेकिन इस मीटर के पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। ये कहानी है क्रूड ऑयल की, सरकार के टैक्स की और उन सरकारी कंपनियों की जो देश तक ईंधन पहुंचाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और क्रूड सस्ता होने से इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा तो फिलहाल ऑयल कंपनियों को मिलता दिख रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है कि पेट्रोल और डीजल बेचने पर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन फिर से जंग से पहले वाले स्तर से ऊपर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के दौरान ग्लोबल आयात कीमतों में उछाल आया था। उस वक्त भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी बढ़ाई नहीं गई जितनी लागत बढ़ी थी। इसका असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा, लेकिन हालात बदलते ही तस्वीर भी बदलने लगी है। तेल महंगा होने पर कंपनियों का मार्जिन दबाव में आया था, लेकिन क्रूड सस्ता होने से फ्यूल बिजनेस में सुधार दिखने लगा है। जेपी मॉर्गन के अनुसार बीपीसीएल और आईओसी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं एचपीसीएल के मार्जिन भी पुराने लेवल पर लौटने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस का असर झेलना पड़ सकता है। हालांकि दूसरी तिमाही से कमाई में सुधार के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऑयल कंपनियों के लिए राहत की दूसरी वजह सरकार की टैक्स पॉलिसी है। सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा कंपनियों के पास रहा था। हालांकि इससे सरकार को सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यही बात आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल भी बन सकती है। अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं, तो सरकार दोबारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसे हालात में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव लौट सकता है। एक और चुनौती एलपीजी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कंपनियां अभी भी रसोई गैस पर नुकसान उठा रही हैं, लेकिन अगर तेल की कीमतों में नरमी जारी रही तो ये दबाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है। कुल मिलाकर क्रूड ऑयल में आई नरमी ने सरकारी ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन आगे की कहानी दो चीजें तय करेंगी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं। दूसरी, सरकार ईंधन पर टैक्स को लेकर क्या फैसला लेती है। इन दोनों का ही असर कंपनियों की कमाई से लेकर आम आदमी की जेब तक दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
1: हल्ला बोल में आज मंदिर में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आप चर्चा देख रहे थे। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए साथ तक मारिया के साथ।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: शकील, शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घमासान, कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर वार, कहा मुंह में राम बगल में छुरी, दर्शन करने जा रहे नेता हाउस अरेस्ट। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में खिच, सांसद रुचि वर्मा से तनाव की चर्चा के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान, रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर गिरा पेड़, एक बच्चे की मौत, 5 अस्पताल में भर्ती, 12 का किया गया रेस्क्यू। शो की शुरुआत अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर से करते हैं। अयोध्या में चढ़ावे की चोरी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा खलबली मचा देने वाला है। अब ये पता चला है कि चढ़ावे की चोरी की भनक तो पहले ही लग गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने उस पर मिट्टी डाल दी और चढ़ावा चोरों को लूट का मौका दे दिया।
1: अब ये किसी से छिपा नहीं है कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही इससे खिलवाड़ किया। खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप देखता रहा। कैसे, इसे समझने की कोशिश कीजिए। SBI ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। SBI की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। सवाल है कि ट्रस्ट के पदों पर बैठे वो कौन लोग थे जिन्होंने बैंक को शक के दायरे में आने वाले चेहरों को हटाने से रोका।
2: 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी।
1: पूरा फोकस अब चोरी के पैसे के लेन देन को खंगालने पर है। खबर है कि पुलिस ने 7 बैंकों से आरोपियों और ट्रस्ट के 5 साल के रिकॉर्ड मांगे हैं। विस्तृत अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, KYC डॉक्यूमेंट्स, जमा रिकॉर्ड और दूसरी बैंकिंग जानकारी मांगी गई है। एक दिन पहले ही चंपत राय से 3 घंटे की पूछताछ हुई है। अब सवाल ये है कि चढ़ावे की चोरी ट्रस्ट की नजर के सामने से कैसे हो रही थी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर यूपी की सियासत उबाल मार रही है। आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, मगर वो दर्शन करते इसके पहले ही उन्हें गेस्ट हाउस में नजर बंद कर दिया गया। अब इस पर जोरदार हंगामा बरपा है।
1: अयोध्या में कांग्रेस के नेताओं का ये विरोध प्रदर्शन है। ये विरोध है इस बात का कि यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए, मगर उन्हें गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया गया।
3: ये मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर हम ये दरवाजा, सामने ये दरवाजा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने।
1: अब अजय राय आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
4: इन चोरों को, जो चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, जो भगवान राम का पैसा खा गए, माँ के आंचल का पैसा खा गए, जो माँ अपने आंचल में पैसा बांधकर पल्लू में जाकर चढ़ाती है उसका पैसा खा गए, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है।
1: कांग्रेस चढ़ावे की इस चोरी को सीधे पीएम मोदी और सीएम योगी से जोड़ रही है।
5: अयोध्या में जो हुआ है वो असल में चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी नहीं है, वो हिंदुओं की आस्था पर इतिहास में सबसे बड़ा हमला है और वो करने का काम हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार नरेंद्र मोदी और बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने किया।
1: विपक्ष बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। अब शिवसेना यूबीटी की तरफ से पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।
6: आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं इस पूरे प्रकरण की? जब हमारे देश में कोई घटना घटती है, कहीं कुछ बड़ा होता है, तो वहाँ सीबीआई पहुँचती है।
1: उद्धव की सेना सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में धर्म का एंगल निकाल लाए।
7: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया, तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। केस क्लोज्ड।
1: वैसे ही अपनी राजनीति को रंग दे रहे हैं और योगी अपनी। अब योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है।
8: राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं।
1: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी एक सियासी मुद्दा है और जाहिर तौर पर यह बीजेपी को डेंट करने वाला है। मौसमी सिंह, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट की खबर पर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने कांग्रेस नेता और यूपी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से खास बातचीत की।
9: यहाँ ब्रिजेश पाठक कह रहे हैं कि जो हाउस अरेस्ट किया है सही किया है, ये लोग सनातन विरोधी हैं, ये तुम राम को भी नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी और अब राजनीति करने चली आई है, तो गलत कहा कि सही?
10: ये एक्चुअली उनकी बौखलाहट बोल रही है। योगी जी को और उनके ये डिप्टी सीएम जो हैं, उनको सत्ता जाने का डर सता रहा है। चूंकि अगर कोई बी टीम उनकी आती है, उनको तो सह सम्मान पुलिस एक दूल्हे की तरह ले जाके मंदिर में दर्शन करवाती है। और अगर कांग्रेस के 9 प्रतिनिधिमंडल गया, जिसमें सांसद हैं, उनको विधायक है, उनको आपने रोक लिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, ये आपका डर दिखाता है। और दूसरी बात, ये धर्म की ठेकेदारी आपकी नहीं है, धर्म आस्था की चीज है, राजनीति करने की चीज नहीं। आप केवल और केवल धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन अब आपकी पोल खुल गई है, आप लोगों की आस्था पे आपने कत्ल किया है, आप चंदा चोर लोग हैं और आप तो विधायक, सांसद, पार्टी सब कुछ चुराते हैं, ठीक है? अब ये आपकी ठेकेदारी नहीं है, ठीक है? आपने हाउस अरेस्ट किया, इससे आपका डर नजर आता है और आपकी सत्ता जरूर जाएगी। हम आ रहे हैं, कल ही आ रहे हैं और कल से अब उत्तर प्रदेश विजय का सिलसिला चालू है और आप तैयारी कीजिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
0: अब खबर शामली से, जहां आयुष मलिक की घर वापसी हुई है। आयुष मलिक मोहम्मद अली बन चुका था, साजिश के तहत उसका धर्मांतरण कराया गया था। पहले कलमा पढ़ने वाला आयुष मलिक अब फिर से पूजा पाठ करने लगा है, मगर इस धर्मांतरण के पीछे की साजिश बहुत गहरी थी।
1: एक चेहरे, दो पहचान। शामली में आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने इस शख्स की अब घर वापसी हो चुकी है।
11: परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूं, तो आप मुझे माफ करना।
12: मेरा बच्चे का घर वापसी के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार अभिनंदन करता हूं।
1: करोड़पति परिवार के इकलौते बेटे आयुष जब धर्मांतरण गैंग के चंगुल में फंसा तो पूरा परिवार परेशान हो गया, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की, जिसमें जिम ट्रेनर पर पैसों के चक्कर में आयुष को गुमराह करने का आरोप लगाया। जांच में पुलिस को आयुष के घर से 2 बड़े चाकू मिले, वहीं एक डायरी मिली जिसमें लिखा था आई एम ऑन मिशन।
13: इस मामले में एक मौलवी की तलाश शामली पुलिस को है और साथ ही साथ जांच में खुलासा भी हुआ है कि जब आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म कबूला था, उसके ठीक बाद उसने एक मेल आईडी बनाई थी और उसका पासवर्ड 2047 रखा था। आपको बता दें कि बीते दिनों जब पीएफआई के ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर रेड हुई थी, यहां तक कि एनआईए ने भी रेड की थी, तो एक दस्तावेज पीएफआई का बरामद हुआ था। उस दस्तावेज का नाम 2047 था। दरअसल पीएफआई 2047 में भारत को इस्लामिक राज बनाना चाहती थी।
1: पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाने के पीछे बड़ी साजिश थी, जिसे लेकर अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: अब बात दिल्ली से आई एक हैरान करने वाली खबर की, जहां एक पत्नी ने अपने पति से ही 50 लाख की उगाही की साजिश रची।
14: अपनी पत्नी सपना का हाथ पकड़कर नाच रहे कारोबारी सचिन जैन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए चुकानी पड़ेगी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाले कारोबारी सचिन जैन को गैंगस्टर का व्हाट्सएप कॉल आया था। विदेशी नंबर से आए इस कॉल में 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। फोन में धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं मिले तो उन्हें उनकी माँ को और बेटे को गोली मार दी जाएगी। गैंगस्टर के गुर्गे ने सचिन जैन को उनके घर और दुकान की कई तस्वीरें भी भेजी। धमकियों से डरे सचिन ने 18 जून को मामले में FIR दर्ज की, लेकिन जांच में जब खुलासे हुए तो हर कोई हैरान था।
15: और स्पेशल सेल ने जांच शुरू की। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर सोनीपत से रजत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रजत ने बताया कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि व्यापारी के पत्नी सपना ने ही एक्सटॉर्शन करने के लिए अपने पति का नंबर दिया था। बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सारी जानकारी दी थी ताकि डरा करके पैसा वसूला जा सके।
14: इस साजिश में सचिन की पत्नी सपना के साथ साली भी शामिल थी, जो लगातार सपना के जरिए गैंगस्टर के संपर्क में थी।
16: वो रंगदारी वाली बात करता है, पैसों की डिमांड करता है।
15: क्यों, क्या बोलता, क्या मतलब, कैसे मांग?
16: मतलब बोलना, मतलब मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में बता के कि बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उनका नाम लेकर के मुझे धमकाया जाता है, डराया जाता है और मुझसे 50 लाख रुपए डिमांड करता है और एक हफ्ते का मुझे टाइम दिया जाता है, नहीं तो गोली मारने की धमकी देता है।
14: सचिन और सपना की शादी 2007 में हुई थी, तब से दोनों में घरेलू विवाद चल रहा था, लेकिन ये विवाद ऐसे मोड़ पर आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात देश के नए आर्मी चीफ की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो गए, जिसके बाद अब जनरल धीरज सेठ भारत के नए आर्मी चीफ बन गए हैं।
17: जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो गए, जिनकी जगह जनरल धीरज सेठ ने ली है, जो भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। पूर्ववर्ती जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कार्यकाल में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए और वो सीज फायर की मांग करने पर मजबूर हुआ।
18: मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूँ। वे एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेतृत्व करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प के साथ और भी बुलंदियों को छुएगी।
17: जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला के पूर्व छात्र रहे हैं। दिसंबर 1986 में उन्हें आर्म कोर में कमीशन मिला था। जनरल धीरज कुमार सेठ के लिए सबसे खास बात यह है कि करीब 3 दशकों में वे आर्म कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। जनरल धीरज सेठ ने जम्मू कश्मीर में उग्रवाद विरोधी बल आर्म रेजिमेंट स्किनर्स हॉर्स की अगुवाई की। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर उन्होंने एक स्ट्राइक कोर के अलावा वे साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जनरल सेठ को जब लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोशन मिला तो उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर की भी जिम्मेदारी संभाली।
19: An absolute bold and resolute military action carried out by the Indian Armed Forces, defined truly by precision and executed with top speed. Forces acting in absolute synergy and jointness to achieve laid down mandates and objectives.
17: अभी तक आर्मी के वाइस चीफ रहे जनरल सेठ 31 अगस्त 2028 तक इंडियन आर्मी चीफ रहेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: जून का महीना खत्म होने को है और जुलाई से ठीक पहले देश में मौसम को दोहरा असर नजर आ रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों समेत पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से आफत है, वहीं उत्तर भारत में बारिश लगातार देर से हो रही है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है।
20: ये तस्वीरें 4 राज्यों की हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश आफत बन गई है, वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर से भी मौसम की मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कहीं भूस्खलन ने रास्ते तबाह कर दिए हैं तो कहीं जल प्रलय घरों में तबाही मचा रही है। उधर उत्तर भारत के मैदानी इलाके पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में करीब 40% बारिश कम हुई है। ये कमी मध्य भारत में 60% से अधिक रही, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। साथ ही बारिश में देरी लगातार चिंता बढ़ा रही है।
21: बारिश का मौसम नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है आगे 2-4 महीनों में हमें।
20: बीते 100 सालों में यानी 1927 से 2026 के बीच में केवल दो बार ही देश में ऐसा मौका आया जब जून के महीने में इतनी कम बारिश हुई। 2009 में जून के महीने में 87.5 मिलीमीटर और 2014 में 92.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जल्दी ही दिल्ली एनसीआर में मानसून वाली बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
2: जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले दो दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है।
20: आईएमडी के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम के बदलाव के साथ राहत का भी भरोसा है। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 3 दिन पहले आज बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पूजा की। इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। कुल 57 दिनों की यात्रा चलेगी।

0: ये भक्ति में सराबोर उमंगों का उत्सव है। ये उस अदृश्य शक्ति का असर है जो जन सैलाब की मुश्किलों से पार पाने और अपने बर्फानी स्वरूप के दर्शन के अवसर दे रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में हिलोरे भर रही हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की गई, यात्रा की सकुशलता की कामना की गई और फिर आरती हुई। इसी पूजा के साथ हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की विधिवत शुरुआत की जाती है। तस्वीरों के जरिए जिसने भी बाबा बर्फानी के दर्शन किए वो निहाल हो गया। 5 फीट से भी अधिक ऊंचाई के बाबा बर्फानी फिलहाल अमरनाथ गुफा में विराजमान हैं।
1: अभी तीसरी बार जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से, और पिछले 2 बार लगातार होके आए हैं हम। इस बार भी हम भोलेनाथ की कृपा से आज पहले जत्थे के साथ जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
2: सब व्यवस्था अच्छे से हो रहा है, पहले जत्थे में दर्शन होगा बाबा की कृपा से। जय हो।
0: इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया।
3: धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की।
0: जम्मू में हजारों भक्तों के आने से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। जहां नजर डालो वहीं शिव भक्तों का रेला नजर आ रहा है। अरुण शिव हरे, अनंतनाग आज तक।
4: अब बात बाजार की। घरेलू शेयर बाजार क्यों गिरावट के साथ बंद हुआ, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर हुआ और क्या रहा सराफा बाजार का रुख, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 250 अंक कमजोर होकर 76,479 और निफ्टी 81 अंक टूटकर 23,866 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट प्रॉफिट बुकिंग और वैश्विक बाजारों के नकारात्मक संकेतों के चलते देखने को मिली। शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए पर भी दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे कमजोर होकर 94.65 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। रुपए में कमजोरी मुख्य रूप से डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी निकासी के चलते आई। वहीं सराफा बाजार में आज मिश्रित रुख रहा। सोना 1,039 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,40,382 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 3,690 रुपए बढ़कर 2,23,670 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोने में गिरावट और चांदी में तेजी वैश्विक कीमतों के मिश्रित रुख और घरेलू मांग के अंतर के कारण देखने को मिली।
4: इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान के मंत्री की खीज अब उनके बयानों में नजर आ रही है।
5: पहलगाम में आतंकी साजिश पर भारत ने ऐसी चोट की कि पाकिस्तान को पानी का मोहताज बना दिया। पाकिस्तान के नेताओं की बौखलाहट अब गीदड़ भभकियों में नजर आ रही है।
6: ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे।
5: पाकिस्तान के मंत्री को कोई बताए कि पिछले 1.5 साल से पानी तो वैसे ही बंद है। भारत ने जब से कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है, तब से इस्लामाबाद के हुक्मरानों के हलक सूखे हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो सीधे युद्ध की धमकी पर उतर आए थे।
7: कथित तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का
8: पूरा बंदोबस्त होगा इस पर।
7: बिल्कुल
5: न्यू इंडिया का साफ संदेश है, अब खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, चाहे पाकिस्तान कितनी ही गिदड़ भक्कियां क्यों न दे। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात फीफा वर्ल्ड कप की, जहां कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। जर्मनी और नीदरलैंड जहां बाहर हो गए हैं, और वहीं ब्राजील किसी तरह अगले राउंड में जाने में कामयाब रहा है।
0: फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर, पराग्वे से पिटकर 4 बार की चैंपियन जर्मनी बाहर। दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले टाई ब्रेकर में पराग्वे ने इतिहास रच दिया और जर्मनी को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। विजेता का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जहां दांव पर दो गोलकीपरों की साथ थी। ऑरलैंडो का पूर्वानुमान सही निकला और ड्राइव मारकर उन्होंने हाफर ट्रज और वोलेट मेट की पेनल्टी रोककर जर्मनी को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि देव ने फैबियन की किक रोककर जर्मनी की उम्मीदें जिंदा रखी। फिर पासा पलटा जोनाथन के शॉट से, जो क्रॉस बार के ऊपर निकल गया। आखिर में पराग्वे के जोश कैनाले ने बिना कोई गलती किए विजयी पेनल्टी दागी और अपनी टीम को प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट दिला दिया। वैसे निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थीं। वैसे एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी के जोनाथन ने गोल दाग दिया, लेकिन रिव्यू में पता चला कि गोल करने के दौरान पराग्वे के गोलकीपर को फाउल किया गया था, लिहाजा गोल खारिज कर दिया गया। वर्ल्ड कप के इतिहास में जर्मनी को पहली बार टाई ब्रेकर में हार का सामना करना पड़ा है। उनके फैंस के लिए ये रोने वाली रात थी, जबकि पराग्वे के खिलाड़ी और फैंस अपने फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार रात का जश्न मना रहे थे। आज तक ब्यूरो।
4: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
13: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
14: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
13: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिजटेक पर।
4: हमने तब भी सवाल किया था,
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं।
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।

ये भक्ति में सराबोर उमंगों का उत्सव है। ये उस अदृश्य शक्ति का असर है जो जन सैलाब को मुश्किलों से पार पाने और अपने बर्फानी स्वरूप के दर्शन के अवसर दे रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में हिलोरे भर रही हैं। बम बम भोले और महादेव के जयकारों से सड़कों से लेकर पहाड़ तक गूंज रहे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरी है तैयारी, अब बाबा बर्फानी के दर्शन की बारी। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक के मोर्चे पर मुस्तैद जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की गई, यात्रा की सकुशलता की कामना की गई और फिर आरती हुई। इसी पूजा के साथ हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की विधिवत शुरुआत की जाती है। इस दौरान बाबा बर्फानी का जो स्वरूप देखने को मिला वो भक्तों को निहाल कर देने वाला था। तस्वीरों के जरिए जिसने भी बाबा बर्फानी के दर्शन किए वो निहाल हो गया। 5 फीट से भी अधिक ऊंचाई के बाबा बर्फानी फिलहाल अमरनाथ गुफा में विराजमान हैं। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालटाल यात्री कैंप पहुंचकर पुलिस प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। हर मोर्चे को दुरुस्त करने और किसी भी तरह की ढील न देने के निर्देश दिए गए हैं। इधर बालटाल में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बालटाल इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है जिसे यात्रा के बेस कैंप के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हर बार की तरह एक पूरी टेंट सिटी को बसा दिया गया है और यात्रियों के रहने और खाने की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए हर बार की तरह जम्मू में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अलग अलग राज्यों से आए शिव भक्तों का यहाँ सैलाब उमड़ रहा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने उत्साह के साथ देश भर से आए श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर जिला प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले जत्थे को जम्मू बेस कैंप से 2 जुलाई को रवाना किया जाएगा। यात्रा 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से शुरू की जाएगी। जम्मू में हजारों भक्तों के आने से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। जहां नजर डालो वहीं शिव भक्तों का रेला नजर आ रहा है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले मां तवी की भव्य आरती का आयोजन भी किया गया। तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार सूर्य पुत्री मां तवी की संध्या आरती का उद्देश्य बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना और जम्मू की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और दीपों की रोशनी के बीच साधु संतों और पुरोहितों ने विधि विधान से मां तवी की आरती संपन्न करवाई। महादेव के धाम की ओर जाने वाले शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। घंटों तक लाइन में लगना और कई किलोमीटर पैदल चलना अब एक उत्सव बन गया है। भक्तों के कष्ट को कम करने और उन्हें सुविधाएं देने के लिए प्रशासन और समाज सेवियों ने भी पूरे यात्रा मार्ग पर कमर कस ली है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी की मैराथन मीटिंग, सभी विभागों के सचिवों के साथ 3 घंटे बैठक जारी। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घमासान, कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर वार, कहा मुंह में राम बगल में छुरी, दर्शन करने जा रहे नेता हाउस अरेस्ट। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच, सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चा के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान, रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का लंबा अनुभव। दिल्ली में सोने की तस्करी का भंडाफोड़, करीब 21 करोड़ का सोना जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। विशेष में आज बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बढ़ते दायरे की। भले ही अभी तक एफआईआर से राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को बाहर रखा गया है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उन्हें देखकर ये लग रहा है कि चंपत राय का बचना अब मुश्किल होगा। अभी तक तो ये लग रहा था कि छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी होती रही और चंपत राय अनजान रहे। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चंपत राय
1: तो मजे में है, चंपा का भी।
2: क्या चंपत राय की निगरानी में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा था? क्या चंपत राय का राजदार चढ़ावा चोरी करते रहे और वो खामोश रहे? चंपत राय ने अपने जानने वालों को मंदिर के रोजाना के कामकाज में क्यों रखा? SBI ने चढ़ावा गिनती प्रोटोकॉल में लापरवाही किसके कहने पर बरती थी? चढ़ावा चोरी के केस में SIT की रिपोर्ट के बाद FIR भी हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गई। गिरफ्तार आरोपियों के घरों पर पुलिस का छापा भी पड़ गया, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि क्या अभी भी चढ़ावा चोरी के केस में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, ये साफ हो रहा है कि चाहे चंपत राय और उनको बचाने वाले जो भी सफाई दें, लेकिन ये बात गले नहीं उतरती कि महीनों तक मंदिर का चढ़ावा चोरी होता रहा और उन्हें भनक तक नहीं लगी। ये बात समझ में नहीं आती कि चढ़ावे की गिनती करने वाले छोटे कर्मचारी लाखों का वारा न्यारा करते रहे और उनकी निगरानी करने वाले अनजान बने रहे। टिन्नू यादव जैसे लोग करोड़ों की संपत्ति बनाते रहे और चंपत राय ने अपनी आंखें मूंद के रखी। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। कल पुलिस ने भी चंपत राय से 3 घंटे की मैराथन पूछताछ की है, उनसे प्रशासनिक निर्णय और चढ़ावा प्रबंधन पर सीधे सवाल किए, उनसे कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निपटारे के बारे में सवाल किए गए और खबर है कि चंपत राय संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
3: जांच का दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी, वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
2: सूत्र बता रहे हैं कि जब पुलिस ने चंपत राय से चढ़ावा चोरी पर सवाल किया तो उन्होंने साफ किया कि उनकी इस चोरी में कोई भूमिका नहीं है। ये भी कहा कि जैसे ही चोरी की जानकारी मिली वो तुरंत सक्रिय हो गए, संदिग्धों को पकड़ा और FIR भी कराई। अब चंपत राय भले ही इस केस में FIR का श्रेय ले रहे हो, लेकिन सच ये है कि चंपत राय ने FIR दर्ज नहीं कराई थी। जैसे ही उन्हें चोरी के बारे में पता चला तो मंदिर ट्रस्ट की टीम ने आरोपियों के घर पर छापा मारा, पैसों की बरामदगी भी की, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। ये 5 जून का वीडियो है, यानी SIT बनने से भी पहले। मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जानकारी ट्रस्ट को पहले से ही थी। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर पहुंचे थे। छापेमारी के दौरान अविनाश शुक्ला के ठिकाने से नकदी भी बरामद हुई थी, लेकिन तब भी ट्रस्ट ने पुलिस को FIR के लिए कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी। चंपत राय खुद ही ये सारे मामले हैंडल कर रहे थे। जब ये पता चल गया कि चोरी हुई है, बरामदगी हो गई है, तब भी FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? क्या चंपत राय चढ़ावा चोरी के इस केस को दबाना चाहते थे? क्योंकि पूरा मामला इसके बाद खुला। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की एंट्री इसके बाद, राज्य सरकार ने SIT इसके बाद बनाई। अब चंपत राय अपनी जो भी सफाई दे, लेकिन उनकी सफाई हजम नहीं हो रही है।
4: प्रबंधन को अगर शिकायत मिलती है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी SIT या FIR करने से पहले ये तो उसकी स्वाभाविक जिम्मेवारी है कि वो इस मामले की प्राथमिक जांच तो कर ले कि ये शिकायत ठीक है कि नहीं है। उनका कर्तव्य था। जानकारी को ऐसे कैसे आगे भेजना डाकिये की तरह नहीं होता है। उसमें वो गए, प्रयत्न किया, लोगों ने अपने अपराध स्वीकार किए, लिख कर दिए, पैसा भी रिकवर हुआ। तो जब ये जानकारी पुख्ता हो गई तब उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा ट्रस्ट की ओर से कि SIT बना लीजिए, मामला गंभीर है।
2: इस चढ़ावा चोरी का दूसरा प्रमुख किरदार है टिन्नू यादव, चंपत राय का खास ड्राइवर था और फिर चंपत राय ने उसे मंदिर का कामकाज सौंपा और धीरे धीरे वो मंदिर में बहुत खास हो गया। चंपत राय का हाथ उसके ऊपर था। पुलिस ने जब अपनी पूछताछ में चंपत राय से टिन्नू यादव पर सवाल किया तो चंपत राय ने जवाब दिया कि टिन्नू यादव बहुत पहले से उनसे जुड़ा हुआ था, उसने गलत किया, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा कि रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। चंपत राय ने कहा, जरूरतमंदों को काम दिया गया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही। चंपत राय अब जो भी जवाब दें, शक और गहराता जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा धर्म संकट है कि करोड़ों राम भक्तों से विश्वासघात का जवाब देना होगा।
5: भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। धर्म विरोधी ताकतें यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि सभी मंदिर और संतों को छिन्न खड़े थे। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए।
6: पत्राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए, चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है। अनिल मिश्रा कहिया के साधु रहा, क्यों करा के चोर कहते हो, साधु कभी तो रहा नहीं।
2: हालांकि चंपत राय का पूरा बचाव हो रहा है, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन चंपत राय का बचाव कर तो रहे हैं, लेकिन क्या उनका ये बचाव राम भक्तों को संतोषजनक उत्तर दे पा रहा है? क्या चंपत राय पर सिर्फ राजनीति के तहत सवाल उठाए जा रहे हैं या इनमें कुछ हकीकत भी है?
4: उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है। मेरे पास में ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी या जांच कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी। पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो समग्र जांच करे। हमारी इच्छा और हिंदू समाज की इच्छा है कि बिना किसी को बचाए पूरी जांच हो।
2: समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
7: मामला सिर्फ ये नहीं है कि ट्रस्ट के भ्रष्ट होने पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि अब तो बैंक के भी उन कर्मचारियों की जांच हो रही है जो मंदिर के चढ़ावे की गिनती में शामिल

0: बचा लिया। सवाल है कि ट्रस्ट के पदों पर बैठे वो कौन लोग थे जिन्होंने बैंक को शक के दायरे में आने वाले चेहरों को हटाने से रोका। चढ़ावा चोरों के वो सरपरस्त कौन कौन थे? आपको बता दें कि ऐसा आरोप विपक्ष पहले ही लगाता रहा है, तो क्या चढ़ावा चोरों को संरक्षण देने के आरोप सही थे?
1: अयोध्या में जो घपला चल रहा था, 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है।
0: चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 शहरों को दबोच लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये तो छोटी मछलियां हैं, बड़े और विशालकाय मगरमच्छों को पकड़ना अभी बाकी है। इन्हें पकड़ने का जिम्मा अब यूपी पुलिस और एसआईटी पर है, जिसका पूरा फोकस अब चोरी के पैसों के लेन देन को खंगालने पर है। खबर है कि पुलिस ने 7 बैंकों से आरोपियों और ट्रस्ट के 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है। विस्तृत अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, KYC डॉक्यूमेंट, जमा रिकॉर्ड और दूसरी बैंकिंग जानकारियां मांगी गई हैं। मकसद ये पता लगाना है कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ और क्या भक्तों के चढ़ावे के पैसे को गलत तरीके से कहीं और भेजा गया या कोई संदिग्ध लेन देन हुआ।
2: विशेष में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
5: Smartless. Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of apple.
3: Marketplace.
6: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
7: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की है, जहां ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा अपने साथ बहा ले गया। अचानक आए सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाके में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। असम में भी लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। टिकारी नदी का जलस्तर आसपास के इलाकों में कहर ढा रहा है। कोराई बाड़ी 4 में 15 से ज्यादा लोग सैलाब के बीच घिर गए। करीब 100 मवेशी बाढ़ की चपेट में हैं। असम के धेमाजी में भी हालात बिगड़े हुए हैं। यहां सिमेन नदी में 4 लोग बह गए। हालांकि 3 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि चौथे की तलाश जारी है। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। जगह जगह फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। सरकार ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में न जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मोहनी नदी उफान पर है। कई बस्तियों और खेतों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश के बाद नाले में आई बाढ़ से सड़कें जलमग्न हो गई। पानी के तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर

0: रास्ता पार करने को मजबूर हैं। पहाड़ी राज्यों में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में यही लगेगा कि कुछ दोस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। ये शानदार म्यूजिक में पूल पार्टी कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और गाने की धुन पर थिरक रहे हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक ये शख्स यहाँ ऊंचाई से सिर के बल पूल में छलांग लगाता है, बाकी के दोस्त इस छलांग पर जश्न मनाते हैं। ये आदमी पानी में सिर के बल कूदा, अब तक इसके दोस्तों को नहीं पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद ये शख्स पानी से बाहर नहीं आया, बल्कि इसका शव उतराने लगा। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवण के वायरी में मालवणी पाहुड़ चार रिसोर्ट की हैं। दरअसल ये पूल 4 फीट गहरा था और ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इस शख्स का सिर पूल के फ्लोर से टकराया और इसकी जान चली गई। मृतक का नाम श्रेणी मिलिंद ताकले है, ये कोल्हापुर का रहने वाला था। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसे बता के नहीं होते। किसे पता था कि चंद मिनट पहले जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे, चंद मिनट में ही एक हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। भरत केसरकर, सिंधुदुर्ग आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: sports all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: Talk sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
8: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
7: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर चुनावी धुरी का केंद्र राम मंदिर ही होगा, क्योंकि चंदा चोरी के आरोपों के बाद सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर से संबंधित कई जिम्मेदार पदों पर संघ के लोगों को जानबूझकर जगह दी गई, और कांग्रेस मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखने पर भी सवाल उठा रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी चंदा चोरी पर मचे बवाल के बीच दल बल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों को इस मामले में एक आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। उधर एफआईआर में नाम नहीं होने के बावजूद पुलिस ने चंपत राय से कई घंटे पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो चंपत राय ने पुलिस से कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कोई हेरफेर ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया, इस पर चंपत राय का जवाब था जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही। जांच में जुटी पुलिस ने 7 बैंकों से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है, ये रिकॉर्ड ट्रस्ट के खाते और आरोपियों के निजी खाते से जुड़े हैं। एसबीआई ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। एसबीआई की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। अयोध्या में एसबीआई की नया घाट ब्रांच भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रांच में 8 में से 7 आरोपियों और मंदिर ट्रस्ट के खाते भी हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने इससे खिलवाड़ किया। खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूंसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप देखता रहा। इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चढ़ावा चोरों को संरक्षण दिया गया, इसीलिए लंबे वक्त तक चंदा चोरी के मामले को दबाया गया। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारिणी की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में उम्मीद है कि ट्रस्ट चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र को बुलाकर उनका पक्ष भी सुने। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
4: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: मीटिंग सभी विभागों के सचिवों के करीब 4 घंटे से बैठक जारी। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घमासान। कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर वार। कहा मुंह में राम बगल में छुरी। दर्शन करने जा रहे नेता हाउस अरेस्ट। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चा के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। दिल्ली में सोने की तस्करी का भंडाफोड़। करीब 21 करोड़ का सोना जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। थाईलैंड से आए कुरियर की जांच में खुलासा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। 4 घंटे बीतने वाले हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय यानी सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। इसी बैठक से मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की आज की खबर जुड़ी हुई है। कल हमने बताया था कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख क्या हो सकती है, प्रधानमंत्री जो नए मंत्री अपने मंत्रिमंडल में लाएंगे उन्हें किस आधार पर चुना जा रहा है। आज आपको मोदी 3.0 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की खबर से खबरदार करने का दूसरा हिस्सा बताते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक बुलाई। इसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए हैं। पीएम का मंत्र इस बैठक में सुशासन और सुधार बताया जा रहा है। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिख सकता है?
1: तारीख 21 मई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात राम मंदिर में चढ़ावा मामले की, जिसे लेकर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से सियासत कर रही है। अखिलेश यादव जहां तंज कसते हुए सच्चे सनातनियों को बीजेपी से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालनेमी वाला पलटवार करके अखिलेश के लिए धर्म संकट बढ़ा रहे हैं।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: TMC के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी NCPI इस वक्त NDA को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। TMC के 20 बागी सांसदों ने NCPI में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर NDA को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके BJP में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
3: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो JDU से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में JDU के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगर मौजूदा सरकार का मंत्रिमंडल अभी देखें तो प्रधानमंत्री, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री यानी कुल 72 भारत सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) के तहत ये नियम लागू होता है। वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सीटें 543 हैं, जिसके अनुसार केंद्र सरकार में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी 9 मंत्री पद अभी खाली हैं। जॉर्ज कुरियन इस्तीफा दे चुके हैं, यानी 10 मंत्री पद साफ साफ खाली हैं। कुछ मंत्री की छुट्टी उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से हो सकती है, ये हमने कल ही आपको बताया। 2 मंत्री यूपी और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुके हैं, तो एक व्यक्ति एक पद वाले फॉर्मूले से हो सकता है कि उनकी सीट भी खाली हो, हालांकि ये कोई निश्चित बात नहीं है। इन सबके बीच अब जवाब इस बात का खोजा जा रहा है कि जो साथी दल पुराने हैं और जो अब बागी समर्थक बनकर आए हैं, इनमें से कितने लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। सवाल बहुत जटिल है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा समय समय पर उठती रही, लेकिन अब उसकी संभावनाएं ज्यादा प्रबल लग रही हैं हिमांशु। लेकिन एक ऐसी सरकार और एक ऐसी सोच की हम बात कर रहे हैं जहां पर एक पूरा टर्म खत्म होने के बाद, यानी मोदी 2.0 से मोदी 3.0 का ट्रांजिशन कई मंत्रियों का ऐसा रहा जो अपने विभाग को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी एक कंटिन्यूटी, उस सोच की कंटिन्यूटी के हिमायती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। ऐसे में हाइलाइट्स क्या हो सकते हैं इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार के?
6: देखिए बिल्कुल श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मोदी 3.0 के 2 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं और ये मानकर चला जाता है कि किसी भी सरकार के अंदर 2 साल के अंदर जो है कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार होता है। और उसी अगर परिपेक्ष में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 21 मई को जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक ली थी जिसमें सभी सचिव शामिल थे और आज फिर से सचिवों की जो है वो बैठक बुलाई है। ये बात सही है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है और सुधार हो, उसके साथ साथ जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, नियमों में थोड़ी सी राहत दी जाए और साथ ही साथ 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर क्या इनोवेटिव आइडियाज हो, ये है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। एकनाथ शिंदे ग्रुप की जो है संख्या वो 13 हो चुकी है, यानी जेडीयू से एक संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी से 7 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको भी ये आस है कि नए मंत्रिमंडल के विस्तार के अंदर जो है उनको जो है मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। टीएमसी के 20 बागी सांसद हैं, उनमें नेता अभी कौन होगा नहीं होगा, सुदीप बंदोपाध्याय होंगे या काकोली घोष दस्तीवार होंगी, ये अभी तय नहीं है। लेकिन वो भी चाहेंगे कि उनमें से एक सांसद जो है वो मंत्रिमंडल के अंदर जो है शपथ ले। अब सवाल ये है कि कितने मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, कितनों को जो है पदोन्नत किया जाएगा, क्योंकि 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो अगले वर्ष है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, उसके बाद जो है अगर आप देखें तो हिमाचल और गुजरात के चुनाव है। 2021 के अंदर जब विस्तार किया गया था तो इन सभी 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो परिपेक्ष में सभी नेताओं को एडजस्ट किया गया था, उनके जातिगत, उनके राजनीतिक और साथ ही साथ सारे सोशल इंजीनियरिंग जो समीकरण है उनको साधने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया।
7: तो अभी सुगबुगाहट तेज है, अब देखना है कि आगे जो जब एक पूरा रूप ये लेगा तो कैसा वो खाका होगा। अभी बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। और अब हम बात करेंगे राम मंदिर में चढ़ावा मामले की, जिसे लेकर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही है।
8: आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय से राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं।
9: चढ़ावा चोरी पर आक्रामक हुए अखिलेश तो योगी ने अयोध्या से लेकर काशी तक पर घेर दिया।
8: अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
9: सवाल है कि बीजेपी की पिच पर खेलकर कहीं अखिलेश यादव गलती तो नहीं कर रहे?
8: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी।
9: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया तो अखिलेश बीजेपी को सबसे आगे घेरते हुए दिखे।
10: देखो वो जा रहे हैं भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई, और अब तो ना इन्हें चंदा मिलने जा रहा है, न दान और न वोट, इसलिए ये घबराए हुए। जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें।
8: ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा।
9: लेकिन शायद अखिलेश यादव भूल गए कि जिस पिच पर वो बीजेपी को घेरने उतरे वो हमेशा से उसकी ताकत रही। अब राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल है कि राम के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने वाले अखिलेश अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर क्या करेंगे? क्या जिस तरह वो राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य के समय चुप रहे वैसा ही अब मथुरा के मुद्दे पर करेंगे?
8: अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।
9: सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर बहुसंख्यक वर्ग को लुभाने की अखिलेश की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से लगातार मुहिम यही चलाई जा रही है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें डिंपल यादव परिवार समेत काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। अखिलेश का परिवार गंगा घाट पर भी दिखा, जहां उनकी बेटियां टीना और अदिति ने पूरे विधि विधान से मां गंगा की आरती और पूजन किया। इस दौरान मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज साथ रही। समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस नेता भी अयोध्या के बहाने बहुसंख्यक हिंदू वोट पर डोरे डाल रहे हैं। इसी कोशिश के तहत यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय चंदा चोरी पर मचे विवाद के बीच दलबल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया।
11: ये मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूं और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर हम ये दरवाजा सामने ये दरवाजा है इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने।
9: उधर चढ़ावा चोरी विवाद के केंद्र में आए चंपत राय से कई घंटे सवाल जवाब हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने पुलिस को बताया कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए, संदिग्धों को पकड़ा, FIR करवाई। चंपत राय ने दावा है कि कहा है कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया, इस पर चंपत राय का जवाब था, जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही है।
12: जांच का दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी, वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
9: चंपत राय भले खुद को पाक साफ बताएं, लेकिन इस मामले में SBI की तरफ से जो कुछ बताया गया वो उनके खिलाफ शक को और मजबूत करता है। जांच में ये पता चला कि SBI ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन फिर भी ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। यही नहीं, ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत तक नहीं दी। SBI की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन दावा है कि ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया।
13: राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा।
9: चंदा चोरी मामले से भक्तों को गहरा धक्का लगा है। ट्रस्ट चलाने वाले लोगों की करीबी VHP और संघ से होने से विपक्ष को लगता है कि इससे BJP के नाराज वोट के एक हिस्से को अपने पाले में खींचा जा सकता है। इसी के चलते अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी मामले में BJP और योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद अखिलेश योगी के सियासी जाल में क्या फंस सकते हैं?
8: उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई, उनकी चिढ़ तो ये है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे।
7: अखिलेश यादव को हो सकता है लगे कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद से हिंदू वोट बंट सकता है, लेकिन इसे पुख्ता नहीं कहा जा सकता। पर सवाल सियासत में यह जरूर चल रहा है कि हिंदू वोट की चाहत में कहीं समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट न बट जाए, जिस पर योगी आदित्यनाथ की चुनौती एक तरफ अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल सकती है तो दूसरी तरफ ओवैसी के बयान है।
9: मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाली समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस वक्त एक चक्रव्यूह में है। चक्रव्यूह योगी और ओवैसी का है। योगी आदित्यनाथ चैलेंज देते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आस्था के अपमान की बात करते अखिलेश यादव जरा कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले,
8: तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए।
9: दूसरी तरफ ओवैसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मुस्लिम एंगल लगाकर।
14: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है।
9: इस तरह अखिलेश यादव को धर्म संकट में योगी और ओवैसी डाल देते।
15: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको, मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या क्या मैं क्या बोल क्या बोल क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, इतना इस सब तमाशे हो रहे हैं।
9: ये बात अखिलेश यादव नहीं कह सकते क्योंकि इतना कहते ही BJP को चरखा दांव चलने का मौका मिल जाएगा। बात इतनी भर नहीं,
1: इसी सियासी माहौल में बिजनौर में रैली करके ओवैसी ये बोलकर भी घेरते हैं कि अब मुस्लिम केवल एक दल के लिए वोटर बनकर नहीं रहेगा।
14: अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहने हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी, अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरों दीवार को हिला के रखना चाहिए था, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए।
1: समाजवादी पार्टी तुरंत ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती आई है, लेकिन तब ओवैसी यूपी की सभा में गठबंधन वाला पासा भी फेंकते हैं।
14: हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तसदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने, मगर याद रखिए अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ
7: यूपी सियासी वार पलटवार के अलावा आज एक घर वापसी की वजह से भी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के शामली का जो नौजवान कुछ दिन पहले मुसलमान बन गया था, वो एक बार फिर हिंदू धर्म में लौट आया है। खबरदार में ही हमने पहले कल आपको दिखाया था कि आयुष मलिक से मोहम्मद अली बना ये नौजवान किस तरह हिंदू धर्म में लौट आया है, परिवार के साथ पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन पुलिस को यह मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं लग रहा। जांच के दौरान पुलिस को आयुष मलिक की निजी डायरी मिली जिसमें उसने एक पन्ने पर लिख रखा है, आई एम ऑन अ मिशन। अब सवाल यह है कि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली कौन से मिशन पर था, उसका नाम पीएफआई के साथ किस बात के आधार पर लिया जा रहा है।
1: पहले बकरीद पर नमाज,
16: इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया,
17: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अब सनातन धर्म जिंदाबाद। लड़की के लिए मुस्लिम बनने वाला आयुष मलिक पहले मोहम्मद अली बना और अब एक बार फिर से वो हिंदू धर्म में लौट आए। उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले मलिक परिवार का इकलौता बेटा आयुष। आयुष को देश ने मोहम्मद अली बनते हुए देखा, ये सुनते हुए भी देखा कि उसने एक मुस्लिम लड़की चांदनी से शादी कर ली।
17: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, तो मैं प्रभावित उन सब से हूँ। तो ये सिर्फ एक तरीका कि उन्होंने बयान बताया कि समझाया, कुरान शरीफ को समझा दिया, वो बात बता दी दीन की, हदीस की।
18: चांदनी कुरैशी से आप कैसे मिले और किस तरह से नजदीकियां हुई, सुना शादी भी कर लिया आपने?
17: अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले निकाह हुआ था सर, 4 साल पहले निकाह हुआ था।
1: लेकिन मोहम्मद अली एक बार फिर दोबारा आयुष मलिक बन जाता है। इसी साल बकरीद पर आयुष मलिक मोहम्मद अली को शामली के जाने माने डॉक्टर के साथ ईदगाह में नमाज पढ़ता देखकर पूरे शहर में हंगामा मच गया। लेकिन मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने वाला मोहम्मद अली अब फिर से आयुष मलिक बनकर घर वापसी कर चुका है, परिवार के साथ पूजा पाठ करके अपने हिंदू होने का सबूत देने लगा है।
17: मैं इस्लाम में चला गया था, मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
1: आयुष मलिक आज भले ही अपने घर में परिवार के साथ पूजा पाठ में लीन दिख रहा हो, मंत्रोच्चारण कर रहा हो, लेकिन कुछ दिन पहले मामला पूरी तरह से उल्टा था। आयुष का पूरा परिवार इकलौते बेटे के धर्म बदल लेने से दिन रात चिंता में घुला जा रहा था, लेकिन अब उसकी घर वापसी से परिवार ने भी राहत की सांस ली है।
16: मैं ईश्वर की विशेष अनुकंपा के लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पर कृपा दृष्टि की। सामने मेरे समक्ष हनुमान जी हैं, मैं इनके सामने नमन करता हूँ कि मेरा परिवार बचा दिया और हमारी जिंदगी बचा दी।
18: बेटा कैसा है अभी आपका, क्या कर रहा है?
16: बिल्कुल स्वस्थ है।
18: पूजा पाठ करा, मस्जिद तो नहीं जाता?
16: नहीं नहीं, कहीं नहीं पूजा पाठ किया। आपके सामने फोटो है, वो सत्य है बिल्कुल, जो है वो सब सत्य है। मेरे साथ में बैठ कर पूजा, मेरे सामने बैठ कर पूजा कर रहा वो।
1: शामली के रहने वाले देवराज मलिक अपने बेटे आयुष के धर्मांतरण की बात से परेशान थे। उन्होंने कई बार अपने बेटे के मजहब को बदलने का विरोध किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके लिए उन्होंने शामली के एक मुस्लिम परिवार पर बेटे को फंसाने का आरोप लगाया।
18: जो आयुष मलिक के पिता हैं, करोड़पति व्यवसायी हैं शामली के, उन्होंने आरोप लगाया था इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जिम ट्रेनर चांदनी कुरैसी, उसने एक प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन कराया, दिल्ली में ले जाकर उसके बाद निकाह कराया और उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी है वो हड़पने की कोशिश थी। आयुष मलिक लंबे वक्त से इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था, वो मस्जिदों में जाने लगा था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता चल नहीं पा रहा था। लेकिन जब ईद के दौरान वो ईदगाह गया, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, उसके बाद उसके पिता को पता चला, उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई और तब इस मामले में शामली पुलिस ने खुलासा किया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा धर्म परिवर्तन कराया गया है। उसको दिल्ली लेकर गई थी चांदनी कुरैसी।
1: आयुष का शामली में बड़ा मेडिकल स्टोर है। इसके अलावा मलिक परिवार की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई जाती है। आयुष इस तमाम संपत्ति का इकलौता वारिस है, लेकिन परिवार ने चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर जायदाद पर कब्जा करने के लिए आयुष को अपने प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगाया।
16: और ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। चूंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का फर्जी निकाह नम्मा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में, जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ है जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: लेकिन मलिक परिवार की दिक्कत ये थी कि उनके सारे आरोपों को आयुष सिरे से नकारता रहा। इसके लिए परिवार ने उसके धर्मांतरण को जिम्मेदार ठहराया, जिसके सामने आयुष को समझाने की हर कोशिश नाकाम रहती रही।
18: पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
17: किसकी?
18: किसी की थी।
17: किसकी थी सर?
18: चांदनी कुरैशी, उसके परिवार की।
17: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने, आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
1: लेकिन अब आयुष बदल गए, अपने धर्म में वापसी के बाद उसने दाढ़ी हटा ली, नमाज की जगह पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। परिवार के लिए ये दोहरी खुशी, क्योंकि एक तो बेटा वापस आ गया, वहीं चांदनी कुरैशी नाम की लड़की की कथित रूप से प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश वाले आरोप भी हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो गए।
19: मैं समझता हूँ कि जैसा कि वो अब वापस हुआ है, अब उसका चांदनी कुरैशी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई निकाह नहीं रहा, वो उसका ख़त्म हो गया। जिस दिन उसने वापसी मजहब किए तो उसका मसला उस चीज़ से ख़त्म हो गया, मियाँ बीवी का ताल्लुक ही ख़त्म हो गया है। और
1: धर्म परिवर्तन का कानून कहता है कि मजहब बदलने के 60 दिन से पहले जिलाधिकारी को इस बारे में बताना होता है, जो इस दावे की पुष्टि करता है, उसके बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकता है। आयुष की तरफ से किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए कानूनी रूप से उसकी घर वापसी में कोई अड़चन नहीं थी। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
7: आयुष मलिक से जब आज तक ने पहली बार बात की थी तब वो अलग इंसान था, कह रहा था कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपना रहा है। आयुष के मोहम्मद अली बनने में एक पाकिस्तानी धर्मगुरु का भी रोल सामने आया, जिसके YouTube वीडियो देख देख कर उत्तर प्रदेश के शामली में बैठे एक हिंदू नौजवान का ब्रेन वॉश हो गया और वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार हो गया। उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी भी कर ली। मोहम्मद अली अब भले ही दोबारा आयुष मलिक बन गया हो, लेकिन उससे मिली डायरी और ईमेल के पासवर्ड की जानकारी ने पुलिस को नए सिरे से जांच करने को मजबूर कर दिया है।

0: क्या आयुष मलिक को किसी बड़ी साजिश के तहत मुसलमान बनाया गया? क्या हिंदू धर्म में घर वापसी से आयुष मलिक किसी बड़ी साजिश का शिकार होने से बच गया? शामली के कारोबारी आयुष मलिक का पहले मोहम्मद अली बनना और फिर दोबारा आयुष मलिक बनने की कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि मामला क्या एक मिशन का है? सवाल है कि क्या इसका रिश्ता पीएफआई से है? वही पीएफआई जो एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जिस पर सरकार ने बैन लगा रखा है, जिसका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। सवाल है कि क्या आयुष मलिक भी इसी साजिश के तहत मुसलमान बनाया गया? पहली नजर में लगेगा कि आयुष मलिक ने पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया और फिर से वो हिंदू हो गया, लेकिन आयुष मलिक से मोहम्मद अली के बीच क्या इस नौजवान के जरिए कुछ बड़ा करवाने का प्लान था? यही सवाल है। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बन जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी ली और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ है। पहली नजर में लगेगा कि एक सामान्य चाकू है, ऐसे में इतनी बड़ी बात क्या, लेकिन छोटा सा दिख रहा ये चाकू एक डायरी के पन्ने पर लिखे इन चार शब्दों से खतरनाक हो जाता है, आई एम ऑन मिशन। ये पन्ना आयुष के घर से मिली एक डायरी में मिला है। डायरी में लिखा था आई एम ऑन मिशन। अब सवाल है कि आयुष ने ऐसा क्यों लिखा, वो कौन से मिशन पर है, उसने अपने पास चाकू क्यों रखा?
1: आई एम ऑन मिशन, अब ये आई एम ऑन मिशन क्या था ये इसकी तहकीकात कर रही है और इसी तहकीकात के तहत एक मौलवी की तलाश की जा रही है जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है और जब इसकी तहकीकात की जाने लगी तो ये फरार हो गया है और इसकी लोकेशन वो लगातार अंडमान और चेन्नई में मिल रही है, आपको बताऊं, और इसका नाम इरफान उर्फ हाकिम है।
0: शामली के इस धर्मांतरण केस में एक और खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया जिसके मुताबिक आयुष मलिक जब मोहम्मद अली बना उसके बाद उसने एक मेल आईडी बनाई। इस मेल आईडी का पासवर्ड उसने रखा था 2047। 2047 दरअसल पीएफआई का कोड वर्ड है। एनआईए समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के बरामद किए गए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया है। पीएफआई ने 2047 नाम से किताब तक छपवाई थी। पीएफआई ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आयुष मलिक से उसकी मेल आईडी के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने 2047 पासवर्ड के बारे में बताया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि धर्मांतरण के बाद आयुष मलिक को मोहम्मद अली का पूरी तरह ब्रेन वॉश हो गया था।
2: धर्म परिवर्तन कहीं पर नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होकर कभी भी करवा कर सको आप, इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता।
1: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
2: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ।
0: कुछ दिनों पहले तक खुद को मुस्लिम धर्म से प्रभावित कहने वाले आयुष मलिक की टोपी कुछ ही सालों में बदल गई थी। जो आयुष मलिक फैशनेबल टोपी वाली तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था वो अचानक मुस्लिम टोपी पहनने लगा था और अचानक परिवार को बिना बताए ईद की नमाज में भी शामिल हो गया था।
3: का आयुष इतना वो ब्रेन वास्ट है कि अपने फादर से बात करने को तैयार नहीं है, अपनी माँ से बात करने को तैयार नहीं है वो, और अपनी बहनों को तो भूल ही गया है वो। चांदनी के मन में बात जरूर आई कि अगर वो उससे संपर्क में रहेगा तो प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने ऐसा ब्रेन वास्ट किया और कराया उसने अपने परिचितों से कि अब इनसे बात नहीं करता है वो, और तमाम ऐसी कमियां आपको बताएगा अन्य धर्म के बारे में जो सुन करके आप दंग रह जाएंगे, जो किसी कोई स्पेशल लीडर बात करता है उसके बारे में।
0: शामली पुलिस का कहना है कि आयुष का ब्रेन वॉश कई वर्षों से किया जा रहा था जिसकी वजह से वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था।
1: कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
2: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कॉन्टेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। वैसे
0: बड़ी बात ये कि हिंदू धर्म में लौटा आयुष यूट्यूब के जरिए मुस्लिम धर्म से प्रभावित होने लगा। पाकिस्तानी धर्मगुरु के वीडियो देखकर इसकी दिलचस्पी इस्लाम में जागी।
1: कैसे शुरुआत हुई आपकी?
2: जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो,
1: दिखाओ
2: बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं, तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो आपको ताकत आएगी।
0: तो धीरे धीरे आयुष का ब्रेन वॉश होता रहा और एक दिन वो मुस्लिम बन गया। इस मामले में पुलिस को एक मौलवी की तलाश है जो फरार होकर अंडमान और चेन्नई में दावा है कि कहीं छिपा हो सकता है। लेकिन आयुष मलिक के मामले में सवाल सिर्फ धर्मांतरण का नहीं, उसका पाकिस्तानी धर्मगुरु से प्रभावित होना, प्रतिबंधित पीएफआई के मिशन 2047 को अपने मेल का पासवर्ड बनाना सिर्फ इत्तफाक कहकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि धर्म बदलने के बाद जो नौजवान अपने माता पिता बहनों को भूल गया, परिवार की जायदाद छोड़ने को राजी हो गया, वो आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली गलत पीएफआई जैसे संगठनों या सरहद पार बैठे दुश्मनों के लिए एक हथियार के तौर पर कभी भी इस्तेमाल हो सकता था, इसलिए पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच आगे कर रही है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।
4: बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मैराथन मीटिंग चल रही थी अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ, वो खत्म हो गई है, वो पूरी हो गई है। ये लगभग 4 घंटे तक ये बैठक चली है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर मुख्य रूप से इसमें चर्चा हुई है, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या मंत्रिमंडल फेरबदल का रूप हो सकता है, उसको लेकर चर्चाएं बहुत रही। अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चौंकेंगे, कुछ को लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ सोचेंगे कि क्या इस हद तक लोग जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि ठेका पुल बनाने, सड़क बनाने का उठता है, लेकिन राजस्थान में नकल कराने का ठेका उठा। 45 छात्रों को पैरा मेडिकल परीक्षा पास करानी थी, जयपुर के कॉलेज में सब कुछ सेट था, लेकिन एक टेंट ने नकल का खेल खोल दिया।
0: जगह जयपुर कॉलेज प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज, मौका पैरामेडिकल परीक्षा का। अचानक यहां तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, नाराज छात्र कुर्सियां उठाकर फेंकने लगते हैं। जानते हैं क्यों? जयपुर के इस परीक्षा केंद्र पर नकल करवा के पैरामेडिकल के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवाने का सौदा हुआ। लाखों रुपए के बदले झुंझुनू के एक कॉलेज के 45 छात्रों को नकल से यहां परीक्षा पास करवानी थी, लेकिन एक टेंट की वजह से नकल कराने वाली सौदेबाजी खुलकर सामने आ गई। कैसे, इसलिए इस वीडियो पर गौर करिएगा। यहां कॉलेज में पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे सैकड़ों छात्र, देखिए, नीचे जमीन पर लगे टेंट पर ऊपर से कुर्सियां फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि इसी टेंट के नीचे झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के एस करण कॉलेज के 45 फर्स्ट ईयर छात्रों को पैरामेडिकल एग्जाम में सामूहिक नकल करा के पास कराना था, जिनकी बैक आई हुई थी।
5: जयपुर का प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज पहले से ही पेपर लीक को लेकर विवादों में रहा है। वहां पर टेंट के नीचे 45 छात्रों को भीषण गर्मी में बैठाया गया था, क्योंकि कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में सामूहिक नकल कैद न हो सके। सभी वहां पर जो टीचर कॉलेज में मौजूद थे वो सामूहिक नकल कराने में लगे हुए थे। इस बीच वहां पर परीक्षा दे रहे 3000 छात्रों का पासवर्ड देने वाला कोई नहीं था, ऑनलाइन परीक्षा थी और प्रश्न पत्र डाउनलोड करना था। 1 घंटा बीत जाने के बाद छात्रों ने हंगामा किया, पुलिस बुलाई और उसके बाद पथराव किया, तब जाकर ये पूरा मामला खुल सका।
0: पुलिस आती उससे पहले जो बच्चे ईमानदारी से पेपर देना चाहते थे उनको भनक लग गई थी कि जयपुर के प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में 5.5 लाख रुपए लेकर दूसरे कॉलेज के 45 लोगों को टेंट के नीचे अलग बैठा कर नकल कराई जानी है। पूरा कॉलेज ससम्मान इन बच्चों को नकल कराने में जुट गया, बाकी बच्चों की परीक्षा तक लेट करा दी।

0: आज परीक्षा तीन आज कल और परसों यह परीक्षा चलेगी, तो संबंधित विभाग को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया था और उनके द्वारा भी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स लगाने की बात सामने आई है।
1: और अब बात डेंगू की। डेंगू जो दुनिया भर में इतनी तेजी से अपने पांव पसार रहा है कि देखते ही देखते कुछ सालों में 100 से ज्यादा देशों तक पहुंच गया। भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है जहां डेंगू एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। उत्तर भारत में डेंगू पिछले कुछ सालों में हेल्थ सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ है, चाहे बात हो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्यों। डेंगू हर साल इन राज्यों में अपना प्रकोप दिखाता है। पहले जिस डेंगू को एक मौसमी बीमारी माना जाता था, अब वो पूरे साल खतरा बनकर हमारे ऊपर मंडराने लगा है। साथ ही बारिशों के बदलते पैटर्न और जलवायु परिवर्तन ने भी इस जोखिम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में मॉनसून दस्तक देने की कगार पर है, ऐसे में जगह जगह पानी भरेगा जो मच्छरों को पनपने के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड देगा। डेंगू का असर सिर्फ संक्रमित व्यक्ति पर ही नहीं दिखता बल्कि इसका असर हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है। हम सभी को सतर्क होकर इसे रोकना होगा। ये जरूरी है कि हम अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान दें, मच्छरों को पनपने ही न दें। अगर आप घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं तो घर के आसपास पानी जमा न होने दें। डेंगू को लेकर एक दूसरे को जागरूक करें। हमें एक दूसरे की ताकत बनना होगा। डेंगू यकीनन हारेगा जब हम साथ लड़ेंगे डेंगू से। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
6: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
7: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन

0: ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
1: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
2: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज किए।
1: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Jindal Saathi Steel hai to asli stainless steel hai.
5: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein Jindal Saathi Steel zarur check kare.
4: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.
6: पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: हमने तब भी सवाल किया था।
11: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
10: हम आज भी सवाल करते हैं।
11: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
10: ऑपरेशन अग्नि,
11: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
10: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
12: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: यूरोप इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। देश के 54 विभागों में रेड अलर्ट जारी है और कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के चलते अब तक 1000 से अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी से बिजली उत्पादन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जर्मनी में तो गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है। आमतौर पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माने जाने वाला यूरोप ने कभी ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दशकों तक कभी तापमान 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री के पार गया ही नहीं था, लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर भूमध्य सागर के ऊपर गर्म हवाओं के चलते यूरोप उबल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय गर्मी के प्रकोप झेल रहे हैं। आमतौर पर ये पूरा वो इलाका होता है जो ठंडा रहता है, लोग ठंडियों में यूरोप की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय यूरोप में हाहाकार है, तापमान 40 डिग्री के पार है और अब इसका असर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को भी अपनी चपेट में ले रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी खतरनाक हीट वेव अब लगभग हर साल देखने को मिल रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: बत्तीस साल बाद आखिरकार हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबित जल बंटवारे के मुद्दे पर समझौता हो गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने MOU साइन किया। यह समझौता 32 साल पहले हुआ था, लेकिन नहर व्यवस्था न होने से इस पर अमल नहीं हो पाया। अब इस नए समझौते के तहत मानसून के महीनों में हथनी कुंड बैराज से एक भूमिगत जल पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
4: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है।
3: समझौते के बाद रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि यमुना का अतिरिक्त पानी राजस्थान भेजे जाने से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में भूजल रिचार्ज कम होने की आशंका है।
5: पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये कम्युनिकेशन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा माननीय वो पीने के लिए उपयोग होगा।
3: राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जमीन अधिग्रहण, पाइपलाइन निर्माण और निगरानी की जिम्मेदारी दोनों राज्यों के बीच तय होगी। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिस देश में सरकारें भी 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, उसी देश में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को अनिश्चितकाल के लिए क्यों चुना गया और क्यों अयोध्या के राम मंदिर को पूरी तरह चंपत राय के हवाले कर दिया गया। आज हम चढ़ावे की चोरी पर अब तक की सबसे गहरी पड़ताल आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि चंपत राय के चक्कर में राम मंदिर में क्या क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा जाएगा कि जब चंपत राय को इस चोरी की भनक कई महीनों से थी तो उन्होंने स्वयं इस मामले में पुलिस को शिकायत क्यों नहीं दी और ये दावा सच है कि क्या ये दावा सच है कि राम मंदिर में चंपत राय का एक ऐसा चक्रव्यूह बुना गया था जिसमें उनके करीबी और इन करीबियों के रिश्तेदार और परिचित मंदिर के चढ़ावे को सुनियोजित तरीके से चंपत लगा रहे थे। आज तक चंपत राय के लिए यही मारा गया है कि उन्होंने अपना जीवन मतलब एक तरह से समर्पित किया भगवान श्री राम के चरणों में और वाकई ये मंदिर उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन आज सवाल यह है कि फिर उन्हीं के रहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा कैसे चोरी हो गया? आप तो सर्वे सर्वा थे वहां। आज हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी सुनाएंगे जो ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को सदस्य बनाया गया होता तो सरकार उसका एनकाउंटर करके इस मामले में न्याय कर देती। आज हम इस बयान को ब्लैक एंड व्हाइट में समझेंगे और ये भी बताएंगे कि हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी वही नेता जिनकी पार्टी ने बाबरी मस्जिद का कानूनी मुकदमा लड़ने के लिए 55 लाख रुपए की मदद दी थी। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि क्या मंदिरों में चोरी का मुद्दा उठाने में भी भेदभाव हो सकता है। आज पूरे देश में ये बात तो हो रही है कि राम मंदिर में चढ़ावे को चुराया गया, लेकिन कोई ये बात नहीं कह रहा कि केरल के सबरीमाला मंदिर में भी 4.5 से 5 किलो सोना चुरा लिया गया। और अब तो आज ही इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने सीपीएम और सीपीआई के नेताओं की मिली भगत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हम ये सवाल पूछेंगे कि मंदिर की चोरी तो मंदिर की चोरी है, चढ़ावे की चोरी तो चढ़ावे की चोरी है, फिर ऐसा क्यों है कि राम मंदिर की चोरी पर चर्चा है लेकिन सबरीमाला मंदिर की चोरी पर सन्नाटा और इस खबर को कोई हेडलाइन नहीं बनाता। और इसके बाद आपको ये बताएंगे कि मेरा भारत महान लेकिन इतने सारे क्यों बेईमान। इस देश में ईमानदारी को सबसे बड़ी पूंजी माना गया है और हम तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाले देश है, लेकिन इसके बावजूद यहां मंदिरों का चढ़ावा चोरी हो जाता है। अस्पतालों में जहां मरीजों की जान बचाई जाती है वहां भी बेईमानी डेरा डालकर बैठ जाती है। दिल्ली में आरोप है कि सरकारी मेडिकल उपकरणों दवाइयों की खरीद में 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये पैसा इतना है कि दिल्ली के 5 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज हो सकता है, लेकिन अब इस मामले में FIR दर्ज हो गई है और इसीलिए आज आपको इस बेईमानी के बारे में भी बताएंगे। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि क्या हमारे देश में आपराधिक मामलों का निपटारा 1 से 2 महीने में हो सकता है। पुणे में जिस 65 साल के बुजुर्ग ने 3 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया था उसे निचली अदालत ने जानते हैं सिर्फ 60 दिन सिर्फ 2 महीने के अंदर फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला भी ऐसे वक्त में आया है जब कश्मीर के सरला भट्ट हत्याकांड में सिर्फ चार्जशीट आने में 36 साल लग गए। 36 साल का मतलब 3 पीढ़ियां बदल गई, लेकिन सरला भट्ट को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आज सबसे पहले हम चंपत राय पर अपनी सबसे बड़ी पड़ताल दिखाएंगे और ये बताएंगे कि चंपत राय के चक्कर में क्या क्या हुआ, राम मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई उसमें अब तक सिर्फ छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया गया है और इन गिरफ्तारियों से ऐसा ही लगता है कि चोरी सिर्फ वही लोग कर रहे थे जो चढ़ावे की गिनती में शामिल थे। लेकिन हमारी पड़ताल बताती है कि इस मामले में अब तक जो दिखाई दिया है कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे चक्रव्यूह को गढ़ती है जिसके इर्द गिर्द सिर्फ चंपत राय नजर आते हैं और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर राम मंदिर का चढ़ावा चंपत हुआ तो चंपत राय इसके बारे में कितना जानते थे और उन्हें कुछ लोग राम मंदिर का मालिक क्यों कहने लगे थे। ये बात थोड़ी चुभती है लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। आज हम उनकी भूमिका के बारे में भी एक एक करके परते खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि चंपत राय राम मंदिर के महासचिव कैसे बने और कैसे राम मंदिर को सिर्फ उनके हवाले छोड़ दिया गया। चंपत राय का जन्म साल 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े बिजनौर के RSM डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी की। ये वही वक्त था जब संघ को लेकर चंपत राय बहुत सक्रिय रहे।
साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तब संघ से जुड़े होने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद में उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़कर संघ का फुल टाइम प्रचारक बनने का फैसला किया। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान वो संघ की तरफ से विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए, यानी संघ और विश्व हिंदू परिषद यानी VHP, उनकी अच्छी खासी पकड़ थी दोनों जगहों पर। उन्हें अशोक सिंघल और विनय कटियार जैसे नेताओं का बहुत करीबी माना जाता था। जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी तब चंपत राय की काफी चर्चा हुई, और चर्चा का कारण यह था कि उन्होंने हिंदू पक्ष को ऐतिहासिक दस्तावेज, ऐतिहासिक नक्शे और साक्ष्य उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं सारी घटनाओं के कारण जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ तो सरकार ने चंपत राय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मंदिर ट्रस्ट का गठन किया। 19 फरवरी 2020 को मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। हैरानी की बात यह है कि जब हमारे देश में सरकार भी सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है तब चंपत राय और दूसरे सदस्यों के कार्यकाल की समय सीमा निर्धारित ही नहीं की गई। शायद ये ऐसी पहली चूक थी जिसने चंपत राय को अनिश्चित काल के लिए राम मंदिर का सर्वेसर्वा बना दिया। राम मंदिर के निर्माण से लेकर मंदिर में आने वाले माननीयों की मेजबानी चंपत राय ने ही की, और पूरे मंदिर में उनके फैसलों को टालने वाला कोई और था नहीं। इसी का नतीजा यह हुआ कि जो लोग चंपत राय के सबसे करीब थे उन्होंने मंदिर में बंदरबांट करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर प्रबंधन के लिए सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी पर रखा, और आरोप है कि नौकरियों के लिए किसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ। जो लोग चंपत राय के करीबी थे वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचित लोगों की सिफारिश करते थे और उन्हें मंदिर में आसानी से नौकरी मिल जाया करती थी। एक दिन पहले जब चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ हुई तब पुलिस ने भी चंपत राय से यही सवाल पूछा कि उन्होंने अपने करीबी रहे लोगों के रिश्तेदारों को नौकरियां क्यों बांटी। तो चंपत राय ने इस पर कहा कि उन्होंने सिर्फ जरूरतमंदों को काम दिया, वो सिर्फ उनकी भलाई करना चाहते थे। सोचने वाली बात यह है कि चंपत राय की सिफारिश से 5, 10 या 15 नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि मंदिर की सुरक्षा में कुल 400 निजी सुरक्षा कर्मी काम कर रहे थे जिनकी मासिक सैलरी 19 से 24 हजार रुपए होती थी। इनमें से ज्यादातर सुरक्षा कर्मी चंपत राय के करीबियों के रिश्तेदार और जानने वाले थे जिन्हें चंपत राय के कहने पर काम मिला, और यहीं से चोरी की पूरी पटकथा लिखी गई। जो करीबी थे उनके लिए चढ़ावा चुराना बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए चुनौती यह थी कि वो इस चढ़ावे को चुराकर मंदिर से बाहर कैसे निकलेंगे। और जब निजी सुरक्षा कर्मी ही जाने पहचाने वाले भर्ती हो गए तो आरोप है कि मंदिर के चुराए गए चढ़ावे को बाहर ले जाना आसान हो गया, क्योंकि इन चारों की इन जो लोग थे, ये लोग जो बाहर जा रहे थे या जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी कोई तलाशी नहीं होती थी, और होगी भी कैसे। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी की नौकरी लगवाएंगे तो आप फिर उस पर भरोसा करते हैं, और शायद इस मामले में यही हुआ। उनकी तलाशी नहीं ली गई और वो आराम से आ जा रहे थे। ये सारी चीजें भी तब हो रही थी जब पहले से मंदिर ट्रस्ट अलग अलग कामों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था। आज कई लोग अलग अलग तरह की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन 80 लाख रुपए जो बरामद हुए हैं वो आखिर पैसे किसके हैं? वो चढ़ावे में चुराए गए पैसे हैं। जैसे मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच मंदिर परिसर के निर्माण पर 152 करोड़ रुपए खर्च हुए। सिर्फ 4 दीवारी बनाने पर 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग और श्रद्धालुओं को बांटे जाने वाले प्रसाद की व्यवस्था पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए, और यही नहीं, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम और दूसरी सुविधाओं पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाद में कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया, लेकिन ये उनका खाता था, और कारण ये था कि इनकी देखरेख चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव करता था। भाई, अगर आप अपने किसी करीबी को लाकर सारा जिम्मेदारी सब कुछ सौंपते हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि टिन्नू यादव आपका करीबी हो सकता है, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा,
चढ़ावे की सुरक्षा ये तो सबकी जिम्मेदारी थी और ट्रस्ट के सर्वसर्वा आप। इसके अलावा मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों की तनख्वाह पर कुल 7,67,00,000 रुपए खर्च हुए। इनमें कई कर्मचारी वो थे जो चोरी में मददगार बने हुए थे और मंदिर ट्रस्ट के इन खर्चों की ये सूची यहीं समाप्त नहीं होती। इसी में गेस्ट हाउस के रखरखाव पर 4 करोड़ सिर्फ 11 महीने में खर्च हो गया। गेस्ट हाउस के रखरखाव पर 4 करोड़ रुपए 11 महीने में। ये सारा खर्च चंपत राय की निगरानी में हुआ। चंपत राय को लेकर आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से सवाल उठ रहे थे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने अपने निधन से पहले नवंबर 2022 में चंपत राय की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए थे। मैं आपको शब्दशः उनका बयान पढ़कर बताती हूं और मुझे ये मौका भी मिला था जब राम मंदिर का वहां पर निर्माण चल रहा था तो अनेकों बार मैंने खुद भी उनका इंटरव्यू किया था महंत सत्येंद्र दास जी का। उन्होंने इस बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा था राम मंदिर में जो आता है वही ट्रस्टी बन जाता है। ये तो मालूम पड़े कि टिन्नू यादव मालिक है, गोपाल राव मालिक है, अनिल मिश्रा मालिक है या चंपत राय मालिक है। अब आप समझिए इन 4 लोगों का खास तौर पर महंत सत्येंद्र दास का नाम लेना बहुत मायने रखता है। और महंत सत्येंद्र दास जो कि यहां पर पूजा पाठ कराते थे, जो इस मंदिर से भगवान के उस स्थान से ऐसे जुड़े हुए थे, उन पर कभी आज तक कोई उंगली उठा ही नहीं पाया। उन्होंने बाकायदा इन 4ों का नाम लिया था। इस बयान से पता चलता है कि राम मंदिर में जो चोरी सामने आई उसके संकेत पहले भी मिले थे लेकिन तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया क्योंकि चंपत राय हर बार कहते थे कि सब कुछ ठीक है, ये फालतू की बातें। अब तक चंपत राय के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और ना ही आप आधिकारिक रूप से उन पर कोई भी आरोप लगाए गए हैं। लेकिन SIT की जांच और अब तक हमें जो बातें पता चली हैं उनके मुताबिक चंपत राय इस चोरी के बारे में आज से नहीं बल्कि कई महीनों से जानते थे। क्या चंपत राय पर अटूट भरोसा ही इतनी बड़ी लूट की वजह बना? ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। अप्रैल और मई महीने के बीच जब दान पेटियों से चढ़ावे की राशि कम निकल रही थी तब चंपत राय को पता था कि कुछ कर्मचारी चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता था कि ये चोरी उनके द्वारा लाए गए लोगों द्वारा ही की जा रही है। इस चोरी को पकड़ने के लिए चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने उस कमरे में हिडन कैमरे लगाने का फैसला किया जहां चढ़ावे का पैसा गिना जाता था। इस हिडन कैमरे में मतलब छिपे हुए कैमरों की 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि जो कर्मचारी चढ़ावा चुरा रहे थे वो गिनती के दौरान CCTV कैमरों के सामने आकर खड़े हो जाते थे। ये जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से पता चली और इसे मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने भी सही बताया। सबसे बड़ी बात यह समझ आती है कि चंपत राय के पास पर्याप्त सबूत थे, वो इसके आधार पर कार्रवाई कर सकते थे। और अगर यह बताया जा रहा है कि हिडन कैमरा लगाया गया था सच जाने के लिए तो उस हिडन कैमरा का फुटेज ही दे देते पुलिस को। लेकिन उन्होंने इस मामले में SIT गठित होने तक यही कहा कि कोई चोरी नहीं हुई और यह बयान इंटरनेट पर जाकर कोई भी सुन सकता है। जब 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 3 CCTV कैमरों में 70 बार चोरी पकड़ी गई तब भी चंपत राय इस चोरी को नकारते रहे। 5 जून को जब पुलिस ने चढ़ावे की गिनती करने वाले अविनाश शुक्ला के घर से 5,00,000 रुपए कैश बरामद किए तब भी चंपत राय ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इसके 3 दिन बाद 8 जून को वो मीडिया में कह रहे थे कि चढ़ावे की चोरी नहीं हुई है। जिस कमरे में चढ़ावे को गिना जाता था और जहां लगे CCTV कैमरों की निगरानी वायरल विभाग कराता था उसके अधिकारी को का भी चंपत राय ने कई बार ट्रांसफर रुकवाया और ये आरोप कई लोग लगा रहे। अब आखिर ऐसा क्यों? जो CCTV फुटेज पर निगरानी रखता था उसका ट्रांसफर बार बार क्यों रुकवा रहे थे? वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव 2009 से राम मंदिर में CCTV कैमरों की निगरानी का काम देख रहे थे और ऐसा बहुत कम होता है जब किसी अधिकारी का 17 सालों तक ट्रांसफर ना हो। इस मामले में भी अर्जुन देव के ट्रांसफर के कई आदेश आए लेकिन हर बार इन आदेशों को वापस लिया गया और अर्जुन देव राम मंदिर में ही टिके रहे। आज भी जब उन्हें ट्रांसफर करके गोरखपुर भेजा गया है तो हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि संदिग्धों में उनका नाम होने के बाद भी RMO अर्जुन देव की जांच क्यों नहीं हुई और क्या उन्हें भी चंपत राय का करीबी होने का फायदा मिला? हमारे पास सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि चंपत राय को पता चल चुका था कि वो जिन लोगों को भरोसा करके राम मंदिर में लाए हैं
वही उनके नाम का फायदा उठाकर चोरी कर रहे। लेकिन इस पर अफसोस जताने के अलावा उन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। यह विडंबना है कि जो चंपत राय अब तक अयोध्या में हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने पिछले 6 सालों में 70 बार मीडिया से बात की, उन्होंने इस मामले पर देश को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। आपको जैसे ही पता चला था, 2 रास्ते थे, या तो आप पुलिस के पास फौरन जाते अपने सबूत के साथ, या फिर आप मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। देखिए, जो चोरी एसआईटी ने पकड़ी है, उस चोरी के बारे में चंपत राय बहुत पहले ही जान चुके थे। उन्हें भी यह पता था कि चढ़ावे की गिनती के लिए मंदिर ने जो एमओयू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है, उसका पालन नहीं हो रहा है। हमारे सूत्रों ने एक और गंभीर जानकारी दी है, किसी इसी ट्रस्ट में मौजूद कुछ वरिष्ठ लोगों ने कई बार चंपत राय को यह इशारा किया और सीधे सीधे कहा कि चढ़ावा चोरी हो रही है, इसको रोकना होगा, लेकिन वो हर बार ये कहकर टालते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, समझौते के तहत दान पेटियों को खोलने और गिनती कक्ष के संचालन के लिए ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई है। ये जो SBI के साथ MOU हुआ है वो हम आपको बता दें, ताकि आप पूरी प्रक्रिया समझ पाए कि ये कैसे हो रहा था। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU है, गिनती में लगे कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड भी तय था, इसी में बैंक अधिकारियों के मासिक रोटेशन का भी प्रावधान था, लेकिन इनमें से किसी भी शर्त का पालन ही नहीं हुआ। मतलब बैंक से जो कर्मचारी आने थे उनका रोटेशन होना था, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, लेकिन खेल तो कुछ और चल रहा था। बैंक के कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में काम करते रहे, और यह भी आरोप है कि चंपत राय के कारण चढ़ावा गिनने वाले लोगों की ना तो सही से तलाशी होती थी, ना उनकी निगरानी की जाती थी। यानी एक तरह से इस पूरे मंदिर परिसर में ऐसे कुछ लोगों का दबदबा चलता था जिससे वो कानून के ऊपर थे, उनकी जांच उनकी फ्रिस्किंग होती नहीं थी। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर चंपत राय पर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं तो FIR में उनका नाम क्यों नहीं है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र है, उस राम मंदिर को सिर्फ चंपत राय के हवाले क्यों छोड़ दिया गया? आज ही यह खबर आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारिणी की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बुलाकर उनका पक्ष सुना जाएगा और उनके इस्तीफे पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन हम पूछते हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम संदिग्धों में होते हुए भी उन्हें निर्दोष मानकर क्यों चला जा रहा है? हो सकता है कि इन लोगों की चोरी में कोई भूमिका ना हो, हम भी ये मानते हैं, लेकिन क्या जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या कोई भी व्यक्ति लोगों की आस्था कानून से बड़ा हो सकता है? आखिर क्या व्यथा थी हिंदुओं की? यही ना कि मुगलों ने आया, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटे। 500 सालों की लड़ाई के बाद हम उस मंदिर को बना पाए जब कोर्ट ने आदेश दिया, और फिर जब मंदिर बना तो लूटने के लिए ये लोग आ गए। जिस कार्यकारिणी की बैठक में चंपत राय का पक्ष सुना जाना है, उसी बैठक में 2021 के जमीन विवाद की भी सुनवाई हुई थी, और ये वही मामला है जिसमें मंदिर ट्रस्ट पर यह आरोप लगा था कि उसने रवि मोहन तिवारी, ध्यान से समझिएगा, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी थी और मंदिर ट्रस्ट के पैसों की बंदर बांट हुई थी। और यह भी तब हुआ था जब रवि मोहन तिवारी अयोध्या के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के समधि के साले हैं, और इस जमीन की खरीद में बड़ी सांठगांठ की बातें सामने आई थी। लेकिन उस वक्त कार्यकारिणी की बैठक में चंपत राय ने कहा कि सब ठीक है, सबने मान लिया कि सब ठीक ही होगा, और इस बार हमें नहीं लगता कि इस कार्यकारिणी में क्या फैसला लिया जाता है। आज आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें हमने रवि मोहन तिवारी के उस आलीशान बंगले को दिखाया है जिन्होंने 2 करोड़ रुपए की जमीन मंदिर ट्रस्ट को कितने में दी, 18 करोड़ रुपए में बेची थी। देखिए,

0: हम इस वक्त चिंटू तिवारी की उस प्रॉपर्टी पर मौजूद हैं। आप यकीन माने, ये शीश महल उस चिंटू तिवारी का है जिसने उस वक्त जमीन कुसुम पाठक और उसके पति से एक जमीन 2 करोड़ में ली और 10 मिनट के भीतर वही जमीन टेम्पल ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसी पैसे से चिंटू तिवारी द्वारा ये पूरा शीश महल खड़ा किया गया है। अब इसे आप शीश महल कहें, आलिशान महल कहें, बंगला कहें, ये आप खुद तय कर लें। आप यहाँ पर पहले गेट ही अगर देख लें तो शायद एक आम आदमी इस तरह का गेट नहीं लगवा सकता है। और उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो जो ग्लासेस लगे हैं, ग्लासेस छोड़िए, ग्लासेस के ऊपर जाइए, एक बड़ा सा टेरेस है, टेरेस के ऊपर जो लाइट्स लगे हैं, जो एम्बियंस है, जो कलर्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, और जो जिस तरीके से पूरा मेकओवर किया गया है, आप देखें और खुद अंदाजा लगाएं कि क्या ये एक और भ्रष्टाचार का एक और नमूना है।
1: तो ये जो घर आप देख रहे थे, आरोप है इसी शख्स ने 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी और उसके बाद फौरन ट्रस्ट को 18 करोड़ में जमीन बेच दी। फिर बीच का पैसा क्या हुआ? देखिए, इन तमाम साक्ष्यों के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार चंपत राय के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी और क्या इस मामले में बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े पदाधिकारियों में सिर्फ चंपत राय का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी नाम शामिल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग राम मंदिर के ट्रस्ट में पहुंचे कैसे, इसके लिए कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं हुई। अनिल मिश्रा पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर है जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे और संघ के काफी करीबी थे। 1992 में जब विवादित ढांचे को गिराया गया, तब इसे एक दिन पहले लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जो बैठक की थी, वो बैठक अनिल मिश्रा के घर पर ही हुई थी। और इन्हीं निजी संबंधों के कारण संघ में ऊंची पहुंच की वजह से अनिल मिश्रा अनिश्चित काल के लिए मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बन गए और आज भी वो अवध प्रांत में संघ के प्रमुख कार्यवाह है। इसके बाद गोपाल राव, जो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद मंदिर प्रबंधन के अहम फैसलों में उनका दखल रहता है। साल 2021 में कर्नाटक में रहने वाले और आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े गोपाल राव को ट्रस्ट में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, यानी यहां भी उन्हें संघ से जुड़े होने के कारण राम मंदिर के प्रबंधन में प्रवेश मिला, जिस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं और इस चोरी ने लोगों के भरोसे को भी तोड़ा है। इस चोरी के बाद राम मंदिर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह के सभी दावे पूरी तरह गलत है। दिक्कत तो यही है, आज चढ़ावा चोरी में 80 लाख की बरामदगी हुई है, मामला इतना संगीन है लेकिन हर कोई अपनी अपनी सियासत ढूंढ रहा है क्योंकि चुनाव करीब है। लेकिन हम आपको सच बताएंगे, हमें मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले हर दिन चढ़ावे में 10 से 12 लाख रुपए आते थे, लेकिन आज की तारीख में प्रतिदिन जो चढ़ावा है बताया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि 20 से 24 लाख रुपए का हो गया है, यानी लोग दान पेटियों में पैसे डाल रहे हैं। अब ये जानकारी ट्रस्ट की तरफ से दी जा रही है तो जाहिर तौर पर कम से कम चढ़ावा चोरी पर इतने संगीन इल्जामों के बाद तो हिसाब किताब सही चल रहा होगा। ऐसा भी मुमकिन है कि पहले का हिसाब किताब डावाडोल था और अब जाकर असल हिसाब किताब सामने आ रहा है। एक बड़ा कारण यह भी कि स्कूलों में अब गर्मियों की छुट्टियां हैं, कई श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और संख्या बढ़ रहा है, चढ़ावा बढ़ रहा है, लोग अपनी श्रद्धा से दान तो देते ही हैं। नए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जनवरी 2024 के पहले हर दिन राम मंदिर में 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा आया था, जबकि फरवरी 2024 में राम मंदिर को 11 दिनों में 11 करोड़ रुपए का दान मिला, यानी हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए का दान, जबकि पूरे साल में ट्रस्ट ने 327 करोड़ रुपए की सालाना कमाई की थी। खैर, इस चोरी का भले करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कोई असर वैसा ना पड़ा हो, वो मंदिर जा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे देश के कुछ नेताओं को इसी का इंतजार था। भाई, यूपी में चुनाव है, मौका मिला है तो हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब इनको सुनिए, कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को सदस्य बनाया गया होता तो उसका एनकाउंटर करके आज सरकार ये दिखा सकती थी कि उसने न्याय कर दिया है। सुनिए,
2: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में।
1: आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी राम मंदिर पहुंचने की कोशिश की, आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है। अब हम मानते हैं कि इस मामले में सवाल उठने चाहिए। विपक्ष को पूरा अधिकार है सरकार की आलोचना करे, और काफी हद तक समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे उनके नेताओं ने उठाया। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर योगी को घेर रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये भी है कि ये मंदिर है और मंदिर की जगह पर ये देखिए अलग अलग जो पोस्ट आए हैं। बाबरी मस्जिद मुकदमे के लिए 55 लाख रुपए की बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। और ये देखिए अरविंद केजरीवाल, नानी ने कहा मेरा नाम मस्जिद तोड़कर बने मंदिर में नहीं रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कुल मिलाकर पूरी राजनीति होती रही इस मुद्दे पर। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे हर कोई अपने अपने तरीके से इस पर पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने तरीके से पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये मुद्दा गंभीर है और इस मुद्दे में चढ़ावा चोरी लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आज यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि चोरी सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर में नहीं हुई, चोरी तो केरल के सबरीमाला मंदिर में भी हुई, लेकिन वहां पर अब चुनाव वगैरह तो है नहीं, खत्म हो गया। उस चोरी में सीपीएम और सीपीआई के नेताओं के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने आज ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस चोरी की कोई बात नहीं कर रहा। और इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे देश में इस तरह के ज्यादातर मुद्दे यही देखकर उठाए जाते हैं कि एजेंडे को सूट करेगा या एजेंडे को सूट नहीं करेगा। लेकिन हम इन मुद्दों को ऐसे एजेंडों से बहुत बड़ा मानते हैं और हम चाहते हैं कि पूरा देश आज सबरीमाला मंदिर में हुई सोने की चोरी के बारे में भी जाने। केरल के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित सबरीमाला मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल देश दुनिया में लाखों लोग भगवान श्री अयप्पा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन आज यही मंदिर एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसे खुद हाईकोर्ट ने सोने की डकैती, सोने की लूट जैसा गंभीर मामला बताया है। इस लूट की कहानी करीब 3 दशक पहले शुरू होती है, जब 1998-99 में उद्योगपति विजय माल्या ने इस मंदिर को कुल 30.291 किलोग्राम सोना दान किया था। 30 किलोग्राम सोना। तब इस सोने को इस्तेमाल मंदिर के कई हिस्सों को स्वर्ण मंडित करने में किया गया। गर्भगृह के बाहर खड़े द्वारपालों की 2 विशाल मूर्तियां, खंबे दरवाजों की चौखटें, मेहराबों और भगवान श्री अयप्पा की कथाओं को दर्शाने वाले कई पैनल सोने से मढ़े गए। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही सोना एक दिन साजिश के तहत चुरा लिया जाएगा। करीब 20 साल बाद साल 2019 में यह निर्णय लिया गया कि द्वारपालों की मूर्तियों पर फिर से सोने की परत चढ़ाई जाए, और यहीं से इस कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया। सामान्य तौर पर मंदिर की बहुमूल्य वस्तुएं और वस्तुओं की मरम्मत मंदिर परिसर के भीतर होती है, लेकिन आरोप है कि उस वक्त पूर्व सहायक पुजारी उन्नी कृष्णन पोट्टी के कहने पर इन मूर्तियों को चेन्नई भेजने की अनुमति दे दी गई। और इससे भी बड़ी बात यही हुई कि सरकारी रिकॉर्ड में इन सोने से मढ़ी मूर्तियों को सिर्फ कॉपर प्लेट्स यानी तांबे की प्लेटी लिखा गया। आज एसआईटी और हाईकोर्ट का मानना है कि यह कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। और ये साजिश भी क्या, अब उसे भी देखिए। जांच एजेंसियों का आरोप है कि चेन्नई में मूर्तियों से पुरानी और भारी सोने की परतें चोरी कर ली गई और उसकी जगह सोने की नई और पतली परतें मूर्तियों पर चढ़ा दी गई। ऐसा इसलिए हुआ ताकि मूर्तियों पर लगा भारी सोना चुरा लिया जाए, और जब ये मूर्तियां वापस चेन्नई से मंदिर में लौटी तब उनका वजन तक नहीं किया गया, और यही वो चूक थी जिसने आगे चलकर पूरे विवाद को जन्म दिया। इन मक्कारों ने सोचा था कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन राम मंदिर की तरह यहां भी भगवान का अदृश्य सीसीटीवी काम कर रहा था। जब नई गोल्ड प्लेटिंग ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी, कुछ ही महीनों में सोने की परतें उतरने लगी, नीचे का तांबा दिखाई देने लगा तो लोगों को शक हुआ, आखिर इतनी जल्दी सोना खराब कैसे हो गया। जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक के बाद एक हैरान करने वाले तथ्य सामने आने लगे। जांच में पता चला कि सिर्फ द्वारपाल मूर्तियों से ही नहीं बल्कि उनके आधार और मंदिर के दरवाजों की चौकटों से भी सोना गायब हुआ है। अब तक लगभग 4.5 से 5 किलोग्राम सोना गायब होने की बात सामने आ चुकी है। एसआईटी का दावा है कि जब आरोपियों को शक हुआ कि उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है, तब 2023 में एक बार फिर योजना बनाई गई कि द्वारपाल मूर्तियों को चेन्नई भेजकर उन पर नई परत चढ़ाई जाए। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसका मकसद मरम्मत नहीं बल्कि 2019 में हुई सोना चोरी के सबूतों को मिटाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर की तरह इस चोरी में भी कई स्तर पर मिली भगत शामिल थी। पूर्व सहायक पुजारी उन्नीकृष्णन पोट्टी को इस चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया, जबकि मंदिर के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मुरारी बाबू, मूर्तियों से सोना चुराने वाले कंपनी के मालिक पंकज भंडारी, मंदिर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीपीएम नेता पीएस प्रशांत, पूर्व बोर्ड सदस्य और सीपीआई के नेता ए अजय कुमार, सबरीमला के मुख्य पुजारी कंदरारू राजीवारू और पूर्व आयुक्त रेजीलाल को इस मामले में आरोपी माना गया है। यानी यहां भी सबके सब मिले हुए नजर आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चोरी की पूरे देश में कोई बात नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे देश में मुद्दे की गंभीरता से ज्यादा इस बात पर जोर होता है कि ऐसे मामलों में किसकी रोटियां सेकेंगी, किस पार्टी को फायदा होगा, और अगर चुनाव करीब हो तो मुद्दे को उसी हिसाब से तोला जाता है। आप करिए आपको जो करना है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आज राम मंदिर में जो हुआ वो राष्ट्रीय बेईमानी का विषय है। अगर इस बेईमानी को रोकना है तो हमें मंदिरों के संचालन, मंदिरों का ढांचा, उनकी व्यवस्था को बदलना होगा, मूल चूल परिवर्तन करना होगा। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि केरल के सबरीमाला मंदिर में जो चोरी हुई वहां सरकार द्वारा गठित देवस्वम बोर्ड मंदिर का संचालन देखता है। और हम यही सोचते हैं कि अगर मंदिर सरकार की देखरेख में संचालित हो तो क्या एक अलग रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ये ट्रस्ट जो कर रहे हैं वो तो मंदिर दर मंदिर दिख रहा है। लेकिन ये चोरी बताती है कि केरल में जो सीपीएम और सीपीआई के नेता इस मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य बने वो खुद इस चोरी में शामिल थे, जिसके कारण हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। खैर, ये बेईमानी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। आज आप जहां नजर उठाकर देखेंगे वहां आपको लूट दिखाई देगी। और अब तो देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा स्वास्थ्य घोटाला सामने आया है जिसमें आरोप है कि लोगों के इलाज के लिए खरीदी जाने वाली दवाइयां, मशीनें, जरूरी सामान के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई। दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच यानी ACB ने इस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा डेप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरफ्तारियां बीती रात हुई हैं। इससे पहले इसी मामले में डॉक्टर विजय कुमार रंगा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें बाद में अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एसीबी के मुताबिक ये मामला DGHS के अधीन काम करने वाली सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी CPA द्वारा कई 100 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रियाओं में लूट और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। और जब आप इस भ्रष्टाचार और बेईमानी के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर एक डिस्पोर्टेबल एक्सरे मशीन की कीमत 10 लाख रुपए थी, उसे सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने जानते हैं कितने में खरीदा, 33 लाख रुपए। यानी जिन 448 मशीनों पर 45 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे उन पर 148 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इसी तरह जिन बेडशीट्स की कीमत करीब 150 रुपए थी उनके लिए CPA ने 450 रुपए का भुगतान किया। पूरे टेंडर पर 75 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि ये सारी बेडशीट्स 25 करोड़ रुपए में खरीदी जा सकती है। रेडियोलॉजिकल मशीन्स के मामले में भी भारी लूट हुई। 25 लाख रुपए में मिलने वाली इन मशीन्स के लिए इस एजेंसी ने 1.10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कुल 7.70 करोड़ रुपए खर्च हुए, असल कीमत 1.75 करोड़। ORS के एक सैशे कीमत 2.05 रुपया, लेकिन इसी एजेंसी ने खरीदा कितने पे, 15 रुपए प्रति सैशे। यानी जो आरएस 1,25,00,000 रुपए में खरीदे जाने थे उस पर खर्च हुआ 7 करोड़ रुपया। और ये सूची यही खत्म नहीं होती, बड़ी लंबी सूची है। सर्जिकल सामान खरीद में लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि जांच एजेंसियों का दावा है कि असल कीमत थी 20 से 25 करोड़ रुपए। अब एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसने ये पूरा केस दर्ज किया है और अब तफ्तीश की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसी एंटी करप्शन ब्रांच का कहना है कि इस घोटाले में अन्य अधिकारियों और निजी सप्लायर्स की भूमिका की भी पड़ताल हो रही है। ईडी ने इस मामले की जानकारी एसीबी से मांगी है, जिसे आगे चलकर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें अपनी जांच शुरू कर सकता है। अब सवाल सिर्फ इस घोटाले का नहीं है, बल्कि सोच का है, जो धीरे धीरे हमारी व्यवस्था को खोखला कर रही है। मंदिरों का चढ़ावा चोरी होना, सड़क पुल बनने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाना, फर्जी कागजात रिश्वत देकर बनाना और अस्पतालों में ऐसी लूट। आखिर जिस देश में सच बोलना धर्म और झूठ बोलना पाप माना गया है, वहां हर मोड़ पर बेईमानी मौका कैसे तलाश लेती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने गलत काम को गलत मानकर उससे लड़ना छोड़ दिया है? आप गुजरात के राजकोट को ही देख लीजिए, जहां 23 और 24 फरवरी को प्रशासन के, ये खबर हमने आपको दिखाई थी ना, अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के चाय नाश्ते पर 27,00,000 रुपए खर्च हो गए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ 2 दिन की कार्रवाई और खर्च कितना चाय नाश्ते पर 27,00,000 रुपए का खर्च। बिल की डिटेल सुनेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। 21,210 कप चाय बिस्कुट खाए गए, 21,000, 50 प्लेट गाठिया जलेबी, 360 प्लेट पोहे का नाश्ता, लंच पर 6,30,000 रुपए खर्च। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि अगर मेरा भारत महान तो इतने सारे क्यों बेईमान? अगली खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम है यूजर नेम या व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर। इसका मतलब यह है कि अब व्हाट्सएप पर लोगों से जुड़ने के लिए हर बार मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं होगा। नए फीचर के तहत लोग अपने नाम की जगह एक अलग यूजर नेम चुन सकेंगे और उसी से संपर्क कर सकेंगे। यानी जैसे एक्स और इंस्टाग्राम पर आपकी पहचान आपके यूजर नेम से होती है और आपका नंबर सामने वाले को पता नहीं चलता, वैसा ही अब व्हाट्सएप पर होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर इस नए फीचर को लेकर खूब विवाद हो रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये यूजर नेम आने के बाद व्हाट्सएप टेलीग्राम की तरह हो सकता है, जहां कोई भी व्यक्ति केवल यूजर नेम जानकर, कोई भी यूजर नेम रखकर दूसरे से संपर्क कर सकता है, उसकी असल पहचान पता नहीं चलेगी। डेटिंग ऐप कंपनी नॉट डेटिंग के सह संस्थापक जसवीर सिंह ने कहा कि टेलीग्राम पर यही सुविधा अपराधियों के लिए मददगार बन गई थी और उन्हें डर है कि व्हाट्सएप पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई लोग अपना असल नाम बताएंगे भी नहीं। कई लोगों का कहना है कि भारत जैसे देश में अगर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाई गई तो लोग नकली यूजर नेम बनाकर दूसरे के नाम पर पैसे मांग सकते हैं, यानी इसे लेकर ज्यादातर लोग चिंता जता रहे हैं। या बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई भी आपका यूजर नेम खोज सकेगा, तो इसका जवाब है नहीं। व्हाट्सएप का कहना है कि ऐप में यूजर नेम की कोई सार्वजनिक सूची नहीं होगी, यानी लोग किसी डायरेक्टरी में आपका नाम खोजकर आप तक नहीं पहुंच सकते। किसी को आपसे संपर्क करना है तो उसके लिए उस यूजर को आपका सटीक यूजर नेम पता होना जरूरी है। अब ये देखिए कि ये यूजर नेम की है क्या और ये कैसे काम करेगी। व्हाट्सएप ने सुरक्षा के लिए यूजर नेम की नाम का एक फीचर दिया है, एक 4 अंकों का विशेष कोड होगा। अगर आपने इस चालू कर दिया इसे तो केवल यूजर नेम जानना काफी नहीं होगा, सामने वाले को वो 4 अंकों वाला कोड भी पता होना चाहिए, तभी वो आपसे संपर्क कर सकेगा। हालांकि ये फीचर फिलहाल डिफॉल्ट रूप में बंद रहेगा और लोगों को खुद से चालू करना होगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस फीचर का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको लेकर चिंताएं जरूर बताई जा रही है। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि इसके मूल नियम नहीं बदल रहे। हर अकाउंट के लिए मोबाइल नंबर अभी भी अनिवार्य रहेगा। बिना फोन नंबर के कोई भी व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगर कोई यूजर नेम पहले से इंस्टाग्राम या फेसबुक पर किसी के नाम से जुड़ा है तो दूसरा व्यक्ति उसे व्हाट्सएप पर नहीं ले सकेगा। और अगर आप वही यूजर नेम व्हाट्सएप पर भी चाहते हैं तो आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करना पड़ सकता है। करीब 2 साल पहले बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तभी से वहां भारत विरोधी लहर देखी जा रही थी। इन 2 वर्षों में वहां हर कोई ऐसे कई सारे कट्टरपंथी गुट, कट्टरपंथी नेता सामने आए, जो भारत विरोधी बयानों के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने के प्रयास कर रहे थे, आग उगल रहे थे भारत के खिलाफ। अब वो अब भी गाहे बगाहे कुछ मौलाना है नेताओं के बयान सामने आते हैं जिसमें वो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के विरोध में बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल से अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मुहिम पर बांग्लादेश में जबरदस्त खलबली थी। कई कट्टरपंथियों ने भारत के इस कदम का विरोध भी किया। उससे पहले बांग्लादेश के चुनाव में इंडिया गो बैक जैसे स्लोगन ट्रेंड कराए गए, लेकिन अब एंटी इंडिया स्लोगन चिल्लाने वाले बांग्लादेश में हजारों लोग भारत के वीजा के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा बंद कर दिया था। 2 साल बाद अब एक बार फिर से टूरिस्ट वीजा सेवाएं शुरू हुई हैं और अब उसे पाने के लिए बांग्लादेश के अलग अलग सेंटर्स पर भीड़ लगी हुई है। बांग्लादेशी नागरिकों को दोबारा से टूरिस्ट वीजा दिया जाना दोनों देशों के संबंधों में सुधार का संकेत माना गया। टूरिस्ट वीजा आवेदन देने के लिए बांग्लादेश के 5 बड़े शहरों में वीजा सेंटर्स बनाए गए हैं, भीड़ लगी हुई है। इन वीजा आवेदन केंद्रों पर उत्सव जैसा माहौल है। फिलहाल ढाका, चट्टोग्राम, राजशाही, सिलहट, खुलना में भारतीय वीजा के लिए आवेदन आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वीजा केंद्र बढ़ाए भी जा सकते हैं। 5 अगस्त 2024 से ही बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में मेडिकल, बिजनेस, स्टूडेंट वीजा आवेदन में ढील दी गई, लेकिन फिर भी टूरिस्ट वीजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध था।
3: অবশ্যই ভালো লাগছে। আমাদের হচ্ছে পাশের দেশ, আমাদের প্রতিবেশী দেশ, তাদের সাথে তো অবশ্যই আমাদের সম্পর্ক সবসময় একটা ভালো ছিল। হঠাৎ সম্পর্কটা খারাপ হওয়ার কারণে, কিছু মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে তাদের সাথে আমাদের একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, যার কারণে এতদিন বন্ধ ছিল। তো এখন অনেক অপেক্ষার পরে খুলছে, এটা আসলে অনেক ভালো খবর, বিশেষ করে আমাদের মতো ভ্রমণ পিপাসু মানুষের জন্য।
4: আর এটা আসলে শুধু আমি না, আশা করি সবাই খুশি হয়েছে এটা, এবং এটা ভালো, খুবই ভালো হয়েছে সবার জন্য। যারা ভ্রমণ করতে চায় আপনার অল্প কিছু খরচে, আশা করি সবাই খুশি। শুধু আমি না, আশা করি সবাই চায় যে আর না বন্ধ হোক।
1: কাহা যাতা হ্যায় ভগবান কে ঘর দের হো সকতি হ্যায় লেকিন অন্ধের কবি নাহি, ইয়ানি অন্যায় নাহি হো সকতা। काश की भारतीय अदालतों को लेकर भी ये कहा जा सकता। यहां इंसाफ तो होता है लेकिन इंतजार लंबा होता है, ज्यादातर बहुत देरी से होता है। हमारे देश के अलग अलग अदालतों में 4,98,00,000 केसेस पेंडिंग है जिन पर लगातार सुनवाई चल रही है। कई मामलों में तो सुनवाई महीनों चलती है, वर्षों चलती है। पेंडिंग केसेस को लेकर अदालतों पर व्यंग किया जाने लगा है कि केस पिता के जमाने में शुरू होता है, पोते के दौर तक चलता रहता है। लेकिन सच ये है कि अगर अदालतें चाह ले तो फैसले चंद महीनों में आ सकते हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि यह खबर आज आपको दिखानी चाहिए। पुणे की एक अदालत ने रेप और हत्या के दोषी को केवल 60 दिनों के अंदर फांसी की सजा सुना दी है। पुणे में 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था। लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इस अपराध को 65 साल के, सोचिए 3 साल की बच्ची, 65 साल के एक व्यक्ति ने अंजाम दिया। इस पर पॉक्सो केस की सुनवाई एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई जिसने 60 दिन के अंदर सुनवाई को खत्म किया, दोषी को फांसी की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया जिसे पीड़िता के साथ बर्बरता की गई थी। ये वारदात 1 मई को हुई थी जब पीड़ित बच्ची अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए नानी के घर आई हुई थी। पेशे से मजदूर 65 साल के इस अपराधी ने बच्ची बहला फुसला कर किडनैप किया, फिर वारदात को अंजाम दिया। इस केस की सुनवाई में जजेस ने माना कि पीड़ित बच्ची है उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। बच्ची के शरीर पर चोट के 18 निशान थे। इस बर्बरता की वजह से जजेस ने माना कि अपराधी को अपराध के वक्त कानून या सजा का डर नहीं था। इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर जांच अधिकारियों, फोरेंसिक टीम्स ने भी जांच की प्रक्रिया तेजी से खत्म की और आखिरकार 29 जून को दोषी भीमराव को फांसी की सजा दी गई। इस फैसले के साथ अगर आप देखिए, और इस फैसले के बाद इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि अगर कोर्ट चाहे तो न्याय में देर नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक तरफ पुणे की इस अदालत का फास्ट ट्रैक फैसला है तो दूसरी तरफ कश्मीर पंडित जो नर्स थी सरला भट्ट, उनकी किडनैपिंग और हत्या से जुड़ा मामला भी है जिसमें 36 साल बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। आप सोचिए 36 साल के बाद इस केस की चार्जशीट फाइल हुई, और अब इस केस की सुनवाई में काफी लंबा वक्त लग सकता है। कश्मीरी पंडित सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली थी। वो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स थी। 18 अप्रैल 1990 को उन्हें ड्यूटी जाते वक्त अस्पताल के बाहर से किडनैप कर लिया गया था। किडनैपिंग और हत्या उस दौर में की गई जब घाटी में आतंकवाद फैल रहा था और वहां के कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था। इन आतंकियों ने सरला को बुरी तरह से टॉर्चर किया, बाद में गोली मार दी थी। 19 अप्रैल को उनका शव बुरी स्थिति में मिला था। उनके शव के पास एक नोट भी बरामद हुआ था जिसमें उन्हें मुखबिर बताया गया था। सरला भट्ट का यह केस करीब 34 वर्षों तक जम्मू कश्मीर पुलिस के पास रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल पहले ही इस केस को जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया। अब 2 साल के अंदर ही जम्मू कश्मीर एसआईए ने 737 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें आतंकी संगठन जेकेएलएफ के तत्कालीन कमांडर यासीन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस केस में खुर्शीद अहमद चालको, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी और गुलाम मोहम्मद टपलू को आरोपी बनाया।

0: छीनी जा रही थी, जो कश्मीर को अपना मानकर जाने से इनकार करता था उसे सरला की तरह मार दिया जाता था। अब 36 साल बाद सरला भट्ट को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा देखते रहिए।
1: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Kent se pani hota hai 100% pure.
5: Kent Aro purity dikhata bhi hai.
4: कंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
6: मैं करता हूँ ना,
7: मैं करूँगा।
8: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
6: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
8: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
6: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
8: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
6: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
5: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
7: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
8: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
9: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
10: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
11: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
12: In association with Hind, bade aaram se.
13: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Vimal, bolo zubaan kesri.
14: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
15: Punjab National Bank, bharose ka prateek.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर चुनावी धुरी का केंद्र राम मंदिर ही होगा, क्योंकि चंदा चोरी के आरोपों के बाद सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर से संबंधित कई जिम्मेदार पदों पर संघ के लोगों को जानबूझकर जगह दी गई, और कांग्रेस मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखने पर भी सवाल उठा रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी चंदा चोरी पर मचे बवाल के बीच दल बल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों को इस मामले में एक आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। उधर एफआईआर में नाम नहीं होने के बावजूद पुलिस ने चंपत राय से कई घंटे पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो चंपत राय ने पुलिस से कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कोई हेरफेर ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया, इस पर चंपत राय का जवाब था जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही। जांच में जुटी पुलिस ने 7 बैंकों से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है, ये रिकॉर्ड ट्रस्ट के खाते और आरोपियों के निजी खाते से जुड़े हैं। एसबीआई ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। एसबीआई की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। अयोध्या में एसबीआई की नया घाट ब्रांच भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रांच में 8 में से 7 आरोपियों और मंदिर ट्रस्ट के खाते भी हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने इससे खिलवाड़ किया। खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूंसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप देखता रहा। इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चढ़ावा चोरों को संरक्षण दिया गया, इसीलिए लंबे वक्त तक चंदा चोरी के मामले को दबाया गया। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारिणी की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में उम्मीद है कि ट्रस्ट चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र को बुलाकर उनका पक्ष भी सुने। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, उनसे डरिए जो छल करते हैं। नमस्कार।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: पीएम मोदी की सचिवों के साथ चार घंटे की हाई लेवल मीटिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन, विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच, दानपत्र खोलने से लेकर गिनती तक मिली खामियां, घेरे में 6 से 7 बैंक्स, कांग्रेस ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच, सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चा के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान, रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका, जन्म के आधार पर बरकरार रहेगी नागरिकता, नागरिकता नियमों को बदलने की कोशिश नाकाम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस तक। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक दवा व्यापारी आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपनाकर और मोहम्मद अली बनकर सबको चौंका दिया और अब मोहम्मद अली से आयुष मलिक बनना यानी हिंदू धर्म में वापसी करके फिर आयुष ने सबको चौंका दिया। आखिर क्या है आयुष से अली और अली से आयुष बनने की पहेली? तो आज हम आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी करेंगे डीकोड। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? आयुष का मिशन अली क्या था? आइए दिखाते हैं।
1: आयुष से अली और अली से फिर आयुष। पहले इस्लाम धर्म अपनाया, अब हिंदू धर्म में वापसी। पहले नमाज पढ़ी, निकाह किया, अब फिर से पूजा करने लगा। आयुष के धर्मांतरण और घर वापसी की पूरी कहानी डीकोड। अली का पासवर्ड 2047, डायरी में आई एम ऑन मिशन का सच। ये वही आयुष है जिसके अली बनने पर उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे देश में धर्म परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन जो आयुष पहले इस्लाम धर्म अपनाकर अली बना, अब वो घर वापसी यानी फिर से हिंदू धर्म अपनाकर आयुष बन गया है। आयुष ने घर के मंदिर में पूजा की, आरती का दीपक जलाया और बजरंग बली के सामने आयुष अली से फिर आयुष हो गया। साथ ही आयुष फिर से हिंदू धर्म अपनाने की बात भी कर रहा है।
2: मेरा नाम आयुष मलिक, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ। आप मुझे माफ करना।
3: बेटा कैसा है अभी आपका? क्या कर रहा है?
4: बिल्कुल स्वस्थ है।
3: पूजा पाठ करा? मस्जिद तो नहीं जाता?
4: नहीं नहीं, कहीं नहीं पूजा पाठ किया। आपके सामने फोटो है, वो सत्य है बिल्कुल, जो है वो सब सत्य है। मेरे साथ में बैठ के पूजा, मेरे सामने बैठ के पूजा कर रहा हूँ।
5: संस्कारों का पोषण व्यवस्थित रूप से होगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई हमको परिवर्तित कर पाएगा, पर उसका स्वागत है।
1: आप आयुष के अली बनने और अली से फिर आयुष बनने की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आज आयुष पूजा कर रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है और ना चेहरे पर दाढ़ी है, माथे पर तिलक लगा है। जबकि 8 जून को जब आयुष अली बनकर सबके सामने था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी नमाज पढ़ने की तस्वीरें भी सामने थी और अली बनने की कहानी खुद आयुष ने अपनी जुबानी सुनाई थी।
6: धर्म परिवर्तन कहीं पर नहीं होता। धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
3: अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब
6: देखता था सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था। डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
3: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो
6: धर्म परिवर्तन क्यों कराते?
3: अच्छा,
6: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गए और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
3: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
6: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ।
1: उत्तर प्रदेश में शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक के मोहम्मद अली बनने का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयुष मलिक शामली के एक जाने माने डॉक्टर के साथ बकरीद पर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आया और 4 जून को मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया और ये बताया कि भारत मेडिकल स्टोर के मालिक के एक लौते बेटे को चांदनी कुरैशी ने फंसा लिया है, दबाव में आकर पूरे परिवार ने धर्म बदल लिया है।
7: हमने 4 जून को आवाज उठाई थी कि आयुष मलिक अपने सनातन धर्म को छोड़कर के इस्लाम मजहब में चला गया। हमें आशा थी कि वो वापिस सनातन धर्म में अवश्य आएगा।
1: जब आयुष मलिक से सवाल हुए तो उसने बताया कि वो चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से 4 साल पहले निकाह भी कर चुका है। आयुष ने चांदनी कुरैशी की पूरी कहानी भी बताई।
6: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
8: अच्छा,
3: किस तरह से आप मोहम्मद अली बने इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
6: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
8: अच्छा,
3: कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
6: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था। कभी कभार चले गए तो कॉन्टेक्ट में, पता लग गया कि वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है बस।
1: आपको बता दें कि 6 जून को आयुष मलिक के पिता ने शामली पुलिस में आयुष के अली बनने पर मुकदमा दर्ज करवाया था और कहा था कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने आयुष की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनके बेटे का धन परिवर्तन करवाया और फिर फर्जी निकाह भी किया।
4: चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है। फर्जी निकाह नामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में, जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब आयुष ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। तो मौलानाओं का कहना है कि आयुष और चांदनी कुरैशी की शादी भी खत्म हो चुकी है।
7: जैसा कि वो अब वापस हुआ है, अब उसका चांदनी कुरैशी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई निकाह नहीं रहा, वो उसका ख़त्म हो गया। जिस दिन उसने वापसी मजहब किए तो उसका मसला उस चीज़ से ख़त्म हो गया, मियां बीवी का ताल्लुक ही ख़त्म हो गया है।
0: अब तक यही जानकारी थी कि चांदनी का पिता जूस का ठेला लगाता था और चांदनी कुरैशी का भाई अमन आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। आयुष के पिता के अनुसार आयुष की संपत्ति को हड़पने के लिए एक मौलाना के साथ मिलकर आयुष का ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन आयुष की हिंदू धर्म में वापसी के साथ ही कई और बड़े खुलासे हुए हैं।
1: क्या था आयुष का मिशन अली? चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था? आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बन जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन। ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए। अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था? क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? आखिर क्या है आयुष का मिशन अली?
5: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है, लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उस दौरान एक बड़ा चाकू और एक डायरी मिली थी। डायरी में आयुष मलिक ने लिखा था आई एम ऑन मिशन।
1: शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047। सूत्रों की माने तो 2047 PFI का कोड वर्ड है, जब NIA समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने PFI के बरामद किए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया। PFI ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि PFI ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है।
5: आयुष मलिक के धर्मांतरण के बाद उसके पिता देवराज मलिक ने शामली पुलिस को शिकायत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके परिवार वालों ने एक प्लान के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन करवाया था और उनकी नजर उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर थी। उसके बाद इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी और जांच हुई थी। जांच के बाद जो चांदनी कुरैशी थी उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके पिता को गिरफ्तार किया था।
1: आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था। तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: और अब खबर चढ़ावे की चंपत लीला की। चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसीज ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और करने वाली है। अब सवाल यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे की चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ किया है, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का हिस्सा पहुंचा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो फिर लंबे समय से चढ़ावे की चोरी का अधर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसीज को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं। सवाल यह भी कि वो नाम दुनिया के सामने अब कब आएंगे।
1: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते एक साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
8: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है, साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
1: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों की निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
9: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
1: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
10: मैं राम के लिए लड़ा हूँ, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मैं, मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
1: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
11: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे टीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
12: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
11: वही कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा यहाँ से चोरी भया तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
12: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
11: हाँ,
12: कौन हो सकता है?
11: देखिए, चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
0: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सवाल के कटघरे में खड़े हैं चंपत राय। ये वही चंपत राय हैं जिनकी अनुमति के बिना राम मंदिर में पद्दा भी नहीं हिलता था, क्योंकि चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी। ऐसा माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से खड़े हुए बवंडर में चंपत राय पर शिकंजा कसना तय है। कारण है, ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। तो आज चंपत राय का किरदार और उनकी भूमिका पर सवाल ही सवाल हैं। चंपत राय पर लग रहे आरोपों का जो सच जानने के लिए पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है और लग रहा है चंपत राय फंस रहे हैं।
1: चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से आज 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। अब चंपत राय के बयान का मिलान दूसरे गवाहों और मौजूद दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यही कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली, संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो गई और FIR भी दर्ज करवाई गई। आरोपी टिन्नू को लेकर सफाई देते हुए चंपत राय ने यही दावा किया कि टिन्नू को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस ने पूछा, रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? चंपत राय ने कहा, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का जिक्र किया।
13: 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है।
1: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है। मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
14: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान ने क्यों दी हाथ काटने की धमकी। आप देखते रहिए।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
7: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
8: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
9: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
13: हमने तब भी सवाल किया था।
14: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
13: हम आज भी सवाल करते हैं।
14: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
13: ऑपरेशन अग्नि,
14: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
13: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
15: In association with
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर सरकार। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। चंपत राय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने सियासी पिच पर चढ़ावा चोरी पर सियासी बाउंसर मारना शुरू कर दिया है। ऐसे में सीएम योगी भी अब हिंदुत्व की पिच पर चौके छक्के मारने उतरे हैं। अखिलेश ने अयोध्या को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण भूमि वाला चैलेंज दे दिया। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घिरी बीजेपी 2027 की राजनीति में मथुरा की एंट्री करवा रही है। 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से चुनावी शंखनाद करना चाहती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सीएम योगी ने क्यों उछाला, इसकी कैलकुलेशन भी अब आपको समझाते हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई, और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट भी 87-89% तक पहुँचे।

0: ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक दिन पहले यूपी के रामपुर का विकास प्राधिकरण आजम खान की यूनिवर्सिटी को नोटिस थमाता है और दूसरे दिन सीएम योगी का कार्यक्रम उसी रामपुर में होता है। जिस रामपुर में सीएम योगी 690 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं की सौगात इलाके के लोगों को दे रहे हैं, उसी रामपुर में एक समाजवादी नेता की विकास परियोजना सियासत के जाल में फंस गई है। दरअसल यूपी में जिस तरह योगी राज के अंदर सख्त हुकूमत के कानूनी हाथ संभल में नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी ही सख्ती रामपुर के आजम खान की मिल्कियत के खिलाफ भी नजर आ रही है। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने कहा है कि आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। आजम खान की इस यूनिवर्सिटी को लेकर एक नहीं तमाम तरह के विवाद हैं। जमीन हथियाने से लेकर भवन निर्माण और पुस्तकालय की किताबों से लेकर नक्शा विवाद तक आजम खान के ऊपर कानूनी कार्रवाई का कहर टूट रहा है। अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अवैध घोषित किया गया है। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया गया है। इसके अलावा जौहर ट्रस्ट पर 450 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा और 12 ए की छूट वाला रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द किया जा चुका है। आरोप है कि समाजवादी सरकार में जल निगम के 17.76 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर यूनिवर्सिटी की चार इमारतें बनाई गई थी जिसकी अब कीमत 308 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे जमीन वापस सरकार को मिल चुकी है। आज सीएम योगी के लिए रामपुर और आजम खान की अली जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी पर हमले का बड़ा बहाना बन चुका है। समाजवादी हुकूमत में खानदानी विरासत को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे सीएम योगी अब हर मंच से शासन का फर्क बताते हैं और उसमें समाजवादी सरकार के दौर के रामपुर और योगी सरकार के रामपुर का फर्क बताना नहीं भूलते। आमिर खान, रामपुर आज तक।
1: यह है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी, जो इन दिनों जांच एजेंसियों के निशाने पर है। जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में 38 इमारतें अवैध पाई गई हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय के सचिव और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
2: इसमें ये पाया गया है कि जो उसके अंदर निर्माण है उसमें से मात्र दो ही निर्माण है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: स्वागत एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पानी के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है और पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान का एक बार फिर से बड़बोलापन सामने आया। जी हां, एक बार फिर से पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी और अब की बार नवाज शरीफ के पिट्ठू और पाकिस्तान के जलवायु मंत्री ने यह धमकी दी। कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो हम उन हाथों को काट देंगे। इससे साफ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है कि पीएम मोदी के एक निर्णय से पाकिस्तान बिन पानी जैसे मछली तड़पती है ठीक वैसे ही तड़प रहा है। तो आइए आपको दिखाएं पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान की धमकियां बेलगाम।

0: पानी के लिए तड़पता पाकिस्तान, धमकियां बेलगाम। भारत का वाटर बम, पाकिस्तान का निकलने लगा दम। भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, हाथ काटने की नापाक धमकी। मोदी के एक गांव से पाकिस्तान में पानी पर मचा हाहाकार। पाकिस्तान जितनी धमकियां देगा, पानी के लिए उतना ही तरसेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, तो पाकिस्तान अब पानी के लिए बिन पानी मछली की तरह छटपटाने लगा है। और पाकिस्तान की ये छटपटाहट दुनिया के सामने आने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मात खाने वाला पाकिस्तान कभी पानी पर जंग की धमकी देता है, तो अब हाथ काटने की गीदड़ भभकी दे रहा है। अब आपको पाकिस्तान का बड़बोलापन सुनवाते हैं। ये है पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक, और उनके साथ बैठे हैं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह सरार। दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुसद्दिक सीधे भारत को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उसका हाथ काट देंगे।
1: तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, दो मर्तबा एक डेढ़ साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने दो मर्तबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मर्तबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है, और हमारे पास तो ट्रीटी है। ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे सबके सामने।
0: एक मंत्री हाथ काटने की गीदड़ भभकी देता है तो साथ में बैठे दूसरे मंत्री अताउल्लाह तरार कहते हैं कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से अभी भी लागू है। भारत इसे ना तो एक तरफा स्थगित कर सकता है, ना रद्द कर सकता है, और ना ही इसमें बदलाव कर सकता है। पहले तो पाकिस्तान के इन दोनों मंत्रियों को सिंधु समझौते पर पीएम मोदी का क्लियर बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
2: भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है।
0: और अब पानी के लिए हाथ काटने की धमकी देने वाले पाकिस्तान के जलवायु मंत्री की पाकिस्तान में क्या औकात है, पाकिस्तान के लोग उन्हें किस नजरिए से देखते हैं, वो भी सुनवा देते हैं।
3: मुसद्दिक मलिक साहब को अगर मैं कहूं तो ये काफी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं का, और साथ ही साथ पीएमएलएन यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। इससे पहले एडवाइजर भी रहे नवाज शरीफ साहब के, लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सुनकर यकीनन आम पाकिस्तानी अपना सर ही पकड़ के बैठ सकता है। यानी आप हर तरफ, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, आप दोनों के साथ अपने झगड़े बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसलिए कि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि जहां तक मुझे मालूम है, कम से कम मुसद्दिक मलिक साहब की फैमिली जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं रहती है, ये कहीं अमेरिका या यूरोप में इनकी फैमिली है, और यहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं कि ये जो भी करें, और उसके बाद ये हर कंट्री के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी लगा के रखते हैं।
0: पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान जितनी धमकियां और गीदड़ भभकियां देगा उतना ही पानी के लिए तड़पेगा। वैसे पानी के लिए सूखते गले को अपनी धमकियों से और सुखाने वाले ये पाकिस्तान के इकलौते मंत्री नहीं हैं, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी भारत को पानी पर जंग की खोखली धमकी दे चुके हैं।
4: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
5: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली। ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए।
0: और तो और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पानी के लिए भारत के खिलाफ जंग की साजिशें रचने में जुटे हैं। जी हां, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रेड भी तैयार किया है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है। यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है।
6: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
0: पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक न पहुंचे इसके लिए दो प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तो भारत सिंधु नदी को ब्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण पर काम कर रहा है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से ब्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। अनुमान के मुताबिक इस काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेंगे और साल 2028 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। दूसरा, भारत शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी रावी नदी का ज्यादा पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान में जाता है। ये बांध इस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 5 दशक पहले 1979 में सोचा गया था। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए ये योजना बनाई गई थी।
7: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed.
0: भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब पाकिस्तान का पानी रोकने का इंतजाम भी पूरा कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकियां ही देता रह जाएगा, पानी तो उसे मिलेगा नहीं। आज तक ब्यूरो।
8: और अब खबर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। ईरान में ऐतिहासिक अंतिम संस्कार की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नई नई साजिशें रच रहे हैं। उद्देश्य खामनेई के अंतिम संस्कार को किसी तरह एक बार फिर से टाला जा सके। बीते दिन ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों को भी इसी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या जिस दिन ईरान में अली खामनेई का जनाजा उठेगा, क्या उसी दिन ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी में जुटे हैं?

0: खामेनेई की अंतिम विदाई में ट्रंप का खलल। क्या मौके का फायदा उठाना चाहते हैं ट्रंप? क्या ट्रंप चाहते हैं टल जाए अंतिम संस्कार? ट्रंप का घातक प्लान अंतिम संस्कार या सरेंडर? अंतिम संस्कार की तैयारी, ट्रंप करेंगे बमबारी। 17 जून को अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत किए। दावा किया कि शांति के वास्ते पूर्ण युद्ध विराम के रास्ते अगले 60 दिन की वार्ता में खोजे जाएंगे। इधर समझौता हुआ, उधर ईरान ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह का आधिकारिक ऐलान कर दिया। युद्ध के चलते इससे पहले दो बार खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम पहले ही टल चुका था। जैसे ही खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। बहाना हुर्मुज बना। ट्रंप को पता था कि ईरान खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा है, लिहाजा मौजूदा वक्त में तनाव या टकराव नहीं चाहता। ऐसे में ईरान पर दबाव बढ़ाने का यही वक्त है। हुआ भी वही, बार पलटवार चंद घंटों के बाद रुक गया, क्योंकि ईरान ने खून का घूंट पीकर अमेरिका पर नए हमलों को रोक दिया, ताकि 4 जुलाई से शुरू हो रहे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कोई खलल ना पड़े, ताकि एक बार फिर जंग के चलते अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को टालना ना पड़े। ये पहला मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों के बावजूद ईरान ने युद्ध को बढ़ाने के बजाय खत्म करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। वजह सिर्फ एक है, अली खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम। दरअसल खामेनेई की मृत्यु के 4 महीने से ज्यादा वक्त के बाद ईरान और इराक में 5 दिनों तक चलने वाले समारोहों के बाद उन्हें 9 जुलाई को दफनाया जाएगा। ऐसे में ईरान यही चाहता है कि अंतिम संस्कार पूरा होने तक शांति बनी रहे, युद्ध के मैदान में लौटने की नौबत ना आए। लेकिन ईरान को उकसाने का कोई मौका अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं छोड़ रहे हैं।
1: ईरान ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया तो अमेरिका के विमानों ने उनके मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने की जगहों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। मुझे नहीं लगता कि वे सबक सीखेंगे। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब हमें उस काम को सैन्य तरीके से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।

0: और दामाद जेरेड कोश्नर कतर की राजधानी दोहा वार्ता के लिए पहुंच चुके हैं। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका और ईरान वार्ता को लेकर बड़ा दावा किया गया। कतर के विदेश मंत्रालय ने मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए बताया है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बैठक नहीं हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधियों की ईरानी अधिकारियों से सीधी मुलाकात तय नहीं है, लेकिन ट्रंप के प्रतिनिधि मध्यस्थों से मिलेंगे और वार्ता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। कतर ने यह भी बताया है कि ईरान के फ्रीज हुए 6 अरब डॉलर अब तक उसे ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। सरल शब्दों में समझे तो ईरान ने युद्ध का नहीं बल्कि अमेरिका के बॉयकॉट की नीति अपनाई है। वजह एक है, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामिनेई का अंतिम संस्कार। ईरान यही चाहता है कि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम पूरा होने तक अमेरिका के साथ सीधे टकराव के बजाय शांति समझौते की शर्तों पर अडिग रहना है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान के खिलाफ आग उगल रहे हैं।
1: And we're going after the bad ones first. We're getting them out. Last week, we signed a historic agreement to accomplish what no president has ever been able to accomplish before, that Iran will never have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And thanks to the power and skill of the United States Armed Forces, Iran today has no Navy, no Air Force, no anti-aircraft capability, no radar, virtually no manufacturing. Their drone capacity has been cut by 82%. Their missile capacity has been cut by 80%.
0: ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान ने अपने विरोध के जरिए दिया है। वहीं ट्रंप की धमकी का जवाब युद्ध भूमि में नहीं बल्कि एक अखबार में छपे लेख के जरिए दिया गया है। आप देख सकते हैं, ईरानी अखबार हमशहरी ने पहले पेज पर ये तस्वीर छापी है। तस्वीर में ट्रंप को एक स्नाइपर स्कोप के निशाने पर दिखाया गया है, जिसका शीर्षक है, बदला निश्चित है। मतलब आज नहीं तो कल ईरान अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला जरूर लेगा।
1: We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone.
0: युद्ध भले ही थम गया, लेकिन अली खामिनेई और ईरान के दूसरे बड़े नेताओं और कमांडरों की मौत की आग आज भी ईरान में भड़क रही है, और ट्रंप के ईरान विरोधी बयान इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार खामिनेई के अंतिम संस्कार से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं।
1: And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people Iran if we didn't do that? And we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But they can't do that stuff. But very soon they will end every foe. We had everybody was winning, and we're going to continue stronger, maybe stronger.
0: ट्रंप को पता है कि ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटा है। इस कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बावजूद इसके, ट्रंप की पूरी कोशिश है कि एक बार फिर अंतिम संस्कार का आयोजन किसी तरह टल जाए। दरअसल 4 जुलाई से शुरू होने वाला अंतिम संस्कार कार्यक्रम 6 दिनों तक चलेगा। ईरान ने 6 दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार की घोषणा कर दी है।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों।
10: यूरोप इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। देश के 54 विभागों में रेड अलर्ट जारी है और कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के चलते अब तक 1000 से अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी से बिजली उत्पादन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जर्मनी में तो गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है। आमतौर पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माने जाने वाला यूरोप ने कभी ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दशकों तक कभी तापमान 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री के पार गया ही नहीं था, लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर भूमध्य सागर के ऊपर गर्म हवाओं के चलते यूरोप उबल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय गर्मी के प्रकोप झेल रहे हैं। आमतौर पर ये पूरा वो इलाका होता है जो ठंडा रहता है, लोग ठंडियों में यूरोप की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय यूरोप में हाहाकार है, तापमान 40 डिग्री के पार है और अब इसका असर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को भी अपनी चपेट में ले रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी खतरनाक हीट वेव अब लगभग हर साल देखने को मिल रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: बत्तीस साल बाद आखिरकार हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबित जल बंटवारे के मुद्दे पर समझौता हो गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने MOU साइन किया। यह समझौता 32 साल पहले हुआ था, लेकिन नहर व्यवस्था न होने से इस पर अमल नहीं हो पाया। अब इस नए समझौते के तहत मानसून के महीनों में हथनी कुंड बैराज से एक भूमिगत जल पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
2: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है।
1: समझौते के बाद रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि यमुना का अतिरिक्त पानी राजस्थान भेजे जाने से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में भूजल रिचार्ज कम होने की आशंका है।
3: पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा वो पीने के लिए उपयोग होगा।
1: राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जमीन अधिग्रहण, पाइपलाइन निर्माण और निगरानी की जिम्मेदारी दोनों राज्यों के बीच तय होगी। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।

0: बीते एक साल में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण यानी SIR के बाद अब इस प्रक्रिया का नया चरण आज से शुरू हो गया है। चुनाव आयोग आज से 5 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जिसमें दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड और मेघालय शामिल हैं। आज से घर घर जाकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू होगा, जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से इन राज्यों की वोटर लिस्ट में सुधार होगा।
1: 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR यानी मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इस सिलसिले में हम देखें तो 5 राज्यों में यानी कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इसमें 30 जून से घर घर जाकर मतदाताओं के सर्वेक्षण का काम शुरू हो रहा है। इसमें CEO नई दिल्ली के यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने घोषणा की है कि 30 जून से घर घर में गणना फॉर्म दिए जाएंगे, BLOs पहुंचेंगे। लोगों को चाहिए, उन्होंने अपील की है कि लोग जितनी जल्दी हो गणना फॉर्म भरें और साथ ही जो समुचित दस्तावेज हैं वो भी लगाएं। जिन लोगों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, बस इस बात की तस्दीक करा देनी चाहिए कि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम था। जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें अपने गणना फॉर्म के साथ अपने माता पिता या उनमें से किसी एक का नाम 2002 की मतदाता सूची में हो, ऐसा उन्हें उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी यानी तस्दीक करनी पड़ेगी।
0: दरअसल SIR की शुरुआत पिछले साल 24 जून को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। इस चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष जांच का काम किया गया। अब तक चुनाव आयोग यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और छत्तीसगढ़ में SIR करवा चुका है और आज से इसका अगला चरण शुरू हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो इस अभियान का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। दूसरे चरण के पुनरीक्षण के दौरान सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मतदाता सूची से रिकॉर्ड 2.04 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर रहा, जहां 83.86 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए। अब 5 राज्यों में शुरू हुई इस प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट में बदलाव देखने को मिल सकता है। संजय शर्मा, आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ चार घंटे की हाई लेवल मीटिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन, विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच, दान पत्र खोलने से लेकर गिनती तक की मिली खामियां, घेरे में 6 से 7 बैंक, कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच, सांसद रुचि मीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने हैं देश के नए सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान, रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। और ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका, जन्म के आधार पर ही बरकरार रहेगी नागरिकता, नागरिकता नियमों को बदलने की कोशिश नाकाम।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इधर पिछले एक हफ्ते से हर एक की नजर पुणे की सिया पर थी और उधर पुणे से दूर मेघालय में हनीमून पर ले जाकर अपने ही पति का कत्ल करने वाली सोनम बड़ी खामोशी से आजाद हो गई। आईपीसी से बीएनएस बनी कानून की नई धाराओं की मामूली सी हेर फेर के चलते मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम की जमानत की अर्जी बहाल रखी। आइए आपको बताता हूं कि नए और पुराने कानून में उलझकर मेघालय पुलिस ने कहां पर गलती कर दी। इधर पिछले एक हफ्ते से सभी की निगाहें पुणे की सिया पर टिकी थी। सिया और उसकी खाई वाली कहानी में सभी डूबे हुए थे। इसी बीच बड़ी खामोशी से मेघालय से एक खबर आई और किसी का ध्यान तक उस तरफ नहीं गया। असल में ये खबर इंदौर की उस सोनम की थी जिसकी कहानी असल में हूबहू पुणे की सिया ने दोहराई थी। सिया तो अभी पुणे पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन इधर सोनम जमानती जिंदगी पर आजाद हो गई। मर्डर जैसे संगीन जुर्म में 11 महीने के अंदर अंदर कोई आरोपी कातिल जमानत पर रिहा हो जाए, अमूमन ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। फिर सोनम ने तो जो किया उसके बाद इतनी आसानी से और इतनी जल्दी वो जमानत पर बाहर आ जाएगी, लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे। कमाल ये कि ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट सोनम को बेकसूर मान रही थी, मगर फिर भी कोर्ट ने सोनम को जमानत पर क्यों रिहा किया, तो इसका जवाब जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शायद, जी हाँ शायद, ये देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें कानून की एक गलत धारा और मेघालय पुलिस की एक मामूली सी चूक ने सोनम को जेल से बाहर निकाल दिया। दरअसल मेघालय पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद कत्ल से जुड़े मामले में नए नए जन्मे भारतीय न्यायिक संहिता यानी बीएनएस की जो धारा लगाई थी वो कानून की किताब में तो छोड़िए किसी अदालत या पुलिस स्टेशन के पन्नों तक में दर्ज नहीं। यानी मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में सोनम पर जो धारा लगाई उस धारा का कोई वजूद ही नहीं। अब जब वो धारा ही नहीं तो अदालत को कैसे पता चलेगा कि पुलिस ने सोनम को किस जुर्म में पकड़ा है, और जब पुलिस को ही पता नहीं तो पुलिस सोनम को कैसे बताएगी कि उसे किस जुर्म में उसने गिरफ्तार किया है। ये लाइनें हमारी नहीं है, ये मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है सोनम को जमानत देते हुए। अगर अब भी आप पूरी कहानी नहीं समझ पाए तो चलिए आसान लफ्जों में समझाता हूँ। पिछले साल मई में राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 3 किराए के कातिल थे और 1 सोनम का प्रेम। बाद में मेघालय पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और सोनम को अपने ही पति के कत्ल के इल्जाम में आरोपी नंबर 1 बनाया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमा शुरू होते ही सोनम ने शिलांग की निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगा दी। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। असल में 1 जुलाई 2024 से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सीआरपीसी और आईपीसी में बड़े बदलाव करते हुए न सिर्फ इनके नाम बदल दिए गए बल्कि बहुत सी धाराएं या तो हटा दी गई या फिर कई धाराओं को एक साथ जोड़ दी गई। अब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का जन्म हो चुका था। इस बीएनएस के तहत देश में होने वाले तमाम जुर्मों को कुल 358 धाराओं में लपेट दिया गया। यानी बीएनएस के तहत देश में होने वाले हर तरह के जुर्म के लिए कुल 358 धाराएं हैं। अब जाहिर है आजादी के बाद से चली आ रही आईपीसी की धाराओं की जगह जब बीएनएस और उसकी नई धाराएं आईं, तो आम लोगों को छोड़िए खुद पुलिस और कानून के रखवालों को इसे समझने, रटने और याद करने में मुश्किलें आने लगी। मसलन पहले लोगों की जुबान पर रटा हुआ था कि आईपीसी की धारा 300 यानी केस मर्डर का है और धारा 302 यानी कितनी सजा उस मर्डर के लिए मिलेगी। बीएनएस में धारा 300 की जगह 100 हो गया, 101 मतलब मर्डर केस का है, जबकि बीएनएस में 302 की जगह 103 नई धारा बनी। 103 ये बताती है कि मर्डर के लिए क्या सजा मिलेगी। सोनम के केस में गलती ये हुई कि मेघालय पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 यानी मर्डर के केस की जगह 403 लिख दिया। अब चूंकि बीएनएस की धारा 358 पर आकर ही खत्म हो जाती है, तो जाहिर कानून की किताब में 403 नंबर की धारा कोई हो ही नहीं सकती। बस इसी एक गलती को शिलोंग की निचली अदालत ने पकड़ लिया। कोर्ट का कहना था कि जब धारा 304 है ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सोनम को किस जुर्म में पकड़ा गया है। यानी इस हिसाब से सोनम का भी उसका जुर्म पुलिस ने नहीं बताया होगा। इसीलिए निचली अदालत ने इसी साल 27 अप्रैल को सोनम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया। जाहिर है सोनम को जमानत मिल जाना हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। मेघालय पुलिस भी हैरान थी। इसी के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती दी। मेघालय हाईकोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई। उम्मीद यही थी कि हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सोनम की जमानत खारिज कर देगी, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट ने भी चौंका दिया।
1: And the accused had understood that that she was arrested for murder. Court has taken a different stand and given order that grounds of arrest were not made to be understood by the victim, by the accused. We have appealed for that. It does not mean that there'll be any difference in the trial.
0: दरअसल मेघालय हाई कोर्ट ने भी सोनम के केस में बीएनएस की वही 403 वाली धारा पकड़ ली, जो कहीं कानून में है ही नहीं। हाई कोर्ट का कहना था कि बीएनएस की धारा 403 जो वजूद में ही नहीं है, उससे कैसे पता चलेगा कि सोनम पर इल्जाम क्या है। हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि गलत धारा लगाने से ये भी पता चलता है कि खुद सोनम भी इस बात से अनजान थी कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा। इसीलिए निचली अदालत का फैसला सही है और सोनम जमानत की हकदार। मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून को इसी बिना पर मेघालय पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें सोनम की जमानत खारिज करने की गुजारिश की गई थी। अब सोचिए, कानून की एक छोटी सी गलती ने सोनम को वो आजादी दिला दी जो आने वाले कई बरसों तक शायद ही उसके हिस्से आने वाली थी। सोनम जमानत पर बाहर आने के बाद से ही शिलोंग में रह रही। मेघालय हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुद राजा रघुवंशी के माँ बाप भी हैरान हैं।
2: मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब तो बिल्कुल भी कि मतलब सोनम को मतलब जमानत की जगह मतलब जेल में डालना था, तो उसको जेल में तो नहीं डाला और उसको जमानत दी गई।
3: आपके जो वकील हैं उनने क्या पक्ष रखा था आपकी ओर से, ये कुछ आपकी जानकारी है?
2: इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, वकील ने क्या पक्ष रखा था ये विपिन को पता है।
3: क्या बातचीत हो रही थी इतने दिनों से आपके आपके वकील से, ये कुछ?
2: नहीं, ये जो बातचीत हो रही थी ना, वो तो मतलब बोल रहे थे कि नहीं सोनम को मतलब अपन सजा दिलवा के मानेंगे, मगर वो हमारा वकील ने भी क्या करा हमको कुछ समझ नहीं पड़ रही है कि सोनम जेल के अंदर होना चाहिए तो बाहर कैसे मतलब वो कर रही है।
3: लगातार टीवी चैनलों पे भी आ रही है, अपना इंटरव्यू दे रही है, बोल रही है कि मैं बाहर ही रहूंगी।
2: हाँ देखो, मैं वो बाहर रहने का बोल रही हूँ, मेरे को तो हमको तो कानून पे भरोसा था और कानून के भरोसे ही हम अभी तक बैठे थे कि कानून हमारा साथ देगा, मतलब हमारे राजा को इंसाफ मिलेगा, मगर हमको आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो बाकी लड़के उनको क्या इंसाफ मिलेगा? जब हमको नहीं मिला तो मतलब आगे क्या हम उम्मीद रख सकते कानून से मतलब कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि है ना, जब सोनम ने इतना बड़ा गुनाह करा उसको छोड़ दिया है, तो छोटे मोटे उनको तो वैसे भी छोड़ सकती है सरकार, मतलब कानून, मतलब क्योंकि हमको कानून पे अब विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि कानून हमारा साथ देगा, मगर है ना कानून पे से भी हमारा विश्वास अब हटते ही जा रहा है।
4: ये पड़ता कि सोनम को जमानत नहीं मिलना चाहिए, अगर उसको जमानत दे दिए तो अभी आप सरकार पूरे ऑल इंडिया देख रहे कि लेडीज है आदमी को क्यों मार रही है, उसकी वजह से सरकार से पूछो, सरकार ने पूछा थी कि क्यों मार रही है, सरकार तो वहाँ के आँख बंद करके बैठी है। ऐसे औरतों को अगर सरकार छूट देती रहेगी कई पति मरेंगे, कई पति मरेंगे, तो मेरा से कहने का मतलब उसको जमानत नहीं उसके रद्द करना चाहिए।
3: क्या लगता है पुलिस ने जो वहां पे कार्रवाई की है, जो केस डायरी उन्होंने
4: पेश उसके जो केस डायरी बनी थी 790 के चाशे बनी थी, उसमें एक भी दहाड़ नहीं लगी है, वो सोनम बाहर आ गई है। तो जो अभी तक वो केस के जो फाइल में अभी तक यही नहीं मालूम पड़ा कि इसको किस आधार पर छोड़ा है, इसका फायदा वो सोनम उठा रही है।
0: निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद सोनम ने शिलोंग में एक लोकल चैनल से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान सोनम के वकील भी उसके साथ थे। सुनिए जमानत पर बाहर आने के बाद सोनम ने क्या कहा।
5: आप क्या बोलना चाहते हैं, जो आपको बेल मिला है तब से क्या आप मतलब कंप्लाई कर रहे जो कंडीशंस कोर्ट ने रखा है?
6: हाँ, मैं हमेशा बेल कंडीशन जो मुझे मिला हुआ है यहाँ से उसको मैंने हमेशा मान्य किया है और मैं उस चीज को कभी नहीं तोड़ूंगी।
5: जब से बेल मिला कोर्ट से आप कहाँ रह रहे हो और आपकी खर्चा ये सब एक्सपेंसेस आप थोड़ा बता सकते हो कैसे मैनेज कर रहे हो?
6: मैं शिलोंग में ही रह रही हूँ, मैं शिलोंग से बाहर नहीं गई हूँ और मैं खर्चे के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, वो सब मेरा खुद का है। और मैं कहाँ रह रही हूँ शिलोंग के अंदर वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, सेफ्टी रीजन की वजह से।
5: अभी ये भी है चर्चा हो रहा है कि आपकी प्लान्स है शिलोंग छोड़ने के लिए, और मतलब कोई प्लान्स है इंदौर जाने के लिए अभी?
6: नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है अभी इंदौर जाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा केस चल रहा है यहाँ पे और जब तक वो ख़त्म नहीं होता मैं नहीं जाऊँगी। अभी ट्रायल चल रहा है और मेरा जनता से यही गुहार है और यही रिक्वेस्ट है कि वो अखवाओं में ना जाए, क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं जो भी है अभी मेरे बारे में चल रहा है वो।
5: मेरा ये भी क्वेश्चन था जो आपने ऑलरेडी जवाब दिया, फिर भी अगर कुछ और बोलना चाहते हो, जो पब्लिक ओपिनियन है आपके बारे में, आपको क्या लगता है डे वन से आपके अगेंस्ट है और आपका क्या ओपिनियन है ये पूरे इशू के बारे में?
6: मैं अभी इस चीज़ में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि अभी मेरा केस जो है वो ट्रायल में चल रहा है, तो मैं अभी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी।
5: मेरा आखिरी सवाल है, क्या बोलना चाहते हो आप, जो आपकी कमिटमेंट, मैं थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं अपने ऑडियंस के लिए, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट योर कमिटमेंट टू कोऑपरेटिंग विद द कोर्ट प्रोसीडिंग्स?
6: हाँ, मैं हमेशा कोर्ट का जो भी फैसला है उस पर मैंने कोऑपरेट किया है और मैं आगे भी उस चीज़ के लिए कोऑपरेट करूँगी, और मुझे जो भी कोर्ट से टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे उसको मैं मान्य करते हुए और मैं अपने न्यायालय का रिस्पेक्ट करते हुए मैं उन सारी चीज़ों को हमेशा से रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करती थी, करूंगी, और हमेशा उन सारी चीजों के लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है और रहेगी।
0: हालांकि मेघालय पुलिस ने ऐलान किया है कि अब वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मेघालय पुलिस का ये भी कहना है कि धारा लिखने के दौरान उनसे गलती जरूर हुई और बाद में उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी इस गलती को माना भी, मगर इस एक गलती के लिए सोनम के जमानत पर बाहर आने को मेघालय पुलिस गलत मानती है। आज तक ब्यूरो। तो सोनम तो आजाद हो गई, पर सिया का क्या होगा? क्या बिना चश्मदीद और ठोस सबूत के सिर्फ अपनी कहानी के बलबूते पुणे पुलिस चेतन और सिया को सजा दिला पाएगी? शायद पुणे पुलिस को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए पुणे पुलिस ने यह तय किया है कि वो सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी। इसके लिए अदालत में अर्जी दी जाएगी। वैसे इस बीच जिस जगह से केतन को खाई में धक्का दिया गया था, लौगढ़ के उस किले पर पहुंचने वाले लोगों ने उस जगह का नाम सिया पॉइंट रख दिया है।
7: सोनम तो कानून की एक छोटी सी धारा की गलती से आजाद हो गई, मगर क्या सिया को पुणे पुलिस केतन के कत्ल के इल्जाम में सजा दिला पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि केतन मर्डर केस में पुलिस के पास सिवाय सिया और चेतन के बयान के ऐसा एक भी पुख्ता सबूत या गवाह नहीं है जो ये साबित कर सके कि केतन को सिया या चेतन ने धक्का देकर खाई में गिराया था। सिया और चेतन को छोड़िए, पुलिस के लिए फिलहाल यही साबित करना मुश्किल है कि केतन खुद फिसल कर अनजाने में खाई में जा गिरा या उसे धक्का देकर गिराया गया था। इस केस को कानूनी नुक्ता नजर से समझने के लिए जरूरी है कि पहले ये समझा जाए कि पुणे पुलिस के पास अभी क्या क्या है और पुलिस किन किन सबूतों को सामने रखकर मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल पुलिस के पास सिया और चेतन है,
0: जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों के अलावा क्राइम सीन का रिक्रिएशन, सीसीटीवी में कैद बिना चेहरे के हुडी में चेतन, चेतन सिया के कॉल डिटेल्स, डिलीटेड मैसेज, मोबाइल डेटा और केतन चेतन और सिया के घर वालों के बयान है। पर जो सबसे अहम चीज मिसिंग है वो है चश्मदीद, यानी कोई ऐसा गवाह जिसने 18 जून की सुबह केतन को खाई में धक्का देते सिया या चेतन को देखा हो। वारदात के 12 दिन बाद भी ऐसा कोई भी गवाह अब तक सामने नहीं आया, न ही किसी के सामने आने की उम्मीद है। जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। अब बिना चश्मदीद के पुलिस क्या क्या करेगी या क्या कर सकती है? ऐसे केस में अमूमन हर पुलिस सरकमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूतों को ही अपना आखिरी हथियार बनाती है, यानी हालात के हिसाब से बाकी सबूतों की कड़ियों को जोड़कर एक पूरी कहानी तैयार करना। शर्त यह है कि इस कहानी में कहीं झोल नहीं होनी चाहिए, कहानी का सिरा शुरू से आखिर तक एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे कई केस पहले हुए हैं जिनमें बिना गवाह या ठोस सबूत के सिर्फ सरकमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर ही मुजरिमों को सजा दी गई, पर उन केसों में कहानी और कत्ल का मकसद बेहद मजबूत था। लेकिन आरोशी जैसे केस भी हुए हैं जिनमें कोई चश्मदीद नहीं था, बस कहानी ही कहानी थी, मगर उस कहानी की कड़ियां पुलिस या सीबीआई आपस में जोड़ने में नाकाम रही, जिसकी वजह से आरुषी का कातिल आज भी आजाद है। केतन के केस में पुलिस जिस एंगल से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है उसमें सबसे जरूरी मोटिव यानी कत्ल का मकसद पहले दिन से ही एक है, और वो ये है कि सिया केतन से नहीं चेतन से प्यार करती थी और चेतन से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ केतन से उसका रिश्ता तय कर दोनों की सगाई भी कर दी। सिया और चेतन की कॉल डिटेल, मैसेज, दोनों के मिलने जुलने और कई लोगों के बयान को पकड़कर पुणे पुलिस बड़ी आसानी से चेतन और सिया के रिश्ते साबित कर देगी। शायद खुद सिया और चेतन भी अपने रिश्तों की बात कबूल कर लेंगे, मगर चेतन और सिया प्यार करते थे और सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, बस इस बात पर उसने केतन को मार डाला, इसे पुणे पुलिस कैसे साबित करेगी? 18 जून की सुबह यानी हादसे वाले दिन सिया केतन के साथ थी जब केतन खाई में गिरा। सिर्फ इस बात पर सिया को केतन का कातिल नहीं ठहराया जा सकता। वो ये कहकर बच सकती है कि लोगढ़ किला वो जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि उसे तो खुद केतन जिद करके अपने साथ ले गया। सिया की माँ तो इस बात के सबूत अभी से मीडिया को दिखा रही है। अब अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि केतन की वजह से ही सिया उस दिन पहाड़ पर गई थी, तो सिया की केतन को खाई में गिराकर मारने वाली साजिश की थ्योरी वैसे ही फेल हो जाएगी।
8: कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, पर उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का।
9: तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी?
8: हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका
9: जी,
8: और मैंने केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के, उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा।
0: पुणे पुलिस के रिक्रिएशन या डमी ट्रायल से भी न कुछ फायदा होने वाला न नए सबूत मिलने वाले। पहाड़ी से धक्का देने की वजह से केतन गिरा या फिसलने की वजह से गिरा, दोनों सूरत में बॉडी कहां और कितनी दूर गिरी ये 100% कोई भी रिक्रिएशन सच नहीं बता सकती। एक ही आदमी को अगर आप एक ही जगह से 5 बार धक्का देकर गिराए या 5 बार फिसल कर वो खुद गिरे, तो जरूरी नहीं कि हर बार एक ही जगह पर जाकर गिरेगा। किले पर 18 जून को चेतन की मौजूदगी साबित हो भी जाए तो भी पुणे पुलिस के लिए ये साबित करना टेढ़ी खीर साबित होगी कि वो केतन को मारने के इरादे से ही वहाँ आया था। खुद केतन के पिता ने ये बात कही है कि सिया 19 जून को अपने बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को ये कहकर केतन को अपने साथ किले पर ले गई थी कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है। सिया और चेतन बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि केतन को मालूम था कि चेतन भी वहाँ आएगा, क्योंकि चेतन न सिर्फ सिया का बल्कि सिया के भाई साहिल का भी दोस्त है।
10: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्वेंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: यानी सिर्फ चेतन और सिया की दोस्ती या केतन से शादी न करने की सिया की कोशिश को केतन के कत्ल का मोटिव ठहराकर दोनों को सजा दिलाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए केतन के कत्ल की प्लानिंग की तमाम कड़ियों को भी जोड़ना होगा। शायद पुणे पुलिस को इस बात का एहसास है, इसीलिए पुणे पुलिस खासकर सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है, यानी उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बिठाना चाहती है। हालांकि इसके लिए पुलिस को न सिर्फ अदालत की इजाजत लेनी होगी बल्कि खुद सिया की भी इजाजत जरूरी है। और मान लीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट हो भी गया तो अदालत में उस टेस्ट रिपोर्ट की कोई मान्यता नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अभी सिया या चेतन पुलिस हिरासत में जो भी बयान दे दें, चाहे अपना जुर्म कबूल भी कर लें, मगर ये कोर्ट में मान्य नहीं होगा। अलबत्ता लाई डिटेक्टर टेस्ट से कुछ नए सबूत पुलिस जरूर निकाल सकती है, यानी ये केस पुणे पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, खासकर बिना चश्मदीद और कत्ल के मकसद को बिना मजबूत कड़ियों के साथ जोड़े, वरना केतन की कहानी सिर्फ पुलिस और मीडिया की कहानी बनकर ही रह जाएगी। इधर केस के बाहर इस केस से जुड़ी एक और नई जानकारी सामने आई। पता चला है कि सिया और केतन की शादी के बाद सिया के भाई साहिल और केतन की बहन की शादी की बात भी चल रही थी। दोनों घर वाले इस बारे में बात भी कर रहे थे, इसलिए 6 जून को जब प्री वेडिंग शूट के लिए केतन और सिया बाली जा रहे थे, तब साहिल और केतन की बहन भी साथ जा रहे थे। सिया के भाई की शादी को लेकर केतन के घर वालों से बात का इशारा खुद सिया के पिता ने भी इशारों में दिया था।
11: हमारे घर पे एक शादी का फंक्शन था, तो हम गोवा गए थे। गोवा में किसी ने मेरी बेटी को देखा था, तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि ये मेरे ब्रदर को पूछा था कि ये बेटी किसकी है, तो बोला ये प्रवीण की बेटी है करके। तो बोले ये शादी कर लेंगे क्या? बोले नहीं, ये अभी तो 19 साल की है और इतनी जल्दी नहीं करेंगे, पहले तो ये लड़के की शादी करेंगे, बाद में इसका देखेंगे करके। उसके बाद कुछ दिनों बाद करजत में एक शादी में फंक्शन में गए थे, उसमें मेरे जीजा जी नरेंद्र मित्तल, मेरी सिस्टर रेणु मित्तल, और वहीं पे जिन्होंने ये बात पूछी थी मेरे ब्रदर से ये लड़की किसकी है, तो वो खुद अमन अग्रवाल वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटी का रिश्ता कर लेंगे क्या? तो मेरे जीजा जी ने बोला नहीं, अभी वो छोटी है, पहले तो वो लड़की की शादी करेंगे और बाद में लड़की का देखेंगे। तो अमन जी बोले कि लड़के का भी करा देंगे और पहले लड़की का कर लो और आप बात कर लो घर पे।
0: हालांकि अभी पुणे पुलिस के पास इस केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अच्छा खासा वक्त है, लेकिन इस बीच सिया की वजह से लोगढ़ किला अचानक फेमस हो गया है। 23 जून यानी जब पहली बार केतन के कत्ल का खुलासा हुआ, उसके बाद से यहां आने वाले लोगों की तादाद अचानक बढ़ गई है। ज्यादातर लोग खासकर उस जगह को देखने आ रहे हैं जहाँ से केतन को खाई में धक्का दिया गया था। लोगों ने अपने आप इस जगह का नाम भी रख दिया है सिया पॉइंट। कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे। आज तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ चार घंटे की हाई लेवल मीटिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन, विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच, दान पत्र खोलने से लेकर गिनती तक की मिली खामियां, घेरे में 6 से 7 बैंक, कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच, सांसद रुचि मीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने हैं देश के नए सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान, रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। और ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका, जन्म के आधार पर ही बरकरार रहेगी नागरिकता, नागरिकता नियमों को बदलने की कोशिश नाकाम।

0: उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, बोले 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। जिन्होंने अयोध्या और उज्जैन में भ्रष्टाचार किया उसे इस देश की जनता नहीं करेगी स्वीकार। उद्धव ठाकरे के एमएलसी सचिन अहीर ने भी छोड़ा है साथ। महाराष्ट्र विधान परिषद में खाली डेप्यूटी चेयरमैन पद के लिए चुनाव के लिए एमएलसी सचिन अहीर ने शिंदे गुट की तरफ से भरा है नामांकन। महाराष्ट्र ईडी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी की विभंडी कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आखिरी दिन समापन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए प्रतिनिधि शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में राजनाथ सिंह बोले, विकसित भारत की यात्रा में क्षेत्रीय उद्योगों की अहम भूमिका रही। महाराष्ट्र के कोला में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होती रहेगी। महाराष्ट्र के सूरत में मॉनसून की जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में भर गया पानी। गर्मी से थोड़ी सी राहत लेकिन जनजीवन प्रभावित। सूरत में मॉनसूनी बारिश के बाद सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे और दरारें, भी सड़क पर कार फंस गई थी। नवसारी में मौसम की पहली बारिश, 20 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। जल भराव से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर गिरा एक पेड़, बच्चे की मौत हुई, 5 अस्पताल में भर्ती हुए। 12 का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हादसे के समय इस बस में 18 बच्चे सवार थे। गांधीनगर में करोड़ों की ठगी के विवाद में हिंसक झड़प हुई, भी सड़क पर बदमाशों ने 2 लोगों को मारा चाकू, दोनों घायल। कार में भी तोड़फोड़। गुजरात के आणंद में पेट्रोल पंप के पास महिला से सरेआम चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। कल से इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली T20 सीरीज, जीतने पर होगी इंडिया की नजरें। तिलक वर्मा हैं टीम के उपकप्तान। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें हैं। आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था वैभव को प्लेइंग 11 में मौका। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, सितंबर से जापान में आयोजित होगा टूर्नामेंट। एशियन गेम्स के लिए हरमनप्रीत को मिली है टीम की कमान, स्मृति मंदाना को बनाया गया उपकप्तान। खराब फॉर्म से जूझ रही विकेटकीपर यात्रिका भाटिया को टीम से किया गया है ड्रॉप, उनकी जगह 17 साल की युवा विकेटकीपर जी कमलिनी को मौका दिया गया है। स्पिन ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में जगह दी गई। टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ घुटने में चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीमों में शामिल होने के कारण भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलने की उम्मीद। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज किया गया। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सनी देओल और अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म एक्का का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म अल्फा को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दी। फिल्म को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट। 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हेराफेरी 3 को लगाया सबसे बड़ा झटका। फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने फिल्म को छोड़ा, बोले शायद कभी रिलीज न हो पाई ये फिल्म। पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 कमाल कर चुकी है, जबरदस्त कलेक्शन के साथ 2 फिल्मों में सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिंदे का ऑपरेशन टाइगर चालू हुआ है। पहले शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को अपने खेमे में मिलाया था। अब उद्धव और आदित्य ठाकरे के बड़ा ही करीबी माने जाने वाले, बहुत ही करीबी एमएलसी सचिन अहीर को अपनी तरफ मिलाकर उन्हें जोर का झटका दिया है। सचिन अहीर वर्ली में आदित्य ठाकरे की जीत के सारथी रहे हैं। सचिन अहीर अब शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने महायुति की तरफ से विधान परिषद के उप सभापति पद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। और इतना ही नहीं, शिवसेना का दावा यह है कि उद्धव के 14 और विधायक हैं जो शिंदे कैंप में आने के लिए तैयार हैं, बेकरार बैठे हैं।
1: आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, कुलकुल करतो।
2: चौकार नाही, षटकार आता मारलेला आहे।
3: महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर जारी। उद्धव के सांसदों के बाद विधायकों और एमएलसी की बारी। शिंदे ने दिया उद्धव की सेना को फिर जोरदार झटका। पहले उद्धव के 6 सांसदों ने पाला बदला, अब जूनियर ठाकरे के सारथी रहे सचिन अहीर भी उद्धव को छोड़कर शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी के एमएलसी और ठाकरे परिवार के बेहद भरोसेमंद रहे सचिन अहीर ने महायुति की तरफ से विधान परिषद के उपसभापति पद से चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में अहीर ने पर्चा भरा। सचिन अहीर के आने से विपक्ष बेचैन है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि शिंदे अपना सियासी कुनबा बढ़ाकर फडणवीस के पर कुतर रहे हैं।
4: देखो, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, उनके पंखों को छाटा जा रहा है।
5: ऐसा क्यों लग रहा है?
4: आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को। लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, करीबी हो करीबी ना हो, बात यही होती है कि आप किस नैतिकता के आधार पर चलते हैं, वही सबसे अहम मुद्दा होता है जीवन में। अगर आपको विधायक बनाया गया है, आपकी बेटी को हमने एनजीओ की जो कोटा है उसमें से प्रभाग समिति दी है, आपके भाई को बीएससी की समिति दी है, आपको भारतीय कामगार सेना दी है, आपको और कोई यूनियंस दी है, तो नैतिकता के आधार पे आप तो उसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। और अगर उतनी भी नैतिकता नहीं है तो आप आईने में कैसे देख सकते हो खुद को?
3: आदित्य ठाकरे जहां इस दल बदल को लालच की राजनीति बताकर ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को जल्द ही दिल्ली यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा, वहीं शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इसे जनता के जनादेश की जीत बताकर जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं।
1: 3 जून 2022 में सरकार महाराष्ट्र की बदल गई थी और महाराष्ट्र की जनता के दिल की सरकार हमने लाई थी, महायुति की सरकार जो 2019 में आनी चाहिए थी। लेकिन 2019 में मैंडेट दिया था महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को, लेकिन मैंडेट को ठुकरा के उबाठा के लोग कांग्रेस के साथ चले गए। बालासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा को तोड़ दिया उन्होंने और महाराष्ट्र की जनता के पीठ में खंजर घोपने का काम किया, देवेंद्र जी के भी पीठ में खंजर घोपने का काम किया 2019 में। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का जो मैंडेट था महायुति की सरकार लाना, वो हमने लाया 2022 में और 2022 से ये काम शुरू हुआ है। आज भी 30 जून है, ये संयोग है।
3: इधर शिवसेना कोटे से फडणवीस सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने जो दावा किया है उससे उद्धव के खेमे में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उद्धव के 14 से ज्यादा विधायक शिंदे कैंप में आने वाले हैं।
6: महाराष्ट्र में फिर एक बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जोर का झटका धीरे से लगा है, क्योंकि सचिन आहिर जो कल तक आदित्य ठाकरे के सबसे करीबी माने जाते थे, वो आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना से डिप्टी स्पीकर का फॉर्म भरते हैं। हमारे साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मंत्री संजय शिरसाट है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये हो क्यों रहा है। विपक्ष में कोई रहना ही नहीं चाहता, सब लोग अगर सत्ताधारी पक्ष में आकर शामिल होंगे तो विपक्षी पार्टियां अस्तित्व ही नहीं रहेगा उनका।
7: ऐसा नहीं रहता, विपक्षी पार्टी ये रहना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी चलाने वाला नेता जो होता है वो उतना मजबूती से चल रहना चाहिए। अगर वही उनके कार्यकर्ता को या तो आमदारों को अगर पूछताछ भी नहीं करता होगा वो काम क्यों करेंगे? उनकी भी कुछ हैसियत होती है, ग्राउंड लेवल से आया हुआ कार्यकर्ता जब तुमको छोड़ना चाहता है तो उसकी वजह तो कुछ तो होगी।
6: ऑपरेशन टाइगर 2.0 शुरू हो चुका है आज से, क्या ऐसा माना जाए?
7: ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू चालू है, चालू रहेगा और कुछ दिनों के बाद एक बड़ा सा ऑपरेशन करने की भी हम तैयारी करेंगे।
6: क्या इसके बाद अब विधानसभा के भी विधायक आपके पाले में आते दिखेंगे?
7: वो तो हमारे टच में है।
6: कितने?
7: वो आंकड़ा अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा
6: थर्ड के लिए 14 तो चाहिए, उससे ज्यादा ही है?
7: 14 से भी ज्यादा आएंगे, सिर्फ सब्र रखो, हमारा ऑपरेशन सक्सेस रहता है।
3: शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने सचिन अहिर के शिवसेना में आने का स्वागत करते हुए कहा कि अहिर के अनुभव से पार्टी और मजबूत होगी।
8: माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व जब हमने एमएलए की चुनाव हम लड़े थे तब उन्होंने 110 सीट लड़े थे, उसमें से 20 चुन के आए। हमने 80 सीट लड़े थे, उसमें से हम 60 चुन के आए। तो हमारे नेता का जो नेतृत्व है सर्वमान्य है, लोगों ने स्वीकार किया हुआ नेतृत्व है। अभी जो बचे हैं लोक प्रतिनिधि, उनको भी ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करने से उनके विभाग का विकास होगा, उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए सब हमारे पास आ रहे हैं।
3: इधर कांग्रेस भी ऑपरेशन टाइगर को लेकर बीजेपी और शिवसेना पर हमलावर दिख रही है।
5: इसके अभी चर्चा ही नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये उन लोगों ने मानसिकता बना ली है लोकतंत्र को तोड़ने की और वो महायुति के लोग उस तरह का काम कर रहे हैं।
3: लेकिन शिवसेना कह रही है कि उद्धव ठाकरे को अब आत्ममंथन करना चाहिए क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब उनकी पार्टी में सिर्फ उद्धव और आदित्य ठाकरे ही अकेले रह जाएंगे।
6: तो साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में शह और मात का ये खेल और दिलचस्प होते जा रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे के करीबियों को लगातार अपने पाले में कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे 2029 के चुनाव में पलटवार करने की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दल बदल की इस राजनीति में आखिरकार आम जनता इन चुनाव को किस तरह से देखती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: मुंबई के चेंबूर इलाके में बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से कई बच्चे घायल हुए जिसमें 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। हादसे के बाद मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पुराने पेड़ों की कटाई और छटाई के निर्देश दिए गए थे, फिर भी हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: मुंबई के चेंबूर में बारिश के बाद पेड़ गिरने से हुए दर्दनाक हादसे ने मुंबई वालों को झकझोर कर रख दिया। देखिए, यही स्कूल बस बारिश के दौरान 18 बच्चों को ले जा रही थी, तभी बदकिस्मती से दशकों पुराना विशाल पेड़ स्कूल बस पर गिर पड़ा। हादसे में 11 साल के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि घायल 5 छात्रों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
9: इस वक्त हम मुंबई के चेंबूर इलाके में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही स्कूल वैन है जिसके ऊपर पेड़ गिरने से 10 से 12 बच्चे दब गए थे और दो जख्मी बता रहे हैं। सभी को यहाँ के चेंबूर नजदीकी हॉस्पिटल में, जैन हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर गए हैं। एसीपी के हवाले से खबर है कि एक बच्चे की मौत बताई जा रही है।
3: यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब तिलक नगर के यूनिवर्सल स्कूल की एक बस पर ये पेड़ गिर गया। आनंद फानंद में बस कंडक्टर ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया। जिस तरह इस हादसे ने एक घर का चिराग बुझा दिया, सवाल है उसका जिम्मेदार कौन है।
10: इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल

0: कार्य जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका था। लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है। अब देखना होगा प्रशासन इसका संज्ञान कब तक लेता है और कब तक इस घटना के दोषियों को सजा देता है।
1: हादसे में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान विहान श्रीवास्तव के तौर पर हुई है। बस में सवार 18 में से 12 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि 5 छात्रों को जैन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल 5 बच्चों में से 4 की हालत स्थिर है जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, जबकि 1 छात्र की हालत गंभीर है। हादसे के बाद मुंबई की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची।
2: नहीं, बहुत ही दुखदायक ऐसी घटना है। मुझे को महापौर ने एक माँ के नाते भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए या खुद स्कूल से घर पे जा रहे थे और इस तरह से ये पेड़ गिरा। मुझे उस माँ को फेस करने के लिए डर लग रहा है जिसका बच्चा आज गया है। ये बहुत ही गंभीर घटना है और यहाँ पे मैंने सभी अधिकारी को बोला है कि ट्रिमिंग तो हुआ था यहाँ पे। जैसे ही घटना हो गई हमारे मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसर्स है, पुलिस प्रशासन है, अग्निशामक दल है, 108 नंबर की रुग्णवाहिक है, हर चीज मदद कार्य करने के लिए यहाँ पे आई है। मैं खुद भी यहाँ पे आई हूँ, यहाँ से मैं जैन हॉस्पिटल जा रही हूँ। घटना को देखते हुए अभी मुझे पता चले, अभी अधिकारी के पास से मैंने कहा तो कहा गया कि ट्रिमिंग हुआ था, लेकिन मैंने हर वक्त कहा था कि जो मुंबई के पुराने पेड़ है उसका सर्वेक्षण करो, उसकी ताकत कितनी है, वो पेड़ आने वाले बारिश को झेल सकता है या नहीं।
1: मेयर रितु तावड़े खुद कह रही हैं कि बीएमसी के अधिकारियों को पुराने पेड़ों की छटाई करने के निर्देश दिए गए थे, इसीलिए कांग्रेस भी हादसे पर सवाल उठा रही है।
3: ये सरकार को लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि उस दिन लोकल में जिस तरह से एक जवान लड़के को जिस तरह से मार दिया गया, सरकार को उसका गंभीर ही नहीं है। लोग मरे, बच्चे, इनसे कोई लेना देना नहीं। हमें सत्ता चाहिए और हम लूट मचाते रहे, यही बीजेपी और महायुति का सबसे बड़ा मंत्र है।
1: हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। पीएमसी ने क्रेन के जरिए हादसे की शिकार हुई बस और पेड़ को रास्ते से हटाया, उसके बाद आवाजाही शुरू हो सकी। लतीफ शेख के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: और आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म चौहान का टीजर विवाद शुरू हो चुका है। क्षत्रिय परिषद नाम के संगठन ने कहा है कि ऐतिहासिक विरासत को सांप्रदायिक लामबंदी का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। संगठन ने फिल्म प्रोड्यूसर से राजपूत नाम का इस्तेमाल जातीय और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए नहीं करने की अपील भी की है। दरअसल 25 जून को फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसमें अजय देवगन की आवाज में एक डायलॉग है, पठानों से कह दो चौहान आ गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे धार्मिक विभाजन बढ़ाने की कोशिश बताया है। फिल्म को कश्मीर संघर्ष के चित्रण और ये दिखाने को लेकर भी आलोचना मिली है कि पैलेट गन से कम नुकसान होता है। क्षत्रिय परिषद ने अपने बयान में साफ कहा है कि इतिहास की जटिलता का सम्मान किया जाना चाहिए और राजपूत विरासत का इस्तेमाल राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों से नहीं होना चाहिए।
5: पत्थर का जवाब नहीं।
6: जुम्मे की इस तारीख में वादा करो क्या आपसे हर जुम्मे और जुम्मे की

75 سال بعد جواب آ رہا ہے. پٹھانوں سے کہنا چوہان.

0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रांजलि जुड़ गई है। प्रांजलि, क्या इस पूरे विवाद के बाद और इस रिक्वेस्ट के बाद क्या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, अजय देवगन की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया?
1: जी नहीं सुषमा, अभी तक तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, पर अजय देवगन की जो फिल्म है चौहान, इनफैक्ट वो भी उसका अगले साल है रिलीज डेट, और उससे पहले ही एक ग्लिम्स आते ही वो एक कॉन्ट्रोवर्सी के चंगल में फंस चुकी है। फिल्म का टाइटल जो अनाउंस होते ही पहला जो ग्लिम्स आया था, क्षत्रिय परिषद ने कह दिया कि इस पर सख्त ऑब्जेक्शन उठाया उन्होंने। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है जो चौहान नाम है और उसका जो पोर्ट्रेल है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने मेकर्स पर राजपूत हिस्ट्री को वेपनाइज करने का आरोप लगाया है, साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया है कि जो राजपूत आइडेंटिटी

0: ट्रेजिडी है उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव का रूप दे दिया गया है. हालांकि ये मामले हम जो है काफी ज्यादा देख रहे हैं. जो पठान वाला डायलॉग जिसको आपने बात करी वो पहले शाहरुख खान से लिंक किया गया था
1: जी.
0: बट उसके बाद क्षत्रिय और ब्राह्मण जो कम्युनिटीज हैं उनको लगता है कि जो रेस्पेक्टिव सेक्शन है इस तरह उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. और आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है इस फिल्मों में.
2: बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजलि इस तमाम जानकारी के लिए आपका.
3: पचहत्तर साल बाद जवाब आ रहा है. पठानों से कहना चौहान आ रहा है.
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
5: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
6: Jack, come home. It's supper time.
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
7: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
5: Jack FM, playing what we want.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में हर पार्टी अपनी सहूलियत की सियासत कर रही है। विपक्ष के हमलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी वाला पलटवार किया था, तो शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेताओं को मंदिर जाने से रोकने पर करारा हमला करते हुए पूछा है कि क्या राम मंदिर बीजेपी की जागीर है।
2: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर चुनावी धुरी का केंद्र राम मंदिर ही होगा, क्योंकि चंदा चोरी के आरोपों के बाद सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने नजर आ रहे हैं।
3: अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता है, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
4: अब तो ना इन्हें चंदा मिलने जा रहा है, न दान और न वोट, इसलिए ये घबराए हुए हैं। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें। जब हम
2: इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर से संबंधित कई जिम्मेदार पदों पर संघ के लोगों को जानबूझकर जगह दी गई, और कांग्रेस मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखने पर भी सवाल उठा रही है।
5: अयोध्या में जो घपला चल रहा था, 3-4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही थी।
2: यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी चंदा चोरी पर मचे बवाल के बीच गलबल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे, तो उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया।
6: आचार्य नरेंद्र देव किसी विद्यालय के गेस्ट हाउस में हूं, और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है।
7: प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब को क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे। इसलिए महमूद जो गजनवी था, उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है, बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए, हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए, हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए, हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनके बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा पुण्य बहा है, राम मंदिर में हमारे लोगों ने भी त्याग किया, बलिदान दिया है। मैं खुद उस राम मंदिर के आंदोलन में शामिल था और मैं सीबीआई का एक आरोपी हूँ।
1: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
8: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium. Back, back,
9: What you got for me, Jack?
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ 4 घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दान पत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव।

प्रधानमंत्री मोदी की सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। बोले, सीधे जनता तक पहुंची योजनाओं का असर। तेलंगाना राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले, तेलंगाना सरकार ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। अयप्पा स्वामी मंदिर में हमले का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार। बोले, राज्य को विकास का इंजन नहीं कांग्रेस का एटीएम बना दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले, कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 झूठी गारंटीज के पोस्टर अभी सड़कों पर हैं लेकिन उनका लाभ जनता तक कभी नहीं पहुंचा। एसआईआर और चुनाव आयोग को भड़का विपक्ष। 23 पार्टियों ने सीजीआई को भेजा पत्र। दिल्ली समेत 5 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू। 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार की एसआईआर के तीसरे चरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सत्यापन का पहला चरण 29 जुलाई तक चलेगा और 5 अगस्त को जारी की जाएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले, सभी मतदाताओं के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है। 13,000 से ज्यादा बीएलओ की लगाई गई है ड्यूटी। भड़काऊ बयान मामले में हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी पर तलवार। मुर्शिदाबाद के 2 थानों से नोटिस जारी। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर एक्शन। पश्चिम बंगाल 2023 रामनवमी हिंसा मामले में टीएमसी पार्षद शकील अली को एनआईए ने किया है गिरफ्तार। इलाके में भारी तनाव। कोलकाता में 7 दिन तक रैली और सभाओं पर लगेगी रोक। 21 जुलाई को होने वाली शहीद दिवस रैली से पहले टीएमसी को बड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु सरकार पर निशाना साधा। बोले, पश्चिम बंगाल में कानून का राज बीजेपी की राजनीति की भेंट चढ़ गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आंच बैंकिंग सिस्टम तक पहुंची। एसबीआई समेत 6 बैंकों को नोटिस जारी किया गया। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का घमासान। कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर वार। कहा, मुंह में राम बगल में छुरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास का, चंपत राय ने गड़बड़ी की, राम मंदिर को लूटा। महंत धर्मदास ने ट्रस्ट व्यवस्था पर सवाल उठाए। बोले, अभी और नाम सामने आएंगे। सीएम योगी, किसी भी दोषी को न छोड़े। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की नजरबंदी खत्म हुई। अजय राय ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित किया। बरेली में सीएम योगी ने विरोधियों को दिया बड़ा संदेश। बोले, विरासत का अपमान करने वालों का मिट जाता है नामोनिशान। वाराणसी में सावन को लेकर तैयारियां हुई तेज। पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और मेले की निगरानी की गई। हरियाणा में 4 और 5 जुलाई को होगी टीटी की परीक्षा। जिला कलेक्ट्रेट ने धारा 163 लागू करने के निर्देश दिए। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व। जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली है कमान। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से रिटायर हुए। इस मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम। आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा। कई अन्य नियमों में भी बदलाव। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। जिन्होंने अयोध्या और उज्जैन में भ्रष्टाचार किया उसे इस देश की जनता नहीं करेगी स्वीकार। उद्धव ठाकरे के एमएलसी सचिन अहिर ने भी छोड़ा है साथ। महाराष्ट्र विधान परिषद में खाली डेप्यूटी चेयरमैन पद के लिए चुनाव के लिए एमएलसी सचिन अहिर ने शिंदे गुट की तरफ से भरा नामांकन। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी की भी भंडी कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आखिरी दिन। समापन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत उद्योग व्यापार जगत से कई जुड़े प्रतिनिधि पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में राजनाथ सिंह बोले, विकसित भारत की यात्रा में क्षेत्रीय उद्योग की अहम भूमिका है। गाजियाबाद में ई पंजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी। 10,000 से ज्यादा बेनामे लंबित। वाराणसी में मीट मछली और मुर्गी की दुकानों को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने के फैसले का विरोध। विपक्षी दलों ने नगर निगम का घेराव किया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। का शिक्षा जगत में और विकास होगा। कोटा में बच्चों की संसद में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। बोले, युवा ही देश का भविष्य है। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव। बेटा और बेटी के साथ काल भैरव के दर्शन किए। सांसद प्रिया सरोज के साथ डिंपल की बेटी टीना और अदिति ने विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती की। मां गंगा का दूधाभिषेक किया गया। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में अभी तक 13,061 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन।
मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तेज हुई। 2 जुलाई को सभी 13 जनपदों में आयोजित की जाएगी मॉक ड्रिल। सिक्किम के सिंगथम में जोरदार भूस्खलन से सड़कों पर आ गया मलबा। सड़कों पर फंसी पर्यटकों की गाड़ियां, यातायात बाधित हुआ। सिंगथम में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। कई नदियों का बढ़ गया जलस्तर। गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। अगले 2 से 3 दिन में मानसून दस्तक देगा। गर्मी से और उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, दमन के कई हिस्सों में मानसून ने पकड़ी है रफ्तार। दिल्ली के साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी जल्द देगा दस्तक। ऊधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश से भारी जलभराव और घरों को रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से नुकसान। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई घाट और निचले इलाकों में पानी भरा। रांची में भी जमकर बरसे हैं बादल। गर्मी के साथ चिपचिपाती उमस से गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र के अकोला में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक गरज और चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। गुजरात के सूरत में मानसून की जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में भर गया पानी। गर्मी से राहत लेकिन जनजीवन प्रभावित। सूरत में मानसूनी बारिश के बाद सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे और दरारें, बीच सड़क पर फंस गई थी कार। सूरत में मूसलाधार बारिश से जल जीवन बुरी तरह से प्रभावित। जलभराव के बीच केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने से लोगों में दहशत। नवसारी में मौसम की पहली बारिश से 20 से ज्यादा घरों में घुस गया पानी। जलभराव से थम गई थी ट्रैफिक की रफ्तार। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के झुंझुनू में बड़ा हादसा टला। स्कूली बच्चों से भरी हुई चलती वैन में लगी थी आग, सभी बच्चे सुरक्षित। ओडिशा के भुवनेश्वर में मार्केट की बिल्डिंग में लगी थी भयंकर आग। 15 से ज्यादा कपड़ों की दुकानें जलकर खाक। कर्नाटक के दावणगेरे में जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हुआ, बाद में मची अफरा तफरी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ओपन कास्ट कोयला खदान से धुएं का गुबार देखा गया। खदान में ब्लास्ट की घटनाओं से इलाके में दहशत। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित परिक्रमा रेस्टोरेंट में लगी थी आग। किचन से धुआं उठा, कोई हताहत नहीं। मसूरी के मॉल रोड पर हरियाणा के पर्यटक ने दंपति पर प्लास्टिक क्रेट से हमला किया, महिला का सिर फोड़ा। असम के गोलाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक से आ गए थे हाथी उत्पात। जंगली हाथियों ने खड़ी हुई किनारे कारों को और स्कूटी को तोड़ डाला। गाजियाबाद के कारों और बाइक की मामूली सी टक्कर के बाद रोड रेज का मामला। कार सवारों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर डाली। हरियाणा के अम्बाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम। पुलिस, आर्मी और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें रेस्क्यू में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक्स ने महिला को कुचल डाला। गुस्साए लोगों ने चालक की जमकर पिटाई कर डाली। दिल्ली में सोने की तस्करी का भंडाफोड़। करीब 21 करोड़ का सोना जब्त किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार। थाईलैंड से आए कुरियर की जांच में खुलासा। नोएडा सेक्टर 100 की लोटस स्पेसिया सोसाइटी में 18वीं मंजिल से महिला ने कूदकर आत्महत्या की। मानसिक तनाव के चलते योगा इंस्ट्रक्टर ने जान दी। मैंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान। समंदर में फंसे 6 नाविकों की बचाई जान। रेस्क्यू का वीडियो जारी किया गया। मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर गिर गया था पेड़। एक बच्चे की मौत हुई। 5 अस्पताल में भर्ती हैं। 12 का रेस्क्यू किया गया। हादसे में बस में 18 बच्चे सवार थे। गांधीनगर में करोड़ों की ठगी के विवाद में हिंसक झड़प हुई। बीच सड़क पर बदमाशों ने लोगों को मारा चाकू। दोनों घायल। कार में भी तोड़फोड़। गुजरात के आणंद में पेट्रोल पंप के पास महिला से सरेआम चेन स्नैचिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। आज से इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की पहली T20 आई सीरीज जीतने पर होगी इंडिया की नजरें। तिलक वर्मा है टीम के उप कप्तान। इंग्लैंड के दौरे पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें हैं। आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था वैभव को प्लेइंग 11 में मौका। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित। 1 सितंबर से जापान में आयोजित होगा टूर्नामेंट। एशियन गेम्स के लिए हरमनप्रीत को मिली है टीम की कमान। स्मृति मंधाना को बनाया गया है उप कप्तान। खराब फॉर्म से जूझ रही विकेट कीपर यास्तिका भाटिया को टीम से किया गया है ड्रॉप। उनकी जगह 17 साल की युवा विकेट कीपर जी कमलिनी को मौका दिया गया। स्पिन ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में जगह दी गई। T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ टखने में चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी श्रियंका। आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीमों में शामिल होने के कारण भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलने की उम्मीद। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज किया गया। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सनी देओल और अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म एका का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। फिल्म अल्फा को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दी। फिल्म को मिला UA16+ सर्टिफिकेट। 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हेरा फेरी 3 को लगा सबसे बड़ा झटका।
फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने छोड़ दिया फिल्म, बोले शायद कभी रिलीज ना हो पाए। पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 ने कमाल कर दिया, जबरदस्त कलेक्शन के साथ दो फिल्मों को पिछाड़ा, टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्मों में शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के 40 दिनों के बाद देश में सोना और चांदी में जबरदस्त गिरावट, इंपोर्ट में कमी की सफल कोशिशों के बीच गोल्ड करीब 11,500 और चांदी 42,000 रुपए सस्ती। मानसून की बेरुखी के बीच देश में पड़ रही भयंकर गर्मी से टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में तेज उछाल आया है। यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में टमाटर के दाम लगभग दोगुने होने से आम आदमी के बजट को तगड़ा झटका। कमजोर मानसून की वजह से चारे की कमी और दूध उत्पादन की रफ्तार धीमी होने की आशंका, लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच आने वाले दिनों में दूध की कीमतों को बढ़ा सकती है डेयरी कंपनियां। प्रमुख सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्री को 9,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिविडेंड चेक सौंप दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज्यादा योगदान, पीएनबी और केनरा बैंक भी टॉप 3 में शामिल। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक देश की कुल विदेशी कर्ज बढ़कर करीब 72 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। बीते एक साल में इनमें करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रूसी सेना का यूक्रेनी इलाकों पर बड़ा हमला, यूक्रेन का आरोप है कि सूमी और जपोरजिया में रिहायशी इमारतों बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। सूमी में हमले में 11 लोग घायल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन की सेना ने दूसरी बार मॉस्को क्षेत्र में रूस के सैटेलाइट संचार केंद्र पर हमला बोला। बीते कुछ महीनों के अंदर मॉस्को पर हमले बढ़ गए। हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम का बड़ा बयान, कहा हिजबुल्ला नहीं मानता अमेरिका में हुई इसराइल लेबनान समझौते को। नईम कासिम ने समझौते को बताया अपमानजनक। कतर के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, अमेरिका ईरान मुद्दे पर बातचीत के लिए दोहा पहुंचेंगे अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर। गजा पर इसराइल का भीषण हमला, बितलाया पर इसराइली सेना ने गिराए बम, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। 8 महीने पहले हुए युद्ध विराम के बाद अब तक 1,000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश पीएम के स्टामर ने ब्रिटेन के रक्षा क्षेत्र पर बड़ा खर्च करने की बात कही, बोले भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए ब्रिटिश सरकार देगी 15 अरब पाउंड की अतिरिक्त फंडिंग। मोनाको में एक रिहायशी इमारत के बाहर हुए विस्फोट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद संदिग्ध हमलावर सीमा पार करके फ्रांस भाग गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में अवैध प्रवासियों के खिलाफ दिखाई दी बड़ी नाराजगी, लोगों का आरोप दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं अवैध प्रवासी। नीदरलैंड्स के हेग में फुटबॉल फैंस की हिंसा और हुड़दंग, फीफा विश्व कप मैच में मोरक्को की जीत के जश्न के दौरान हंगामा हुआ। यूरोपीय देश जर्मनी में पड़ रही है भीषण गर्मी, राजधानी बर्लिन समेत कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। फ्रांस, पोलैंड, इटली समेत कई देशों में पड़ रही है रिकॉर्ड गर्मी।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिस देश में सरकारें भी 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, उसी देश में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को अनिश्चितकाल के लिए क्यों चुना गया और क्यों अयोध्या के राम मंदिर को पूरी तरह चंपत राय के हवाले कर दिया गया। आज हम चढ़ावे की चोरी पर अब तक की सबसे गहरी पड़ताल आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि चंपत राय के चक्कर में राम मंदिर में क्या क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा जाएगा कि जब चंपत राय को इस चोरी की भनक कई महीनों से थी तो उन्होंने स्वयं इस मामले में पुलिस को शिकायत क्यों नहीं दी और ये दावा सच है कि क्या ये दावा सच है कि राम मंदिर में चंपत राय का एक ऐसा चक्रव्यूह बुना गया था जिसमें उनके करीबी और इन करीबियों के रिश्तेदार और परिचित मंदिर के चढ़ावे को सुनियोजित तरीके से चंपत लगा रहे थे। आज तक चंपत राय के लिए यही माना गया है कि उन्होंने अपना जीवन मतलब एक तरह से समर्पित किया भगवान श्री राम के चरणों में और वाकई ये मंदिर उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन आज सवाल यह है कि फिर उन्हीं के रहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा कैसे चोरी हो गया? आप तो सर्वे सर्वा थे वहां। आज हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी सुनाएंगे जो ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को सदस्य बनाया गया होता तो सरकार उसका एनकाउंटर करके इस मामले में न्याय कर देती। आज हम इस बयान को ब्लैक एंड व्हाइट में समझेंगे और ये भी बताएंगे कि हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी वही नेता जिनकी पार्टी ने बाबरी मस्जिद का कानूनी मुकदमा लड़ने के लिए 55 लाख रुपए की मदद दी थी। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि क्या मंदिरों में चोरी का मुद्दा उठाने में भी भेदभाव हो सकता है। आज पूरे देश में ये बात तो हो रही है कि राम मंदिर में चढ़ावे को चुराया गया, लेकिन कोई ये बात नहीं कह रहा कि केरल के सबरीमाला मंदिर में भी 4.5 से 5 किलो सोना चुरा लिया गया। और अब तो आज ही इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने सीपीएम और सीपीआई के नेताओं की मिली भगत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हम ये सवाल पूछेंगे कि मंदिर की चोरी तो मंदिर की चोरी है, चढ़ावे की चोरी तो चढ़ावे की चोरी है, फिर ऐसा क्यों है कि राम मंदिर की चोरी पर चर्चा है लेकिन सबरीमाला मंदिर की चोरी पर सन्नाटा और इस खबर को कोई हेडलाइन नहीं बनाता। और इसके बाद आपको ये बताएंगे कि मेरा भारत महान लेकिन इतने सारे क्यों बेईमान। इस देश में ईमानदारी को सबसे बड़ी पूंजी माना गया है और हम तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाले देश है, लेकिन इसके बावजूद यहां मंदिरों का चढ़ावा चोरी हो जाता है। अस्पतालों में जहां मरीजों की जान बचाई जाती है वहां भी बेईमानी डेरा डालकर बैठ जाती है। दिल्ली में आरोप है कि सरकारी मेडिकल उपकरणों दवाइयों की खरीद में 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये पैसा इतना है कि दिल्ली के 5 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज हो सकता है, लेकिन अब इस मामले में FIR दर्ज हो गई है और इसीलिए आज आपको इस बेईमानी के बारे में भी बताएंगे। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि क्या हमारे देश में आपराधिक मामलों का निपटारा 1 से 2 महीने में हो सकता है। पुणे में जिस 65 साल के बुजुर्ग ने 3 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया था उसे निचली अदालत ने जानते हैं सिर्फ 60 दिन सिर्फ 2 महीने के अंदर फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला भी ऐसे वक्त में आया है जब कश्मीर के सरला भट्ट हत्याकांड में सिर्फ चार्जशीट आने में 36 साल लग गए। 36 साल का मतलब 3 पीढ़ियां बदल गई, लेकिन सरला भट्ट को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आज सबसे पहले हम चंपत राय पर अपनी सबसे बड़ी पड़ताल दिखाएंगे और ये बताएंगे कि चंपत राय के चक्कर में क्या क्या हुआ, राम मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई उसमें अब तक सिर्फ छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया गया है और इन गिरफ्तारियों से ऐसा ही लगता है कि चोरी सिर्फ वही लोग कर रहे थे जो चढ़ावे की गिनती में शामिल थे। लेकिन हमारी पड़ताल बताती है कि इस मामले में अब तक जो दिखाई दिया है कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे चक्रव्यूह को गढ़ती है जिसके इर्द गिर्द सिर्फ चंपत राय नजर आते हैं और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर राम मंदिर का चढ़ावा चंपत हुआ तो चंपत राय इसके बारे में कितना जानते थे और उन्हें कुछ लोग राम मंदिर का मालिक क्यों कहने लगे थे। ये बात थोड़ी चुभती है लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। आज हम उनकी भूमिका के बारे में भी एक एक करके परते खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि चंपत राय राम मंदिर के महासचिव कैसे बने और कैसे राम मंदिर को सिर्फ उनके हवाले छोड़ दिया गया। चंपत राय का जन्म साल 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े बिजनौर के RSM डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी की। ये वही वक्त था जब संघ को लेकर चंपत राय बहुत सक्रिय रहे।
साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तब संघ से जुड़े होने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद में उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़कर संघ का फुल टाइम प्रचारक बनने का फैसला किया। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान वो संघ की तरफ से विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए, यानी संघ और विश्व हिंदू परिषद यानी VHP उनकी अच्छी खासी पकड़ थी दोनों जगहों पर। उन्हें अशोक सिंघल और विनय कटियार जैसे नेताओं का बहुत करीबी माना जाता था। जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी तब चंपत राय की काफी चर्चा हुई और चर्चा का कारण यह था कि उन्होंने हिंदू पक्ष को ऐतिहासिक दस्तावेज, ऐतिहासिक नक्शे और साक्ष्य उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं सारी घटनाओं के कारण जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ तो सरकार ने चंपत राय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मंदिर ट्रस्ट का गठन किया। 19 फरवरी 2020 को मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। हैरानी की बात यह है कि जब हमारे देश में सरकार भी सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है तब चंपत राय और दूसरे सदस्यों के कार्यकाल की समय सीमा निर्धारित ही नहीं की गई। शायद ये ऐसी पहली चूक थी जिसने चंपत राय को अनिश्चित काल के लिए राम मंदिर का सर्वेसर्वा बना दिया। राम मंदिर के निर्माण से लेकर मंदिर में आने वाले माननीयों की मेजबानी चंपत राय ने ही की और पूरे मंदिर में उनके फैसलों को टालने वाला कोई और था नहीं। इसी का नतीजा यह हुआ कि जो लोग चंपत राय के सबसे करीब थे उन्होंने मंदिर में बंदरबांट करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर प्रबंधन के लिए सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी पर रखा और आरोप है कि नौकरियों के लिए किसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ। जो लोग चंपत राय के करीबी थे वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचित लोगों की सिफारिश करते थे और उन्हें मंदिर में आसानी से नौकरी मिल जाया करती थी। एक दिन पहले जब चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ हुई तब पुलिस ने भी चंपत राय से यही सवाल पूछा कि उन्होंने अपने करीबी रहे लोगों के रिश्तेदारों को नौकरियां क्यों बांटी। तो चंपत राय ने इस पर कहा कि उन्होंने सिर्फ जरूरतमंदों को काम दिया, वो सिर्फ उनकी भलाई करना चाहते थे। सोचने वाली बात यह है कि चंपत राय की सिफारिश से 5, 10 या 15 नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि मंदिर की सुरक्षा में कुल 400 निजी सुरक्षा कर्मी काम कर रहे थे जिनकी मासिक सैलरी 19 से 24 हजार रुपए होती थी। इनमें से ज्यादातर सुरक्षा कर्मी चंपत राय के करीबियों के रिश्तेदार और जानने वाले थे जिन्हें चंपत राय के कहने पर काम मिला और यहीं से चोरी की पूरी पटकथा लिखी गई। जो करीबी थे उनके लिए चढ़ावा चुराना बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए चुनौती यह थी कि वो इस चढ़ावे को चुराकर मंदिर से बाहर कैसे निकलेंगे। और जब निजी सुरक्षा कर्मी ही जाने पहचाने वाले भर्ती हो गए तो आरोप है कि मंदिर के चुराए गए चढ़ावे को बाहर ले जाना आसान हो गया क्योंकि इन चारों की इन जो लोग थे ये लोग जो बाहर जा रहे थे या जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी कोई तलाशी नहीं होती थी और होगी भी कैसे। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी की नौकरी लगवाएंगे तो आप फिर उस पर भरोसा करते हैं और शायद इस मामले में यही हुआ। उनकी तलाशी नहीं ली गई और वो आराम से आ जा रहे थे। ये सारी चीजें भी तब हो रही थी जब पहले से मंदिर ट्रस्ट अलग अलग कामों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था। आज कई लोग अलग अलग तरह की दलीलें दे रहे हैं लेकिन 80 लाख रुपए जो बरामद हुए हैं वो आखिर पैसे किसके हैं? वो चढ़ावे में चुराए गए पैसे हैं। जैसे मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच मंदिर परिसर के निर्माण पर 152 करोड़ रुपए खर्च हुए। सिर्फ 4 दीवारी बनाने पर 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग और श्रद्धालुओं को बांटे जाने वाले प्रसाद की व्यवस्था पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए और यही नहीं अनाज के भंडारण के लिए गोदाम और दूसरी सुविधाओं पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाद में कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया लेकिन ये उनका खाता था और कारण ये था कि इनकी देखरेख चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव करता था। भाई अगर आप अपने किसी करीबी को लाकर सारा जिम्मेदारी सब कुछ सौंपते हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि टिन्नू यादव आपका करीबी हो सकता है लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा
चढ़ावे की सुरक्षा, ये तो सबकी जिम्मेदारी थी और ट्रस्ट के सर्वसर्वा आप। इसके अलावा मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों की तनख्वाह पर कुल 7,67,00,000 रुपए खर्च हुए। इनमें कई कर्मचारी वो थे जो चोरी में मददगार बने हुए थे। और मंदिर ट्रस्ट के इन खर्चों की ये सूची यहीं समाप्त नहीं होती, इसी में गेस्ट हाउस के रखरखाव पर 4 करोड़ सिर्फ 11 महीने में खर्च हो गया। गेस्ट हाउस के रखरखाव पर 4 करोड़ रुपए 11 महीने में। ये सारा खर्च चंपत राय की निगरानी में हुआ। चंपत राय को लेकर आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से सवाल उठ रहे थे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने अपने निधन से पहले नवंबर 2022 में चंपत राय की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए थे। मैं आपको शब्दशः उनका बयान पढ़कर बताती हूं। और मुझे ये मौका भी मिला था जब राम मंदिर का वहां पर निर्माण चल रहा था, तो अनेकों बार मैंने खुद भी उनका इंटरव्यू किया था, महंत सत्येंद्र दास जी का। उन्होंने इस बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा था, राम मंदिर में जो आता है वही ट्रस्टी बन जाता है। ये तो मालूम पड़े कि टिन्नू यादव मालिक है, गोपाल राव मालिक है, अनिल मिश्रा मालिक है या चंपत राय मालिक है। अब आप समझिए, इन 4 लोगों का खास तौर पर महंत सत्येंद्र दास का नाम लेना बहुत मायने रखता है। और महंत सत्येंद्र दास जो कि यहां पर पूजा पाठ कराते थे, जो इस मंदिर से भगवान के उस स्थान से ऐसे जुड़े हुए थे, उन पर कभी आज तक कोई उंगली उठा ही नहीं पाया। उन्होंने बाकायदा इन 4ों का नाम लिया था। इस बयान से पता चलता है कि राम मंदिर में जो चोरी सामने आई उसके संकेत पहले भी मिले थे, लेकिन तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया क्योंकि चंपत राय हर बार कहते थे कि सब कुछ ठीक है, ये फालतू की बातें हैं। अब तक चंपत राय के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और ना ही आप आधिकारिक रूप से उन पर कोई भी आरोप लगाए गए हैं। लेकिन SIT की जांच और अब तक हमें जो बातें पता चली हैं उनके मुताबिक चंपत राय इस चोरी के बारे में आज से नहीं बल्कि कई महीनों से जानते थे। क्या चंपत राय पर अटूट भरोसा ही इतनी बड़ी लूट की वजह बना? ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। अप्रैल और मई महीने के बीच जब दान पेटियों से चढ़ावे की राशि कम निकल रही थी, तब चंपत राय को पता था कि कुछ कर्मचारी चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता था कि ये चोरी उनके द्वारा लाए गए लोगों द्वारा ही की जा रही है। इस चोरी को पकड़ने के लिए चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने उस कमरे में हिडन कैमरे लगाने का फैसला किया जहां चढ़ावे का पैसा गिना जाता था। इस हिडन कैमरे में, मतलब छिपे हुए कैमरों की, एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि जो कर्मचारी चढ़ावा चुरा रहे थे वो गिनती के दौरान CCTV कैमरों के सामने आकर खड़े हो जाते थे। ये जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से पता चली और इसे मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने भी सही बताया। सबसे बड़ी बात यह समझ आती है कि चंपत राय के पास पर्याप्त सबूत थे, वो इसके आधार पर कार्रवाई कर सकते थे। और अगर यह बताया जा रहा है कि हिडन कैमरा लगाया गया था सच जाने के लिए, तो उस हिडन कैमरा का फुटेज ही दे देते पुलिस को। लेकिन उन्होंने इस मामले में SIT गठित होने तक यही कहा कि कोई चोरी नहीं हुई और यह बयान इंटरनेट पर जाकर कोई भी सुन सकता है। जब 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 3 CCTV कैमरों में 70 बार चोरी पकड़ी गई, तब भी चंपत राय इस चोरी को नकारते रहे। 5 जून को जब पुलिस ने चढ़ावे की गिनती करने वाले अविनाश शुक्ला के घर से 5,00,000 रुपए कैश बरामद किए, तब भी चंपत राय ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इसके 3 दिन बाद 8 जून को वो मीडिया में ये कह रहे थे कि चढ़ावे की चोरी नहीं हुई है। जिस कमरे में चढ़ावे को गिना जाता था और जहां लगे CCTV कैमरों की निगरानी वायरल विभाग कराता था, उसके अधिकारी को का भी चंपत राय ने कई बार ट्रांसफर रुकवाया। और ये आरोप कई लोग लगा रहे हैं। अब आखिर ऐसा क्यों? जो CCTV फुटेज पर निगरानी रखता था उसका ट्रांसफर बार बार क्यों रुकवा रहे थे? वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव 2009 से राम मंदिर में CCTV कैमरों की निगरानी का काम देख रहे थे। और ऐसा बहुत कम होता है जब किसी अधिकारी का 17 सालों तक ट्रांसफर ना हो। इस मामले में भी अर्जुन देव के ट्रांसफर के कई आदेश आए, लेकिन हर बार इन आदेशों को वापस लिया गया और अर्जुन देव राम मंदिर में ही टिके रहे। आज भी जब उन्हें ट्रांसफर करके गोरखपुर भेजा गया है, तो हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि संदिग्धों में उनका नाम होने के बाद भी RMO अर्जुन देव की जांच क्यों नहीं हुई और क्या उन्हें भी चंपत राय का करीबी होने का फायदा मिला? हमारे पास सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि चंपत राय को पता चल चुका था कि वो जिन लोगों को भरोसा करके राम मंदिर में लाए हैं
वही उनके नाम का फायदा उठाकर चोरी कर रहे हैं। लेकिन इस पर अफसोस जताने के अलावा उन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। यह विडंबना है कि जो चंपत राय अब तक अयोध्या में हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने पिछले 6 सालों में 70 बार मीडिया से बात की, उन्होंने इस मामले पर देश को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। आपको जैसे ही पता चला था, 2 रास्ते थे, या तो आप पुलिस के पास फौरन जाते अपने सबूत के साथ, या फिर आप मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। देखिए, जो चोरी एसआईटी ने पकड़ी है, उस चोरी के बारे में चंपत राय बहुत पहले ही जान चुके थे। उन्हें भी यह पता था कि चढ़ावे की गिनती के लिए मंदिर ने जो एमओयू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है, उसका पालन नहीं हो रहा है। हमारे सूत्रों ने एक और गंभीर जानकारी दी है, किसी इसी ट्रस्ट में मौजूद कुछ वरिष्ठ लोगों ने कई बार चंपत राय को यह इशारा किया और सीधे सीधे कहा कि चढ़ावा चोरी हो रही है, इसको रोकना होगा, लेकिन वो हर बार ये कहकर टालते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, इस समझौते के तहत दान पेटियों को खोलने और गिनती कक्ष के संचालन के लिए ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई है। ये जो SBI के साथ MOU हुआ है वो हम आपको बता दें, ताकि आप पूरी प्रक्रिया समझ पाए कि ये कैसे हो रहा था। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU है, गिनती में लगे कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड भी तय था, इसी में बैंक अधिकारियों के मासिक रोटेशन का भी प्रावधान था, लेकिन इनमें से किसी भी शर्त का पालन ही नहीं हुआ। मतलब बैंक से जो कर्मचारी आने थे उनका रोटेशन होना था, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, लेकिन खेल तो कुछ और चल रहा था। बैंक के कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में काम करते रहे, और यह भी आरोप है कि चंपत राय के कारण चढ़ावा गिनने वाले लोगों की ना तो सही से तलाशी होती थी, ना उनकी निगरानी की जाती थी। यानी एक तरह से इस पूरे मंदिर परिसर में ऐसे कुछ लोगों का दबदबा चलता था जिससे वो कानून के ऊपर थे, उनकी जांच उनकी फ्रिस्किंग होती नहीं थी। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर चंपत राय पर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं तो FIR में उनका नाम क्यों नहीं है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र है, उस राम मंदिर को सिर्फ चंपत राय के हवाले क्यों छोड़ दिया गया? आज ही ये खबर आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारिणी की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बुलाकर उनका पक्ष सुना जाएगा और उनके इस्तीफे पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन हम पूछते हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम संदिग्धों में होते हुए भी उन्हें निर्दोष मानकर क्यों चला जा रहा है? हो सकता है कि इन लोगों की चोरी में कोई भूमिका ना हो, हम भी ये मानते हैं, लेकिन क्या जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या कोई भी व्यक्ति लोगों की आस्था कानून से बड़ा हो सकता है? आखिर क्या व्यथा थी हिंदुओं की? यही ना कि मुगलों ने आया, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटे। 500 सालों की लड़ाई के बाद हम उस मंदिर को बना पाए जब कोर्ट ने आदेश दिया, और फिर जब मंदिर बना तो लूटने के लिए ये लोग आ गए। जिस कार्यकारिणी की बैठक में चंपत राय का पक्ष सुना जाना है, उसी बैठक में 2021 के जमीन विवाद की भी सुनवाई हुई थी, और ये वही मामला है जिसमें मंदिर ट्रस्ट पर यह आरोप लगा था कि उसने रवि मोहन तिवारी, ध्यान से समझिएगा, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी थी और मंदिर ट्रस्ट के पैसों की बंदर बांट हुई थी। और यह भी तब हुआ था जब रवि मोहन तिवारी अयोध्या के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के समधि के साले हैं, और इस जमीन की खरीद में बड़ी सांठगांठ की बातें सामने आई थी। लेकिन उस वक्त कार्यकारिणी की बैठक में चंपत राय ने कहा कि सब ठीक है, सबने मान लिया कि सब ठीक ही होगा, और इस बार हमें नहीं लगता कि इस कार्यकारिणी में क्या फैसला लिया जाता है। आज आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें हमने रवि मोहन तिवारी के उस आलिशान बंगले को दिखाया है जिन्होंने 2 करोड़ रुपए की जमीन मंदिर ट्रस्ट को कितने में दी, 18 करोड़ रुपए में बेची थी। देखिए,

0: हम इस वक्त चिंटू तिवारी की उस प्रॉपर्टी पर मौजूद हैं। आप यकीन माने, ये शीश महल उस चिंटू तिवारी का है जिसने उस वक्त जमीन कुसुम पाठक और उसके पति से एक जमीन 2 करोड़ में ली और 10 मिनट के भीतर वही जमीन टेम्पल ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसी पैसे से चिंटू तिवारी द्वारा ये पूरा शीश महल खड़ा किया गया है। अब इसे आप शीश महल कहें, आलिशान महल कहें, बंगला कहें, ये आप खुद तय कर लें। आप यहाँ पर पहले गेट ही अगर देख लें तो शायद एक आम आदमी इस तरह का गेट नहीं लगवा सकता है। और उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो जो ग्लासेस लगे हैं, ग्लासेस छोड़िए, ग्लासेस के ऊपर जाइए, एक बड़ा सा टेरेस है, टेरेस के ऊपर जो लाइट्स लगे हैं, जो एम्बियंस है, जो कलर्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, और जो जिस तरीके से पूरा मेकओवर किया गया है, आप देखें और खुद अंदाजा लगाएं कि क्या ये एक और भ्रष्टाचार का एक और नमूना है।
1: तो ये जो घर आप देख रहे थे, आरोप है इसी शख्स ने 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी और उसके बाद फौरन ट्रस्ट को 18 करोड़ में जमीन बेच दी। फिर बीच का पैसा क्या हुआ? देखिए, इन तमाम साक्ष्यों के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार चंपत राय के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी और क्या इस मामले में बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े पदाधिकारियों में सिर्फ चंपत राय का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी नाम शामिल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग राम मंदिर के ट्रस्ट में पहुंचे कैसे, इसके लिए कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं हुए। अनिल मिश्रा पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे और संघ के काफी करीबी थे। 1992 में जब विवादित ढांचे को गिराया गया, तब इसे एक दिन पहले लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जो बैठक की थी, वो बैठक अनिल मिश्रा के घर पर ही हुई थी। और इन्हीं निजी संबंधों के कारण संघ में ऊंची पहुंच की वजह से अनिल मिश्रा अनिश्चित काल के लिए मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बन गए और आज भी वो अवध प्रांत में संघ के प्रमुख कार्यवाह है। इसके बाद गोपाल राव, जो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर प्रबंधन के अहम फैसलों में उनका दखल रहता है। साल 2021 में कर्नाटक में रहने वाले और आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े गोपाल राव को ट्रस्ट में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, यानी यहां भी उन्हें संघ से जुड़े होने के कारण राम मंदिर के प्रबंधन में प्रवेश मिला, जिस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं और इस चोरी ने लोगों के भरोसे को भी तोड़ा है। इस चोरी के बाद राम मंदिर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह के सभी दावे पूरी तरह गलत है। दिक्कत तो यही है, आज चढ़ावा चोरी में 80 लाख की बरामदगी हुई है, मामला इतना संगीन है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी सियासत ढूंढ रहा है क्योंकि चुनाव करीब है। लेकिन हम आपको सच बताएंगे, हमें मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले हर दिन चढ़ावे में 10 से 12 लाख रुपए आते थे, लेकिन आज की तारीख में प्रतिदिन जो चढ़ावा है बताया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि 20 से 24 लाख रुपए का हो गया है, यानी लोग दान पेटियों में पैसे डाल रहे हैं। अब ये जानकारी ट्रस्ट की तरफ से दी जा रही है तो जाहिर तौर पर कम से कम चढ़ावा चोरी पर इतने संगीन इल्जामों के बाद तो हिसाब किताब सही चल रहा होगा। ऐसा भी मुमकिन है कि पहले का हिसाब किताब डावाडोल था और अब जाकर असल हिसाब किताब सामने आ रहा है। एक बड़ा कारण यह भी कि स्कूलों में अब गर्मियों की छुट्टियां हैं, कई श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और संख्या बढ़ रहा है, चढ़ावा बढ़ रहा है, लोग अपनी श्रद्धा से दान तो देते ही हैं। नए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जनवरी 2024 के पहले हर दिन राम मंदिर में 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा आया था, जबकि फरवरी 2024 में राम मंदिर को 11 दिनों में 11 करोड़ रुपए का दान मिला, यानी हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए का दान, जबकि पूरे साल में ट्रस्ट ने 327 करोड़ रुपए की सालाना कमाई की थी। खैर, इस चोरी का भले करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कोई असर वैसा ना पड़ा हो, वो मंदिर जा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे देश के कुछ नेताओं को इसी का इंतजार था। भाई, यूपी में चुनाव है, मौका मिला है, तो हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब इनको सुनिए, कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को सदस्य बनाया गया होता तो उसका एनकाउंटर करके आज सरकार ये दिखा सकती थी कि उसने न्याय कर दिया है। सुनिए,
2: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में।
1: आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी राम मंदिर पहुंचने की कोशिश की, आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है। अब हम मानते हैं कि इस मामले में सवाल उठने चाहिए। विपक्ष को पूरा अधिकार है सरकार की आलोचना करें, और काफी हद तक समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे उनके नेताओं ने उठाया। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर योगी को घेर रहे हैं, लेकिन आज सवाल यह भी है कि ये मंदिर है और मंदिर की जगह पर ये देखिए अलग अलग जो पोस्ट आए हैं। बाबरी मस्जिद मुकदमे के लिए 55 लाख रुपए की बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, और ये देखिए अरविंद केजरीवाल, नानी ने कहा मेरा नाम मस्जिद तोड़कर बने मंदिर में नहीं रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कुल मिलाकर पूरी राजनीति होती रही इस मुद्दे पर। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे हर कोई अपने अपने तरीके से इस पर पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने तरीके से पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये मुद्दा गंभीर है और इस मुद्दे में चढ़ावा चोरी लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आज यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि चोरी सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर में नहीं हुई, चोरी तो केरल के सबरीमाला मंदिर में भी हुई, लेकिन वहां पर अब चुनाव वगैरह तो है नहीं, खत्म हो गया। उस चोरी में सीपीएम और सीपीआई के नेताओं के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने आज ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस चोरी की कोई बात नहीं कर रहा। और इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे देश में इस तरह के ज्यादातर मुद्दे यही देखकर उठाए जाते हैं कि एजेंडे को सूट करेगा या एजेंडे को सूट नहीं करेगा। लेकिन हम इन मुद्दों को ऐसे एजेंडों से बहुत बड़ा मानते हैं और हम चाहते हैं कि पूरा देश आज सबरीमाला मंदिर में हुई सोने की चोरी के बारे में भी जाने। केरल के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित सबरीमाला मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल देश दुनिया में लाखों लोग भगवान श्री अयप्पा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन आज यही मंदिर एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसे खुद हाईकोर्ट ने सोने की डकैती, सोने की लूट जैसा गंभीर मामला बताया है। इस लूट की कहानी करीब 3 दशक पहले शुरू होती है, जब 1998-99 में उद्योगपति विजय माल्या ने इस मंदिर को कुल 30.291 किलोग्राम सोना दान किया था। 30 किलोग्राम सोना। तब इस सोने को का इस्तेमाल मंदिर के कई हिस्सों को स्वर्ण मंडित करने में किया गया। गर्भगृह के बाहर खड़े द्वारपालों की दो विशाल मूर्तियां, खंबे दरवाजों की चौखटें, मेहराबों और भगवान श्री अयप्पा की कथाओं को दर्शाने वाले कई पैनल सोने से मढ़े गए। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही सोना एक दिन साजिश के तहत चुरा लिया जाएगा। करीब 20 साल बाद साल 2019 में यह निर्णय लिया गया कि द्वारपालों की मूर्तियों पर फिर से सोने की परत चढ़ाई जाए, और यहीं से इस कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया। सामान्य तौर पर मंदिर की बहुमूल्य वस्तुएं और वस्तुओं की मरम्मत मंदिर परिसर के भीतर होती है, लेकिन आरोप है कि उस वक्त पूर्व सहायक पुजारी उन्नी कृष्णन पोट्टी के कहने पर इन मूर्तियों को चेन्नई भेजने की अनुमति दे दी गई। और इससे भी बड़ी बात यही हुई कि सरकारी रिकॉर्ड में इन सोने से मढ़ी मूर्तियों को सिर्फ कॉपर प्लेट्स यानी तांबे की प्लेटी लिखा गया। आज एसआईटी और हाईकोर्ट का मानना है कि यह कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। और यह साजिश भी क्या, अब उसे भी देखिए। जांच एजेंसियों का आरोप है कि चेन्नई में मूर्तियों से पुरानी और भारी सोने की परतें चोरी कर ली गई और उसकी जगह सोने की नई और पतली परतें मूर्तियों पर चढ़ा दी गई। ऐसा इसलिए हुआ ताकि मूर्तियों पर लगा भारी सोना चुरा लिया जाए, और जब ये मूर्तियां वापस चेन्नई से मंदिर में लौटी तब उनका वजन तक नहीं किया गया, और यही वो चूक थी जिसने आगे चलकर पूरे विवाद को जन्म दिया। इन मक्कारों ने सोचा था कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन राम मंदिर की तरह यहां भी भगवान का अदृश्य सीसीटीवी काम कर रहा था। जब नई गोल्ड प्लेटिंग ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी, कुछ ही महीनों में सोने की परतें उतरने लगी, नीचे का तांबा दिखाई देने लगा तो लोगों को शक हुआ, आखिर इतनी जल्दी सोना खराब कैसे हो गया। जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक के बाद एक हैरान करने वाले तथ्य

भेजकर उन पर नई परत चढ़ाई जाए। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसका मकसद मरम्मत नहीं बल्कि 2019 में हुई सोना चोरी के सबूतों को मिटाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर की तरह इस चोरी में भी कई स्तर पर मिली भगत शामिल थी। पूर्व सहायक पुजारी उन्नीकृष्णन पोट्टी को इस चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया, जबकि मंदिर के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मुरारी बाबू, मूर्तियों से सोना चुराने वाले कंपनी के मालिक पंकज भंडारी, मंदिर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीपीएम नेता पीएस प्रशांत, पूर्व बोर्ड सदस्य और सीपीआई के नेता ए अजय कुमार, सबरीमला के मुख्य पुजारी कंदरारू राजीवारू और पूर्व आयुक्त रेजीलाल को इस मामले में आरोपी माना गया है। यानी यहां भी सब के सब मिले हुए नजर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चोरी की पूरे देश में कोई बात नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे देश में मुद्दे की गंभीरता से ज्यादा इस बात पर जोर होता है कि ऐसे मामलों में किसकी रोटियां सेकेंगी, किस पार्टी को फायदा होगा और अगर चुनाव करीब हो तो मुद्दे को उसी हिसाब से तोला जाता है। आप करिए आपको जो करना है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आज राम मंदिर में जो हुआ वो राष्ट्रीय बेईमानी का विषय है। अगर इस बेईमानी को रोकना है तो हमें मंदिरों के संचालन, मंदिरों का ढांचा, उनकी व्यवस्था को बदलना होगा, मूल चूल परिवर्तन करना होगा। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि केरल के सबरीमाला मंदिर में जो चोरी हुई वहां सरकार द्वारा गठित देवस्वम बोर्ड मंदिर का संचालन देखता है। और हम यही सोचते हैं कि अगर मंदिर सरकार की देखरेख में संचालित हो तो क्या एक अलग रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ये ट्रस्ट जो कर रहे हैं वो तो मंदिर दर मंदिर दिख रहा है। लेकिन ये चोरी बताती है कि केरल में जो सीपीएम और सीपीआई के नेता इस मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य बने वो खुद इस चोरी में शामिल थे, जिसके कारण हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। खैर, ये बेईमानी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। आज आप जहां नजर उठाकर देखेंगे वहां आपको लूट दिखाई देगी। और अब तो देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा स्वास्थ्य घोटाला सामने आया है जिसमें आरोप है कि लोगों के इलाज के लिए खरीदी जाने वाली दवाइयां, मशीनें, जरूरी सामान के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने इस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा डेप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरफ्तारियां बीती रात हुई हैं। इससे पहले इसी मामले में डॉक्टर विजय कुमार रंगा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें बाद में अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एसीबी के मुताबिक ये मामला डीजीएचएस के अधीन काम करने वाली सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी सीपीए द्वारा कई 100 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रियाओं में लूट और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। और जब आप इस भ्रष्टाचार और बेईमानी के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर एक डिस्पोर्टेबल एक्सरे मशीन की कीमत 10 लाख रुपए थी, उसे सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने जानते हैं कितने में खरीदा, 33 लाख रुपए। यानी जिन 448 मशीनों पर 45 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे उन पर 148 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इसी तरह जिन बेडशीट्स की कीमत करीब 150 रुपए थी उनके लिए सीपीए ने 450 रुपए का भुगतान किया। पूरे टेंडर पर 75 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि ये सारी बेडशीट्स 25 करोड़ रुपए में खरीदी जा सकती। रेडियोलॉजिकल मशीन्स के मामले में भी भारी लूट हुई। 25 लाख रुपए में मिलने वाली इन मशीन्स के लिए इस एजेंसी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया। कुल 7 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए, असल कीमत 1 करोड़ 75 लाख। ओआरएस के एक सैशे कीमत 2 रुपया 5 पैसे, लेकिन इसी एजेंसी ने खरीदा कितने पे, 15 रुपए प्रति सैशे। यानी जो ORS 1 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदे जाने थे उस पर खर्च हुआ 7 करोड़ रुपया। और ये सूची यहीं खत्म नहीं होती, बड़ी लंबी सूची है। सर्जिकल सामान खरीद में लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि जांच एजेंसियों का दावा है कि असल कीमत थी 20 से 25 करोड़ रुपए। अब एंटी करप्शन ब्यूरो जिसने ये पूरा केस दर्ज किया है और अब तफ्तीश की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसी एंटी करप्शन ब्रांच का कहना है कि इस घोटाले में अन्य अधिकारियों और निजी सप्लायर्स की भूमिका की भी पड़ताल हो रही है। ईडी ने इस मामले की जानकारी एसीबी से मांगी है, जिसे आगे चलकर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें अपनी जांच शुरू कर सकता है। अब सवाल सिर्फ इस घोटाले का नहीं बल्कि सोच का है जो धीरे धीरे हमारी व्यवस्था को खोखला

0: मंदिरों का चढ़ावा चोरी होना, सड़क पुल बनने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाना, फर्जी कागजात रिश्वत देकर बनाना और अस्पतालों में ऐसी लूट। आखिर जिस देश में सच बोलना धर्म और झूठ बोलना पाप माना गया है, वहां हर मोड़ पर बेईमानी मौका कैसे तलाश लेती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने गलत काम को गलत मानकर उससे लड़ना छोड़ दिया है? आप गुजरात के राजकोट को ही देख लीजिए, जहां 23 और 24 फरवरी को प्रशासन के, ये खबर हमने आपको दिखाई थी ना, अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के चाय नाश्ते पर 27 लाख रुपए खर्च हो गए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ दो दिन की कार्रवाई और खर्च कितना चाय नाश्ते पर? 27 लाख रुपए का खर्च। बिल की डिटेल सुनेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। 21,310 कप चाय बिस्कुट खाए गए, 21,000, 50 प्लेट गाठिया जलेबी, 360 प्लेट पोहे का नाश्ता, लंच पर 6,30,000 रुपए खर्च। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि अगर मेरा भारत महान तो इतने सारे क्यों बेईमान? अगली खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम है यूजर नेम या व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर। इसका मतलब यह है कि अब व्हाट्सएप पर लोगों से जुड़ने के लिए हर बार मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं होगा। नए फीचर के तहत लोग अपने नाम की जगह एक अलग यूजर नेम चुन सकेंगे और उसी से संपर्क कर सकेंगे। यानी जैसे एक्स और इंस्टाग्राम पर आपकी पहचान आपके यूजर नेम से होती है और आपका नंबर सामने वाले को पता नहीं चलता, वैसा ही अब व्हाट्सएप पर होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर इस नए फीचर को लेकर खूब विवाद हो रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये यूजर नेम आने के बाद व्हाट्सएप टेलीग्राम की तरह हो सकता है, जहां कोई भी व्यक्ति केवल यूजर नेम जानकर, कोई भी यूजर नेम रखकर दूसरे से संपर्क कर सकता है, उसकी असल पहचान पता नहीं चलेगी। डेटिंग ऐप कंपनी नॉट डेटिंग के सह संस्थापक जसवीर सिंह ने कहा कि टेलीग्राम पर यही सुविधा अपराधियों के लिए मददगार बन गई थी और उन्हें डर है कि व्हाट्सएप पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई लोग अपना असल नाम बताएंगे भी नहीं। कई लोगों का कहना है कि भारत जैसे देश में अगर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाई गई तो लोग नकली यूजर नेम बनाकर दूसरे के नाम पर पैसे मांग सकते हैं। यानी इसे लेकर ज्यादातर लोग चिंता जता रहे हैं। यहां बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई भी आपका यूजर नेम खोज सकेगा, तो इसका जवाब है नहीं। व्हाट्सएप का कहना है कि ऐप में यूजर नेम की कोई सार्वजनिक सूची नहीं होगी, यानी लोग किसी डायरेक्टरी में आपका नाम खोजकर आप तक नहीं पहुंच सकते। किसी को आपसे संपर्क करना है तो उसके लिए उस यूजर को आपका सटीक यूजर नेम पता होना जरूरी है। अब ये देखिए कि यूजर नेम की है क्या और ये कैसे काम करेगी। व्हाट्सएप ने सुरक्षा के लिए यूजर नेम की नाम का एक फीचर दिया है। एक 4 अंकों का विशेष कोड होगा। अगर आपने इस चालू कर दिया इसे तो केवल यूजर नेम जानना काफी नहीं होगा, सामने वाले को वो 4 अंकों वाला कोड भी पता होना चाहिए, तभी वो आपसे संपर्क कर सकेगा। हालांकि ये फीचर फिलहाल डिफॉल्ट रूप में बंद रहेगा और लोगों को खुद से चालू करना होगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस फीचर का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको लेकर चिंताएं जरूर बताई जा रही है। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि इसके मूल नियम नहीं बदल रहे। हर अकाउंट के लिए मोबाइल नंबर अभी भी अनिवार्य रहेगा। बिना फोन नंबर के कोई भी व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगर कोई यूजर नेम पहले से इंस्टाग्राम या फेसबुक पर किसी के नाम से जुड़ा है तो दूसरा व्यक्ति उसे व्हाट्सएप पर नहीं ले सकेगा। और अगर आप वही यूजर नेम व्हाट्सएप पर भी चाहते हैं तो आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करना पड़ सकता है। करीब 2 साल पहले बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तभी से वहां भारत विरोधी लहर देखी जा रही थी। इन 2 वर्षों में वहां हर कोई, ऐसे कई सारे कट्टरपंथी गुट, कट्टरपंथी नेता सामने आए जो भारत विरोधी बयानों के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने के प्रयास कर रहे थे, आग उगल रहे थे भारत के खिलाफ। अब भी गाहे बगाहे कुछ मौलाना हैं, नेताओं के बयान सामने आते हैं जिसमें वो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के विरोध में बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल से अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मुहिम पर बांग्लादेश में जबरदस्त खलबली थी। कई कट्टरपंथियों ने भारत के इस कदम का विरोध भी किया। उससे पहले बांग्लादेश के चुनाव में इंडिया गो बैक जैसे स्लोगन ट्रेंड कराए गए, लेकिन अब एंटी इंडिया स्लोगन चिल्लाने वाले बांग्लादेश में हजारों लोग भारत के वीजा के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा बंद कर दिया था। दो साल बाद अब एक बार फिर से टूरिस्ट वीजा सेवाएं शुरू हुई हैं और अब उसे पाने के लिए बांग्लादेश के अलग अलग सेंटर्स पर भीड़ लगी हुई है। बांग्लादेशी नागरिकों को दोबारा से टूरिस्ट वीजा दिया जाना दोनों देशों के संबंधों में सुधार का संकेत माना गया। टूरिस्ट वीजा आवेदन देने के लिए बांग्लादेश के 5 बड़े शहरों में वीजा सेंटर्स बनाए गए हैं, भीड़ लगी हुई है। इन वीजा आवेदन केंद्रों पर उत्सव जैसा माहौल है। फिलहाल ढाका, चट्टोग्राम, राजशाही, सिलहट, खुलना में भारतीय वीजा के लिए आवेदन आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वीजा केंद्र बढ़ाए भी जा सकते हैं। 5 अगस्त 2024 से ही बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में मेडिकल, बिजनेस, स्टूडेंट वीजा आवेदन में ढील दी गई, लेकिन फिर भी टूरिस्ट वीजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध था।
1: অবশ্যই ভালো লাগছে। আমাদের হচ্ছে পাশের দেশ, আমাদের প্রতিবেশী দেশ, তাদের সাথে তো অবশ্যই আমাদের সম্পর্ক সবসময় একটা ভালো ছিল। হঠাৎ সম্পর্কটা খারাপ হওয়ার কারণে, কিছু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে তাদের সাথে আমাদের একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, যার কারণে এতদিন বন্ধ ছিল। তো এখন অনেক অপেক্ষার পরে খুলছে, এটা আসলে অনেক ভালো খবর, বিশেষ করে আমাদের মতো ভ্রমণ পিপাসু মানুষের জন্য।
2: এটা আসলে শুধু আমি না, আশা করি সবাই খুশি হয়েছে এটা, এবং এটা ভালো, খুবই ভালো হয়েছে সবার জন্য। যারা ভ্রমণ করতে চায় আপনার অল্প কিছু খরচে, আশা করি সবাই খুশি। শুধু আমি না, আশা করি সবাই চায় যে আর না বন্ধ হোক।
0: কাহা যাতা হ্যায় ভগবান কে ঘর দের হো সকতি হ্যায় লেকিন অন্ধের কবি নাহি, যানি অন্যায় নাহি হো সকতা। काश की भारतीय अदालतों को लेकर भी ये कहा जा सकता। यहां इंसाफ तो होता है लेकिन इंतजार लंबा होता है, ज्यादातर बहुत देरी से होता है। हमारे देश के अलग अलग अदालतों में 4,98,00,000 केसेस पेंडिंग है जिन पर लगातार सुनवाई चल रही है। कई मामलों में तो सुनवाई महीनों चलती है, वर्षों चलती है। पेंडिंग केसेस को लेकर अदालतों पर व्यंग किया जाने लगा है कि केस पिता के जमाने में शुरू होता है, पोते के दौर तक चलता रहता है। लेकिन सच ये है कि अगर अदालतें चाह ले तो फैसले चंद महीनों में आ सकते हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि यह खबर आज आपको दिखानी चाहिए। पुणे की एक अदालत ने रेप और हत्या के दोषी को केवल 60 दिनों के अंदर फांसी की सजा सुना दी है। पुणे में 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था। लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इस अपराध को 65 साल के, सोचिए 3 साल की बच्ची, 65 साल के एक व्यक्ति ने अंजाम दिया। इस पर पॉक्सो केस की सुनवाई एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जिसने 60 दिन के अंदर सुनवाई को खत्म किया, दोषी को फांसी की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया, जिसने पीड़िता के साथ बर्बरता की गई थी। यह वारदात 1 मई को हुई थी, जब पीड़ित बच्ची अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए नानी के घर आई हुई थी। पेशे से मजदूर 65 साल के इस अपराधी ने बच्ची बहला फुसला कर किडनैप किया, फिर वारदात को अंजाम दिया। इस केस की सुनवाई में जजेस ने माना कि पीड़ित बच्ची है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। बच्ची के शरीर पर चोट के 18 निशान थे। इस बर्बरता की वजह से जजेस ने माना कि अपराधी को अपराध के वक्त कानून या सजा का डर नहीं था। इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर जांच अधिकारियों, फोरेंसिक टीम्स ने भी जांच की प्रक्रिया तेजी से खत्म की और आखिरकार 29 जून को दोषी भीमराव को फांसी की सजा दी गई। इस फैसले के साथ अगर आप देखिए, और इस फैसले के बाद इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि अगर कोर्ट चाहे तो न्याय में देर नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक तरफ पुणे की इस अदालत का फास्ट ट्रैक फैसला है, तो दूसरी तरफ कश्मीर पंडित जो नर्स थी सरला भट्ट, उनकी किडनैपिंग और हत्या से जुड़ा मामला भी है, जिसमें 36 साल बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। आप सोचिए 36 साल के बाद इस केस की चार्जशीट फाइल हुई और अब इस केस की सुनवाई में काफी लंबा वक्त लग सकता है। कश्मीरी पंडित सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली थी। वो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स थी। 18 अप्रैल 1990 को उन्हें ड्यूटी जाते वक्त अस्पताल के बाहर से किडनैप कर लिया गया था। किडनैपिंग और हत्या उस दौर में की गई जब घाटी में आतंकवाद फैल रहा था और वहां के कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था। इन आतंकियों ने सरला को बुरी तरह से टॉर्चर किया, बाद में गोली मार दी थी। 19 अप्रैल को उनका शव बुरी स्थिति में मिला था। उनके शव के पास एक नोट भी बरामद हुआ था जिसमें उन्हें मुखबिर बताया गया था। सरला भट्ट का यह केस करीब 34 वर्षों तक जम्मू कश्मीर पुलिस के पास रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो साल पहले ही इस केस को जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया। अब दो साल के अंदर ही जम्मू कश्मीर एसआईए ने 737 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें आतंकी संगठन जेकेएलएफ के तत्कालीन कमांडर यासीन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस केस में खुर्शीद अहमद चालको, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी और गुलाम मोहम्मद टपलू को आरोपी बनाया गया है। यासीन मलिक फिलहाल आतंकी फंडिंग के एक मामले में तिहाड़ में बंद है, उसे उम्र कैद मिली है। खुर्शीद अहमद चालको पीओके में छिपा है, बाकी आरोपियों की मौत हो चुकी है। आप सोचिए, करीब 36 साल से कश्मीरी पंडित सल्ला भट्ट का परिवार इंसाफ के इंतजार में है। एक एक दिन कितना भारी बीतता होगा। आप और हम उनके दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि सरला भट्ट की हत्या के बाद उनके परिवार को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। क्योंकि आतंकी हत्या तक ही नहीं रुके थे, उन्होंने सरला भट्ट की हत्या के बाद उनके घर पर ग्रेनेड से हमला भी किया था। 1990 का वो ऐसा दौर था जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के इशारे पर इस्लामिक आतंकी पूरे कश्मीर पर कब्जा कर रहे थे। कश्मीरी हिंदू पंडितों से उनका घर, उनकी संपत्ति छीनी जा रही थी। जो कश्मीर को अपना मानकर जाने से इनकार करता था, उसे सरला की तरह मार दिया जाता था। अब 36 साल बाद सरला भट्ट को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, उनसे डरिए जो छल करते हैं। नमस्कार।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे, या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
6: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल 1 मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्री परिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था। जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
7: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
8: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई, या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है, ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
7: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों की निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जाँच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
9: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक 2 मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
7: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
10: मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे, बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
7: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
11: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
12: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
11: वही करे कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा भैया से चोरी भैया, तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
12: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
11: हाँ,
12: कौन हो सकता है?
11: देखिए, चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए, चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
0: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं चंपत राय, वही चंपत राय जिनकी इजाजत के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी। माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से खड़े हुए बवंडर में चंपत राय पर शिकंजा कसना तय है। वजह है, ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे अहम कड़ी है।
7: चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से आज 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। अब चंपत राय के बयान का मिलान दूसरे गवाहों और मौजूद दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यही कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली, संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो गई और FIR भी दर्ज करवाई गई। आरोपी टिन्नू को लेकर सफाई देते हुए चंपत राय ने यही दावा किया कि टिन्नू को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस ने पूछा, रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? चंपत राय ने कहा, जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का जिक्र किया।
13: 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है।
7: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है, मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
14: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
7: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को SIT क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में FIR क्यों दर्ज हुई जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। चंपत राय के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल मिश्रा, गोपाल राव के साथ साथ 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और दूसरे लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी है।
15: इसका दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
0: अब तक यही जानकारी थी कि चांदनी का पिता जूस का ठेला लगाया करता था और चांदनी कुरैशी का भाई अमन आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। आयुष के पिता के मुताबिक आयुष की संपत्ति को हड़पने के लिए एक मौलाना के साथ मिलकर उसका ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन आयुष की हिंदू धर्म में वापसी के साथ ही कई और बड़े खुलासे हुए हैं।
7: क्या था आयुष का मिशन अली? चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था? आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बन जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था I am on a mission। ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए। अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था? क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? आखिर क्या है आयुष का मिशन अली?
16: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उस दौरान एक बड़ा चाकू और एक डायरी मिली थी। डायरी में आयुष मलिक ने लिखा था I am on mission।
7: शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047। सूत्रों की माने तो 2047 पीएफआई का कोड वर्ड है। जब एनआईए समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के बरामद किए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया, पीएफआई ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि पीएफआई ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है।
16: आयुष मलिक के धर्मांतरण के बाद उसके पिता देवराज मलिक ने शामली पुलिस को शिकायत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैसी नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके परिवार वालों ने एक प्लान के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन करवाया था और उनकी नजर उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर थी। उसके बाद इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच हुई थी। जांच के बाद जो चांदनी कुरैशी थी उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके पिता को गिरफ्तार किया था।
7: आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था। तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ 4 घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दान पत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल के अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: TMC के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी NCPI इस वक्त NDA को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके? सबकी नजर चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। TMC के 20 बागी सांसदों ने NCPI में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर NDA को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके BJP में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
3: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो JDU से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में JDU के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी। इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
6: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
7: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
6: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों के निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
8: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है। ऊपर

0: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
1: मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे, बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ, हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
0: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
2: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे टीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
3: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
2: वही करे कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा भैया से चोरी भैया, तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
3: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
2: हाँ,
3: कौन हो सकता है?
2: देखिए चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
4: उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक दवा कारोबारी आयुष मलिक इस्लाम धर्म अपनाकर और मोहम्मद अली बनकर सबको उसने पहले चौंका दिया और अब मोहम्मद अली से आयुष मलिक बनकर यानी कि हिंदू धर्म में वापसी करके फिर से आयुष ने सबको चौंका दिया है। आखिर क्या है आयुष से अली और अली से आयुष बनने की पहेली, अभी देखिए।
0: आयुष से अली और अली से फिर आयुष। पहले इस्लाम धर्म अपनाया, अब हिंदू धर्म में वापसी। पहले नमाज पढ़ी, निकाह किया, अब फिर से पूजा करने लगा। आयुष के धर्मांतरण और घर वापसी की पूरी कहानी डिकोड। अली का पासवर्ड 2047, डायरी में आई एम ऑन मिशन का सच। ये वही आयुष है जिसके अली बनने पर उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे देश में धन परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन जो आयुष पहले इस्लाम धर्म अपनाकर अली बना अब वो घर वापसी यानी फिर से हिंदू धर्म अपनाकर आयुष बन गया है। आयुष ने घर के मंदिर में पूजा की, आरती का दीपक जलाया और बजरंग बली के सामने आयुष अली से फिर आयुष हो गया। साथ ही आयुष फिर से हिंदू धर्म अपनाने की बात भी कर रहा है।
5: मेरा नाम आयुष मलिक, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था, मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, आप मुझे माफ करना।
6: बेटा कैसा है अभी आप?

0: क्या कर रहा है?
1: बिल्कुल स्वस्थ है।
0: पूजा पाठ करा, मस्जिद तो नहीं जाता?
1: नहीं नहीं, कहीं नहीं पूजा पाठ किया। आपके सामने फोटो है, वो सत्य है बिल्कुल, जो है वो सब सत्य है। मेरे साथ में बैठ के पूजा, मेरे सामने बैठ के पूजा कर रहा हूँ।
2: संस्कारों का पोषण व्यवस्थित रूप से होगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई हमको परिवर्तित कर पाएगा, और उसका स्वागत।
3: आप आयुष के अली बनने और अली से फिर आयुष बनने की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आज आयुष पूजा कर रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है, और ना चेहरे पर दाढ़ी है, माथे पर तिलक लगा है। जबकि 8 जून को जब आयुष अली बनकर सबके सामने था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी नमाज पढ़ने की तस्वीरें भी सामने थी, और अली बनने की कहानी खुद आयुष ने अपनी जुबानी सुनाई थी।
4: धर्म परिवर्तन कहीं पर नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा, या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
5: अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब
4: देखता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी का देखता था। डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
5: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
4: धर्म परिवर्तन क्यों कराते
5: हैं? अच्छा,
4: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
5: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
4: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ।
3: उत्तर प्रदेश में शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक के मोहम्मद अली बनने का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयुष मलिक शामली के एक जाने माने डॉक्टर के साथ बकरीद पर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आया, और 4 जून को मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया और ये बताया कि भारत मेडिकल स्टोर के मालिक के एक लौते बेटे को चांदनी कुरैशी ने फंसा लिया है, दबाव में आकर पूरे परिवार ने धर्म बदल लिया है।
6: हमने 4 जून को आवाज उठाई थी कि आयुष मलिक अपने सनातन धर्म को छोड़कर के इस्लाम मजहब में चला गया। हमें आशा थी कि वो वापस सनातन धर्म में अवश्य आएगा।
3: जब आयुष मलिक से सवाल हुए तो उसने बताया कि वो चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से 4 साल पहले निकाह भी कर चुका है। आयुष ने चांदनी कुरैशी की पूरी कहानी भी बताई।
4: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
5: अच्छा, तो किस तरह से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए?
4: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
5: अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं आप।
4: फिजियोथेरेपिस्ट थी वो, शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में, पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है वैसे।
3: आपको बता दें कि 6 जून को आयुष मलिक के पिता ने शामली पुलिस में आयुष के अली बनने पर मुकदमा दर्ज करवाया था और कहा था कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने आयुष की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनके बेटे का धन परिवर्तन करवाया और फिर फर्जी निकाह भी किया।
1: चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है। फर्जी निकाह नामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में, जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
3: चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और अब आयुष ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। तो मौलानाओं का कहना है कि आयुष और चांदनी कुरैशी की शादी भी खत्म हो चुकी है।
6: जैसा कि वो अब वापस हुआ है, अब उसका चांदनी कुरैशी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई निकाह नहीं रहा, वो उसका खत्म हो गया। जिस दिन उसने वापसी मजहब किए तो उसका मसला उस चीज से खत्म हो गया, मियां बीवी का ताल्लुक ही खत्म हो गया है।
7: अब तक यही जानकारी थी कि चांदनी का पिता जूस का ठेला लगाया करता था और चांदनी कुरैशी का भाई अमन आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। आयुष के पिता के मुताबिक आयुष की संपत्ति को हड़पने के लिए एक मौलाना के साथ मिलकर उसका ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन आयुष की हिंदू धर्म में वापसी के साथ ही कई और बड़े खुलासे हुए हैं।
3: क्या था आयुष का मिशन अली? चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था? आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बच जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन। ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए। अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था? क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? आखिर क्या है आयुष का मिशन अली?
5: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है, लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उस दौरान एक बड़ा चाकू और एक डायरी मिली थी। डायरी में आयुष मलिक ने लिखा था आई एम ऑन मिशन।
3: शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047। सूत्रों की माने तो 2047 पीएफआई का कोड वर्ड है। जब एनआईए समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के बरामद किए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया, पीएफआई ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि पीएफआई ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है।
5: आयुष मलिक के धर्मांतरण के बाद उसके पिता देवराज मलिक ने शामली पुलिस को शिकायत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके परिवार वालों ने एक प्लान के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन करवाया था और उनकी नजर उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर थी। उसके बाद इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच हुई थी। जांच के बाद जो चांदनी कुरैशी थी उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके पिता को गिरफ्तार किया था।
3: आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था। तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
7: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ 4 घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दानपत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती, या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
3: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
6: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
7: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
6: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों की निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
8: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
6: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
9: मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे, बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
6: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
10: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
11: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
10: वही कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा यहाँ से चोरी भया तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके ले जाएगा।
11: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
10: हाँ,
11: कौन हो सकता है?
10: देखिए, चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
0: पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान का एक बार फिर से बड़बोलापन सामने आया है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी है। अब की बार नवाज शरीफ के पिट्ठू और पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक अली धमकी दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो हम उन हाथों को काट देंगे।

0: पानी के लिए तड़पता पाकिस्तान, धमकियां बेलगाम। भारत का वाटर बम, पाकिस्तान का निकलने लगा दम। भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, हाथ काटने की नापाक धमकी। मोदी के एक गांव से पाकिस्तान में पानी पर मचा हाहाकार। पाकिस्तान जितनी धमकियां देगा, पानी के लिए उतना ही तरसेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, तो पाकिस्तान अब पानी के लिए बिन पानी मछली की तरह छटपटाने लगा है। और पाकिस्तान की ये छटपटाहट दुनिया के सामने आने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मात खाने वाला पाकिस्तान कभी पानी पर जंग की धमकी देता है, तो अब हाथ काटने की गीदड़ भभकी दे रहा है। अब आपको पाकिस्तान का बड़बोलापन सुनवाते हैं। ये है पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक, और उनके साथ बैठे हैं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह सरार। दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुसद्दिक सीधे भारत को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उसका हाथ काट देंगे।
1: तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, दो मर्तबा एक डेढ़ साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने दो मर्तबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मर्तबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है, और हमारे पास तो ट्रीटी है। ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे सबके सामने।
0: एक मंत्री हाथ काटने की गीदड़ भभकी देता है तो साथ में बैठे दूसरे मंत्री अताउल्लाह तरार कहते हैं कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से अभी भी लागू है। भारत इसे ना तो एक तरफा स्थगित कर सकता है, ना रद्द कर सकता है, और ना ही इसमें बदलाव कर सकता है। पहले तो पाकिस्तान के इन दोनों मंत्रियों को सिंधु समझौते पर पीएम मोदी का क्लियर बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
2: भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है।
0: और अब पानी के लिए हाथ काटने की धमकी देने वाले पाकिस्तान के जलवायु मंत्री की पाकिस्तान में क्या औकात है, पाकिस्तान के लोग उन्हें किस नजरिए से देखते हैं, वो भी सुनवा देते हैं।
3: मुसद्दिक मलिक साहब को अगर मैं कहूं तो ये काफी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं का, और साथ ही साथ पीएमएलएन यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। इससे पहले एडवाइजर भी रहे नवाज शरीफ साहब के, लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सुनकर यकीनन आम पाकिस्तानी अपना सर ही पकड़ के बैठ सकता है। यानी आप हर तरफ, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, आप दोनों के साथ अपने झगड़े बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसलिए कि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि जहां तक मुझे मालूम है, कम से कम मुसद्दिक मलिक साहब की फैमिली जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं रहती है, ये कहीं अमेरिका या यूरोप में इनकी फैमिली है, और यहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं कि ये जो भी करें, और उसके बाद ये हर कंट्री के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी लगा के रखते हैं।
0: पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान जितनी धमकियां और गीदड़ भभकियां देगा उतना ही पानी के लिए तड़पेगा। वैसे पानी के लिए सूखते गले को अपनी धमकियों से और सुखाने वाले ये पाकिस्तान के इकलौते मंत्री नहीं हैं, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी भारत को पानी पर जंग की खोखली धमकी दे चुके हैं।
4: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
5: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली। ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए।
0: और तो और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी पानी के लिए भारत के खिलाफ जंग की साजिशें रचने में जुटे हैं। जी हां, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रेड भी तैयार किया है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है। यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है।
6: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
0: पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक न पहुंचे इसके लिए दो प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तो भारत सिंधु नदी को ब्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण पर काम कर रहा है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से ब्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। अनुमान के मुताबिक इस काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेंगे और साल 2028 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी ब्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। दूसरा, भारत शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी रावी नदी का ज्यादा पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान में जाता है। ये बांध इस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 5 दशक पहले 1989 में सोचा गया था। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए ये योजना बनाई गई थी।
7: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed.
0: भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब पाकिस्तान का पानी रोकने का इंतजाम भी पूरा कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकियां ही देता रह जाएगा, पानी तो उसे मिलेगा नहीं। आज तक ब्यूरो।
8: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ 4 घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दानपत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
3: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
6: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते एक साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
7: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
6: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों के निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
8: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
6: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
9: मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी

0: को अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ, हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
1: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय है। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
2: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
3: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
2: वही करे कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा यहाँ से चोरी भया तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
3: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
2: हाँ,
3: कौन हो सकता है?
2: देखिए चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
4: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं चंपत राय, वही चंपत राय जिनकी इजाजत के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी। माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से खड़े हुए बवंडर में चंपत राय पर शिकंजा कसना तय है। वजह है ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे अहम कड़ी है।
1: चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से आज 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। अब चंपत राय के बयान का मिलान दूसरे गवाहों और मौजूद दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यही कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो गई और FIR भी दर्ज करवाई गई। आरोपी टिन्नू को लेकर सफाई देते हुए चंपत राय ने यही दावा किया कि टिन्नू को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। चंपत राय ने कहा जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का जिक्र किया।
5: 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है।
1: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है, मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
6: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है।

0: हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मतीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
1: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को SIT क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में FIR क्यों दर्ज हुई जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। चंपत राय के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल मिश्रा, गोपाल राव के साथ साथ 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और दूसरे लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी है।
2: इसका दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
3: उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक दवा कारोबारी आयुष मलिक इस्लाम धर्म अपनाकर और मोहम्मद अली बनकर सबको उसने पहले चौंका दिया और अब मोहम्मद अली से आयुष मलिक बनकर यानी कि हिंदू धर्म में वापसी करके फिर से आयुष ने सबको चौंका दिया है। आखिर क्या है आयुष से अली और अली से आयुष बनने की पहेली, अभी देखिए।
1: आयुष से अली और अली से फिर आयुष। पहले इस्लाम धर्म अपनाया, अब हिंदू धर्म में वापसी। पहले नमाज पढ़ी, निकाह किया, अब फिर से पूजा करने लगा। आयुष के धर्मांतरण और घर वापसी की पूरी कहानी डीकोड। अली का पासवर्ड 2047, डायरी में I am ऑन मिशन का सच। ये वही आयुष है जिसके अली बनने पर उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे देश में धन परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन जो आयुष पहले इस्लाम धर्म अपनाकर अली बना, अब वो घर वापसी यानी फिर से हिंदू धर्म अपनाकर आयुष बन गया है। आयुष ने घर के मंदिर में पूजा की, आरती का दीपक जलाया और बजरंग बली के सामने आयुष अली से फिर आयुष हो गया। साथ ही आयुष फिर से हिंदू धर्म अपनाने की बात भी कर रहा है।
4: मेरा नाम आयुष मलिक, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
5: बेटा कैसा है अभी आपका, क्या कर रहा है?
6: बिल्कुल स्वस्थ है।
5: पूजा पाठ करा, मस्जिद तो नहीं जाता?
6: नहीं नहीं, कहीं नहीं पूजा पाठ किया। आपके सामने फोटो है, वो सत्य है बिल्कुल, जो है वो सब सत्य है। मेरे साथ में बैठ के पूजा, मेरे सामने बैठ के पूजा कर रहा हूँ।
7: संस्कारों का पोषण व्यवस्थित रूप से होगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई हमको परिवर्तित कर पाएगा, और उसका स्वागत।
1: आप आयुष के अली बनने और अली से फिर आयुष बनने की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आज आयुष पूजा कर रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है और ना चेहरे पर दाढ़ी है, माथे पर तिलक लगा है। जबकि 8 जून को जब आयुष अली बनकर सबके सामने था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी नमाज पढ़ने की तस्वीरें भी सामने थी और अली बनने की कहानी खुद आयुष ने अपनी जुबानी सुनाई थी।
8: धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा, या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
9: अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब किस
8: देखता था? ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
9: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
8: धर्म परिवर्तन की तरह।
9: अच्छा,
8: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
9: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
8: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ।
1: उत्तर प्रदेश में शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक के मोहम्मद अली बनने का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयुष मलिक शामली के एक जाने माने डॉक्टर के साथ बकरीद पर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आया और 4 जून को मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया और ये बताया कि भारत मेडिकल स्टोर के मालिक के इकलौते बेटे को चांदनी कुरैशी ने फंसा लिया है, दबाव में आकर पूरे परिवार ने धर्म बदल लिया है।
10: हमने 4 जून को आवाज उठाई थी कि आयुष मलिक अपने सनातन धर्म को छोड़कर के इस्लाम मजहब में चला गया। हमें आशा थी कि वो वापस सनातन धर्म में अवश्य आएगा।
1: जब आयुष मलिक से सवाल हुए तो उसने बताया कि वो चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से 4 साल पहले निकाह भी कर चुका है। आयुष ने चांदनी कुरैशी की पूरी कहानी भी बताई।
8: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
9: अच्छा, तो किस तरह से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए?
8: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
9: अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
8: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। वैसे
1: आपको बता दें कि 6 जून को आयुष मलिक के पिता ने शामली पुलिस में आयुष के अली बनने पर मुकदमा दर्ज करवाया था और कहा था कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने आयुष की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनके बेटे का धन परिवर्तन करवाया और फिर फर्जी निकाह भी किया।
11: चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ वो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है। फर्जी निकाह नामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब आयुष ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। तो मौलानाओं का कहना है कि आयुष और चांदनी कुरैशी की शादी भी खत्म हो चुकी है।
10: जैसा कि वो अब वापस हुआ है, अब उसका चांदनी कुरैशी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई निकाह नहीं रहा, वो उसका खत्म हो गया। जिस दिन उसने वापसी मजहब किए तो उसका मसला उस चीज से खत्म हो गया, मियां बीवी का ताल्लुक ही खत्म हो गया है।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ चार घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दानपत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
3: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
6: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते एक साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
7: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
6: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों के निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
8: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
6: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
9: मैं राम के लिए लड़ा हूँ, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
6: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
10: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
11: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
10: वही करे कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जाए यहाँ से चोरी भया, तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
11: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
10: हाँ,
11: कौन हो सकता है?
10: देखिए, चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए, चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट में भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
0: पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान का एक बार फिर से बड़बोलापन सामने आया है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी है। अब की बार नवाज शरीफ के पिट्ठू और पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक अली धमकी दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो हम उन हाथों को काट देंगे।

0: पानी के लिए तड़पता पाकिस्तान, धमकियां बेलगाम। भारत का वाटर बम, पाकिस्तान का निकलने लगा दम। भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, हाथ काटने की नापाक धमकी। मोदी के एक गांव से पाकिस्तान में पानी पर मचा हाहाकार। पाकिस्तान जितनी धमकियां देगा, पानी के लिए उतना ही तरसेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, तो पाकिस्तान अब पानी के लिए बिन पानी मछली की तरह छटपटाने लगा है। और पाकिस्तान की ये छटपटाहट दुनिया के सामने आने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मात खाने वाला पाकिस्तान कभी पानी पर जंग की धमकी देता है, तो अब हाथ काटने की गीदड़ धमकी दे रहा है। अब आपको पाकिस्तान का बड़बोलापन सुनवाते हैं। ये है पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक, और उनके साथ बैठे हैं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला सरार। दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुसद्दिक सीधे भारत को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उसका हाथ काट देंगे।
1: तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, दो मर्तबा एक डेढ़ साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने दो मर्तबा सीसा पिलाई, दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मर्तबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है, और हमारे पास तो ट्रीटी है। ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे सबके सामने।
0: एक मंत्री हाथ काटने की गीदड़ धमकी देता है तो साथ में बैठे दूसरे मंत्री अताउल्ला तरार कहते हैं कि सिद्धु जल संधि कानूनी रूप से अभी भी लागू है। भारत इसे ना तो एक तरफा स्थगित कर सकता है, ना रद्द कर सकता है, और ना ही इसमें बदलाव कर सकता है। पहले तो पाकिस्तान के इन दोनों मंत्रियों को सिद्धू समझौते पर पीएम मोदी का क्लियर बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
2: भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है।
0: और अब पानी के लिए हाथ काटने की धमकी देने वाले पाकिस्तान के जलवायु मंत्री की पाकिस्तान में क्या औकात है, पाकिस्तान के लोग उन्हें किस नजरिए से देखते हैं, वो भी सुनवा देते हैं।
3: मुसद्दिक मलिक साहब को अगर मैं कहूं तो ये काफी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं का, और साथ ही साथ पीएमएलएन यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। इससे पहले एडवाइजर भी रहे नवाज शरीफ साहब के, लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सुनकर यकीनन आम पाकिस्तानी अपना सर ही पकड़ के बैठ सकता है। यानी आप हर तरफ, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, आप दोनों के साथ अपने झगड़े बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसलिए कि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि जहां तक मुझे मालूम है, कम से कम मुसद्दिक मलिक साहब की फैमिली जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं रहती है, ये कहीं अमेरिका या यूरोप में इनकी फैमिली है, और यहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं कि ये जो भी करें, और उसके बाद ये हर कंट्री के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी लगा के रखते हैं।
0: पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान जितनी धमकियां और गीदड़ भक्कियां देगा उतना ही पानी के लिए तड़पेगा। वैसे पानी के लिए सूखते गले को अपनी धमकियों से और सुखाने वाले ये पाकिस्तान के इकलौते मंत्री नहीं हैं, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी भारत को पानी पर जंग की खोखली धमकी दे चुके हैं।
4: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
5: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली। ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए।
0: और तो और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पानी के लिए भारत के खिलाफ जंग की साजिशें रचने में जुटे हैं। जी हां, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रेड भी तैयार किया है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है। यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है।
6: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. We are looking at equipping ourselves for the next war. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the...
0: ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक न पहुंचे इसके लिए दो प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तो भारत सिंधु नदी को ब्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण पर काम कर रहा है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी ताकि रावी की सहायक नदी उज से ब्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। अनुमान के मुताबिक इस काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेंगे और साल 2028 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी ब्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। दूसरा, भारत शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम कर रहा है क्योंकि अभी रावी नदी का ज्यादा पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान में जाता है। ये बांध इस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 5 दशक पहले 1979 में सोचा गया था। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए ये योजना बनाई गई थी।
7: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed.
0: भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब पाकिस्तान का पानी रोकने का इंतजाम भी पूरा कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ गीदर भपकिया ही देता रह जाएगा, पानी तो उसे मिलेगा नहीं। आज तक ब्यूरो।
8: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ 4 घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दान पत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल के अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती, या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
3: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
6: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का वही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
7: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
6: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों की निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
8: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज

0: उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
1: मैं राम के लिए लड़ा हूँ, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने उतरेंगे बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ, हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
0: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
2: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे टीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
3: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
2: वही कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा भैया से चोरी भया, तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
3: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
2: हाँ,
3: कौन हो सकता है?
2: देखिए, चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए, चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
4: उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक दवा कारोबारी आयुष मलिक इस्लाम धर्म अपनाकर और मोहम्मद अली बनकर सबको उसने पहले चौंका दिया, और अब मोहम्मद अली से आयुष मलिक बनकर यानी कि हिंदू धर्म में वापसी करके फिर से आयुष ने सबको चौंका दिया है। आखिर क्या है आयुष से अली और अली से आयुष बनने की पहेली, अभी देखिए।
0: आयुष से अली और अली से फिर आयुष। पहले इस्लाम धर्म अपनाया, अब हिंदू धर्म में वापसी। पहले नमाज पढ़ी, निकाह किया, अब फिर से पूजा करने लगा। आयुष के धर्मांतरण और घर वापसी की पूरी कहानी डिकोड। अली का पासवर्ड 2047, डायरी में आई एम ऑन मिशन का सच। ये वही आयुष है जिसके अली बनने पर उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे देश में धन परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन जो आयुष पहले इस्लाम धर्म अपनाकर अली बना, अब वो घर वापसी यानी फिर से हिंदू धर्म अपनाकर आयुष बन गया है। आयुष ने घर के मंदिर में पूजा की, आरती का दीपक जलाया और बजरंग बली के सामने आयुष अली से फिर आयुष हो गया। साथ ही आयुष फिर से हिंदू धर्म अपनाने की बात भी कर रहा है।
5: मेरा नाम आयुष मलिक, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, आप मुझे माफ करना।
6: बेटा कैसा है अभी आपका, क्या कर रहा है?
7: बिल्कुल स्वस्थ है।
6: पूजा पाठ करा, मस्जिद तो नहीं जाता?
7: नहीं नहीं कहीं नहीं, पूजा पाठ

0: किया आपके सामने फोटो है वो सत्य है बिल्कुल, जो है वो सब सत्य है। मेरे साथ में बैठ के पूजा, मेरे सामने बैठ के पूजा कर रहा है वो।
1: संस्कारों का पोषण व्यवस्थित रूप से होगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई हमको परिवर्तित कर पाएगा, और उसका स्वागत।
2: आप आयुष के अली बनने और अली से फिर आयुष बनने की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आज आयुष पूजा कर रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है, और ना चेहरे पर दाढ़ी है, माथे पर तिलक लगा है। जबकि 8 जून को जब आयुष अली बनकर सबके सामने था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी नमाज पढ़ने की तस्वीरें भी सामने थी, और अली बनने की कहानी खुद आयुष ने अपनी जुबानी सुनाई थी।
3: धर्म परिवर्तन कहीं पर नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा, या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
4: अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब
3: देखता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी का देखता था। डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
4: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
3: धर्म परिवर्तन की तरह।
4: अच्छा,
3: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
4: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
3: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ।
2: उत्तर प्रदेश में शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक के मोहम्मद अली बनने का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयुष मलिक शामली के एक जाने माने डॉक्टर के साथ बकरीद पर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आया, और 4 जून को मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया और ये बताया कि भारत मेडिकल स्टोर के मालिक के इकलौते बेटे को चांदनी कुरैशी ने फंसा लिया है, दबाव में आकर पूरे परिवार ने धर्म बदल लिया है।
5: हमने 4 जून को आवाज उठाई थी कि आयुष मलिक अपने सनातन धर्म को छोड़कर के इस्लाम मजहब में चला गया। हमें आशा थी कि वो वापस सनातन धर्म में अवश्य आएगा।
2: जब आयुष मलिक से सवाल हुए तो उसने बताया कि वो चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से 4 साल पहले निकाह भी कर चुका है। आयुष ने चांदनी कुरैशी की पूरी कहानी भी बताई।
3: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
4: अच्छा, तो किस तरह से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए?
3: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
4: अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
3: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। वैसे
2: आपको बता दें कि 6 जून को आयुष मलिक के पिता ने शामली पुलिस में आयुष के अली बनने पर मुकदमा दर्ज करवाया था और कहा था कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने आयुष की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनके बेटे का धन परिवर्तन करवाया और फिर फर्जी निकाह भी किया।
0: चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है। अर्जी निकाह नामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
2: चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और अब आयुष ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। तो मौलानाओं का कहना है कि आयुष और चांदनी कुरैशी की शादी भी खत्म हो चुकी है।
5: जैसा कि वो अब वापस हुआ है, अब उसका चांदनी कुरैशी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई निकाह नहीं रहा, वो उसका खत्म हो गया। जिस दिन उसने वापसी मजहब किए तो उसका मसला उस चीज से खत्म हो गया, मियां बीवी का ताल्लुक ही खत्म हो गया है।
6: अब तक यही जानकारी थी कि चांदनी का पिता जूस का ठेला लगाया करता था और चांदनी कुरैशी का भाई अमन आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। आयुष के पिता के मुताबिक आयुष की संपत्ति को हड़पने के लिए एक मौलाना के साथ मिलकर उसका ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन आयुष की हिंदू धर्म में वापसी के साथ ही कई और बड़े खुलासे हुए हैं।
2: क्या था आयुष का मिशन अली? चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था? आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बच जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन। ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए। अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था? क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? आखिर क्या है आयुष का मिशन अली?
4: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है, लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उस दौरान एक बड़ा चाकू और एक डायरी मिली थी। डायरी में आयुष मलिक ने लिखा था आई एम ऑन मिशन।
2: शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047। सूत्रों की माने तो 2047 पीएफआई का कोड वर्ड है। जब एनआईए समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के बरामद किए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया। पीएफआई ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि पीएफआई ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है।
4: आयुष मलिक के धर्मांतरण के बाद उसके पिता देवराज मलिक ने शामली पुलिस को शिकायत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके परिवार वालों ने एक प्लान के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन करवाया था और उनकी नजर उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर थी। उसके बाद इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच हुई थी। जांच के बाद जो चांदनी कुरैशी थी उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके पिता को गिरफ्तार किया था।
2: आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था। तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ 4 घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दान पत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल के अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण, 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: TMC के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी NCPI इस वक्त NDA को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। TMC के 20 बागी सांसदों ने NCPI में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर NDA को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके BJP में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे, या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
3: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो JDU से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में JDU के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
6: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
7: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
6: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों के निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
8: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
6: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
9: मैं राम के लिए लड़ा हूँ, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मैं, मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे, बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
6: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
10: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
11: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
10: वही कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा यहाँ से चोरी भया, तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
11: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
10: हाँ,
11: कौन हो सकता
10: है? देखिए, चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए, चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट में भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
0: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं चंपत राय, वही चंपत राय जिनकी इजाजत के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी। माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से खड़े हुए बवंडर में चंपत राय पर शिकंजा कसना तय है। वजह है, ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे अहम कड़ी है।
6: चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से आज 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। अब चंपत राय के बयान का मिलान दूसरे गवाहों और मौजूद दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यही कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली, संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो गई और FIR भी दर्ज करवाई गई। आरोपी टिन्नू को लेकर सफाई देते हुए चंपत राय ने यही दावा किया कि टिन्नू को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस ने पूछा, रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? चंपत राय ने कहा, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का जिक्र किया।
12: 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है।
6: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है। मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
13: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
6: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को SIT क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में FIR क्यों दर्ज हुई जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। चंपत राय के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल मिश्रा, गोपाल राव के साथ साथ 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और दूसरे लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी है।
14: इसका दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
0: अब तक यही जानकारी थी कि चांदनी का पिता जूस का ठेला लगाया करता था और चांदनी कुरैशी का भाई अमन आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। आयुष के पिता के मुताबिक आयुष की संपत्ति को हड़पने के लिए एक मौलाना के साथ मिलकर उसका ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन आयुष की हिंदू धर्म में वापसी के साथ ही कई और बड़े खुलासे हुए हैं।
6: क्या था आयुष का मिशन अली? चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था? आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बच जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन। ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए। अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था? क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? आखिर क्या है आयुष का मिशन अली?
15: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है, लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिस दौरान एक बड़ा चाकू और एक डायरी मिली थी। डायरी में आयुष मलिक ने लिखा था आई एम ऑन मिशन।
6: शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047। सूत्रों की माने तो 2047 पीएफआई का कोड वर्ड है। जब एनआईए समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के बरामद किए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया। पीएफआई ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि पीएफआई ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है।
15: आयुष मलिक के धर्मांतरण के बाद उसके पिता देवराज मलिक ने शामली पुलिस को शिकायत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैसी नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके परिवार वालों ने एक प्लान के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन करवाया था और उनकी नजर उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर थी। उसके बाद इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच हुई थी। जांच के बाद जो चांदनी कुरैशी थी उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके पिता को गिरफ्तार किया था।
6: आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था। तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ चार घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दानपत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
1: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
5: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
1: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
1: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
3: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
1: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
1: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
1: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था? अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
6: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
7: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियां और पुलिस सक्रिय हो गई हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
6: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों की निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
8: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं, और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
6: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
9: मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मैं, मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ। गोपाल

0: अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
1: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
2: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
1: वही करे कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बोरा गेहूं लेके जा यहाँ से चोरी भया तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
2: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
1: हाँ,
2: कौन हो सकता है?
1: देखिए चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
3: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं चंपत राय, वही चंपत राय जिनकी इजाजत के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी। माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से खड़े हुए बवंडर में चंपत राय पर शिकंजा कसना तय है। वजह है ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे अहम कड़ी है।
0: चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से आज 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। अब चंपत राय के बयान का मिलान दूसरे गवाहों और मौजूद दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यही कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो गई और FIR भी दर्ज करवाई गई। आरोपी टिन्नू को लेकर सफाई देते हुए चंपत राय ने यही दावा किया कि टिन्नू को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। चंपत राय ने कहा जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का जिक्र किया।
4: 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है।
0: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है, मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
5: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है, हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है, हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और

0: स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है, यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
1: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को SIT क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में FIR क्यों दर्ज हुई जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। चंपत राय के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल मिश्रा, गोपाल राव के साथ साथ 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और दूसरे लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी है।
2: इसका दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
3: उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक दवा कारोबारी आयुष मलिक इस्लाम धर्म अपनाकर और मोहम्मद अली बनकर सबको उसने पहले चौंका दिया और अब मोहम्मद अली से आयुष मलिक बनकर यानी कि हिंदू धर्म में वापसी करके फिर से आयुष ने सबको चौंका दिया है। आखिर क्या है आयुष से अली और अली से आयुष बनने की पहेली, अभी देखिए।
1: आयुष से अली और अली से फिर आयुष। पहले इस्लाम धर्म अपनाया, अब हिंदू धर्म में वापसी। पहले नमाज पढ़ी, निकाह किया, अब फिर से पूजा करने लगा। आयुष के धर्मांतरण और घर वापसी की पूरी कहानी डिकोड। अली का पासवर्ड 2047, डायरी में I am ऑन मिशन का सच। ये वही आयुष है जिसके अली बनने पर उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे देश में धन परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन जो आयुष पहले इस्लाम धर्म अपनाकर अली बना, अब वो घर वापसी यानी फिर से हिंदू धर्म अपनाकर आयुष बन गया है। आयुष ने घर के मंदिर में पूजा की, आरती का दीपक जलाया और बजरंग बली के सामने आयुष अली से फिर आयुष हो गया। साथ ही आयुष फिर से हिंदू धर्म अपनाने की बात भी कर रहा है।
4: मेरा नाम आयुष मलिक, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
5: बेटा कैसा है अभी आपका, क्या कर रहा है?
6: बिल्कुल स्वस्थ है।
5: पूजा पाठ करा, मस्जिद तो नहीं जाता?
6: नहीं नहीं, कहीं नहीं पूजा पाठ किया। आपके सामने फोटो है, वो सत्य है बिल्कुल, जो है वो सब सत्य है। मेरे साथ में बैठ के पूजा, मेरे सामने बैठ के पूजा कर रहा हूँ।
7: संस्कारों का पोषण व्यवस्थित रूप से होगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई हमको परिवर्तित कर पाएगा, और उसका स्वागत है।
1: आप आयुष के अली बनने और अली से फिर आयुष बनने की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आज आयुष पूजा कर रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है और ना चेहरे पर दाढ़ी है, माथे पर तिलक लगा है। जबकि 8 जून को जब आयुष अली बनकर सबके सामने था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी नमाज पढ़ने की तस्वीरें भी सामने थी और अली बनने की कहानी खुद आयुष ने अपनी जुबानी सुनाई थी।
8: धर्म परिवर्तन कहीं पर नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
9: अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब किस
8: देखता था? अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
9: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
8: धर्म परिवर्तन की तरफ।
9: अच्छा,
8: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
9: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
8: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित में इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ।
1: उत्तर प्रदेश में शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक के मोहम्मद अली बनने का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयुष मलिक शामली के एक जाने माने डॉक्टर के साथ बकरीद पर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आया और 4 जून को मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया और ये बताया कि भारत मेडिकल स्टोर के मालिक के एक लौते बेटे को चांदनी कुरैशी ने फंसा लिया है, दबाव में आकर पूरे परिवार ने धर्म बदल लिया है।
10: हमने 4 जून को आवाज उठाई थी कि आयुष मलिक अपने सनातन धर्म को छोड़कर के इस्लाम मजहब में चला गया, हमें आशा थी कि वो वापस सनातन धर्म में अवश्य आएगा।
1: जब आयुष मलिक से सवाल हुए तो उसने बताया कि वो चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से 4 साल पहले निकाह भी कर चुका है। आयुष ने चांदनी कुरैशी की पूरी कहानी भी बताई।
8: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
9: अच्छा, किस तरह से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए?
8: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
9: अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
8: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कॉन्टेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। बस
1: आपको बता दें कि 6 जून को आयुष मलिक के पिता ने शामली पुलिस में आयुष के अली बनने पर मुकदमा दर्ज करवाया था और कहा था कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने आयुष की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनके बेटे का धन परिवर्तन करवाया और फिर फर्जी निकाह भी किया।
6: चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है। फर्जी निकाह नामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: चांदी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब आयुष ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। तो मौलानाओं का कहना है कि आयुष और चांदी कुरैशी की शादी भी खत्म हो चुकी है।
10: जैसा कि वो अब वापस हुआ है, अब उसका चांदनी कुरैशी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई निकाह नहीं रहा, वो उसका ख़त्म हो गया। जिस दिन उसने वापसी मजहब किए तो उसका मसला उस चीज़ से ख़त्म हो गया, मियां बीवी का ताल्लुक ही ख़त्म हो गया है।
3: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ 4 घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दान पत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल के अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: TMC के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी NCPI इस वक्त NDA को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और?
0: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल अब यही है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे में चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ कर दिया, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंचाया जा रहा था? अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
5: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया।
6: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
5: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों के निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
7: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
5: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
8: मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे, बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
5: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
9: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
10: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
9: वही कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा भैया से चोरी भैया, तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
10: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
9: हाँ,
10: कौन हो सकता है?
9: देखिए, चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए, चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
0: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं चंपत राय, वही चंपत राय जिनकी इजाजत के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी। माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से खड़े हुए बवंडर में चंपत राय पर शिकंजा कसना तय है। वजह है, ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे अहम कड़ी है।
5: चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से आज 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। अब चंपत राय के बयान का मिलान दूसरे गवाहों और मौजूद दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यही कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली, संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो गई और FIR भी दर्ज करवाई गई। आरोपी टिन्नू को लेकर सफाई देते हुए चंपत राय ने यही दावा किया कि टिन्नू को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस ने पूछा, रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? चंपत राय ने कहा, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का जिक्र किया।
11: 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। उस पूछताछ के कंटेंट हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है।
5: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है। मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
12: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
5: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को SIT क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में FIR क्यों दर्ज हुई जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। चंपत राय के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल मिश्रा, गोपाल राव के साथ साथ 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और दूसरे लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी है।
13: इसका दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
0: अब तक यही जानकारी थी कि चांदनी का पिता जूस का ठेला लगाया करता था और चांदनी कुरैशी का भाई अमन आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। आयुष के पिता के मुताबिक आयुष की संपत्ति को हड़पने के लिए एक मौलाना के साथ मिलकर उसका ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन आयुष की हिंदू धर्म में वापसी के साथ ही कई और बड़े खुलासे हुए हैं।
5: क्या था आयुष का मिशन अली? चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था? आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बच जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन। ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए। अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था? क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? आखिर क्या है आयुष का मिशन अली?
14: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है, लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उस दौरान एक बड़ा चाकू और एक डायरी मिली थी। डायरी में आयुष मलिक ने लिखा था आई एम ऑन मिशन।
5: शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047। सूत्रों की माने तो 2047 पीएफआई का कोड वर्ड है। जब एनआईए समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के बरामद किए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया, पीएफआई ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि पीएफआई ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है।
14: आयुष मलिक के धर्मांतरण के बाद उसके पिता देवराज मलिक ने शामली पुलिस को शिकायत दी थी और यह आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके परिवार वालों ने एक प्लान के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन करवाया था और उनकी नजर उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर थी। उसके बाद इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच हुई थी। जांच के बाद जो चांदनी कुरैशी थी उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके पिता को गिरफ्तार किया था।
5: आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था। तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
15: आषाढ़ के महीने का किस नक्षत्र से है संबंध? आषाढ़ के महीने का माता दुर्गा से क्या संबंध है? आषाढ़ के महीने में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? क्या है आषाढ़ के महीने की महिमा और नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से की बात। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अहम चर्चा। स्थायी शांति और अस्थिरता पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री मोदी के सचिवों के साथ 4 घंटे की हाई लेवल मीटिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन। विभागों के बीच तालमेल पर जोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच। दानपत्र खोलने को लेकर गिनती तक खामियां मिली। घेरे में 6 से 7 बैंक। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किचकिच। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चाओं के बीच विधानसभा चीफ ने व्हिप से कमाल अख्तर को देना पड़ा इस्तीफा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का है लंबा अनुभव। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी नजर आ सकता है?
1: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही